मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ष एवं न्यूज ऑन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आज रविवार है। शक संबत 1948 के आषाढ़ मास की तिथि 14, तदनुसार 5 जुलाई 2026 ईस्वी। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:49 होने ही वाले हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन, आलेख एवं वाचन सुरेंद्र झा का।
1: सामान्यतः शास्त्र पढ़निहार व्यक्ति के पंडित कहल जाय छे। शास्त्रज्ञ के नाव के आगा पंडित लगेबाक परिपाटी से हो अछि, मुदा ई एक गोट विचारणीय प्रश्न अछि जे की शास्त्र ज्ञाता के पंडित कहल जाय। कबीर दास जी तो स्पष्ट शब्द में कहलन अछि, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। कबीर दास जी के मतानुसार जे व्यक्ति प्रेमक मर्म बुझ लेलक सह पंडित अछि, मात्र पोथी पढ़ने ने क्यों पंडित नहीं भ सकै छै। पंडितक दोसर परिभाषा एहि प्रकारें देल गेल अछि, मातृवत परदारेषु, पर द्रव्येषु लोष्ठवत, आत्मवत सर्वभूतेषु, यह पश्यति स पंडितः। जे व्यक्ति आन स्त्री के माता जकां बुझै छै, अनका धन के तुच्छ हे त्याज्य बुझै छै, आ अपने जकां आनो जीव जंतु के बुझै छै, सह व्यक्ति पंडित थिक। कबीर दास जी के देल पंडितक परिभाषा का आधार दार्शनिक अछि। प्रेम शब्दक स्पष्टीकरण दार्शनिके मत सँ भ सकै छै, मुदा पंडितक अपर परिभाषा दैनन्दिन जीवन सँ जुड़ल अछि, लोकाचार सँ सम्बद्ध अछि। शील, संयम आ संवेदनशीलता सँ युक्त मनुष्य के पंडित कहल गेल अछि। महाभारत में सेहो पंडित आ मूर्खक अंतर स्पष्ट कयल गेल अछि। महाप्राज्ञ विदुर पंडितक लक्षण स्पष्ट करैत कहै छथि, जस्य संसारिणी प्रज्ञा धर्मार्थावनुवर्तते कामादर्थं वृणीतेजः स वै पंडित उच्यते। यही परिभाषा अनुसार प्राज्ञ व पंडित ओ व्यक्ति छथि जे उच्चमना होथि, निंदनीय क्रियाकलाप सँ हटल रहथि, जे श्रद्धावान होथि, क्रोध दर्प आ सम्मानक इच्छा जिनका पथभ्रष्ट नहि कऽ सकनि, जिनक सोचब बाजब आ करब एक रंग हो, अर्थात ओ जे सोचथि सह बाजथि आ सह करथि, ई नहि जे मन में किछु अछि बजै किछु छी आ करै किछु तेसरे वस्तु छी। एकरे महात्मा आ दुरात्माक अंतर स्पष्ट करैत एना कहल गेल अछि, मनस्येकं वचस्येकं कर्मस्येकं महात्मना, मनस्यन्यत् वचस्यन्यत् कार्यमन्यत् छुरात्मना। एहिठाम महात्मा आ पंडित दुनू शब्द एकार्थक भ जाइ छै। नीतिकार विदुर त अहुसा आगा बढ़ गेल छथि, ओ कहै छथि पंडितक मनोगत भाव वा विचारक द्योतक हुनक काजे होइ छन्। ओ वाणी द्वारा मनोगत भाव प्रकट करथि वा नहि, हुनक काजे देखि कऽ संसार के हुनक भावनाक बोध भ जाइ छन्। पंडित वाग्जाल सँ बचबाक सदैव चेष्टा करै छथि, एकर कारण ई अछि जे वाणी द्वारा मनोगत भावक पूर्ण आ वास्तविक अभिव्यक्ति नहीं भ पबै छै, तैं पंडित एहि दोष सँ बाँचबाक सतत प्रयास करै छथि। ओ काज करबा में विश्वास करै छथि, आत्मश्लाघाक लेश मात्रो हुनका में नहीं होइ छनि। पंडितक जाहि गुण सभक चर्चा एखन कयल गेल अछि,

0: ओकर उनटा मूर्खक लक्षण बुझक चाही।
1: कार्यक्रम चिंतन अभी आप सुन रहे थे, प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा से किया गया।

0: फसल के रूप में हमरा लोकन मकई के नाम से हो लो सकैत छी। धानक बाद एकरे स्थान अबैत अछि। एकर उन्नत वैज्ञानिक ढंग से खेती क के हमरा लोकन नीक आमदनी क सकैत छी। जाहि लेल सदत उन्नत प्रभेदक बीया के चयन करबाक चाही, जाहि में अबैत अछि संकर प्रभेद में शक्तिमान एक, ई 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होइत अछि। ई उज्जर होइत अछि। शक्तिमान 2, ई 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होइत अछि। ओ ई उज्जर रंगक होइत अछि। शक्तिमान 3, ई 65 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर धर होइत अछि। ओ ई पियर रंगक होइत अछि। शक्तिमान 4, ई 65 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर धर होइत अछि। ओ ई पियर रंगक होइत अछि। शक्तिमान 5, ई पियर रंगक ओ 70 से 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर धर होइत अछि। राजेंद्र शंकर मकई 3, ई पियर रंगक होइत अछि ओ 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर धर होइत अछि। गंगा 11, ई नारंगी पियर रंगक होइत अछि। ओ एकर उत्पादन क्षमता 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर धर होइत अछि। संकुल प्रभेद में कुआन जे पियर रंगक होइत अछि, ओ एकर उत्पादन क्षमता 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर धर होइत अछि। और देवकी अबैत अछि जे उज्जर रंगक होइत अछि, ओ एकर उत्पादन क्षमता 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर धर मानल गेल अछि। खरीफ मकई के बीया के बाउग करबाक उपयुक्त बेर
1: 25 मई सँ लऽ कऽ 15 जून धरि। स्नेही किसान श्रोता भाई बहिन लोकनि, हमरा लोकनि के मकई के बीया के उपचारित क के बाउग करबाक चाही, जाहि लेल 20 किलोग्राम बीया के प्रति हेक्टेयर व्यवहार क सकैत छी। ओ एहि बीया सभ के 2.5 ग्राम अर्थात 2.5 ग्राम कैपटॉप अथवा थीरम द्वारा उपचारित क लेबाक चाही। नीक ओ मनून कुल उत्पादन लेबाक लेल बीया के बाउग करबाक काल एकर दूरी पर सेहो ध्यान देबाक चाही, जे पाँती सँ पाँतीक दूरी 75 सेंटीमीटर, ओ बीया सँ बीयाक दूरी 25 सेंटीमीटर रखबाक चाही। संग संग बीया के 3 से 5 सेंटीमीटर धरि गहीर में छिटबाक चाही। खरीफ मकई में खाद उर्वरकक 3 बेर व्यवहार कयल जाइत अछि, जेना पहिल बेर बीया बाउग करबा काल, दोसर बेर 35 से 40 दिनका बाद, ओ तेसर बेर धनवाल अर्थात मोटा निकलबाक बेर में ई देबाक चाही। खाद ओ उर्वरकक मात्रा के खेतक कोलाक रकबाक अनुसारे निर्धारित करबाक चाही, जाहि में हमरा लोकनि नेत्रजन, स्फुर अर्थात फास्फोरस ओ पोटासक मात्रा के व्यवहार में ध्यान रखिए। खरीफ मकई में पटौनीक प्रायः आवश्यकता नहीं होइत अछि, मुदा पानिक निकासक उचित व्यवस्था रखबाक चाही। आवश्यकता जो होइ तऽ दाना निकलबा काल में नमी बनल रहबाक योग्य पटौनी कऽ दिए। बीया बाउक दोसर दिन तृणनाशक दवाई एट्राजीन के व्यवहार करबाक चाही, जे रकबाक अनुसारित एकर मात्रा निर्धारित कयल जाइत अछि आ एक तदनुसार एकर छिड़काव कऽ सकैत छी, अथवा खुरपी द्वारा कमौनी निकौनी सेहो कऽ सकैत छी। फसलक रोग व्याधि सँ रक्षा करबाक चाही, जाहि लेल कृषि वैज्ञानिक लोकनि सँ परामर्श लेबाक चाही। आब आजुक कृषि चर्चा सम्पन्न भेल।
2: आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा। समय है हिंदी समाचार का, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आप तक पहुंचाएंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सांणंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान किया जाएगा। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। अमेरिका के मौसम विभाग ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तापमान का भी पूर्वानुमान होगा। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। वहीं जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। तीसरा मैच मंगलवार को नॉटिंगहम में खेला जाएगा। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। वैभव ने 15 वर्ष और 99 दिन की उम्र में पदार्पण किया। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने कल महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकाइना को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। एक अन्य मुकाबले में फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एला ने तीसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की ईगा स्वियाटेक को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर

0: देव ने तीसरे दौर में अमेरिका के मार्कोस गिरोन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ एवं न्यूज ऑन AIR ऐप पर प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा। स्वास्थ्य चर्चा में आज का विषय है दांतों में कैविटीज, कारण और बचाव। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर

0: साथ हैं डॉक्टर अलका। डॉक्टर अलका, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: हमारे श्रोताओं को सबसे पहले ये बताइए कि दांतों में जो कैविटी है, इसका मुख्य कारण क्या है? उससे पहले आप ये बताएं कि कैविटी क्या होती है।
1: सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि जो हमारा दांत है, शरीर का सबसे कठोर हिस्सा है।
0: जी।
1: फिर भी कभी कभी इसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, जिनको आप कैविटी कहते हैं या खोदर कहते हैं या कीड़ा लगना कहते हैं, बोलचाल के भाषा में।
0: अच्छा, दांतों में छेद होना या उसका कीड़ा लगना, उसको कैविटी कहते हैं।
1: हाँ,
0: ठीक है। इसके ये क्यों होता है ऐसा?
1: हमारे दांत में जो है, मिनरलाइजेशन और डीमिनरलाइजेशन का प्रोसेस निरंतर चलता रहता है। दांत जो हमारा है, कई मिनरल से बना है, इसमें जो प्रोसेस चलते रहता है वो कंटिन्यू ऐसे चल रहा है तब तो ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप खाना खा रहे हैं और उसके खाने के जो कण हैं आपके दांतों के बीच में फंसे रह जाते हैं, फिर वहाँ पे बैक्टीरिया पनपने लगता है। वो बैक्टीरिया और मुंह का जो एसिड होता है, अम्ल जिसको कहते हैं, लैक्टिक एसिड, वो दोनों के कारण
0: दांतों में सड़न शुरू हो जाती है, मतलब एसिड की वजह से।
1: एसिड के कारण क्षरण शुरू हो जाता है। अच्छा, जो आपका इनर मेल है वो खत्म होने लगता है।
0: जी जी जी।
1: और इसके कारण वहाँ पे आपको छोटा सा छेद शुरू होता है जो फिर धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। अच्छा। अगर इसको कंट्रोल ना किया गया
0: तो उसी को कैविटी कहते हैं।
1: जी।
0: तो उसका कारण क्या है? उसका
1: आपके इनर मेल का डीमिनरलाइजेशन होना,
0: यानी कि खान पान की कमी की वजह से। कुछ लोग क्या, खान पान की गड़बड़ी से होता है ये दांतों में?
1: नहीं नहीं, आपके मुंह में जब पीएच बैलेंस 5.5 से कम हो जाता है।
0: अच्छा।
1: तो वहाँ पे डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस रीमिनरलाइजेशन प्रोसेस से तेज हो जाता है।
0: तो ये जो आपने कहा पीएच वैल्यू 5 से कम हो जाता है, इसका कारण क्या? कुछ तो कारण होगा।
1: इसका कारण है कि आप जो खाना खा रहे हैं उसमें एसिड ज्यादा है।
0: अच्छा, एसिड की मात्रा बढ़ जाती है
1: और मुंह में आपके जो गंदगी के कारण बैक्टीरिया पनप रहे हैं उसका कारण।
0: अच्छा।
1: इन दोनों के प्रोसेस से ही ये कैविटी का निर्माण शुरू हो जाता है।
0: तो किस प्रकार के खान पान की वजह से ये समस्याएं ज्यादा आती हैं?
1: मीठा खाना।
0: अच्छा।
1: तैलीय खाना, जैसे आपका कई कार्बोहाइड्रेट में सुक्रोज है, उससे जो लैक्टिक एसिड निकल रहा है वो सबसे मुख्य कारण है इसका।
0: जी। तो बहुत से लोग हैं जो जैसे गुलाब जामुन, रसगुल्ले या जलेबी, इस प्रकार की रस वाली चीज़ें खाते हैं, उसमें तो ज़्यादा शिकायतें होंगी, या मिठाई या फिर टॉफ़ी चॉकलेट्स।
1: शिकायत है, खाइए, लेकिन उसके बाद मुंह को अच्छे से साफ कीजिए।
0: तो ये फिर ज़्यादातर बच्चों में होता है कि या ज़्यादातर बड़ों में ही होता है ये?
1: ये बच्चों में ज़्यादा देखा गया है।
0: बच्चों में। अच्छा,
1: खासकर 14 साल तक के बच्चों में।
0: जी।
1: उनमें हड़बड़ी भी रहती है स्कूल जाने का, जल्दी जल्दी ब्रश करते हैं, ठीक से ब्रश नहीं किए।
0: तो कैविटी से बचाव का क्या तरीका है?
1: आप चिपचिपे और मीठे पदार्थ कम खाइए।
0: अच्छा।
1: ब्रश कीजिए सुबह और शाम, फ्लोराइड युक्त पेस्ट का इस्तेमाल कीजिए।
0: जी।
1: और रात में आपको ये एक ग्लास नमक पानी से, गर्म पानी में नमक डालकर कुल्ला किया कीजिए रेगुलरली।
0: अच्छा।
1: और नियमित रूप से दांतों का चेकअप करवाइए।
0: ये भी कहा जाता है कि हमें ब्रशिंग जो है सिर्फ सुबह नहीं, रात को खाना खाने के बाद भी करना चाहिए, यानी कि दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल।
0: इससे ये शिकायत नहीं होगी? मतलब?
1: हाँ, जिससे आपके जो खाने के जो कण फंसे हुए और निकल जाएंगे तो फिर बैक्टीरिया का ग्रोथ कम हो जाएगा।
0: और लोग कहते हैं कि रात को जो ब्रशिंग है वो ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि दांतों का सड़ना जो है, एसिड बनना ज़्यादातर रात में ही होता है, ऐसा कुछ है क्या?
1: जी बिल्कुल, क्योंकि रात में जो आपका खाना है उसमें आपका जो मुंह का लार है वो भी रीमिनरलाइजेशन के प्रोसेस को बढ़ावा देता है।
0: जी।
1: रात में आप खाने के कण रह जाते हैं तो वहाँ पे बैक्टीरिया का एक्शन ज़्यादा हो जाता है।
0: जी जी। अच्छा, अगर किसी को कैविटी हो गया उसके बाद फिर उसका क्या इलाज है?
1: उसके बाद हम कैविटी को सिर्फ फिलिंग, जिसको आप कह सकते हैं, डेंटिस्ट लोग फिलिंग कहते हैं, फिलिंग करवा के उसको ठीक कर सकते हैं। एक तरह से वहाँ कहिए कि छह को रोक सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं वहाँ, कैविटी अरेस्ट।
0: अच्छा।
1: उस जो आगे नहीं बढ़े।
0: अच्छा। और ज़्यादा सड़न हो गई तो फिर तो कुछ और भी उसका दूसरा भी इलाज?
1: अगर क्षरण सिर्फ कहिए आपके डेंटिन तक है तब तक सिर्फ फिलिंग से ठीक हो जाएगा, और अगर वही क्षरण आपके पल्प तक, सबसे भीतरी वाले पार्ट तक चला गया है, फिर उसके बाद हम लोग को RCT करवाना पड़ेगा।
0: यानी जब समस्या गंभीर हो जाएगी तो फिर RCT की नौबत।
1: हाँ, वो लास्ट ऑप्शन हो जाएगा।
0: ठीक, डॉक्टर साहब, आपने हमारे दांतों में कैविटी के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी दी, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: स्वास्थ्य चर्चा में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अलका कुमारी से रंजन कुमार की बातचीत। विषय था दांतों में कैविटी, कारण और बचाव। आकाशवाणी दरभंगा से अब सुनिए भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। पहले ये देशगान।

देशगान अभी आप सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। आइए सुनते हैं शर्मा बंधु के स्वर में ये भजन।

भाव के झरोके में से राम जी का कर ले दर्शन। सच ही तो है, भगवान तो भाव के भूखे हैं। जब हम अपनी भावनाओं में भगवान को बसाए रखते हैं तो माया से दूरी अपने आप बनने लगती है। लोभ मोह छल प्रपंच से हम अलग हो जाते हैं और प्रभु के सामीप्य को प्राप्त हो जाते हैं। ये सुंदर सा भजन अभी आपने सुना। अगला भजन हम आपको सुनवाते हैं बिंदु जी महाराज का भजन।

सदा श्याम श्यामा पुकारा करेंगे। जिसने प्रभु के को भज लिया, उनको ही अपना सहारा बना लिया, उसे किसी और की जरूरत ही कहाँ। अगला भजन हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर के स्वर में।

गोविंद के गुण गाइए, गोपाल के गुण गाइए। गोविंद के गुण जिसने गा लिया, प्रभु की महिमा का वखान करने वाले को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, प्रभु उसे भवसागर पार कराते हैं। ये सुंदर सा भजन अभी आपने लता मंगेशकर के स्वर में सुना। आइए अब आपको हरिहरन के स्वर में सुनवाते हैं ये सुंदर सा भजन।

0: कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। भले ही जीवन को आलस में गवा दिया हो, लेकिन अंतकाल में यदि भगवान का नाम लिया जाए तो निश्चित रूप से भगवान उसका भवसागर पार लगाते ही हैं। अभी आपने हरिहरन के स्वर में सुंदर सा भजन सुना। श्रोताओं, इसी के साथ भक्ति संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। प्रस्तुत है रामचरित मानस गान। स्वर वाणी जयराम का।
1: एपिसोड 19 1 9।

श्री रामचरित मानस की रचना प्रक्रिया में गोस्वामी तुलसीदास ने मानस रूपी एक अद्भुत रूपक की कल्पना की है। कहते हैं, जिनके पास श्रद्धा का पाथेय नहीं है और ना ही जिन्हें संत जनों का साथ प्राप्त है, जिनके हृदय में भगवत प्रीति नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए ये मानस सर्वथा अगम्य अप्राप्य है। यदि कोई कष्ट उठाकर इस सरोवर तक पहुंच भी जाए तो उसे अज्ञान का ज्वर धर दबाता है, जिसके कारण वो इस पवित्र सरोवर में स्नान से वंचित रह जाता है। जो इससे वंचित रहा, जिसने कभी इसके पवित्र जल का पान नहीं किया, वो सरोवर की निंदा के अतिरिक्त और क्या कर सकता है। लेकिन जिन पर प्रभु की अनुकंपा है, उन्हें यह व्याधि नहीं छू पाती। वे दैहिक, दैविक तथा भौतिक तापों में भी नहीं जलते। इस पवित्र सरोवर से रामकथा रूपी कविता निकली है। इस कविता रूपी नदी में प्रभु का यश रूपी जल प्रवाहित होता है। इस कीर्ति नदी का नाम है सरयू, जो सबके लिए सर्वदा मंगलकारिणी है। वेदमत और लोकमत इसके दो किनारे हैं।

अब से कुछ ही देर में यानी कि 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। 10 बजे आप आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का। बच्चों का कार्यक्रम फुलवारी का प्रसारण होगा 10:30 पर।

पूर्ण कार्यक्रम हेलो जिंदगी का प्रसारण समय है दिन के 11 बजे। दिन के 12 बजे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम सखी बहन। मैथिली नाटक का प्रसारण समय है 12:30। एक बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत। फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपके अनुरोध पर आप सुनेंगे दिन के 1:15 पर। 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। रोजगार सूचना आप सुनते हैं 2:10 पर।

रेडियो की बात श्रोताओं के साथ। इसका प्रसारण समय है दिन के 2:30। 3 बजे हम आपको सुनवाएंगे कुछ विद्यापति गीत। हमारी दूसरी सभा के अंतर्गत शाम 5 बजे आप सुनेंगे

6:10 पर आप सुन सकेंगे विद्यापति गीत। मैथिली संवाद का प्रसारण आकाशवाणी पटना से किया जाएगा 6:25 पर।

0: गाम घर कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे गुनगुनाइत मौन 6:30 पर। 7 बजे किसान श्रोताओं का कार्यक्रम खेती गृहस्थी। प्रादेशिक समाचार का समय होगा 7:30 और जिले की हलचल 7:47, जिसे हम अपने पटना केंद्र से रिले कर आप तक पहुंचाएंगे। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे 7:52 पर। क्रीड़ा जगत आप सुनेंगे 8:15 पर। रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आप तक पहुंचाएंगे 9:30 पर। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का प्रसारण होगा हमारे दिल्ली केंद्र से 10:00। तो ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्रोताओं, समय है समाचार का, तो आप सुनेंगे दिल्ली से पहले संस्कृत में फिर हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना ह्यः गुजरातस्य सानन्दक्षेत्रे सीजी सेमी संस्थायाः अत्याधुनिकस्य ओसे

0: सेमीकंडक्टर संयंत्रस्य उद्घाटनं कृतम्। अत्रावसरे जनसभां संबोधयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् अयं विकासः भारतस्य प्रगाढ इलेक्ट्रॉनिक्स क्रान्तेः आगामी चरणमस्ति, येन देशः पूर्वमेव विश्वस्य द्वितीयः बृहत्तमः दूरभाष निर्मातृत्वेन समेधितः। सः दृढविश्वासं प्रकटितवान् यत् सानन्दक्षेत्रं वैश्विक सेमीकंडक्टर केन्द्रत्वेन समेधिष्यते।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: तेन गदितं यत् सानन्दं प्रतिवर्षं 20 कोटि चिप्स निर्माणार्थं सज्जमस्ति। तेन 500 कोटि परिमितस्य लक्ष्य निर्धारणार्थं शुभाशयाः अपि प्रकटिताः। अत्रावसरे केन्द्रीय मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन घोषितं यत् 26,000-2,000 यावत् भारते 5 सेमीकंडक्टर संयंत्राणि पूर्णतः क्रियाशीलानि भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा जोधपुर विमानपत्तने नूतनस्य टर्मिनल भवनस्यापि उद्घाटनं कृतम्। तदनन्तरं सः बालोत्तरा मण्डलस्य पचपदरा क्षेत्रे देशस्य अत्याधुनिकं ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इत्येतत् राष्ट्राय समर्पितवान्। अत्रांतरे तेन जयपुर मेट्रो द्वितीय चरणस्य शिलान्यासोऽपि कृतः। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य संघर्षेण 21वीं शताब्द्याः महत्तमः ऊर्जा संकटः समुत्पन्नः, किन्तु भारतेन समयोचित निर्णयैः कूटनीत्या च एषः कालः सम्मुखीकृतः।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी राजस्थान सर्वकारस्य विभिन्न विभागेषु नवनियुक्तेभ्यः 45,000 युवभ्यः नियुक्ति पत्राणि अपि प्रायच्छत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः सानन्दक्षेत्रे नूतन सीजी सेमी ओसेट इत्यस्य उद्घाटनं प्राविधिक आत्मनिर्भरतायां भारतस्य अभिनव पदक्षेपः इत्युदीरितवान्। अस्य अत्याधुनिक संयंत्रस्य उद्घाटनं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना कृतम्। गृहमन्त्रिणा सामाजिक संजालीय तन्त्रे स्वलेखे प्रकटितं यत् भारतस्य प्रौद्योगिकी महाशक्तित्वेन विकास यात्रायामेषः कश्चन नूतनः कीर्तिस्तम्भः अस्ति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य प्रभृति अस्य मासस्य 10 दिनांकं यावत् कतार, बहरीन, कुवैत, ओमान देशानां आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। स्वप्रवासकाले विदेशमन्त्री तत्तद्देशीयानां समकक्षनेतृभिः सह शीर्षनेतृत्वेन च सह मेलिष्यति। विदेशमन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् अयं प्रवासः एतैः देशैः सह भारतस्य द्विपक्षीय सम्बन्धानां दृढीकरणे विशेषेण केन्द्रितः भविष्यति। संसदः वर्षाकालीन सत्रमस्य मासस्य 20 दिनांकात् अगस्त मासस्य 23-10 दिनांकं यावत् प्रचलिष्यति। संसदीय कार्यमन्त्री किरण रिजिजू सूचितवान् यत् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः जुलाई मासस्य 20 दिनांकात् संसदः वर्षाकालीन सत्रस्य आह्वानाय सर्वकारस्य प्रस्तावं स्वीकृतवती। आईसीसी महिला 20-प्रति-20 विश्वचषके लंडन नगरस्य लॉर्ड्स क्रीडांगणे इंग्लैंड दलम् अद्य अंत्यद्वंद्वे ऑस्ट्रेलिया दलम् सम्मुखी करिष्यति। इयं प्रतिस्पर्धा तावत् भारतीय समयानुसारं रात्रौ 8 वादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान के पचपदरा में 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी किया। श्री मोदी ने कहा कि जोधपुर हवाई अड्डे का

0: नया टर्मिनल भवन मारवाड़ क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि जोधपुर से संशोधित उड़ान योजना शुरू होने से छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों तक हवाई संपर्क बेहतर होगा। श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान सरकार राष्ट्र प्रथम के दृष्टिकोण से काम कर रही है और हर क्षेत्र तथा हर नागरिक के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इससे पहले श्री मोदी ने पचपदरा में देश की सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल संयंत्र का लोकार्पण किया। उन्होंने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। बाद में गुजरात के सांणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र की में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि यह विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। कांग्रेस सरकार के दौरान 10 राज्यों में 5% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन केवल 1.4% मिश्रण ही हासिल किया जा सका। सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी की गई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा पर 3-0 से शानदार जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला।
1: नमस्कार मिथिला सुनिहार समस्त श्रोता लोकनिका आशीषक नमस्कार।
0: और आज के इस अंक में मैं हूं कुशल, आशीष जी आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार कुशल,
0: और कार्यक्रम साथ ही साथ नमस्कार मिथिला सुनने वाले तमाम श्रोताओं को कुशल का प्यार भरा नमस्कार। और कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग करते हैं सुविचार से। आज का सुविचार है चाणक्य नीति से, विश्वास और सम्मान सम्मान मांगने से नहीं मिलता, इसे अपने व्यवहार भाषा और नियत से अर्जित किया जाता है। यह है चाणक्य नीति।
1: निश्चित तौर पर अहाँ के जेहन व्यवहार होते तहिना लोग अहाँ के इज्जत दै छथि। अहाँ कोनो आदमी अहाँ के इज्जत दऽ रहल छथि मुदा अहाँ हरदम हुनका से किछु रोरल बोली में हुनका गप करियौन, हुनका किछु किछु कहैत रहियौन, तऽ अन्तमे होइत होइत ओहो आदमी खींच जतत, और जे अहाँ के इज्जत दऽ रहल छथि सेहो इज्जत देनाइ बन्द कऽ दै छथि। ओना मिथिला में कहावतो अछि, इएह मुँह अहाँ के पान खुआबैत अछि और इएह मुँह अहाँ के लाठी सेहो खुआबैत अछि। आब अहाँके देखबाक अछि, सोचबाक अछि कि हम केना दूसरा से व्यवहार राखी।
0: और आशीष जी, कभी कभी होता भी है आदमी का व्यवहार तो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन एक छोटी सी एक भाषा में एक छोटी सी गलती के कारण उनका सम्मान पाने की जो जगह होती है या उनका व्यवहार पूरा खराब हो जाता है। इसीलिए
1: और देखें ना, एहन गप कहिए रहल छी तखन कए बेर एहनो होइए कि लोग सब दोसरा के कहला पर अपन व्यवहार बदल लै छथि।
0: हाँ, ये भी होता है कि लोगों का खुद का व्यवहार तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन किसी और की भाषा सुन के वो अपना व्यवहार को किसी और के सामने खराब कर लेते, जिनके सम्मान उनकी कम हो जाता है। तो खैर, ये था सुविचार चाणक्य नीति से। अब हम लोग कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आज के दिन के इतिहास पे। आज ही के दिन 1811 में वेनेजुएला ने स्पेन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। आज ही के दिन सन 1865 में लंदन में विलियम और कैथरीन बूथ द्वारा ईसाई मिशन की स्थापना की गई। जेफ बेजोस ने सिएटल में ई कॉमर्स दिग्गज अमेजन की नींव आज ही के दिन सन 1994 में रखी। सन 1996 में आज ही के दिन स्कॉटलैंड के रोसलिन इंस्टीट्यूट में दुनिया के पहले क्लोन स्तनपाई डॉली भेड़ का जन्म हुआ था। इंजुफ्लेजा एक्ट लागू हुआ आज ही के दिन 1947 में। भारत में महामारी रोकने के लिए यह कानून इसी दिन लागू हुआ था। और 1954 में आज ही के दिन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना हुई। इस दिन आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय बना। आज ही के दिन यानी 5 जुलाई 2004 को इंडोनेशिया में पहली बार जनता ने सीधे राष्ट्रपति चुना। और आज ही के दिन सन 1964 में भारत की उड़ान पड़ी महान धाविका पीटी उषा का जन्म हुआ।
1: ई एक नाम सब किछु आइ के दिन इतिहास में क्या महत्वपूर्ण छलै तकर बारे में जानकारी प्राप्त करैत रही। और कार्यक्रम में आगू बढ़े छी, अपने सबके मैथिली गीत सुनबै छी।

0: तो आशीष जी अभी संवेद स्वर में आप सुन रहे थे और हमारे श्रोता आनंद ले रहे थे मैथिली सुगम संगीत का। और अब वक्त हो चला है कार्यक्रम में आगे बढ़ने का, यानी हालचाल का। हालचाल लेकर उपस्थित हैं आशीष कुमार सिंह।
1: धन्यवाद कुशल। आजुक सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधि पर आधारित हालचालक संग हम आशीष। सहरसा के सदर अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक सबके कमी के दूर करे के दिशा में एकता महत्वपूर्ण पहल के रूप में प्रसूति या स्त्री रोग विभाग में वर्ष 2024 में DNB कोर्स के लेल एकटा सीट स्वीकृत कैल गेल। एखन धरि स्वीकृति भेटे के बावजूद इस सीट पर नामांकन संभव नहीं भ सकल। कहरा में लगातार पड़ रहा तेज धूप और बरखा कम हो से खेती में नमी खत्म हुआ लागल। एकर असर खरीफ धान के बिचरा पर साफ देखाई पड़ रहा। प्रखंड के बहुत रास ठाम धान के बिचरा मुरझा लागल और किसान सब के इसे चिंता भ रहा छन। किसान सब मृगशिरा नक्षत्र में धान के बुआई खेने छलत और आद्रा नक्षत्र तक रोपनी के उम्मीद छलन, मुदा बरखा नहीं हुई के कारण स्थिति नहीं ठीक भ रहा छन। अधिकांश खेत सब में बोरिंग और सिंचाई के सुविधा नहीं हुई के कारण किसान बरखा के बाट ताक रहा छत। ओते आर्थिक रूप से सक्षम किसान पटवन क के बिचरा के बचबे के प्रयास में लागल छत। राजेंद्र मिश्र महाविद्यालय सहरसा में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई एक और इकाई दू के दिस सँ रेड रिबन क्लब आ बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति के दिस सँ एड्स जागरूकता के लऽ कऽ महाविद्यालय स्तर पर छात्र और छात्रा सब के अलग अलग दौड़ रेड रन के आयोजन कैल गेल। एहि अवसर पर महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्रा सब भाग ललत। SSB 18 वाहिनी अहाँ के खुटौना प्रखंड के लक्ष्मीपुर गाम में एक दिनक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण शिविर आयोजित कैलक। एकर उद्घाटन DIG मधुकर अमिताभ कैलत। प्रतापगंज में TB मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेविका आ जीविका दीदी सबके संगे बैसार भेल। बैसार में TB स्क्रीनिंग के प्रक्रिया और अभियान के जानकारी देल गेलन। घर घर जाके लोक सबके स्क्रीनिंग कैल जायत। जन सुनवाई आ समाधान कार्यक्रम दरभंगा में आयोजित भेल। DM कौशल कुमार जन सुनवाई में 60 से बेसी लोक सब के फरियाद के सुनलत। दरभंगा शहर के पॉलिटेक्निक मैदान स्थित अत्याधुनिक दरभंगा तारा मंडल में 3D और 2D स्क्रीन पर ब्रह्मांड के अद्भुत दृश्य का नजारा देखे वाला के संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ल जा रहा है। लोग सब खास कर के बच्चा सब सौरमंडल के सैर, पृथ्वी, मंगल, आकाशगंगा, ब्लैक होल, चंद्रयान और ऐतिहासिक अभियान सब के झलक देखे के प्रति हुनकर सब को उत्साह देखल जा सकते है। एकर परिणाम है कि शो शुरू होने से पहले सबटा 150 सीट ऑनलाइन बुक भ रहा है। एकर कारण दूर दराज से अबे वाला आदमी या ऑफलाइन टिकट किन्नेहार या फिर जिनका ऑनलाइन बुकिंग का जानकारी नहीं छन, वो सब बिना देखने उदास भ के वापस जा पड़ रहा छन। 150 सीट के क्षमता वाला ये अत्याधुनिक तारामंडल में मंगल दिन से शनि दिन धरि प्रतिदिन 500 और रवि दिन दर्शक सब के बेसी भीड़ के देखत 6 शो का संचालन कैल जात। नेहरू स्टेडियम लहरियासराय में जिला स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल प्रतियोगिता के अंतर्गत अंडर 15 बालक और अंडर 17 बालक और बालिका वर्ग के चयन प्रतियोगिता के आयोजन भेल। शुभारंभ जिला खेल पदाधिकारी परिमल कुमार कैलत। दरभंगा एयरपोर्ट के नवका सिविल एनक्लेव तक पहुंच पथ निर्माणक लेल जिला भू अर्जन कार्यालय भूमि अधिग्रहण के प्रक्रिया शुरू कर चुकल छथि। एहि संबंध में भू अर्जन पुनर्वास आ पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रति कर तथा पारदर्शिता

अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना सेहो जारी कऽ देल गेल अछि। अधिसूचना के माध्यम से प्रस्तावित परियोजना के लेल सबटा मौजा सब के लगभग 4.4607 एकड़ भूमि अधिग्रहित के बढ़े के जानकारी देल गेल अछि। अधिसूचना के अनुसार ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर यानी कि NH 27 से प्रस्तावित न्यू सिविल एनक्लेव ऑफ दरभंगा एयरपोर्ट तक अप्रोच रोड के निर्माण केनाइ अछि। रतनपुर पंचायत के सुखरामपुर और रतनपुर हेलीपैड के लग बहुत दिन से जोड़ल पड़ल एग्रीकल्चर फीडर के दूटा पावर ट्रांसफार्मर बदले से किसान सब के राहत भेटतन। मौजा सोनबेहट में 6 जुलाई से जमीन के विशेष सर्वेक्षण के किस्तवार शुरू कैल जायत। स्थानीय जाले स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में किसान सब के जैविक खेती के दिशा में प्रोत्साहित करे के लेल और रासायनिक खाद पर निर्भरता कम करे के उद्देश्य से वर्मी कंपोस्ट बनबे पर आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न भेल। केंद्र के अध्यक्ष सवरीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्यांशु शेखर के अध्यक्षता में चलल ई प्रशिक्षण कार्यक्रम में उद्यान वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप कुमार विश्वकर्मा मजरा और जोगियारा से आयल 50 किसान के केचुआ से खाद बनबे के वैज्ञानिक विधि बतौलत। ओ किसान सबके बतौलत कि बर्मी कंपोस्ट मिट्टी के उर्वरता बढ़बे के संगे जल धारण क्षमता सुधारनाय और फसल उत्पादन बढ़बे में बेहद कारगर अछि। एकर संगे एकरा संवर्धन करे के लेल ट्राइकोडर्मा आ पैसालोमिसस के प्रयोग से खेत का सुधार के बारे में सेहो बताओल गेल। डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दरभंगा बिहार सरकार में दरभंगा जिला का प्रतिनिधित्व कर रहल दूटा मंत्री मध्य निषेध उत्पाद आ निबंधन मंत्री मदन सहनी आ वन पर्यावरण आ जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद के सम्मान में अभिनंदन समारोह आयोजन केलक। सहरसा में नशा मुक्त कोसी अभियान में आम लोग सबके बहुत सहयोग भेट रहल छन। हेल्पलाइन नंबर पर लोग सब तुरंत सूचना दौ रहल छथि। मुढ़दी बड़की टोल गाम में ग्राम देव बाबा डिहबार के वार्षिक पूजा पारंपरिक रीति रिवाज से संपन्न भेल। गाम के लोग सब सुख समृद्धि शांति आ नीक फसल के कामना कैलथ। मधुबनी में नो योर हेरिटेज विषय पर एकटा कार्यशाला का आयोजन भेल। एहि में पुरातत्वविद डॉक्टर शिव कुमार मिश्र विरासत संरक्षण के महत्व पर जोर दलथ। किशनपुर में ADM विकास कुमार RTPS काउंटर के औचक निरीक्षण कैलथ। आम लोग सब आग्रह कैलथ कि प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा कैल करी। एहि संग संपन्न होइत अछि आजुक हालचाल।

कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

हवाओं से होकर कुछ आवाजें गईं दूर दूर तक रेडियो तरंगों के वेश में। ये अनमोल तरंगे जिन तक पहुंची वे बने रेडियो श्रोता। बचपन गुजरा, जवां हुए, बुढ़ापे ने दस्तक दी। किसी का साथ रहा, किसी का छूटा, पर नहीं छूटा रेडियो, उसकी यादें, उसकी कही बातें। आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी दरभंगा के नए कार्यक्रम में। हर महीने के पहले रविवार को दोपहर 2:30 पर रेडियो की बात श्रोताओं के साथ। जिंदगी

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: अब नन्हे मुन्हे बच्चे अपनी आवाज में कविता, कहानी, पहेली और चुटकुले सुन सकते हैं फुलवाड़ी कार्यक्रम में रविवार सुबह 10:30 पर। तो रिकॉर्ड करवाएं प्रत्येक शुक्रवार 3:30 से 4 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0627222481। मोबाइल नंबर है 9430029353।
2: तो आशीष जी, अब कार्यक्रम में हम लोग बात करते हैं मौसम संबंधित। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी 4 जुलाई से 8 जुलाई 2026 तक के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमानित अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में आमतौर पर मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है। पूर्वानुमान इस अवधि में 5 जुलाई से 7 जुलाई के दौरान उत्तर बिहार के कुछ स्थानों पर गरज चमक, वज्रपात तथा तेज हवा की संभावना है तथा कहीं कहीं हल्की वर्षा भी हो सकती है। पूरे पूर्वानुमान अवधि के दौरान आसमान आंशिक रूप से बादलों में रहने की संभावना है। अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। सुबह में सापेक्ष आर्द्रता 75 से 80% तथा दोपहर में सापेक्ष आर्द्रता 35 से 40% के आसपास रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में हवा मुख्यतः पूर्वा हवा 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है।
3: और अगर लोकल अपडेट्स के बारे में चर्चा करी तो आई डीएम करतत राजस्व के बैठार स्थान है कलेक्ट्रेट सभागार 11 बजे सौ। और किछे आई बहुत रास इलाका में से हो किछे बिजली आपूर्ति बाधित रहत, अहाँ के किछे विद्युत विभाग के दिस सौ किछे अहाँ के बहुत ठाम बिजली आपूर्ति बाधित रहे के सेहो सूचना देल गेल अछि, खास कऽ के लक्ष्मी सागर मोहल्ला में। तो 9 बजे से लऽ कऽ के 12 बजे दिन धरि तो ई एखन हम सब लोकल अपडेट्स के बारे में चर्चा करते रही।
2: और आशीष जी, आज अगर बात करें चर्चा की तो आज का युग सूचना एवं प्रौद्योगिकी का युग है। इंटरनेट ने पूरे विश्व को एक छोटे से वैश्विक गांव में बदल दिया है। शिक्षा, बैंकिंग, व्यापार, चिकित्सा, मनोरंजन, संचार और सरकारी सेवाएं। तो आज हम लोग इसी विषय पर बात करेंगे कि साइबर दुनिया में सुरक्षित रहने की समझ। लेकिन उससे पहले हम लोग सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के बाद हम लोग पुनः आते हैं अपने चर्चा पर।

0: तो आशीष जी, हम लोग बात कर रहे थे आज कि साइबर दुनिया में सुरक्षित रहने की समझ। जीवन का लगभग प्रत्येक क्षेत्र डिजिटल तकनीक से जुड़ चुका है। स्मार्टफोन और इंटरनेट के माध्यम से लोग कुछ ही क्षणों में दुनिया के किसी भी कोने से जुड़ सकते हैं। जहां एक ओर साइबर दुनिया ने जीवन को सरल, सुविधाजनक और तेज बनाया है, वहीं दूसरी ओर साइबर अपराध, डेटा चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी, फर्जी वेबसाइट्स, पहचान की चोरी और साइबर बुलिंग जैसी समस्या भी तेज बढ़ी है।
1: और खास करके जे आदमी सब एखन

0: समयमे जिनका अहाँके बहुत बेसी जानकारी नहि छनि सेहो अहाँके मोबाइलके इस्तेमाल कऽ रहल छथि, आओर ई जे साइबर क्राइम करैवला जे लोक छथि ओ एहन एहन आदमीके ताकैत रहै छथिन आओर हुनका ताकिकऽ ओ अपन किछु जालमे फँसबै छथिन। ताहि दुआरे किछु किछु जानकारी तऽ निश्चित हेबाक चाही, खास कऽ कऽ अगर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, आब तऽ सभटा बैंके तैंकवला जतेक काज हुअ लागल हँ, आब UPI हुअ लागल हँ, सभटा बैंके मोबाइलसँ होइए, तऽ ओहि स्थितिमे अहाँके जानकारी भेनाइ बहुत बेसी जरूरी अछि। आओर किछु बीत जाए, कोनोसँ केहनो परिस्थिति भऽ जाए, अपन OTP कोनो अनजान व्यक्ति या फेर कोनो जान पहचानवला व्यक्ति अगर माँगि रहल छथि तऽ कोनो ट्रांजेक्शनके कोनो OTP कखनो नहि देल दियनि। आओर अगर अहाँ OTP दै छियनि तऽ फेर अगर अहाँके अकाउंट खाली होइए, अहाँके पैसा गायब होइए, तऽ सबटाके जिम्मेदारी अहाँ अपने होइ छी।
1: आओर आशीष जी, ऐसे समयमे साइबर दुनियामे सुरक्षित रहनेके समझ प्रत्येक नागरिकके लिए अनिवार्य हो गई है। साइबर सुरक्षा केवल तकनीकी विशेषज्ञों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक इंटरनेट उपयोगकर्ता की जिम्मेदारी है। थोड़ी सी लापरवाही, आर्थिक नुकसान, मानसिक तनाव और व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग के कारण बन सकती है, इसलिए डिजिटल युग में जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। और साइबर दुनिया से तात्पर्य मतलब कि उस आभासी संचार से है जहां इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, सोशल मीडिया, क्लाउड सेवाएं और डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। आज हम ईमेल भेजते हैं, ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, बैंकिंग करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं और सरकारी सेवाओं का लाभ भी इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त करते हैं। यह सुविधा जितनी उपयोगी है उतनी ही सावधानी की भी अपेक्षा करती है।
0: निश्चित गप छै, आइके समयमे बहुत आसान भऽ गेल अछि मोबाइलके अयलासँ। हम अहाँ जेना पहिने दुनिया अहाँके कहल जाइत अछि गोल अछि, तहिना ई मोबाइल दुनियाके एकदम समेटके ओहिना गोल बना देने अछि। अहाँ कतहु छी, ककरोसँ अहाँ जुड़ि सकै छी, बहुत आसान काज भेल। पहिले हमरा सभके कोनो काज करैके रहै छलै तऽ कम्प्यूटर लग बैसैत रही, काज करैत रही। आब मोबाइल, ओ सभटा काजके अहाँके मोबाइलके जरिए हुअ लागल अछि। तऽ जखन कोनो चीज अगर आसान होइत अछि तऽ ओकरा सङ्गे सङ्गे किछु अहाँके ओकरा सङ्गे खराबी सेहो रहैत अछि, आओर ओ खराबी अछि अहाँके साइबर दुनिया अहाँके। आओर ओ साइबर दुनियामे अहाँके सुरक्षित केना रही, ई जानकारी भेनाइ बहुत बेसी जरूरी अछि आइके समयमे।
1: आओर आशीष जी, आज अधिकांश लोगों की व्यक्तिगत जानकारी, बैंक खाते, पहचान पत्र, स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड और व्यावसायिक दस्तावेज डिजिटल रूप से सुरक्षित रहते हैं। यदि ये सूचनाएं गलत हाथों में चली जाएं तो व्यक्ति को भारी आर्थिक और सामाजिक नुकसान हो सकता है। इसलिए साइबर सुरक्षा का उद्देश्य केवल कंप्यूटर की रक्षा करना नहीं, बल्कि व्यक्ति की गोपनीयता, सम्मान और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। और डिजिटल लेन देन के बढ़ते उपयोग के कारण साइबर सुरक्षा का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया। एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण ही देश की आर्थिक प्रगति और नागरिकों के विश्वास का आधार बन सकता है।
0: बहुत आदमी एहन छथि कि जे अहाँके खास कऽ के एखुनका समयमे रील देखैके चलन बढ़ि गेल अछि, अहाँके यूट्यूबपर बहुत आदमी देखैत रहै छथि वीडियोसभ, तऽ ओहिमे बहुत रास लिंक अबैत रहैए, तऽ अनजान लिंकसभपर कखनो नहि क्लिक करी, किएक कए बेर एहन होइ छै लोक नहि बुझै छथिन। अहाँके बहुत आदमी एहन छथि आइके समयमे जे अहाँके बूढ़ बुजुर्ग जे छथि तिनका लग अहाँके कहै छै एंड्रॉयड मोबाइल आबि गेलनि हँ अहाँके, तऽ ओ मोबाइल चलबै छथि, देखै छथि, मुदा हुनका कतय कखन क्लिक करबाक अछि तकर जानकारीके कनि कमी रहै छनि। आओर वएह कमीमे ओ कोनो अनजान लिंकके क्लिक कऽ दै छथिन, जाहिसँ हुनकर मोबाइलके जतेक डाटा अछि, जेनाकि एखन कुशल कहै छलथि कि अहाँके आब लगभग सभटा डाटा अहाँके मोबाइलमे रहैत अछि। आओर AIके समयमे तऽ आओर AIके समयमे तऽ आओर अहाँके जतेक बेसी जानकारी अछि सभटा अहाँके एकठाम एकत्रित भऽ रहल अछि, एनामे अहाँके अपन डाटाके बचेनाइ अहाँके सेहो जिम्मेदारी अछि।
1: और आशीष जी, उससे भी बड़ी बात है कि साइबर ठगी लोगों को करना, साइबर जित कोई भी किसी भी काम को आप करते हैं जितना ही फायदा है उतना ही नुकसान भी है। बहुत से लोगों को हो सकता है 10 लोगों को साइबर ठगी फ़ोन करते हैं तो एक ना एक फंस ही जाता है। उसमें आपको वो ये भी कह सकते हैं कि आपका आधार कार्ड अपडेट करने की आवश्यकता है। आपके आधार कार्ड अपडेट करने के लिए आपको कहेंगे एक OTP है, आप जैसे ही उस OTP को शेयर कीजिएगा कि आपके अकाउंट का बैंक बैलेंस बिल्कुल ही शून्य हो जाएगा। तो उसी तरह से बहुत से तरीके हैं, वो आपको ऑफ़र बताने के लिए भी फ़ोन कर सकते हैं कि आइए आज ये एक पैक फ्री यहाँ है तो आपको ये ऑफ़र प्राप्त करना चाहते हैं तो एक OTP दीजिए। मतलब कहने का मतलब आशीष जी, जैसा आपने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि OTP किसी भी माध्यम से, किसी भी रूप से आपको एक व्यक्तिगत और जान पहचान या जिसको आप जान रहे हैं देना, उन्हीं को देना है और किसी को OTP देने की आपको आवश्यकता नहीं।
0: निश्चित तौर पर AIके समयमे तऽ जानो पहचान वाला से कन्फर्म भेनाइ जरूरी अछि, कियाकि अहाँके अहाँके आवाजमे फोन अबैत अछि दोसर नंबर से, तऽ ओ अहाँके कोनो खास आदमीके आवाजमे जिनका

0: अहाँ चिन्है छियनि हुनकर आवाजमे हुनकर बारेमे अहाँसँ अहाँके ओटीपी लेल जेतै। तऽ ई सभ चीजके ध्यान राखी। अनजान नम्बरसँ अगर कोनो मैसेज अबैए कए बेर कि हमरा कोनो तरहके दिक्कत अछि, हमरा ई पैसा पठा दिअ, तऽ ओ व्यक्तिसँ पहिने सम्पर्क स्थापित करू। ओ सहीमे किछु हुनका दिक्कत छनि या फिर हुनकर मोबाइल हैक भऽ चुकल छनि।
1: आजकल तो एक नया ट्रेंड भी चला है आशीष जी कि अगर आप सोशल साइट से जुड़े हुए हैं, सोशल साइट्स का नाम नहीं लेंगे, उसमें वो आपके ही नाम की आईडी बना के आपको मैसेज करेंगे कि अभी मैं बहुत ही कष्ट में हूँ भाई, मुझे इतना पैसे भेजो। तो आप हमेशा अपने भाई से या जिसकी भी आईडी से आपको मैसेज आता है, आप उनसे पहले संपर्क करके उनसे कन्फर्म करें कि हाँ आपको आवश्यकता है, तो ही आप उन्हें पैसे के लेन देन करें, या आप अपने घर पर बुला के कैश लेन देन करें। इन सबसे आपको बचने की आवश्यकता है। और साइबर अपराध वे अपराध हैं जो कंप्यूटर, इंटरनेट या अन्य डिजिटल माध्यमों के द्वारा किए जाते हैं। इनमें फिशिंग द्वारा पासवर्ड और बैंक विवरण चुराना, पहचान की चोरी, सोशल मीडिया अकाउंट हैक करना, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन उत्पीड़न, फर्जी निवेश योजनाओं के माध्यम से ठगी और फर्जी नौकरी, लॉटरी या इनाम के नाम पर धोखाधड़ी, या OTP, UPI और QR कोड माध्यम से ठगी। इन अपराधों का उद्देश्य लोगों को व्यक्तिगत जानकारी, धन या डिजिटल पहचान का दुरुपयोग करना होता है।
0: सही कहलो कुशल। और एखुनका समय तऽ लोकके किछु डेटाके समय अछि, एखुनका समय अहाँके अर्थके समय अछि, आओर अर्थ आओर डेटा दुनू चीज अहाँके मोबाइलमे रहैत अछि। एनामे अहाँके जरूरी भऽ जाइत अछि कि अहाँ सावधानीसँ मोबाइलके उपयोग करू। मोबाइल बहुत नीक चीज अछि। आओर
1: आशीष जी, अच्छा तो सब कुछ ही होता है, लेकिन जहाँ अच्छा ही है वहीं नुकसान भी है। आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो कोई भी आदमी बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता है, बिल्कुल सटीका नहीं होता है। आपको जहाँ से लाभ मिलने की उम्मीद है, या आप घर से निकले हैं कि उस आदमी से हमको काम है और लाभ ही मिलेगा, ऐसा नहीं है, उससे आपको हानि भी पहुँच सकती है।
0: और जानकारी निश्चित तौर पर जुटेबाक चाहिए। और जानकारी जुटबै के लेल अगर अहाँके कोनो गुरु छथि या फिर जे आदमी एकर जानकार छथि, तिनकासँ अहाँ जानकारी जुटा सकै छी, कियाकि गुरुसँ ज्ञान भेटै छै आओर ज्ञानसँ अहाँ सुरक्षित रहि सकैत छी, अहाँके व्यक्तित्व बनि सकैत अछि। ताहि दुआरे अगर कतौ खाली मोबाइले टा नहि, साइबरे टा नहि, कोनो दिशामे अगर अहाँके कोनो व्यक्ति पता अछि कि व्यक्ति जानकार छथि, तऽ ओ जानकार व्यक्तिके सानिध्यमे जाइसँ कखनो नहि कतरेबाक चाही आओर सवाल पूछबाक चाही। बच्चामे हमरा सभके इसकुलमे सवाल हमरा सभके पूछैके लेल अहाँके जे हमर सभके शिक्षक छलथि ओ प्रेशर दै छलथि, ओ कहै छलथि कि सवाल पूछू, जतेक बेसीसँ बेसी अहाँ सवाल करैके शक्ति अहाँमे रहत, ओ अहाँके जे दिमागी तौर पर अहाँके सेहो सशक्त बनायत आओर अहाँके व्यक्तित्वके सेहो निखारत। ताहि दुआरे अपन जे गुरु जे छथि, गुरुसँ हरदम ज्ञान लैमे कखनो पाछू नहि लबाक चाही आओर कखनो कतरेबाक नहि चाही।
1: आओर किसीसँ भी ज्ञान लेने में शर्माना नहीं चाहिए। झुक के किसी से भी सम्मान से आप बात कीजिएगा तो आपको ज्ञान ही मिलेगा। लेकिन आजकल के लोगों में थोड़ा सा वो आप क्या कहते हैं कि ना समझने की समझ ज़्यादा है कि हम उनसे क्यों समझेंगे, हम उनसे छोटे थोड़ी हैं। तो ये सब चीज़ को दरकिनार रख के, और गुरु हो या आपके मित्र हो, आपको अगर सीखने को मिलता है तो उनसे अवश्य सीखना चाहिए। और कार्यक्रम में आशीष जी हम लोग और भी आगे बातें करेंगे। फिल्हाल हम लोग सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: आब समसामयिक घटनाके सेहो चर्चा कऽ ली तऽ 12 जे सेटेलाइट टाउन बनबैके गप छलै ताहिमे 12 सेटेलाइट टाउन 7 लाख करोड़सँ बनत, हुडको ओहिमे 1 लाख करोड़ रुपैआ देत, एकर अहाँके की छै MOU भऽ चुकल अछि, आओर 6 लाख करोड़ रुपैआ जे छै से निवेश बाहरी उद्यमी आओर आन स्रोत सभसँ कयल जायत। 3,687 संविदा सहायक प्राध्यापक सबके बहाली के सेहो शुरू भेल और CA फाउंडेशन के नतीजा आबि चुकल अछि। नासिक के साक्षी जैन टॉपर भेलत और एखन हम सब साइबर सुरक्षा के गप करैत रही तऽ रिटायर्ड प्रोफेसर के 13 दिन धरि डिजिटल अरेस्ट कऽ के राखल गेलनि और हुनका से ठगि लेलक अहाँके साइबर अपराधी सब 82,53,000 रुपैआ। तऽ ई कतौ ने कतौ एखने हमसब चर्चा करैत रही कि सावधानी रखनाइ जरूरी अछि और एकटा आम आदमी सबके लेल नीक समाचार अछि कि आधार कार्डमे आब ईमेल अपडेट अपन घर बैसल कऽ सकै छी। लेकिन सावन आबि रहल अछि तऽ सावन मेलामे कांवरी सर्या सबके आवश्यक सबटा सुविधा देल जेतनि और कांवरिया पथपर 24 घंटा अहाँके पुलिसके पेट्रोलिंग सेहो कयल जायत। और गप करी तऽ 15 जुलाईके 2 पालीमे होयत BPSC के अभियोजन पदाधिकारी के प्रारंभिक परीक्षा और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट छात्र सबके DRDO से आब फेलोशिप से भेटत और पर्यटन स्थल सब पर अब जीविका के उत्पाद सबके सेहो बिक्री कयल जायत। तऽ ई एखन हमसब समसामयिक घटनाके बारेमे चर्चा करैत रही और जानकारी प्राप्त करैत रही।
1: और आशीष जी, अभी भी बहुत जगहों से सुनने को मिलता है कि रेडियो हमारे घर में नहीं है, तो रेडियो में हम आपका कार्यक्रम कैसे सुन सकते हैं? तो रेडियो से सेट अगर हो भी तो रेडियो सेट से आप से एक कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं, एक केंद्र का आनंद ले सकते हैं। लेकिन आप अब एंड्रॉयड फ़ोन तो आशीष जी हर घर में है और हर घर में क्या हर एक आदमी के हाथ पे 2-2 एंड्रॉयड फ़ोन है, तो वहाँ पे आप प्ले स्टोर जाके न्यूज़ ऑन AIR ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ जाके हमारे केंद्र के सारे प्रोग्राम सारे कार्यक्रम एक जगह एक ऐप पे सुन सकते हैं।
0: तब यहाँ के संग आजुक नमस्कार मिथिला के ई अंक से हमरा आशीष के
1: आ साथी कुशल को
0: दिया विदा। नमस्कार,
1: नमस्कार।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR,

0: हवाओं से होकर कुछ आवाजें गईं दूर दूर तक रेडियो तरंगों के वेश में। ये अनमोल तरंगें जिन तक पहुंची वे बने रेडियो श्रोता। बचपन गुजरा, जवां हुए, बुढ़ापे ने दस्तक दी। किसी का साथ रहा, किसी का छूटा, पर नहीं छूटा रेडियो, उसकी यादें, उसकी कही बातें। आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी दरभंगा के नए कार्यक्रम में। हर महीने के पहले रविवार को दोपहर 2:30 पर रेडियो की बात श्रोताओं के साथ।
1: अब नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी आवाज में कविता, कहानी, पहेली और चुटकुले सुन सकते हैं फुलवाड़ी कार्यक्रम में रविवार सुबह 10:30 पर। तो रिकॉर्ड करवाएं प्रत्येक शुक्रवार 3:30 से 4 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0627222481। मोबाइल नंबर है 9430029353।
0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
2: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
3: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथी, सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
2: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए। आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति गाम घर, संध्या 6:30 पर। भोर होते उठ जाओ किएक इजोतक पहल किरण संग फुलाए लगत फूल, प्रकृति में घोराए लगत ऊर्जा आबा वाला काल ले।
4: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
5: आ मनुख लेल त बुझू अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं हैत त खेती नहीं हैत, आ खेती जँ नहीं हैत उपजा नहीं हैत त हमरा लोकनि खायब की।
6: मामा बने जाने बाबा देने ज्यादा।
7: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए।
8: ये आकाशवाणी दरभंगा है। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना श्रोताओं, वन संरक्षण के बिना पर्यावरण संतुलन तो खतरे में है ही, दिन ब दिन हमारा जीवन भी आसान नहीं रहने वाला। वन संरक्षण का महत्व और हमारी जिम्मेदारी, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मुकेश प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर पर्यावरण विज्ञान मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारा फ़ोन नंबर होगा 0627222481। समय याद रखें रविवार 5 जुलाई 2026 दिन के 11 बजे। अब समय है समाचार प्रभात का, तो सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात।
9: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को

0: को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
2: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
0: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमी कंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
1: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
3: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए, वो दूसरी बात है। 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
0: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से

0: किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
1: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व

0: 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मानसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
2: मातृशक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहे।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये परिचर्चा आकाशवाणी FM गोल्ड और 100.1 MHz पर आज सवेरे 10:30 से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला, संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटे की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिक्स ने कहा है कि लगातार 2 भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में कल कोलंबिया

0: अमेरिका ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना, 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने हॉर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा, ईरान अमेरिका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे निस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट, तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है। साथ ही कुछ कंपेटेबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे, ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान। और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches next phase of regional air connectivity scheme Viksit Udaan to give fillip to air travel in Tier 2 and Tier 3 cities. Government hikes onion procurement price for price stabilization buffer by 13% to 2,125 rupees per quintal to boost farmer income. IMD says monsoon rains will continue to lash large parts of the country over the next few days. Australian Prime Minister Anthony Albanese hails India as key economic partner ahead of Prime Minister Modi's visit. And in football, France and Morocco enter quarterfinals of FIFA World Cup. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi launched the next phase of regional air connectivity scheme Viksit Udaan in Jodhpur, Rajasthan yesterday to give fillip to air travel in Tier 2 and Tier 3 cities and remote regions. Addressing a massive gathering, the Prime Minister said that under the new phase of Udaan scheme, smaller cities and remote regions will be connected through air connectivity.
3: Udaan Yojana ke naye charan ki bhi shuruaat hui. इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो

0: quarterfinals of FIFA World Cup. We have a report.
1: France booked their place in the quarterfinals with a hard-fought 1-0 victory over Paraguay in the round of 16 at Philadelphia. Captain Kylian Mbappe scored the only goal of the match from the penalty spot in the 70th minute. France will now face Morocco in the quarterfinals. Moreover, Morocco also stormed into the quarterfinals with a commanding 3-0 victory over co-host Canada in Texas. Soufiane Rahimi sealed the win with a stoppage time goal as the African champions booked their place in the last eight in emphatic fashion. Earlier, defending champions Argentina also progressed to the round of 16 after defeating Cabo Verde 3-2 following extra time in a thrilling round of 32 encounter. Argentina will next face Egypt. Meanwhile, in the final round of 32 match played yesterday at Kansas City Stadium, Colombia edged past Ghana 1-0 to secure a place in the round of 16. They will now face Switzerland for a spot in the quarterfinals. Finals with Vikas Chirag Jha from Sports Desk.
0: In men's cricket, England defeated India by 4 wickets in the second T20 international of the 5-match series at Old Trafford in Manchester yesterday. And now for a look at today's newspapers, it's over to VC Pramod.
2: Thank you, Saira. Papers have widely noticed Prime Minister Modi's visit to Gujarat and Rajasthan, where he inaugurated path-breaking developmental projects, while the new EV policy in the state capital has also gained traction. Hindustan Times writes, India overcame crisis on refining prowess. We'll keep building, says Prime Minister. The Hindu notes, Modi inaugurates semiconductor facility in Gujarat. The Sunday Express headlines, new EV policy empowers middle class. Delhi transforming. Has chosen a new direction for cleaner, more modern future. Sunday Times informs City Court cites Supreme Court order, denies bail to Sharjeel Umar. Telegram told to act against piracy or face action, writes the Economic Times. And finally, indeed, love knows no bounds. The Sunday Express writes about one Zeeshan Ahmed who crossed the LOC to meet his love, Iram Majeed. The two had fallen in love over Snapchat. A month after he crossed LOC for love, 22-year-old POK man sent back. And with that, it's back to you, Saira.
0: Thanks, Pramod. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi launches next phase of regional air connectivity scheme, Viksit Udaan, to give fillip to air travel in Tier 2 and Tier 3 cities. Government hikes onion procurement price for price stabilization buffer by 13% to boost farmer income. IMD says monsoon rains will continue to lash large parts of the country over the next few days. Australian Prime Minister Anthony Albanese hails India as key economic partner ahead of Prime Minister Modi's visit. And in football, France and Morocco enter quarterfinals of FIFA World Cup. And with that, we end the morning news. Have a great day.
3: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला पहले इस वक्त की खास-खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों में फिजाई सफर को फरोग देने के लिए इलाकाई फिजाई राबता स्कीम विकसित उड़ान के अगले मरहले का आगाज किया। हुकूमत ने प्याज का वाफर ज़खीरा रखने और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए प्याज की खरीदारी कीमत में 13% का इजाफा करते हुए इसे 2,125 रुपए फी कुंटल कर दिया है ताकि किसानों की आमदनी में इजाफा हो सके। भारतीय महकमे मौसमियात आईएमडी ने अगले कुछ दिनों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून की बारिश जारी रहने की पेशगोई की है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बानीज ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे से कबल भारत को अहम इकतसादी शराकत दार करार दिया है। और फुटबॉल में फ्रांस और मराकश ने फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों और दूर दराज के इलाकों को हवाई सफर से जोड़ने के मकसद से कल राजस्थान के जोधपुर में इलाकाई फिजाई कनेक्टिविटी स्कीम विकसित उड़ान के अगले मरहले का आगाज किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि उड़ान स्कीम के नए मरहले के तहत छोटे शहरों और दूर दराज के खितों को फिजाई कनेक्टिविटी के जरिए

0: जोड़ा जाएगा।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का भी इफ्तिताह किया, जिससे भारत के शहरी हवाबाजी के बुनियादी ढांचे और इलाकाई कनेक्टिविटी को बड़े पैमाने पर फरोग हासिल होगा। जनाब मोदी ने इस बात को नुमाया किया कि नई टर्मिनल इमारत का आर्किटेक्चर और इंटीरियर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है।
1: जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि नए टर्मिनल का आर्किटेक्चर इंटीरियर ये सोशल मीडिया में छाया हुआ है। चारों तरफ राजस्थानी राजस्थान दिख रहा है। साथियों, ये मारवाड़ में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई गति देगा।
0: इस मौके पर शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान स्कीम का आगाज इलाकाई कनेक्टिविटी के भारत के सफर में नए बाब की शुरुआत होगी। जनाब नायडू ने कहा कि वजीर आजम के जरिए 28,840 करोड़ रुपए की तखमीना लागत वाली स्कीम के आगाज से 100 से ज्यादा नए और 200 हेलीपैड्स की तरक्की में आसानी होगी, जिससे किफायती हवाई सफर का लाखों लोगों का ख्वाब पूरा होगा और उभरते भारत की उमंगों की तकमील होगी।
2: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
0: बाद में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सनात में सीजी सेमी के बाहर से मंगाए गए सेमीकंडक्टर की तरतीब और तजुर्बे के जदीद तरीन प्लांट OSAT का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव, गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल और टेक्नोलॉजी शोबे के कई आलमी कायदीन भी मौजूद थे। 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी से कायम इस जदीद फैक्ट्री की सालाना पैदावारी सलाहियत 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स तक होगी। एक बड़ी सीमा से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि सनान में कायम सीजी सेमी OSAT मरकज न सिर्फ मुल्क में चिप तैयार करने के इको निजाम को मजबूत करेगा बल्कि टेक्नोलॉजी के शोबे में खुद किफालत को फरोग देगा और आलमी सेमी कंडक्टर वैल्यू चेन में भारत के मकाम को मजीद मुस्तहकम करेगा।
1: भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: उन्होंने मजीद कहा कि सनानंद का ये प्लांट इब्तदाई मरहले में सालाना 20 करोड़ चिप्स तैयार करने की सलाहियत रखता है। उन्होंने सीजी सेमी को मुस्तकबिल में पैदावार बढ़ाकर सालाना 500 करोड़ चिप्स तक पहुंचाने का हदफ मुकर्रर करने पर मुबारकबाद भी दी।
1: यहाँ से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी। आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं। आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
0: इससे कबल सनानंद पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म ने आला टेक्नोलॉजी के हामिल प्लांट का दौरा किया, पैदावारी अमल का मुआयना किया और वहां काम करने वाले इंजीनियरों और ऑपरेटरों से मुलाकात करके उनसे तबादले ख्याल किया। हुकूमत ने प्याज का वाफर जखीरा रखने और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए प्याज की खरीदारी की कीमत में 13% इजाफा कर दिया है। प्याज की खरीदारी कीमत 1,875 रुपए फी क्विंटल से बढ़ाकर 2,125 रुपए फी क्विंटल कर दी गई है। सारिफिन के उमूर खुराक और सरकारी निजाम तकसीम की वजारत के मुताबिक नजरसानी शुदा खरीदारी कीमत से प्याज के काश्तकारों को बेहतर मुनाफा मिलेगा, जबकि कीमतों के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के खरीदारी अमल को भी तकवीत मिलेगी। पेश है एक रिपोर्ट।
3: भारत सरकार की जानिब से प्याज का वाफिर ज़खीरा रखने और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए प्याज की खरीदारी नैफेड और कौमी कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया NCCF के जरिए जारी है।

0: 29 की मुद्दत कार के लिए भारत की बाजाबता मुहिम का आगाज करेंगे। भारतीय महकमे मौसमियात आईएमडी ने कहा है कि अगले कुछ दिन के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून की शदीद बारिश जारी रहेगी। आईएमडी ने कहा है कि खलीज बंगाल के शुमाल मगरिब में हवा के कम दबाव का हल्का बना है, जिससे अगले 4 से 5 रोज के दौरान मुल्क के वसती इलाकों में मानसून के सरगर्म रहने का इम्कान है। पूरे मशरकी अमरीका में जारी शदीद गर्म लू की वजह से बिजली की ग्रिड्स पर दबाव पड़ रहा है, जिससे फीफा आलमी कप मैचों की तैयारियों में रखना पड़ रहा है। एक तरफ जहां दर्ज हरारत 46 डिग्री सेल्सियस से पार कर जाने का खदशा है, वहीं अमेरिका के सबसे ज्यादा गुंजान आबादी वाला शहर न्यूयॉर्क को गैर मुतवक्क दर्जे हरारत का सामना है। फुटबॉल में फ्रांस और मराकश ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए फीफा आलमी कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। फ्रांस ने फिलाडेल्फिया में खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल में पेरागुआ को सख्त मुकाबले में 1-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। टीम के कप्तान कल्याण एम्बापे ने मैच का वाहिद गोल 70वें मिनट में पेनाल्टी किक के साथ किया। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर।
1: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इंकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि मगरबी एशिया में जारी आलमी तवानाई बहरान के बावजूद भारत ने न सिर्फ ईंधन की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाया बल्कि मौसर सिफारतकारी बरवक्त फैसलों और गुज़िश्ता एक दहाई की दुरंदेश पॉलिसियों की बदौलत इस मुश्किल सूरत हाल पर कामयाबी से काबू पाया गया है। पार्लियामेंट के मानसूनी इजलास का आगाज 20 जुलाई से होगा जो 13 अगस्त तक जारी रहेगा। कौमी अहमियत के हामिल कई मौजूद पर इस दौरान बामानी बहस कानून साजी और कई अहम फैसले किए जाएंगे। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू के इस बयान को इनकलाब ने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोजामा इनकलाब ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को नुमाया किया है कि ऑपरेशन सिंदूर से मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में तैयार किए गए दिफाई सारो सामान पर न सिर्फ मुल्क में बल्कि आलमी सतह पर भी एतमाद में इजाफा हुआ है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों में फिजाई सफर को फरोग देने के लिए इलाकाई फिजाई राबता स्कीम विकसित उड़ान के अगले मरहले का आगाज किया। हुकूमत ने प्याज का वाफर जखीरा रखने और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए प्याज की खरीदारी कीमत में 13% का इजाफा करते हुए इसे 2125 रुपए फी क्विंटल कर दिया है ताकि किसानों की आमदनी में इजाफा हो सके। भारतीय महकमे मौसमियात आईएमडी ने अगले कुछ दिनों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून की बारिश जारी रहने की पेशगोई की है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बानीज ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे से कबल भारत को अहम इक्तिसादी शराकत दार करार दिया है। और फुटबॉल में फ्रांस और मराकश ने फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
3: तीनों कॉलेज में
4: डोंट वरी
3: फीस तो देखो
5: क्या हाल है, क्या हुआ?
4: फीस की टेंशन,
5: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
6: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
5: वो कहाँ है
6: मिठाई?
7: RBI कहता है
8: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
9: दिनांक 2 जुलाई से 8 जुलाई तक राज्य भर में मनाया जा रहा है बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं।
10: बिहार सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है अब भ्रष्टाचार के खिलाफ।
9: भ्रष्टाचार की शिकायत टोल फ्री नंबर 1064 पर कॉल करें या संपर्क करें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो अथवा विशेष निगरानी इकाई कार्यालय में।
10: भ्रष्टाचार मुक्त बिहार,
9: निगरानी विभाग व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: AIR at 90.
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा, 25 जुलाई तक चलेगी कार्यवाही। केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2125 रुपए प्रति क्विंटल किया। और महाराष्ट्र के नागपुर में संपन्न राष्ट्रीय अंडर 7 ओपन चेस चैंपियनशिप में बिहार के रुद्र प्रताप चैंपियन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूरदराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा।
0: इधर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क को मजबूत करेगी।
2: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहां पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहां पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
0: बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। ये सत्र 25 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। मॉनसून सत्र के पहले दिन सदन में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट पेश किए जाएंगे। अगले कार्य दिवस में इस पर सामान्य वाद विवाद होगा और मतदान के बाद इसको मंजूरी दी जाएगी। इधर संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज की खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि संशोधित खरीद मूल्य से प्याज उत्पादक

0: किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा और साथ ही बफर खरीद प्रयासों को भी बढ़ावा मिलेगा।
1: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार।
0: केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खामनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्य के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन केवल 1.4% मिश्रण ही हासिल किया जा सका था। मुजफ्फरपुर साहिबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई है। दिल्ली की एक अदालत ने सुनवाई करते हुए विधायक को इस मामले में दोषी पाया। न्यायालय ने पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपया मुआवजा देने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित राजू सिंह के भाई के फॉर्म हाउस में पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग में एक डॉक्टर की मौत हो गई थी। शीर्ष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಟ್ 90.
1: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ने से बारिश की गतिविधियों में कमी।

0: आई है। इसके चलते अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान पटना सहित राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।
1: दिनांक 5 जुलाई राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पटना में आज कम्युनिकेशन इन हेल्थ केयर विषय पर राष्ट्रीय शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया कि कार्यक्रम का उद्घाटन उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी करेंगे। कार्यक्रम में 650 से 700 चिकित्सक, चिकित्सा शिक्षक, विशेषज्ञ, स्नातकोत्तर विद्यार्थी, नर्सिंग अधिकारी और स्वास्थ्य कर्मी भाग ले रहे हैं।
2: सहानुभूति से रोगी सुरक्षा तकरू क्लिनिकल प्रैक्टिस में प्रभावी व्यवसायिक संचार को सशक्त बनाने के विषय पर आधारित इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं में प्रभावी संवाद, रोगी सुरक्षा, टीम वर्क, विश्वास एवं रोगी केंद्रित चिकित्सा को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम चिकित्सा शिक्षा, व्यवसायिक उत्कृष्टता और रोगी केंद्रित स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBMS और सोसाइटी फॉर कम्युनिकेशन इन हेल्थ केयर इंडिया के सहयोग से कम्युनिकेशन इन हेल्थ केयर विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
0: समस्तीपुर के मटियौर गंगा तट पर निर्माणाधीन ताजपुर बख्तियारपुर गंगा सेतु का स्लैब गिरने से 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को पटना स्थित PMCH रेफर किया गया है। पथ निर्माण विभाग ने घटनास्थल पर तकनीकी जांच और मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। भागलपुर जिले में जल संसाधन विभाग ने बांध सुरक्षा और तटबंध कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विभाग के सचिव चंद्रशेखर सिंह ने प्रयुक्त होने वाले बोल्डर की पर्याप्त मात्रा में भंडारण और क्रेट की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही स्थल पर उपस्थित अभियंताओं को कैंप करके कार्य को गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। अररिया जिले के सीमावर्ती गांव के समग्र विकास के लिए VVP2 की समीक्षा की गई। समीक्षात्मक बैठक में जिलाधिकारी विनोद दोहन ने जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में खेल संस्कृति और आजीविका बढ़ाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। पटना जंक्शन पर रेल पुलिस ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 1 फर्जी दरोगा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस दौरान फर्जी आई कार्ड और BMP हवलदार के दस्तावेज बरामद किए। आरोपी की पहचान जहानाबाद निवासी के रूप में हुई है। महाराष्ट्र के नागपुर में संपन्न 39वीं राष्ट्रीय अंडर-7 ओपन चेस चैंपियनशिप में बिहार के रुद्र प्रताप पहली रैंकिंग प्राप्त कर चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया है। रुद्र प्रताप ने लगातार 8 मैच जीतकर 1 राउंड पहले ही खिताब अपने नाम किया। इस प्रदर्शन के आधार पर रुद्र प्रताप को आगामी विश्व कप और एशियन यूथ चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी चयनित किया गया है। रुद्र प्रताप मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले हैं। वहीं 16वीं जूनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के लिए आज राजगीर स्थित स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव में चयन ट्रायल का आयोजन किया गया है। यह प्रतियोगिता तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 28 अगस्त को आयोजित की जाएगी। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने राज्य के सभी जिला हॉकी संघों को अपने क्षेत्र के प्रतिभावान खिलाड़ियों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने का निर्देश दिया। चयन ट्रायल में खिलाड़ियों को हॉकी इंडिया का पहचान पत्र, सरकार की ओर से जारी पहचान पत्र और आवश्यक दस्तावेज के साथ आना अनिवार्य किया है। भागलपुर में जिला स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी बाल अंडर-15 और अंडर-17 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में अंडर-17 बालक वर्ग में इंटर लेवल मुस्लिम हाई स्कूल विद्यालय और अंडर-15 वर्ग में RHMTB उच्च विद्यालय बरारी भागलपुर की टीम ने राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता क्वालिफाई किया है। मधुबनी जिले के बलिराजगढ़ में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से संचालित उत्खनन कार्य के लिए जिला प्रशासन ने समीक्षा बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने उत्खनन कार्य की वर्तमान स्थिति, प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों और आगामी कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि बलिराजगढ़ केवल बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश का महत्वपूर्ण पुरातात्विक धरोहर है।

0: अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज की सभी अखबारों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, नए आपराधिक कानून पर बोधगया सम्मेलन में मुख्यमंत्री का ऐलान, बिहार में 100 फास्ट ट्रैक गठित होंगे। दैनिक जागरण ने लिखा है, E20 पेट्रोल से 2-6% तक घट सकता है गाड़ियों का माइलेज। दैनिक भास्कर ने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, अगस्त से बदलेगा DL नियम, लर्निंग लाइसेंस से पहले ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जरूरी। प्रभात खबर ने क्रिकेट के बढ़ते सितारे वैभव सूर्यवंशी की भारतीय टीम में डेब्यू से जुड़ी खबर को अपनी पहली लीड बनाते हुए लिखा है, वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, बिहार का वैभव, भारत का सूर्य। आज अखबार का शीर्षक है, पटना में धारा 163 लागू, चुनाव प्रचार और हथियारों के प्रदर्शन को सख्ती, बांकीपुर चुनाव को लेकर पटना पुलिस अलर्ट। राष्ट्रीय सागर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, भारत सबसे बड़े ऊर्जा संकट से उबरा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा, 25 जुलाई तक चलेगी कार्यवाही। केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2125 रुपए प्रति क्विंटल किया। और महाराष्ट्र के नागपुर में संपन्न राष्ट्रीय U17 ओपन चेस चैंपियनशिप में बिहार के रुद्र प्रताप चैंपियन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यंग समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
2: आज तुम्हें मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
4: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना?
3: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: RBI कहता है,
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
7: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है।
1: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: हवाओं से होकर कुछ आवाजें गईं दूर दूर तक रेडियो तरंगों के वेश में। ये अनमोल तरंगे जिन तक पहुंची वे बने रेडियो श्रोता। बचपन गुजरा, जवां हुए, बुढ़ापे ने दस्तक दी। किसी का साथ रहा, किसी का छूटा, पर नहीं छूटा रेडियो, उसकी यादें, उसकी कही बातें। आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी दरभंगा के नए कार्यक्रम में। हर महीने के पहले रविवार को दोपहर 2:30 पर रेडियो की बात श्रोताओं के साथ।
2: अब नन्हे मुन्हे बच्चे अपनी आवाज में कविता, कहानी, पहेली और चुटकुले सुन सकते हैं फुलवाड़ी कार्यक्रम में रविवार सुबह 10:30 पर। तो रिकॉर्ड करवाएं प्रत्येक शुक्रवार 3:30 से 4 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0627222481। मोबाइल नंबर है 9430029353।
3: भोर होते उठ जाओ किएकता इजोतक पहल किरण संग फुलाए लगत है। फूल प्रकृति में घुराए लगत है। ऊर्जा आब वाला काल्हि लेल
4: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
5: आ मनुख लेल तो बुझो अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं है तो खेती नहीं है, आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है तो हमरा लोकन खाब की।
6: मामा बने जाने बाबा देने ज्यादा।
7: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
8: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। अगला कार्यक्रम हमारे पटना केंद्र से।

0: है कि मेडिसिन का भी बहुत अच्छा रोल है खराब करने में। तो मेडिसिन तो आप सब जानते हैं कि हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है, किसी का कम किसी का बेश। ये तो डॉक्टर की सलाहियत है और डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि अपने मरीजों को दवाई से ज्यादा एजुकेशन दें, कैसे अपने किडनी को बचाएं। दवाई लिखना कोई हल नहीं है, वो तो आखिरी है, मजबूरी है। और आपने सही सवाल किया है, तो सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचा है वो पेन किलर से। आदमी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, जरा सा पेन नहीं हुआ कि दवा खा रहा है, सुबह शाम भूंजा की तरह पेन किलर खाता है। ऐसे कई केसेस मैंने देखे हैं, वो ज्वाइंट्स पेन हुआ, नी पेन हुआ, दवा खा रहे हैं, मांगते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, अल्टीमेटली वो लैंड अप कर जाते हैं किडनी फेल्योर में। दूसरा है पेस्टिसाइड्स, जो खेतों में उपज के चक्कर में लोग जो डाल रहे हैं दवाइयां, ना हो कीड़े को मारने के चक्कर में इतनी दवाई पड़ जाती है कि इंसान मर रहा है। तो वहां पेस्टिसाइड्स वाले सामान को जरा सा पानी से धोकर साफ करके ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए। तो ड्रग और पेस्टिसाइड्स का बड़ा अच्छा रोल है इसमें खराब करने में किडनी को, उनको बहुत एहतमाम करना चाहिए। स्टोन्स अगर दिख गया तो क्वालिफाइड आदमी के पास जाकर देखना चाहिए उसका साइज क्या है, कैसे इससे नजात पाई जा सकती है। बहुत अच्छी अच्छी मेथड्स आ गए हैं किडनी स्टोन्स के। पहले तो ऑपरेशन होता था, चीर कर निकालना पड़ता था, अभी तो ऐसी ऐसी मशीन आ गई है कि बगैर चीरना तो छोड़िए, नश्तर लगाना तो छोड़िए, सुराख से भी बचाया जा सकता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉक वेव लिथोट्रिप्सी।
1: उसके बारे में आप थोड़ी तफसील से कि ये लिथोट्रिप्सी है।
0: तो मैं पहला आदमी हूं जिसने इसको लगाया, और ये 1996 में लगा, आज से 28 साल पहले। उस वक्त कोई नहीं जानता था, बड़ी मुश्किल होती थी समझाने में कि ऐसा भी हो सकता है बगैर किसी सुराख किए हुए, बगैर काटे हुए निकल के ऐसे बाहर चला जाएगा, कहीं ना कहीं तो काटेंगे। हमारे सीनियर डॉक्टर थे कॉलेज के, उनको स्टोन हुआ, वो आए, उनको मैंने समझाया, लेकिन उनको यकीन नहीं। हमारे रूम में आए लिथोट्रिप्सी के, तो उन्होंने कहा दोस्त अब तो हम तुम्हारे रूम में आ गए, अब तो बता दो कि कहाँ छेद करोगे या सुराख करोगे। हमको बड़ी हंसी आई अंदर, हम कहा बस अंदर आ ही गए, सीनियर थे हमारे, अंदर आ ही गए तो आप लेट जाइए, हम कुछ बताएंगे नहीं, जो करना है सो कर ही ले। बाद में हमने कहा कि अब क्या बताएं, आप इतना देर बताने के बाद नहीं समझे तो आप लेट जाइए, खुद से महसूस कर लीजिए कि क्या हो रहा है। हम आज भी उसको भूलते नहीं है, बड़े अच्छे इंसान थे और बड़ी मोहब्बत से आए थे इलाज कराने। शुरू में तो लोग आते ही नहीं थे, चूंकि भरोसा ही नहीं होता था। और बहुत इंटरेस्टिंग है, जो मतलब लोग गांव जाते थे करा करके, तो गांव में जो बैठे हुए ना उसमें बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने को बहुत होशियार समझते हैं, तो वो उस बेचारे को डराते रहते थे कि तू फंस गया, तू गलत जगह चला गया, कैसे हो सकता है। कपड़ा उठा के देखते थे कहां सुराख है, कहां से निकला, ओ तुम ठगा गए। बेचारा बड़ा परेशान होकर मेरे पास आता था, अब समझाते रहते थे क्या तकलीफ है नहीं। काफी दिन लगा हमको लोगों को समझाने, यकीन दिलाने में कि हो सकता है, लेकिन मशीन अगर अच्छी रखी जाए तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है।
1: इसके इन्वेंट की कहानी बड़ी खूबसूरत है, जो आपने इंटरेस्टिंग है।
0: देखिए लोग शायद सुन के एंजॉय करें, मैं बताता हूँ। कहानी यह है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में काफी लड़ाइयां हुई, उस वक्त प्लेन्स काफी इस्तेमाल हो रहे थे, फाइटर्स बॉम्बर्स। तो हिस्ट्री ये है कि फाइटर्स जाते थे जर्मन्स के और डॉग फाइट करके आते थे, तो एक प्लेन वापस आया तो सब लोग जाते हैं रिसीव करने, जो उतरता क्या हुआ, कितना डैमेज हुआ नहीं हुआ, तो देखा तो कहीं कुछ नहीं था। पायलट उतरा, देखा कॉकपिट के पीछे एक क्रैक था, तो वो क्रैक कैसे हो गया। इन लोगों ने बहुत तफ्तीश की कि कैसे हुआ, तुमको कोई शेल लगा नहीं, ये क्रैक कैसे हुआ। तो आखिर में उन्होंने कहा कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे चोट लगी। कि सर चोट तो नहीं लगी, मगर ये बता सकते हैं कि मेरे प्लेन के अगल बगल बाजू में आकर के शेल्स फट रहे थे, धम धम फट रहे थे। उन लोगों ने दिमाग लगाया क्या इस धमाके में ये ताकत थी कि इसने कॉकपिट को तोड़ दिया या क्रैक कर दिया। उसको उन लोगों ने अपनी डायरी में कलम बंद कर लिया। जब लड़ाई खत्म हो गई सेकंड वर्ल्ड वार और बैन हो गया नाजी के सब काम, हथियार बनाना और फाइटर्स बम्बर्स बनाना, तब इन लोगों ने कहा कि हम क्या करें। तो बोला अब आप इंसान के भलाइयों के लिए कुछ चीजें बनाइए अपनी जानकारी से। लिहाजा इन लोगों ने अपना अपना एक्सपीरियंस निकाला, उसमें डायरी निकली जिसमें था, और इस पर लोगों ने दिमाग लगाकर साइंटिस्ट ने इसको एक मशीन बनाई है कि अब क्यों नहीं इसके आदमी के भलाई के। तो एक मशीन बनी जिसका नाम था शॉक वेव लिथोट्रिप्टर के नाम से बनाया इन्होंने, और थोड़ा कम्बर्सम था उस वक्त, वो पानी में अंदर डाल के और दोनों तरफ से इलेक्ट्रोड लगाकर और स्पार्क गैप से वो शॉक वेव्स प्रोड्यूस करते थे। बहुत अच्छा रिजल्ट आया, लेकिन बहुत कम्बर्सम था, तो उस पर और रिसर्च करके इन लोगों ने इसको बहुत कम्पैक्ट बना दिया। अब तो इतनी स्मार्ट मशीनें आई है, लेटिए और एक घंटे में उठकर चले जाइए, आप उसी दिन या दूसरे दिन अपने ऑफिस भी जा सकते हैं।
1: अच्छा।
0: दूसरी बात कि स्टोन एक ऐसी बीमारी है जो बार बार भी हो सकती है, रिकरेंस होता है, 100 में 100 लोगों को नहीं होता है। अगर परहेज करेंगे तो 100 में 5 लोगों को होगा, परहेज नहीं करेंगे तो 100 आदमियों का अगर इलाज किया तो उसमें 40 लोगों को होगा, नहीं भी परहेज करेंगे तो 100 के 100 को दोबारा नहीं होगा, 40 को होगा। और अगर परहेज करेंगे, जो हम लोग बताते हैं पानी ज्यादा पीना है, कुछ चीजें नहीं खानी है जिससे बनता है, तो 100 में 5 को भी बनेगा। तो क्या आप बार बार अपने जिस्म को कटवा सकते हैं? नहीं। एक कपड़ा को काट करके या फाड़ करके कितनी बार सिलेगा? तो 2 बार के बाद 3 बार कोई भी नहीं चाहता कि उसको मैं फिर। तो वहां पर यह मशीन फिर मजबूरी होती है।

0: और शुरू में किया जाता है तो मौका नहीं आता है।
1: जी,
0: तो हम लोग रोज सीखते हैं अपनी ही गलतियों से, रोज काम करते हैं, रोज सीखते हैं।
1: तो ये किडनी स्टोन से किस तरह से बचा जा सकता है, कैसे हम इसका ऐसा क्या खाए पिए, कैसे ये अपनी लाइफस्टाइल कम से कम बने और हम इससे बचें।
0: सबसे अच्छा सवाल होता है कि आजकल स्टोन के केसेस बहुत मिलने लगे हैं। स्टोन पहले भी बनते थे, हो सकता है अभी ज्यादा बन रहे हों, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि आज इन्वेस्टिगेशंस के इतनी फैसिलिटीज है ना कि आप कहीं जाकर अल्ट्रासाउंड करा लिया, एक्सरे करा लिया और आपको मालूम हो जाता है, वरना लोग ऐसे ही पाचक और हाजमा खाते रहते, गैस बना, ये हुआ, दर्द हुआ, पेट खराब हुआ, तो गैसे की दवा खाते रहते। बहुत बड़े स्टोन में भी यही हो जाता होता है, तो जब ज्यादा परेशान होते हैं जाँच करा लेते हैं, तो जाँच की फैसिलिटी की वजह से अर्ली डिटेक्शन हो जाता है और उसका इलाज हो जाता है तो किडनी भी बच जाती है। लेकिन सेफ्टी फर्स्ट, एवरीथिंग नेक्स्ट, पेशेंट की भलाई देखना जरूरी है, कौन मेथड अच्छा है, और ये साइज ऑफ स्टोन एंड साइट ऑफ स्टोन पर एंड टाइप ऑफ स्टोन पर डिपेंड करता है। यहाँ पर डॉक्टर के तजुर्बे की बड़ी जरूरत होती है, देयर इज नो फिक्स्ड रूल, सिचुएशन के हिसाब से आपको मेथड ऑफ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। दो तरह के लोग होते, कुछ कहते हैं ना एक बार में निकाल के खत्म कीजिए, भाई आप कटवाइए, सुराख करवा लीजिए, निकलवा लीजिए, और नहीं करवाना है तो लिथोट्रिप्सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, ESWL फुल फॉर्म में,
1: ये ऑप्शन है।
0: हाँ, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि लेजर नहीं है जनाब।
1: जी,
0: लेजर बिजली से बनता है।
1: अच्छा, लेजर से भी स्टोन,
0: लेजर टूटता है तो फिर लेजर में कि जाके आपको टच करना है, तो किसी सुराख से आपको घुसना पड़ेगा और स्टोन के सामने जाना पड़ेगा, इसमें नहीं जाना,
1: होल करना होगा।
0: हाँ, ये होल करिए या नेचुरल होल से चले जाइए,
1: अच्छा
0: पेशाब करा से, लेकिन उसमें आपको अंदर जाना है, आपको इन्वेजिव हो गया वो, तो वहाँ इन्फेक्शन का चांस बढ़ता है, ट्रॉमा का चांस बढ़ता है, लेजर में इंजरी का चांस ज्यादा होता है, इससे इसमें इंजरी का चांस कम होता है, इसलिए कि सब बाहर ही से हो रहा है, स्किन के बाहर से हो रहा है, किरण अंदर जा रही है, अपना काम कर रही है, और अगर आप तजुर्बेकार हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। किताब में कुछ 70% देते थे, कुछ कुछ देते थे, अभी 90% तक आ गया है। कुछ लिमिटेशंस होते हैं, जहाँ रास्ता ही नहीं है आगे निकलने का, वहाँ हम तोड़ के भी क्या करेंगे, निकलेगा नहीं, वो चेक करना जरूरी है। किसी किसी किडनी में कोई पॉकेट सा बन जाता है, या तो पिन होल एकदम ओपनिंग है, पानी निकलने का, पेशाब निकलने का कैलिक्स से, तो वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्टेड हो गया रास्ता, तो वहाँ तोड़ने में दिक्कत है। शुरू करने के पहले patency of the calluses that can give way to the particles, वो उसके कणों को निकलने का रास्ता दे, सब निकल जाता है। अक्सर लोग पूछे कितना बड़ा स्टोन टूट जाता है,
1: हाँ ये भी एक
0: इथोट्रिप से कितना बड़ा स्टोन टूट जाता है, तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर तक तो मैं आराम से तोड़ लेता हूँ। तोड़ने का मैंने 3.5 भी तोड़ा है, मगर उसमें कई बार करना पड़ता है, कई बार आना पड़ता है। किताब भी यही बोलती है कि 1 से 2 सेंटीमीटर तो आराम से तोड़ लो, सब निकल जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर तक भी परमिशन देता है, लेकिन मेरा अपना तजुर्बा है कि अगर पेशेंट टाइम देना, धीरे धीरे निकल जाता है, हड़बड़ाना नहीं चाहिए,
1: तीन बार करना,
0: हाँ स्टेप वाइज में कीजिएगा, नहीं तो आप सब तोड़ दीजिएगा तो यूरेटर बहुत पतला है ना, वो ट्रैफिक जाम कर देगा, ट्रैफिक जाम कर देगा, दिखेगा आपको लाइन लगा हुआ।
1: जाहिर सी बात है, बड़ा ये बड़ा है, उसका मलबा ज्यादा है, तो अगर रास्ता छोटा सा है,
0: 25 सेंटीमीटर का यूरेटर है, वो पतला है, तो उसका ध्यान रखते हुए धीरे धीरे छोड़िएगा, अगर उसको 1x1 तो निकलता जाएगा, तो एक्सपीरियंस काउंट्स।
1: डॉक्टर साहब, एक और जो बीमारी अक्सर जो सुनने में आती है, UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पेशाब की नली से रिलेटेड, जो
0: बहुत कॉमन सवाल है आपका,
1: जलन और ये होती है, उसके बारे में
0: कॉमन सवाल है आपका, कॉमन लोगों के साथ बहुत प्रॉब्लम है। UTI कह देना बहुत आसान है, लेकिन उसकी वजूहत खोजने पड़ते हैं, कभी कभी कोई वजह नहीं मिलता है तो बड़ा परेशानी होती है। तो डायबिटीज भी एक वजह है जिसमें बार बार UTI होता है, डायबिटिक्स लोगों को ज्यादा केयरफुल होना पड़ता है, और इन्फेक्शन तो कॉमन चीज है, अगर आप पानी कम पिएंगे, नंबर 1 कॉज तो वही है, पानी कम पीजिएगा, पेशाब कंसंट्रेटेड होगा, तो उसमें इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इकोलाई बड़ा हल्ला होता है। इकोलाई जो है ये कॉमन बैक्टीरिया है GIT का, माने आपका जो आंत वाला हिस्सा है जिससे आप रफा हाजत करते हैं, और तो उसमें ये भरा रहता है, तो औरतों में खास के ये दोनों मकाम जो है, पेशाब वाला और ये रफा हाजत वाला, ये इतना नजदीक है कि अगर आप हाइजीन ना ठीक रखिए तो अगल बगल पहुंच जाता है,
1: एक दूसरे का इफेक्ट करेगा।
0: हाँ, बगल में है ना, बैक्टीरिया वहां से तो निकलता ही रहता है, जरा सा भी आपने उसमें एहतियात नहीं रखा तो चला गया। इसलिए हाइजीन बहुत जरूरी है, पानी ज्यादा पीना जरूरी है, और डायबिटीज अगर है तो आपको और केयरफुल होना पड़ता है, उस पर काफी तंग करता है, बार बार होता है। और आखिरी चीज जो आपको बताया ना कि पानी जो लेते हैं हाजत के बाद, तो फीमेल्स में खास के बताते हैं विच डायरेक्शन शुड द वाटर गो, फ्रॉम फ्रंट टू बैक, नॉट फ्रॉम बैक टू फ्रंट, जो बिल्कुल किताब में भी नहीं लिखी हुई है, लेकिन कॉमन सेंस से यूज करना चाहिए। काफी लोग परेशान आते हैं UTI।

0: यूटीआई को बहुत दिन छोड़ने से फिर नेफ्राइटिस होता है, फिर किडनी खराब होता है।
1: अच्छा, वो भी इफेक्ट।
0: यूटीआई को भी नहीं छोड़ना चाहिए बहुत दिन तक। नेफ्राइटिस होगा तो फिल्टर्स को डैमेज करेगा वो। एक्चुअली जो किडनी डैमेज का मतलब होता है कि आपका फिल्ट्रेशन सिस्टम खत्म हो गया। अच्छा। और जो फिल्ट्रेशन सिस्टम जिस पोर्शन में है, कॉर्टिकल पार्ट में, वो अगर बहुत खत्म हो गया तो किडनी फेल।
1: एक और जो बीमारी है यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन की, जैसे पेशाब में रुकावट, रुक रुक के पेशाब।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल।
1: और ये इस बीमारी के बारे में बताया और इसका क्या इलाज है, कैसे?
0: ऑब्स्ट्रक्शन तो एक लफ्ज आप बोल दिया, लेकिन कई वजूहत हैं इसके। पहला वजह तो ये होता है कि उम्र से, अगर प्रोस्टेट जो हम लोग का आप जानते हैं, सब लोग जान चुके हैं प्रोस्टेट कॉमन, प्रोस्टेट जैसे बाल सफेद होता है, उसे प्रोस्टेट भी उम्र के साथ बढ़ता है। तो कुछ लोगों का बहुत तेजी से बढ़ जाता है, कुछ लोगों का धीरे बढ़ता है। और वो जब ज्यादा बढ़ता है तो ये जहाँ पर पेशाब निकलती है, एट द रूट ऑफ द नेक ऑफ द ब्लैडर, ब्लैडर के नेक पर ये आकर के, मर्दों में खास करके, ये अगर बड़ा हो गया तो उसके दबाव देता है, पेशाब रोक देता है। फीमेल में प्रोस्टेट बड़ा नहीं होता है, बहुत रिमेंट्री होता है, नहीं के बराबर डेवलप नहीं करता है। और ये प्रोस्टेट एक वजह हो गया। दूसरी वजह होती है कि कभी कभी बार बार इन्फेक्शन होता है पेशाब के नली में, यूरेथ्रा में, उससे स्ट्रिक्चर बन जाता है। और कभी कोई चोट लग गई यूरेथ्रा में, गिर गए आप, जिसके आपके यूरेथ्रा में चोट लग गया, या पेनाइल पार्ट में जहाँ पे यूरेथ्रा आ रहा है, तो उससे इंजुरी होने से भी रुक जाता है। कभी कभी सीरियस इंजुरी तो ऐसी होती है कि साहब ब्लीडिंग भी होता है और पेशाब रुक जाता है, पेशाब के थैली में ऊपर से पाइप लगाना पड़ता है। तो वो इंजुरी की वजह से हो गया, इन्फेक्शन की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, इसको इंजुरी कह रहे हैं। प्रोस्टेट की वजह से कॉमनली है ये। अब जैसा वजह हो उसका इलाज करना चाहिए। एक बात आपको बता दें, छोटा प्रोस्टेट, बड़ा प्रोस्टेट, बहुत हल्ला है। अगर बड़ा प्रोस्टेट भी परेशान न कर रहा है, पेशाब में रुकावट नहीं कर रहा है, तो उसको छेड़ने की या काटने की जरूरत नहीं। अगर छोटा प्रोस्टेट भी परेशान कर रहा है, यूरिन को अंदर रोक देता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तकलीफ होती है, तादाद बढ़ जाती है पेशाब की, रात में 5 बार 6 बार उठ रहे हैं, उसका ऑपरेशन करना चाहिए। बड़ा छोटा जरूरी नहीं है ऑपरेशन के लिए। जो तंग कर रहा है, जो परेशान कर रहा है, जो रुकावट कर रहा है, उसका करना है। जो नहीं कर रहा है, लेट इट गो। जितना कम जिस्म को छोड़िएगा, उतना मरीज खुश रहेगा और डॉक्टर भी खुश रहेगा। छेड़ने से तो फिर दोनों को झेलना पड़ता है। मजबूरी में एडिक्वेट काम करना चाहिए। एडिक्वेट एक इंग्लिश में वर्ड है, लेकिन व्हाट इज एडिक्वेट, दैट लीड्स अ बिग एक्सपीरियंस।
1: एक चीज जैसे अक्सर डायलिसिस के बारे में सुनते हैं, किडनी फेल हो गया किसी का, तो भाई वो डायलिसिस पे है ना, तो इसके बारे में बताएं कि
0: डायलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल आजकल अदा कर रहा है, क्योंकि तादाद बहुत बढ़ गई किडनी फेल्योर की। हमको तो समझ में नहीं आता है, जो हालात देखते हैं कि किडनी फेल्योर की तादाद ज्यादा है या कैंसर की, काफी केसेस बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर डायलिसिस आ गया है एक रेस्क्यू में। अक्यूट केसेस में तो डायलिसिस बहुत अच्छा काम करता है, और क्रोनिक केसेस में ये मजबूरी हो जाता है। जब फेल ही कर गया तो कोई भी अपने सगे को छोड़ना नहीं चाहता है, तो बेचारा कोशिश करता है डायलिसिस पर। काफी लोग काफी दिन तक चलते हैं। डायलिसिस भी एक ऐसी चीज है जो सालों आपको बचा कर रख सकती है, अगर आप केयरफुली अच्छी जगह प्रॉपर जगह करवाए। क्योंकि डायलिसिस में अगर इन्फेक्शन हो गया, कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया, तो लेने के देने पड़ जाए। लिए अच्छी जगह अगर हो रहा है तो डायलिसिस पर सालों आदमी चलता है और अपने फैमिली को वक्त दे पाता है। एक अच्छा सिस्टम है, और अच्छी जगह करने से, ट्रेंड हाथों में करने से अच्छा रिजल्ट डायलिसिस का।
1: तो डायलिसिस कराने के बाद नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं
0: स्मार्टली? तो कुछ लोग आते हैं, डायलिसिस कराया, उठ के गाड़ी ड्राइव करके चले।
1: अच्छा, वाह।
0: और मेरे लिए तो टिप्सी में भी फायदा है, अगर अच्छे से आप समझ रहे हैं और कॉन्फिडेंट हैं, आइए इलाज कराइए, अपनी गाड़ी चला के जाइए, मोटरसाइकिल चला के जाइए।
1: कोई चीर फाड़ तो उसमें है नहीं, कुछ कट है नहीं
0: वो। और हु इज डूइंग इट एंड व्हाट इज द मशीन?
1: ये तो
0: मशीन,
1: एक अच्छा हाथ,
0: मैन बिहाइंड द मशीन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल केसेस, लाइक चाहे टिप्सी हो, चाहे डायलिसिस हो, कोई भी काम छोटा नहीं होता, उसको पूरे एहतियात से करना चाहिए। एक मैसेज
1: ये तो है कि एक्सपर्ट वो किसी अपने असिस्टेंट्स को ना दे दे, खुद वो करे एक्सपर्ट, जो कि जो जितना एक्सपर्ट रहेगा उतना ही बेहतर।
0: आपके ट्रेनर कौन है? ट्रेनर जी, याद है कि हमारे ट्रेनर ने ही कहा था कि आशी किसी काम को छोटा मत समझिएगा, छोटा काम आपको कभी इतना फंसा देगा कि आपको इज्जत बचाना पड़ेगा। बी केयरफुल,
1: किसी की जान अटकी होती है भाई,
0: आपकी भी फंस गई ना
1: लाइफ और आपका कैरियर।
0: मरीज अगर फंस गया तो आप भी फंस गए ना, जवाब देते रहिए।
1: सही बात है,
0: तो क्यों नहीं कॉशियस रहे?
1: अच्छा, इससे बचने के लिए जैसे है ना कि गजा वगैरह
0: स्टोन से, बहुत अच्छा आखिरी सवाल, बहुत सही किया आपने। तो मैं आपको बहुत जिस्ट में बताता हूँ। देखिए, स्टोन बनने का सबसे सिंपल फार्मूला है सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। अगर एक गिलास पानी में अगर आपने 10 चम्मच नमक डाल दिया तो सब थोड़े घुलेगा, नीचे जम जाएगा। अगर एक गिलास पानी में आपने 1 चम्मच नमक दिया है तो घुल जाएगा। दिस इज द सेम। बॉडी में कुछ चीजें हैं जो कि घुली हुई रहती हैं, अगर उसको आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा तो जमना शुरू हो जाएगी। जैसे पेशाबी बन रहा है, उसमें कुछ

0: कैल्शियम ऑक्सलेट, फॉस्फोरेट, मोनोहाइड्रेट, यही सब कॉमन है, यूरिक एसिड. इसका अगर लेवल बढ़ जाएगा तो वो सेडिमेंट होने लगेगा एंड दैट इज स्टोन फॉर्मेशन. तो लिहाजा सब लोग जानना चाहते हैं क्या खाएं क्या ना खाएं. क्या ना खाएं सब लोग बताते हैं, क्या खाएं ये बहुत कम लोग बताता है. तो मैं खास कर बताता हूँ क्या खाएं कि ना बने. आप किसी का सब खाना रोक देंगे तो बेचारा खाएगा क्या,
1: फिर जिंदा रहना
0: है. तो उसको ध्यान देना चाहिए. तो ज्यादा खाने में जो प्रोटेक्टिव है स्टोन किडनी स्टोन्स के लिए वो है पानी ज्यादा पीना है. नारियल पानी, नींबू पानी, ये तीन पानी आपके लिए एकदम अमृत. आप पीते रहेंगे डाइल्यूट होता रहेगा, निकलता रहेगा, जमेगा नहीं. और नींबू और नारियल पानी ये सब नहीं बनने देता है. कुछ फल है जो आपको मदद करता है. तो नींबू तो उसमें हो ही गया. सारे साइट्रस, नींबू, मौसमी, संतरा, ये सब साइट्रस फ्रूट है. इसके अलावा पाइनएप्पल बहुत अच्छा रोल करता है. और केला, गाजर, ये सब बहुत अच्छा रोल करता है. और अनाज में मोटा अनाज जो हम लोग छोड़ चुके हैं ना, जौ, मकई, बाजरा, ये नहीं बनने देता है. अभी तो मिलेट्स आ गया
1: मिलेट्स
0: है. हम
1: सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमारे सरकार ने भी मिलेट्स को काफी बढ़ावा
0: दिया. आप लोग
1: भी
0: इस पर मेहनत कीजिए. मैं भी जा रहा हूँ इसमें इन्वॉल्व होने, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो ये नहीं बनने देता मोटा अनाज. याद रखिए, जितना फाइन अनाज खाइएगा ना उतना परेशानी में रहिएगा. रॉ लीजिए, चाहे वो दलिया हो, चाहे वो जौ का हो, मकई का हो, बाजरे का हो. अब दलिया काफी फायदा करता है इसमें. भुंजा हो, भुंजा हम लोग का बहुत अच्छा है, स्नैक्स है. उससे
1: वो बिहार का ऐसे भी एक खास वो.
0: अगर जौ, मकई, बाजरा अगर इस्तेमाल करेंगे तो काफी इंसिडेंस कम हो जाता है बनने का. रफेज, अच्छा रफेज लेना पड़ेगा. फल भी पूरा खाना चाहिए, जूस के चक्कर में न पड़े.
1: अच्छा अच्छा, फल
0: पूरा फल खाए. जैसे पाइनएप्पल खा रहे हैं पूरा खाया तो उसके जो रेशे है ना वो एंटी कैंसरस भी है और स्टोन भी नहीं बनने देता, जिसको आप सिट्ठी कहते हैं या रेशा कहते हैं, रफेज कहते हैं. तो कोशिश करें कि होल फ्रूट्स लिया करें, काफी इंसिडेंस कम हो जाता है परहेज करने से स्टोन का.
1: हाँ, एक चीज जो अक्सर है कि किडनी फेलियर में, किडनी ट्रांसप्लांट का जो हम लोग सुनते हैं, तो किडनी ट्रांसप्लांट में है कि डोनेशंस का बहुत बड़ा ये होता है कि या तो अपनी फैमिली वाले दें तो सबसे बेहतर, और अगर वो ना हो तो किस तरह से लोग डोनेट करें अपने इसको, इसके बारे में बताइए. और एक मैसेज जो आवाम को
0: प्रोपोगेट करना पड़ेगा, इसमें आप लोग का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है. कुछ पिक्चर्स भी आई है हमको नहीं करना चाहते हैं, जिसमें उसने अपने बिलेवेड वाइफ का सारा कुछ, एक्सीडेंटल डेथ हुआ और सारा कुछ डोनेट किया बच्चों में, उसको जाके देखा. तो इस तरह की चीज अगर हम लोग चलाएं तो कुछ लोग तैयार हो जाते हैं. और कई टीम्स तैयार हैं लेकिन उतना पॉपुलर नहीं हो पा रहा है, चूंकि अभी एक्सेप्टेंस कम है और फिक्स टाइम में जाके कैडावर से ले लेना पड़ता है.
1: डेथ हो तो उसके कितनी देर बाद आप इसको,
0: 4-6 घंटे के अंदर अगर ले लिया तो आइडियल होता है. इसके लिए टीम हमेशा रेडी रहती है, खबर गई नहीं कि टीम दौड़ती है.
1: अच्छा,
0: वो कुछ किया गया है, यहाँ भी किया गया है. हम लोग इसको और इम्प्रूव करना चाह रहे हैं. जीएमएस में भी है और एम्स में भी खोलने की कोशिश की जा रही है. और लोगों को समझाना है कि भाई देखो, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे ऑर्गन से दुनिया में जिंदा रहेगा, तुम उससे मिलोगे, लेकर मेरा बच्चा इसके अंदर.
1: जब बात चली है ऑर्गन डोनेशन की, तो आफ्टर डेथ भी ऑर्गन डोनेशन का काफी आजकल यहाँ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पटना में भी काम कर रहे हैं लोग
0: आप लोग के लिए काम.
1: तो जी, तो इसके बारे में बताइए कि आफ्टर डेथ जो ऑर्गन डोनेशन का ये है, तो उसका क्या ये है?
0: आफ्टर डेथ का ये है कि पहले तो एक्सीडेंटल अगर हो गया तो उसके गार्जियन से, उसके रिलेटिव से पूछना पड़ता है. और अगर कोई स्लो डेथ में जा रहा है, किसी कैंसर है, कुछ है, तो खुद भी कंसर्न देता है कि मेरी आंखों से कोई देखेगा, मेरा दिल किसी के सीने में धड़केगा.
1: अभी हमारी एक जानने वाली है जो हाल में ही उनका डेथ हुआ है कार्डियक अरेस्ट से, तो उन्होंने पहले से ही देहदान किया हुआ था, तो IGIMS में आफ्टर डेथ उनकी बॉडी यहाँ
0: फॉरन आई है, टीम तैयार.
1: जी जी जी,
0: तो इसको आप लोग प्रोपोगेट ज्यादा अच्छा कर सकते हैं. और लोगों ने करना शुरू किया है. डोनेशन की बात है तो बड़ा इंटरेस्टिंग बताया. PMCH में एक स्टाफ है, एनाटॉमी जहाँ बॉडी का, तो उन्होंने अपनी बॉडी डोनेट कर दी थी डिसेक्शन के लिए. जबकि आजकल तो ज्यादा लोग स्ट्रक्चर पर पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने बॉडी को डिसेक्ट करके डेड बॉडी पर पढ़ा था और अभी भी चल रहा है कुछ जगहों में. तो डोनेशन की कुछ लोगों में जज्बा होता है कि मेरे बाद भी मेरे से लोग काम लें,
1: किसी के काम आ जाए.
0: बड़े अच्छे ख्याल आते हैं, इसको प्रोपोगेट करना चाहिए और किया जा रहा है.
1: जी, तो डॉक्टर साहब आज काफी तफसील से किडनी और यूरोलॉजी से जुड़ी बातें हम लोगों ने की, और उम्मीद है सामाइन को भी काफी नई जानकारी मिली होगी. आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया.
0: मैं ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे एक्सपीरियंस को लोगों तक पहुँचाने का कोशिश किया.
1: तो इसी के साथ सामाइन, आज का सेहतनामा इख्तिताम पजीर होता है. इजाज़ हुसैन को दीजिए इजाजत. खुदा हाफिज़.

Living to keep the body in good health is a duty. Otherwise, we shall not be able to keep our mind strong and clear. यानी गौतम बुद्ध ने कहा है, जिस्म को अच्छी सेहत में रखना एक फर्ज है, वरना हम अपने जहन को मजबूत और शफाफ नहीं रख पाएंगे। आप सुन रहे थे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेहतनामा के तहत गुर्दा यानी किडनी और यूरोलॉजी से जुड़े अमराज और इलाज, डॉक्टर आसिफ रजा से मोहम्मद इजाज हुसैन की गुफ्तगू में। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं मौसिकी के तहत पंकज उदास की आवाज में चंद गजलें।

चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई। आप सुन रहे थे मौसीकी के तहत पंकज उदास की आवाज में ये कलाम। आइए सुनते हैं अगला कलाम भी पंकज उदास की आवाज में।

किसी ने भी तो ना देखा निगाह भर के मुझे। आप सुन रहे थे पंकज उदास की आवाज में ये कलाम। आइए सुनते हैं अगला कलाम पंकज उदास और गुलाम अली की आवाज में।

0: अभी आप सुन रहे थे
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ष पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में आपके साथ आज मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त नूतन। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है मुकेश की आवाज में। योगेश के लिखे इस गीत को संगीत दिया है सलिल चौधरी ने और फिल्म का नाम है आनंद।

मुकद्दर का सिकंदर, इस फिल्म का गीत अभी सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। अनजान के लिखे इस गीत को संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। आइए अब सुनते हैं फिल्म खून भरी मांग का ये गीत साधना सरगम और नितिन मुकेश की आवाज़ों में। बोल इंदिवर के और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

किशोर कुमार को अभी आप सुन रहे थे फिल्म इम्तिहान में। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए अब सुनते हैं फिल्म पहचान का ये गीत मुकेश एवं सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। शब्द रचना इंदिवर की और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

मुकेश एवं सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म पहचान का गीत। कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कुदरत से। आवाज़ दी है किशोर कुमार ने, बोल मजरू सुल्तानपुरी के और संगीत निर्देशन आर डी वर्मन का।

फिल्म कुदरत के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुत है बच्चों को संबोधित कार्यक्रम फुलवाड़ी।

0: जय हिंद प्यारे बच्चों।
1: जय हिंद दीदी।
2: आप सभी का अपना साप्ताहिक कार्यक्रम फुलवारी में हार्दिक स्वागत है। फूलों की खुशबू, तितलियों की रंगत और बच्चों की प्यारी मुस्कान के साथ मैं रजनी दीदी आपके प्रिय कार्यक्रम फुलवारी में उपस्थित हूँ। ज्ञान, मनोरंजन और नई नई जानकारियों से सजी इस रंग बिरंगी दुनिया में हम लेकर आए हैं आपके लिए कई रोचक बातें। तो आइए हंसी खुशी, कहानियों और सामान्य ज्ञान के इस सुंदर सफर की शुरुआत करते हैं। तो बस कार्यक्रम के अंत तक बने रहिए मेरे साथ और चुपचाप शांति से सुनिए अपना प्रिय कार्यक्रम फुलवारी। बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और शरारत थोड़ी कम कर रहे होंगे, है ना? पढ़ाई पर खूब ध्यान दे रहे होंगे, है ना? गर्मी छुट्टी के बाद स्कूल खुली है तो ऐसे में होमवर्क और पढ़ाई तो कम्प्लीट किए ही होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई में और भी मन लगा करके पढ़ रहे होंगे, है ना प्यारे बच्चों? आज हम बात करेंगे एक ऐसे रिश्ते

0: जो हमारे जीवन को खुशियों से भर देता है वह है मित्रता। जी हाँ बच्चों, आज हम बात करेंगे मित्रता के महत्व के बारे में। प्यारे बच्चों, क्या आपके भी अच्छे दोस्त हैं? स्कूल में, मोहल्ले में, गांव में या कहीं भी दोस्त तो होंगे ही, है ना? दोस्तों के साथ खेलना, पढ़ना, हंसना और नई नई बातें सीखना कितना अच्छा लगता है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं, जो हर परिस्थिति में हमारा साथ दे, जब हम खुश होते हैं तो हमारी खुशी में शामिल होता है, और जब हम परेशान होते हैं तो हमारा हौसला बढ़ाता है, हमारे साथ खड़ा होता है, वही है सच्चा मित्र, है ना? वह कभी भी हमें गलत रास्ते पर नहीं ले जाता है, बल्कि हमेशा सही सलाह देता है, वही सच्ची मित्रता होती है ना? प्यारे बच्चों, मित्रता का आधार होता है विश्वास, प्रेम, सम्मान और सहयोग। यदि हम अपने मित्र से झूठ बोलेंगे, उसका विश्वास तोड़ेंगे, तो मित्रता अधिक दिनों तक नहीं टिकेगी। इसलिए हमेशा सच्चे और ईमानदार मित्र बनिए, और एक मित्र को एक दूसरे का पूरक भी होना चाहिए। यानी एक अगर शरारती है, एक अगर चंचल है, एक को गंभीर होना चाहिए, है ना? तभी एक दूसरे का पूरक बन पाते हैं और मित्रता गहरी होती जाती है और बहुत दिनों तक चलती है। विद्यालय में अच्छे मित्र पढ़ाई में भी मदद करते हैं। किसी मित्र को कोई पाठ समझ में नहीं आता तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। इसीलिए इसी तरह खेल के मैदान में भी हमें टीम भावना से खेलना चाहिए। हार जीत तो खेल का हिस्सा है, इसके लिए कतई उत्सुक या हतोत्साह नहीं होना चाहिए। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का उदाहरण आज भी पूरी दुनिया में दिया जाता है। सुदामा गरीब थे, लेकिन श्री कृष्ण ने कभी उनकी गरीबी नहीं देखी। उन्होंने अपने मित्र का सम्मान किया और उनकी सहायता की। इससे हमें सीख मिलती है, सच्ची मित्रता धन दौलत से नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास से मिलती है और बनती है। प्यारे बच्चों, आज के समय में मोबाइल और इंटरनेट के कारण लोग ऑनलाइन दोस्त बना लेते हैं, लेकिन अपने आसपास के दोस्तों के साथ समय कम बिताते हैं। इसीलिए अपने परिवार, स्कूल और पड़ोस के मित्रों के साथ मिलकर खेलिए, सीखिए और अच्छे संस्कार अपनाइए। याद रखिए, सच्चा मित्र वही है जो हर परिस्थिति में आपका साथ निभाए, आपको हमेशा सही राह दिखाए। तो बच्चों, ये तो थी मित्रता और सच्ची मित्रता पर आधारित हमारी बातें। अभी और भी होगी। फिलहाल छोटे छोटे नन्हे मुन्हे बच्चों की प्रस्तुति पर आधारित सुनते हैं बच्चे मन के सच्चे।
1: नमस्ते बच्चों।
2: नमस्ते दीदी।
1: कैसे हो आप लोग?
2: हम ठीक है दीदी।
1: पढ़ाई चल रही है?
2: हाँ दीदी।
1: पढ़ाई में मजा आ रहा है ना?
2: हाँ दीदी।
1: तो आप लोग समय का सदुपयोग करते हो कि नहीं?
2: हाँ
1: दीदी। समय को जाया नहीं ना करते हो?
2: नहीं दीदी।
1: क्या सब करते हो आप? कैसे समय का उपयोग करते हो?
2: सुबह सुबह उठते हैं, स्कूल के लिए रेडी होते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, फिर शाम में पढ़ते हैं, फिर खेलते हैं।
1: अरे, शाम में खेलते हो ना?
2: हाँ।
1: फिर रात में पढ़ाई करते हो, है ना?
2: हाँ।
1: तो आज हमको क्या सुनाना चाहोगी आप लोग?
2: कविता।
1: पहले अपना नाम बताओ बारी बारी से।
2: मेरा नाम वैभव प्रिया है।
1: हाँ वैभव प्रिया, वाह। तो आप कविता कौन सा सुनाना चाहोगी?
2: फूल और काट।
1: तो सुनाओ।
2: है जन्म लेता जहाँ मैं एक ही पौधे उन्हें पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मैं उन पर है अपनी बसंत एक सा, एक ही उन पर है हवाएं नहीं वही पर सदा ही यह देखता है। हमें दंड उनसे एक से होता नहीं, छोड़ कर काटा किसी के भी उंगलियों में बांध कर देता है। किसी का वर वस्त्र प्यारा सा डूबी तितलियों का पर करता, भरों का है और वेद देता श्याम तक।
1: इस कविता के कवि कौन है?
2: अयोध्या सिंह
1: उपाध्याय।
2: हाँ,
1: वाह, बहुत अच्छी कविता।
3: नमस्ते दीदी।
1: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम आकृति चौधरी।

0: और किस कक्षा में पढ़ती हैं आप?
1: मैं 9th में पढ़ती हूँ।
0: और कुछ सुनाना चाहती हैं?
1: मैं आज एक कहानी सुनाऊंगी।
0: सुनाइए।
1: कहानी का नाम है सच्ची मित्रता की जीत। एक सुंदर गांव था जिसका नाम था आनंद। गांव चारों ओर से हरे भरे खेतों, पेड़ों और एक छोटी नदी से घिरा हुआ था। उसी गांव में दो मित्र रहते थे, सोनू और अमन। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वे साथ साथ स्कूल जाते थे, साथ खेलते थे, पढ़ाई करते थे और हर काम एक दूसरे की मदद करते थे। पूरे गांव में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती। सोनू मेहनती और शांत स्वभाव का था, जबकि अमन चंचल, हंसमुख और साहसी था। दोनों के स्वभाव अलग थे, लेकिन उनकी मित्रता बहुत गहरी थी। वे हमेशा कहते थे, सच्चा मित्र वही है जो हर परिस्थिति में साथ दे। एक दिन उनके स्कूल में घोषणा हुई कि अगले महीने विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित होगी। जो छात्र सबसे अच्छा मॉडल बनाएगा उसे जिले स्तर की प्रतियोगिता में भेजा जाएगा। सोनू और अमन ने मिलकर वर्षा जल संचयन का मॉडल बनाने का निश्चय किया। दोनों रोज स्कूल के बाद मेहनत करते, कभी कार्डबोर्ड काटते, कभी रंग भरते और कभी नई जानकारी जुटाते। यह देखकर कुछ बच्चों को ईर्ष्या होने लगी। उनमें से एक लड़का राकेश चाहता था कि वही प्रतियोगिता जीते। उसने एक रात चुपके से दोनों का मॉडल तोड़ दिया। अगले दिन जब सोनू और अमन स्कूल पहुंचे तो उन्होंने अपना मॉडल टूटा हुआ देखा। सोनू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, जब हम अब प्रतियोगिता कैसे जीतेंगे? अमन ने उसके कंधे पर थपथपाया और बोला, रोने से कुछ नहीं होगा, अभी समय है, हम फिर से बनाएंगे। हार मानना हमारी दोस्ती को शोभा नहीं देता। दोनों ने पूरे दिन और रात मेहनत की। गांव के बड़े चाचा ने उन्हें लकड़ी के छोटे टुकड़े दिए, अध्यापिका ने रंग और चार्ट पेपर दिए, उनके माता पिता ने भी उनका हौसला बढ़ाया। 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने पहले से भी सुंदर मॉडल तैयार कर लिया। प्रतियोगिता का दिन आया जब दोनों ने मंच पर अपने मॉडल के माध्यम से वर्षा जल संरक्षण का महत्व समझाया तो सभी शिक्षक अतिथि बहुत प्रभावित हुए। परिणाम घोषित हुए तो प्रथम पुरस्कार सोनू और अमन को मिला। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती है। कुछ दिन बाद स्कूल से लौटते समय अचानक तेज बारिश होने लगी, नदी का पानी बढ़ गया। तभी उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा फिसलकर पानी के तेज बहाव में फंस गया। अमन बिना देर किए पास की एक लंबी बांस की लकड़ी लेकर दौड़ा। सोनू ने गाँव वालों को आवाज लगाई और रस्सी लेकर आया। दोनों ने मिलकर समझदारी और साहस से उस बच्चे की जान बचा ली।
0: अरे वाह!
1: पूरा गांव उनकी बहादुरी देखकर गर्व से भरा गया। स्कूल में विशेष सभा आयोजित हुए। प्रधानाचार्य ने कहा, बच्चों, पुरस्कार जीतना बड़ी बात है, लेकिन किसी की जान बचाना उससे भी बड़ी कार्य है। सोनू और अमन ने साबित कर दिया कि सच्ची मित्रता केवल साथ खेलने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे का साहस बनकर खड़े रहने का नाम है। राकेश, जिसने उनका मॉडल तोड़ा था, अपनी गलती पर शर्मिंदा हुआ और दोनों के पास आया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने ईर्ष्या में आकर बहुत गलत काम किया। सोनू और अमन मुस्कुराए। उन्होंने कहा, गलती हर किसी से हो सकती है, सबसे बड़ी बात है उसे स्वीकार करना और दोबारा ना दोहराना। उस दिन से राकेश भी उनका अच्छा मित्र बन गया। तीनों मिलकर पढ़ने लगे, खेलने लगे और गांव के छोटे बच्चों की मदद भी करने लगे। उनकी मित्रता पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई।
0: इस कहानी से क्या सीख मिलती है?
1: इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, सच्ची मित्रता विश्वास, सहयोग, त्याग और क्षमा पर आधारित होती है। जो मित्र कठिन समय में आपका साथ निभाए वही सच्चा मित्र कहलाता है।
0: वाह, बिल्कुल सही बात कही आपने। और इतनी अच्छी कहानी सुनाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नमस्ते दीदी, मेरा नाम वेदिका है।
3: हाँ?
2: मैं 3 क्लास में पढ़ती हूँ। आज मैं एक पोयम सुनाने वाली हूँ।
3: अरे वाह, सुनाइए।
2: आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे? बंदर के झोपड़ी में सो रहे थे।
3: हाँ?
2: बंदर ने लात मारा, रो रहे थे। मम्मी ने प्यार किया, हंस रहे थे। पापा ने पैसे दिए, नाच रहे थे। भैया ने लड्डू दिए, खा रहे थे।
3: बहुत अच्छी कविता सुनाई आपने।
4: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
4: मेरा नाम कायनात है।
0: और किस कक्षा में पढ़ती हैं आप?
4: मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ।
0: अरे, एक कविता सुनाइएगा।
4: हाँ जरूर,
0: सुनाइए।
4: इस कविता का नाम है वतन के रखवाले।
0: हाँ हाँ, बिल्कुल।

0: हम भारत के बच्चे हैं, सच्चे और अच्छे हैं, देश की शान बढ़ाएंगे, नया इतिहास बनाएंगे। हिमालय सा ऊंचा मन होगा, सागर जैसा धन होगा, मेहनत को होशियार बनाए, भारत का सम्मान बढ़ाए। वीरों ने जब बलिदान दिया, हमने उनका मान किया, उनके सपनों को वीरों ने जब बलिदान दिया हमने उनका मान किया उनके सपनों को सच करके देश को आगे ले जाए। तिरंगा ऊंचा लहराएगा, विश्व में नाम चमकाएगा, मिलकर सब यह प्रण करे, भारत माँ की सेवा करे। जय हिंद।
1: बच्चों, अभी आप सुन रहे थे छोटे छोटे नन्हे मुन्हे बच्चों की प्रस्तुति आधारित ये अंक बच्चे मन के सच्चे। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं समय के सदुपयोग के बारे में। आप लोग समय का सही उपयोग करते हो ना? क्या आपने कभी सोचा है कि दिन में हमें 24 घंटे ही सिर्फ क्यों मिलते हैं, न उससे ज्यादा न उससे कम? और मजेदार बात तो ये है कि यही 24 घंटे हर किसी को मिलते हैं, चाहे वो एक छात्र हो, खिलाड़ी हो या कोई महान व्यक्ति। तो फर्क कहाँ आता है बच्चों? जरा सोचिए तो बच्चों, फर्क आता है समय के सही उपयोग में। समय हमारे जीवन की सबसे अनमोल संपत्ति है। एक बार बीत जाने के बाद समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए इसका सही उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है, विशेषकर बच्चों आपके लिए। समय का सही उपयोग आपके उज्जवल भविष्य की नींव रखेगा। बच्चों को बचपन से ही समय का मूल्य समझना चाहिए। यदि आप अपने समय का सही ढंग से उपयोग करते हैं तो आप पढ़ाई, खेल और अन्य गतिविधियों में भी संतुलन बना सकते हैं। अगर आप समय का सही उपयोग करिएगा तो सभी काम अपने समय के अनुसार हो जाएगा। समय का महत्व समझेंगे तो आप में समझदारी आएगी, अनुशासन, जिम्मेदारी और आत्मविश्वास जैसे गुणों का आप में समावेश होगा। बच्चों, बड़े होकर आप अच्छे इंसान बनेंगे, अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने राष्ट्र का नाम रोशन करेंगे। तो आप भी अपने समय पर सभी काम करिए और समय के अनुसार ही चलिए। समय का महत्व को समझिए। इसके विपरीत जो बच्चे समय को व्यर्थ कार्यों में गवाते हैं, जैसे मोबाइल स्क्रॉल करना या टीवी पर अधिक समय बिताना, इससे आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हो। इसीलिए आवश्यक है कि आप अपना एक दैनिक समय सारणी बनाएं, जिसको हम रूटीन भी बोलते हैं। आप लोग बनाते हो ना? हाँ, बिल्कुल। और उसी के अनुसार अपना कार्य करें। प्यारे बच्चों, समय का सदुपयोग केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें खेलकूद, रचनात्मक कार्य और परिवार के साथ समय बिताना भी शामिल है। यह बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए जरूरी है। इसलिए हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए और समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। जो बच्चे समय का सम्मान करते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं और वे अपने सपनों को साकार कर पाते हैं। तो बच्चों, आज से ही समय के महत्व को समझिए और उसका सही उपयोग कीजिए। याद रखिए, समय ही सफलता की चाबी है। समय का सही उपयोग करिए, समय पर सभी काम करिए और खुश रहिए। बच्चों, अब रजनी दीदी आप सभी को एक प्यारी सी छोटी सी कहानी सुनाने वाली है। तो आप लोग शांति से बैठ जाइए और रेडियो सेट के और भी करीब आइए। और कहानी का शीर्षक है चोर और खाली संदूक। गोनू झा की चतुराई पर आधारित है। बच्चों, मिथिलांचल में गोनू झा अपनी बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से उनके किस्से सुनने आते थे। कहते थे कि वे बिना लड़ाई झगड़े के अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी समस्या का समाधान करते थे। एक बार की बात है, गांव में लगातार चोरियां हो रही थी। एक रात एक चोर ने सोचा, गोनू झा बड़े बुद्धिमान है, उनके घर में अवश्य बहुत धन होगा, आज वही चोरी करूंगा। रात गहरी होने पर चोर चुपके से गोनू झा के घर में घुस गया।

लेकिन गोनू झा की नींद बहुत हल्की थी, उन्हें आहट मिल गई थी। उन्होंने समझ लिया कि घर में कोई चोर आया है। वे तुरंत उठे और उन्होंने एक युक्ति सोची। युक्ति में कोई बात उनके दिमाग में आ गया। उन्होंने अपनी पत्नी से जोर से कहा, सुनो आजकल गांव में बहुत चोरियां हो रही है। अच्छा हुआ कि मैंने अपना सारा धन उस पुरानी खाली संदूक में छिपा दिया है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब चोर यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, बस अब तो काम और भी आसान हो गया, और मन ही मन बहुत खुश हुआ। गोनू झा और उनकी पत्नी सोने का नाटक करने लगे। चोर धीरे धीरे से उस बड़े संदूक के पास पहुंचा। संदूक बहुत भारी था। उसने बड़े मुश्किल से उसे उठाया और घर से बाहर ले गया। वह उसे जंगल के किनारे ले जाकर खोलने लगा, लेकिन जैसे ही संदूक खुला उसके होश उड़ गए। उसने उसमें देखा कि धन दौलत नहीं बल्कि पत्थर ईंटे और मिट्टी भरी हुई थी। उसी समय पीछे से गोनू झा और गांव वालों के साथ वहां पहुंच गए। वे मुस्कुराकर बोले, अरे भाई हमारे घर का बेकार सामान इतना दूर लाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। गांव वाले चोर को पकड़कर हंसने लगे। चोर अपनी गलती पर शर्मिंदा हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, गोनू झा आपकी बुद्धि के आगे मेरी चालाकी हार गई। गोनू झा बोले, याद रखो मेहनत से कमाया हुआ धन ही सुख देता है, चोरी का धन कभी भी सुख नहीं देता। चोर ने उसी दिन से चोरी छोड़ने की कसम खाई और मेहनत मजदूरी करके ईमानदारी से जीवन बिताने लगा। तब से गांव में लोग बच्चों को यह कहानी सुनाकर समझाने लगे कि बुद्धिमानी सबसे बड़ी ताकत होती है। तो बच्चों इससे यही शिक्षा मिलती है कि बुद्धि और चतुराई से बिना हिंसा के भी बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। ईमानदारी का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है। तो बच्चों ये थी गोनू झा की एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा, है ना? आइए इस कहानी के बाद आपकी खुशी को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गाना।

प्यारे बच्चों, अच्छा लगा ना ये गाना। आइए अब समान ज्ञान में आज हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण के बारे में। प्यारे बच्चों, पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। हमारे चारों ओर मौजूद हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और सभी जीव जंतु मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। स्वच्छ और संतुलित पर्यावरण के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। इसलिए पर्यावरण का संरक्षण करना हम सभी का परम कर्तव्य है। आज बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण, जंगलों की कटाई और प्रदूषण के कारण पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण लगातार बढ़ रहे हैं। इसका प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य, पशु पक्षियों और प्राकृतिक संसाधनों पर भी पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा और प्राकृतिक आपदाएं भी पर्यावरण असंतुलन के परिणाम हैं। प्यारे बच्चों, पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, पानी और बिजली की बचत करनी चाहिए, जल स्रोतों को गंदा नहीं करना चाहिए तथा प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कतई नहीं करना चाहिए। अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना चाहिए और कचरे को सही स्थान पर डालना भी आवश्यक है। वर्षा जल का संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों का सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। हमें फ्यूल बचाना चाहिए, प्राकृतिक संसाधन को संरक्षित करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप लोग भी पर्यावरण संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पेड़ पौधे लगाकर, पानी बचाकर, स्वच्छता अपनाकर और दूसरों को जागरूक करके प्रकृति की रक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

अंत में यही कहा जा सकता है कि पर्यावरण की रक्षा करना केवल सरकार का ही नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। यदि हम आज पर्यावरण को बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और हरी भरी धरती मिलेगी। तो बच्चों, स्वच्छ पर्यावरण, स्वस्थ जीवन और पेड़ लगाएं, पर्यावरण बचाएं का संदेश हमें अपने जीवन में अपनाने चाहिए, है ना? अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें, इस तरह से पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। तो बच्चों, ये तो थी पर्यावरण संरक्षण पर हमारी छोटी सी बातचीत समान ज्ञान अंक में, आज इतना ही। फिर मिलेंगे अगले अंक में इसी समय, तब तक के लिए मुझे यानी अपनी रजनी दीदी को प्रस्तुतकर्ता असद दाऊद के साथ दीजिए इजाजत। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, खेलते कूदते रहिए और प्रकृति संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहिए। जय।

हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11 बज चुके हैं। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी।

शोर यूं ही नहीं परिंदों ने मचाया होगा, शोर यूं ही नहीं परिंदों ने मचाया होगा, कोई जंगल की तरफ शहर से आया होगा। पेड़ के काटने वालों को ये मालूम तो था, पेड़ के काटने वालों को ये मालूम तो था, जिस्म जल जाएंगे जब सर पे साया न होगा। आज इस बात में कोई भी शक नहीं कि जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के क्षरण, प्रदूषण, बाढ़ और जल संकट जैसी अनेक अभूतपूर्व प्राकृतिक आपदाओं की चुनौतियों से जूझ रही है, तब भारत में 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाने वाला वन महोत्सव सप्ताह केवल वृक्षारोपण का अभियान नहीं है, बल्कि एक पेड़ माँ के नाम के प्रेरक सूत्र के साथ पृथ्वी पर जीवन बचाने का राष्ट्रीय संकल्प बन चुका है। वास्तव में यदि वर्तमान समय की आवश्यकताओं को देखा जाए तो वन महोत्सव से बड़ा कोई उत्सव हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका संबंध केवल पर्यावरण से ही नहीं बल्कि मानव सभ्यता के भविष्य और उसके अस्तित्व से भी है। भारतीय परंपरा में वनों को देवतुल्य माना गया है। वे केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि पृथ्वी के फेफड़े, जैव विविधता के सबसे बड़े आश्रय, नदियों के संरक्षक, जलवायु संतुलन के प्रहरी तथा करोड़ों लोगों की आजीविका के आधार हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से ठीक पहले जुलाई 1947 में दिल्ली में चलाए गए व्यापक वृक्षारोपण अभियान ने वन महोत्सव की अवधारणा को जन्म दिया था, जिसे तत्कालीन केंद्रीय कृषि एवं खाद्य मंत्री कन्हैया

0: लाल माणिक लाल मुंशी ने 1950 में राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। जुलाई के प्रथम सप्ताह का चयन इसलिए किया गया इस महोत्सव के लिए क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान मिट्टी में पर्याप्त नमी होने से पौधों की जीवित रहने की संभावना सर्वाधिक रहती है। आज यह अभियान भारत के वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन का जीवंत प्रतीक बन चुका है। अब सवाल ये है कि क्या हम वन संरक्षण के महत्व से अवगत हैं भी या नहीं, और अगर अवगत हैं भी तो क्या इसमें हमारी जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती भी है या नहीं बनती है, क्या हम इन जिम्मेदारियों का निर्वहन कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये कि इन जिम्मेदारियों की अनदेखी हमारे अस्तित्व के लिए कितनी घातक है, क्या इसका तनिक भी भान हमें है भी या नहीं। कुछ इन्हीं बेहद महत्वपूर्ण तथ्यों पर केंद्रित है आज का हमारा ये कार्यक्रम जिसका नाम है हेलो जिंदगी। श्रोताओं नमस्कार, संजय की तरफ से। वन संरक्षण का महत्व और हमारी जिम्मेदारी, यही आज की हेलो जिंदगी का विषय और इस बेहद खास विषय पर चर्चा और आप श्रोताओं को जरूरी जानकारी और परामर्श देने के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं पर्यावरण विज्ञान के जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर मुकेश प्रसाद। श्रोताओं वन संरक्षण को लेकर आपके पास किसी भी तरह की कोई भी जिज्ञासा है तो आज आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए, हेलो जिंदगी में फ़ोन लगाइए, जुड़िए हमसे। फ़ोन नंबर हैं 9430029353 9430029353। हमारा दूसरा नंबर है बेसलाइन 0627222481 0627222481। श्रोताओं बेसलाइन पर अगर आप फ़ोन लगाएंगे तो ज़्यादा सुविधा होगी क्योंकि वॉइस क्वालिटी अच्छी होगी। बहरहाल ये दोनों नंबर अस्तित्व में हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि आज की हेलो जिंदगी का विषय है वन संरक्षण का महत्व और हमारी जिम्मेदारी। डॉक्टर मुकेश प्रसाद, आकाशवाणी दरभंगा के स्टूडियो में पहली बार आपका स्वागत, नमस्कार, कैसे हैं सर?
1: ठीक हूँ, नमस्कार संजय जी, और आपको श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार।
0: वन संरक्षण के महत्व को लेकर बहुत सारी बातें होंगी आज इस कार्यक्रम में, और साथ साथ वन संरक्षण के लिए, वनों को लगाने के लिए, वनों को कटने से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या जवाबदेही है, हमारी क्या जिम्मेदारी है, इस कार्यक्रम में हम उसकी चर्चा करेंगे। हमारे श्रोता भी जुड़ेंगे हमसे, अगर वो थोड़े से भी पर्यावरण से जुड़े हुए अपने को अनुभव करें और आने वाले समय में प्राकृतिक आपदाओं से बचने में वनों के योगदान को अगर वो याद कर रखना चाहते हैं तो आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। और जो लोग पेड़ लगाने को लेकर उत्सुक हैं, है ना, और जिन्हें तकलीफ होती है जब कोई पेड़ कटता है, तो वो भी, ऐसे लोग भी आज हमसे जुड़ सकते हैं, सवाल भी कर सकते हैं और अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं इस कार्यक्रम में। डॉक्टर मुकेश प्रसाद जी, बहुत सारी जिज्ञासा की बातें होंगी वन संरक्षण को लेकर और वन के महत्व को लेकर, इसके संरक्षण की क्या ज़रूरत है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, काम आदमी क्या कर सकता है, ये सारी चर्चा तो होगी, लेकिन जिज्ञासा ये भी है कि डॉक्टर मुकेश प्रसाद आज आकाशवाणी दरभंगा के स्टूडियो में पहली बार आए हैं, तो कहाँ के रहने वाले, कहाँ से आते हैं, और जहाँ तक का सफ़र आपने एक शिक्षाविद होने के नाते पूरा किया है, ये सफ़र कैसा रहा है, कहाँ पढ़ाई लिखाई, संक्षेप में बता दें जी।
1: मैं इसी मिथिला क्षेत्र से हूँ और मैं यहीं से हूँ, मेरी शुरुआती एजुकेशन तो यहीं हुई, बाद में हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली गए, दिल्ली विश्वविद्यालय से हमने आगे की पढ़ाई की, और उसके बाद सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट से हमने अलग अलग जो पर्यावरण में है हमने हायर एजुकेशन और रिसर्च किया है।
0: मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं आप?
1: मैं मधुबनी जिला का रहने वाला हूँ, मधुबनी जिला से, और उसके बाद अभी मैं कार्यरत हूँ मिथिला यूनिवर्सिटी में
0: जी। पर्यावरण को लेकर अगर हम वन की चर्चा करते हैं तो सहज सी जिज्ञासा जो है वो पर्यावरण पर चली जाती है, बहुत सारे सवाल आएंगे, हमारे श्रोता भी आपसे जुड़ेंगे, सवाल करेंगे, जिज्ञासा व्यक्त करेंगे। हाँ। जब हम वन बोलते हैं, फॉरेस्ट, तो ये क्या है?
1: देखिए, अगर हम एक आम

तरह से देखते हैं तो एक सिंपल जंगल या फॉरेस्ट या वन हमें कुछ पेड़ दिखाई देते हैं, लेकिन अगर हमें इसके टेक्निकल उसमें जाएं कि ये हमारे लिए एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जैसे किसी भी जीवन यापन करने के लिए हमें लाइफ के अलग अलग पहलू पे देखना पड़ता है, वैसी हवा पानी ये जंगल ही प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम इसे उस तरीके से नहीं देख पाते। तो इसके लिए क्या है कि वन हमारा शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और जो हमारे जीने के लिए

0: ये जंगल ही प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम इसे उस तरीके से नहीं देख पाते। तो इसके लिए क्या है कि वन हमारा शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और जो हमारे जीने के लिए उपजाऊ मिट्टी, ये सारी प्रोवाइड करता है, जिससे हमें अपना फूड फॉडर और शेल्टर, जो हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए होता है, सारी उत्पत्ति हमें वन से होती है। लेकिन साथ में ये भी देखा जाता है कि वन को हम इतना नेग्लेक्ट कर देते हैं कि उसका दोहन इतना तेजी से हो रहा है कि वो समय आ गया है जिसके बाद हमें मुड़के देखना पड़ेगा।
1: सही बात है। एक श्रोता जुड़ गए हैं, इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, आगे भी उनसे बात कर लें। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं। हेलो
2: नमस्कार सर।
1: जी नमस्कार। मोहन पासवान जी, बताइए क्या जिज्ञासा है आज इस कार्यक्रम में?
2: जिज्ञासा है सर जी, सर मनुष्य के लिए तो कई जिम्मेवारी है, जिसमें वन संरक्षण की जिम्मेवारी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें वन संरक्षण से लेकर के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय जीवन वास करता है और अपना जीवन बिताता है सर। तो मेरा कहने का मतलब है कि व्यक्ति, समाज, राज्य, देश के लोगों को इस तरह का जिम्मेवारी, अपना जिम्मेवारी निभाना चाहिए जिससे वन सुरक्षित हो। दूसरा है कि लोग मजबूरी बरसात पेड़ काटते हैं अर्थ उत्पादन के लिए, परिवार चलाने के लिए, पर पेड़ लगाने से असमर्थ हो जाते हैं, भूल जाते हैं। किस तरह से अधिक पेड़ लगाया जा सकता है एवं इसका संरक्षण किया जा सकता है सर। तीसरा है सर, जिम्मेदारी प्रखंड, जिला के अधिकारी पदाधिकारी पेड़ों का पौधा देकर मुफ्त या कम कीमत पर, तो बिहार और देश के मजदूर किसान इसे संरक्षण कर अपने जिम्मेवारी निभा सकते हैं। और है सर कि अनुकूल बारिश, अनुकूल धूप, अनुकूल उपज, अनुकूल स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए किस प्रतिकूल विचार और व्यवस्था को हटाना होगा सर।
1: चलिए, बहुत सारी बातें आ गई आपकी तरफ से मोहन पासवान जी, आप एक तरह से कार्यक्रम की भूमिका ही रख देते हैं। एक लगातार कई सवाल आप करते हैं, लेकिन सवाल बड़े अच्छे होते हैं, इस पर कोई दो मत नहीं है, और इन सवालों के लिए आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद भी करते हैं मोहन पासवान जी। सुनिएगा, कार्यक्रम में एक एक कर सारी चर्चा हम करेंगे, है ना। हम वहीं से बात लेते हैं जहाँ से आपने कहा कि हम तो पेड़ काटते हैं मजबूरी से, लेकिन उतने ही मनोयोग से पेड़ लगाते नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है, और इस तरह से आपने तो एक इस पूरे कार्यक्रम की नींव रख दी है। हम मजबूरी में पेड़ काटते हैं आपका कहना है, लेकिन उतने ही मनोयोग से पेड़ नहीं लगाते हैं, ये बहुत दीगर बात है। और सुनिएगा, सारे सवालों को हम एक एक कर शामिल करेंगे पूरे कार्यक्रम में। मोहन पासवान जी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका जी।
2: प्रणाम
1: प्रणाम प्रणाम। मोहन पासवान जी गुच्छे में सवाल करते हैं, एक दो सवाल नहीं करते हैं, सवाल करते करते बहुत सारे कर जाते हैं, लेकिन बड़े अच्छे सवाल होते हैं। और एक श्रोता हमारे फोन लाइन पर इस समय है।
0: जी
1: नमस्कार। हेलो जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
3: रघुनंदन सिंह।
1: रघुनंदन सिंह जी बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: हेलो
1: जी, रघुनंदन सिंह जी सुन रहे हैं हम आपको, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी बताइए क्या सवाल है, सवाल बताइए, सवाल बताइए रघुनंदन सिंह जी, सवाल बताइए
3: जी। हम रघुनंदन सिंह हैं, आपसे बात करना चाहते हैं वन संरक्षण पर, लेकिन आपका आवाज हमारे पास नहीं आ रहा है, या आता भी है तो क्या कहते हैं सो हम सुन नहीं पाते हैं।
1: आप सवाल कीजिए, आप अपनी जिज्ञासा व्यक्त कीजिए रघुनंदन जी।
3: सवाल करें?
1: जी हाँ जी हाँ बिल्कुल।
3: सवाल, पहले तो जितने भी आकाशवाणी के स्टाफ है, जो पदाधिकारी आए हैं, और आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम है।
1: जी प्रणाम।
3: सबसे बड़ी चीज है जो वन की कटाई जो हो रही है, तो खास करके 90% आज

0: का आजीविका उसी से है, लेकिन घर में खर्चा ज्यादा पड़ता है तो विवश हो करके या तो जमीन बेचते हैं या गाछ बेचते हैं। इस पर गाछ नहीं बेचने के लिए उनको तत्पर होना चाहिए। तो जब तक हमारी कम से कम मिनिमम आवश्यकता है उसकी पूर्ति जब तक बाहर से नहीं होगी तब तक वृक्ष की कटाई बंद नहीं होगी। कहने के लिए 100 करते हैं हम, दिन रात गांव में रहता है, पहली बात। दूसरा बात, जो अगर कोई गाछ लगाना चाहता है तो उसके लिए सरकार मुफ्त में गाछ दे।
1: अच्छा।
0: खरीद करके गाछ लगाना सबसे संभव नहीं है क्योंकि महंगाई बढ़ गई। यही तो मेरा पास है, सरकार
1: की तरफ से मुफ्त पेड़
0: चाहता है वो कहाँ जाए, इससे मिले जो उसको आवश्यकता अनुसार गाछ मिले। और इतनी ज्यादा अभाव है जो मजबूरन गाछ बेचना पड़ता है।
1: चलिए, बहुत अच्छी बातें, बहुत
0: क्या करना हो,
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही अच्छे सवाल आपने किए हैं और ज़रूरी सवाल भी है आज के दिन, इस पर सोचना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रघुनंदन सिंह जी। 90% आजीविका जो है वो पेड़ की कटाई से जुड़ा हुआ, ये मानते हैं कि ऐसा है। जमीन और पेड़ बेचना पड़ता है लोगों को, लेकिन हम पेड़ बेच देते हैं लेकिन पेड़ लगाते नहीं। और दूसरी बात ये कि अगर सरकार की तरफ से मुफ्त पेड़ दिए जाएं तो सहायता मिलेगी। सहायता तो मिल रही है सरकार से और पेड़ उपलब्ध भी हैं,
2: उपलब्ध कराए जा रहे हैं,
1: वन विभाग की तरफ से भी है और
2: मनरेगा के उसमें भी आता है कि आप कुछ योजनाएं लेके।
1: और साथ ही साथ ये भी बात है कि अगर अपने विभाग से, कृषि विभाग से अगर संपर्क करें, जिला में हर जिला में कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से संपर्क करें तो न सिर्फ पेड़ प्राप्त होंगे लगाने के लिए पौधे, बल्कि उसका संरक्षण वो कैसे करेंगे
2: उसकी
1: भी जानकारी दी जाती है। एक और श्रोता जुड़ गए हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, हेलो।
3: नमस्कार, मैं अरुण कुमार लाल दास सुंदरपुर बिहार दरभंगा से बोल रहा हूँ।
1: जी नमस्कार जी,
3: है ना, ध्यान पूर्वक सुना जाए।
1: अवश्य।
3: आज से कहीं एक हफ्ता पहले आपके लहरिया सराय के बगल में आई गांव के एक आदमी 94 साल की उम्र में अपना जन्मदिन मना रहे थे, उन्होंने 94 पेड़ लगाया।
1: अच्छा अच्छा जी।
3: उसका नाम राजिंदर लाल दास है।
1: जी जी जी।
3: मेरे कहने का मतलब है कि आप इस रेडियो के माध्यम से लोगों को ये संदेश दीजिए, अपना जन्मदिन मना रहे या विवाह का त्योहारी मना रहे तो जितने दिन के लिए मनाते हैं उतने पेड़ वो रोपे और रोप करके के पर्यावरण को और वन को मने बढ़ाने के लिए दिशा में काम करें। ये मेरा पहला सुझाव है
1: जी।
3: और दूसरा मेरा कहना यह है कि प्रशासन के द्वारा अभी यहाँ से ये बिलोंग करते हैं मुकेश बाबू, मधुबनी हो, दरभंगा हो, हर जगह जो है लगातार पेड़ों को काटा जा रहा है। जैसे दरभंगा के हम इससे पहले वाले प्रोग्राम में भी पर्यावरण प्रोग्राम जो आपका था उसमें भी मैंने प्रश्न किया था कि दरभंगा महाराज के द्वारा 52 बीघा में पेड़ रोपा गया था आम का, जो मैं हम लोग बचपन से देखते थे। अब एक भी पेड़ नहीं है। प्रशासन इसके लिए क्या कर रहा है, लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, इस पर कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी, ये मेरा कहना।
1: देखिए, एक सुझाव जो आया है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है, मुकेश जी क्या कहेंगे। और दूसरी बात, आपने दरभंगा महाराज द्वारा 52 बीघा में जो लगाया गया था, संभवतः कोठला के नाम से लोग जानते भी हैं उसे, और वहाँ भी पेड़ की कटाई हुई है, ये चिंता का विषय है, क्या कहेंगे आप?
2: कहीं पे भी अगर पेड़ की कटाई होती है तो उसे हमें देखना चाहिए कि कहाँ मिनिमम रोकना जाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि पेड़ हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और हमें प्रयास करना चाहिए कि कम से कम हो या ना के बराबर हो, तभी हमारा जीवन और हमारे जो ज़रूरतें हैं और साफ़ हवा, साफ़ पानी और साफ़ जल के लिए वो बनी रहेगी।
1: असल में अरुण कुमार लल्ला जी की मतलब चिंता ये है कि 52 बीघा जो रकबा है, उस रकबा में लगे हुए अधिकांश पेड़

0: जब काट लिए जाए, है ना, बस्ती बसाने के लिए, मकान बनाने के लिए या अन्य कार्यों के लिए, ये तो ज़रूरी है कि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो लोग ज़मीन को एक्वायर करेंगे, लेकिन पेड़ जो काटे गए उस एवज में क्या किया गया, ये इनकी चिंता का विषय हमें लग रहा है, क्योंकि हमने आगे आने वाले समय को नहीं देखा। दरभंगा महाराज ने देखा होगा, हमने नहीं देखा। अरुण जी यही पूछ रहे हैं,
1: कोई भी एक्टिविटी होती है उसके दोगुने या तिगुना अगर कहीं से हटाया गया तो कहीं लगाया भी जाता है, तो ये देखने वाली बात है कि कहाँ उससे ज़्यादा लगाया गया है। कंपनसेटरी फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर कहीं कटा है तो कहीं उससे दोगुना लगाया जाना चाहिए। और जो इनका एक दूसरा सवाल था कि हर जन्मदिन या हर एक त्यौहार के एनिवर्सरी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने एक सुझाव दिया है, सभी लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप पहले देखेंगे, पहले जनरेशन के लोग अपने आप ही जहाँ उनको जगह मिलती थी, फलदार हो या छायादार हो, वो पौधे लगाया थे, उनके जीवन का एक हिस्सा था कि इस तरह से लगाया जाए। तो ये एक बहुत ज़रूरी है आम लोगों के लिए, जो ये चाहते हैं कि हम कैसे अपने आप को कंट्रीब्यूट कर सके इस कठिन परिस्थिति में। तो मेरा कहना है कि हर एनिवर्सरी पे, जन्मदिन पे या दूसरे महत्वपूर्ण दिवस पे वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करें।
0: अरुण कुमार लाल दास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और फ़ोन लगाने के लिए भी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये चिंता तो है और जवाबदेही भी होनी चाहिए भाई। अगर मान लीजिए ज़मीन में मकान बनाने की समस्या है और उसके बगैर काम नहीं चलने वाले, पेड़ काटे जाएंगे तो पेड़ लगाए भी जाने चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा जो जगह है वो सिर्फ सीमेंट काम जंगल बना दे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए।
1: आमतौर पे ये होता है कि कहीं पे भी अगर इस तरह की आती है तो उससे एक दूसरी जगह उसके कंपनसेट करने के लिए लगाया जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और चाहे तो कैंपस में भी अगर जगह रखें, पेड़ लगाने के लिए जगह रखें, ये उसी तरह जरूरी है। नहीं तो जिस तरह से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, पैसा दे करके।
1: हाँ, ये बात आपने बिल्कुल उचित कहा, कई जगह इस तरह की समस्या,
0: हम ऑक्सीजन के सिलेंडर की जगह पेड़ लगाए। हाँ, ये
1: बहुत ज्यादा जरूरी है आज के।
0: दो श्रोता इस समय फोन लाइन पर है, मोबाइल लाइन पर जो हमारे श्रोता है उनसे हम कहेंगे थोड़ा सा इंतजार कर ले, इस समय जुड़ जाते हैं हम बेस लाइन पर। जी नमस्कार, हेलो।
2: नमस्कार सर
0: जी, नाम बताएं अपना।
2: महाकांत सिंह सर बोल रहा हूँ।
0: हाँ महाकांत सिंह जी, बताइए कैसे हैं?
2: बढ़िया सर।
0: हनुमानगढ़ राजस्थान से,
2: से
0: जी बताइए आज क्या जिज्ञासा है?
2: सर आज बहुत अच्छा विषय आपने रखा है
0: जी, विषय आपका है रखा हमने
2: बहुत बढ़िया। 11 सितंबर 1730 को जोधपुर जिला के खेजरी गांव में अमृता देवी के नेतृत्व में खेजरी के पेड़ को बचाने के लिए 363 आदमी शहीद हो गए सर।
0: सही बात है।
2: आज सरकार अकेले क्या करेगी जब तक इसको सर जनता, आपने तो सर इसको जनता के लिए जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए यह प्रोग्राम रखे हैं सर।
0: बिल्कुल,
2: हम तो अपने घर के बच्चे का जन्मदिन में भी पेड़ ही लगाते हैं राजस्थान में सर।
0: बहुत अच्छा करते हैं महाकांत सिंह जी, बहुत बढ़िया करते हैं।
2: और
0: बच्चों के बच्चों के जन्मदिन में लगाते होंगे तो आप
2: दरभंगा में कोई होगा।
0: महाकांत सिंह जी क्या कहा आपने?
2: मैं कहा पर्यावरण प्रेमी आपसे बड़ा कोई नहीं होगा दरभंगा।
0: नहीं, हम दरभंगा में ये चिंता तो भले हो सकती है आपकी चिंता हो, लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि हमारी परंपरा रही है पेड़ लगाने की। हमारे पूर्वज जो है ना वो इतने दूरदर्शी थे कि वो सिर्फ पेड़ नहीं लगाते थे महाकांत सिंह जी, वो पोखर खुदवाते थे, तालाब खुदवाते थे, वो कुआं खुदवाते थे ताकि लोग पानी सही ढंग से प्राप्त कर सकें, पी सकें। वो इतने मतलब परोपकारी, तो छोड़ दीजिए शब्द थोड़ा छोटा हो जाएगा, इतने दूरदर्शी थे वे, है ना। आज देख लीजिए हमने कितने तालाब भर दिए, हमारे पूर्वजों के खुदवाए हुए तालाब। आज अगर किसी को कहा जाए कि आप एक तालाब खुदवाइए तो पसीने छूट जाएंगे उनके, सोचेंगे कि इसमें 3 मकान बन जाएगा, 4 मकान बना लेंगे जमीन खरीद कर, लेकिन

0: कभी कोई पोखर या तालाब नहीं खुदवाएंगे सार्वजनिक रूप से सबों के लिए। तो हमारे पूर्वज इसी मिथिला की धरती के रहे हैं और इसी भारतीय परंपरा के निर्वाहक रहे हैं, है ना महाकाल सिंह जी। और बहुत अच्छा
1: रघुनंदन सिंह जी एक बात कहे, उनके बात से मैं सहमत हूँ
0: बिल्कुल,
1: कि अभाव में लोग पेड़ तो बेच रहे हैं, पूर्वज लगाए उसको हम बेच रहे हैं, जो बेच रहे हैं वो उसके बदले हम लगा नहीं रहे हैं।
0: देखिए पूर्वज ने पेड़ लगाए, हमने फल खाए, है ना, और पेड़ जब बेच देंगे तो हमारे बच्चे फल नहीं खाएंगे, ये भी हमें ही सोचना पड़ेगा। क्यों मुकेश
2: तो इसमें देखिए प्रकृति,
0: मुकेश जी बता रहे हैं आपको बेहतर जी,
2: इसमें जो प्रकृति हमें मिला है कि हमारे एज ए हम कस्टोडियन है, हम जो आने वाले जनरेशन है उसकी कस्टोडियन है, हम लोगों को इस तरह से देखना चाहिए कि ये हमें अपने पूर्वज से मिला है और हम जो बेहतर स्थिति में है वैसी आगे वाले जनरेशन अपने बच्चों को ये दे।
0: सही बात है, हमने पेड़ काटे तो पेड़ लगाए क्यों नहीं, पहली बात। दूसरी बात, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने, हमारे नाना ने, हमारे नानी ने, सबने पेड़ लगाए ताकि हमारे बच्चे हम खुद खाएं, और एक से एक पेड़ लगाते थे लोग, है ना, हर तरह के पेड़ लगाते थे और हम बड़े मनोयोग से खाते थे। जो लोग गांव में घर में नहीं रहते थे ना वो भी आते थे उन दिनों।
2: उन दिनों आम का तो बड़ा प्रचलित है कि वहाँ पे दूर दराज से भी लोग आते थे कि
0: एक, एक श्रोता और जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, हेलो हेलो,
3: नमस्ते सर
0: जी, नमस्ते, अपना नाम बताएं।
3: चंदेश्वर ब्रह्मपुर पूर्वी जालिम प्रखंड, मुकेश जी को, संजय जी को नमस्ते मेरी तरफ से।
0: नमस्ते हमारी तरफ से भी आपको चंदेश्वर जी। आपको बहुत देर तक लाइन पर रहना पड़ा, माफी चाहेंगे, बताइए
3: सर। जी महाकाल जी से बातचीत हो रहा था, सुन रहे थे, उनका भी बहुत अच्छे विचार है।
0: जी हाँ जी हाँ,
3: और हम भी यहाँ के जिले भी जब बीज ले जाकर के राजस्थान में क्या कहते रत्नगढ़ में छीट दिए हैं, अब होगा ना होगा ऊपर वाला जाने।
0: अच्छा अच्छा लेकिन चंदेश्वर जी ये जागरूकता के बीज जो आज हेलो जिंदगी में हम बिखरा रहे हैं हर जगह, है ना, ये जागरूकता कि पेड़ उगेंगे या ना उगेंगे ये चंदेश्वर जी आप पर डिपेंड करता है, ये आप पर निर्भर करता है कि आप हमारी बातों को किस तरह से लेते हैं, है ना। क्या जिज्ञासा है चंदेश्वर जी, व्यक्त कीजिए। मुकेश जी मुस्कुरा रहे हैं, सुन रहे हैं आपको, बताइए।
3: सबसे बड़ा ज्ञानी और धार्मिक आदमी वही होते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए पेड़ लगाते हैं।
0: सही
3: और
0: बात,
3: अभी के समय में एक भी पेड़ बाल बच्चे के लिए, चाहे हम अल्लाह दादा लगा के गया था, हमारा नाना लगा के गया था, ऐसा भी सब में ये वो नहीं मिलेगा सर।
0: सही
3: बात, अभी हम लोग भी अपने बच्चे के लिए 10 पेड़ लगा दिए हैं, लगा रहे हैं, बीच में आम का पेड़ भी हमें 2 लगाए हैं और हर पेड़ लगाए हुए हैं। ऐसी बात, हमारे पेड़ में जितने भी जगह सब तो हम पेड़ से भर दिए हैं।
0: सही,
3: लेकिन हर इंसान को भरना चाहिए अपने बच्चे लिए के लिए। अभी देखिए, अभी पूछिए दादा तुम्हारे लिए क्या लगाया, कुछ नहीं लगाया है। दादा पेड़ लगाया था तो पापा ने बेच दिया, पैसा के काम पड़ा तो बेच दिया, तो बच्चे के लिए रखा क्या पापा ने।
0: सही बात है,
3: और समाज के लिए कहीं से थक करके आते हैं, कोई चोर चाकर जितने भी बड़े बड़े पेड़ थे सबको काट करके आते बेच दिए हैं। इतनी आरा मिल हो गया है लेकिन उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आखिर आरा मिल में तो यही पेड़ों ने काट करके ले जाकर उसको लकड़ी किराई करता है, तख्ता बनाता है और भी कोई।
0: सही बात है, देखिए चंदेश्वर जी सूखे हुए पेड़ को काटने में तो कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन हरे हरे यही बात है, हरे पेड़ को नहीं काटना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपकी चिंता बहुत सही है, अगर हम नहीं लगाते हैं तो हमें काटने का हक नहीं है पेड़ों को, है ना। सही बात है, हम किसी को अगर सांसें नहीं दे पा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं, तो सबकी सांसें क्यों खींच रहे हैं भाई, है ना। सही बात है,
2: हाँ। तो इसमें जैसे चंद्रेश्वर जी ने कहा कि लोगों को एक जागरूकता, जैसे चंद्रेश्वर जी के एक जागरूक बन गए कि आप कैसे, तो वैसी तरह आप 2-4 लोगों को अवेयर करें। अगर आप लोग भी अवेयर करेंगे, जो और पहले से ही अवेयर है, जागरूक है, 2-4 को अगर जागरूक करेंगे कि उसका महत्व क्या है, तो वैसे ही धीरे धीरे धीरे लोगों को समझ आएगा कि हमें आने वाले अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए ये ज़रूरी है। और हम लोग तो कर ही रहे हैं और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं चंदेश्वर जी, बहुत
3: ऐसे मत करो, पेड़ लगाओ बाल बच्चे के लिए भी लगाओ, कहेगा दादाजी लगाया, नानाजी लगाया, तो उससे तुम्हारे परिवार का भी नाम चलता है, बच्चों को भी खुश होता है, समाज में भी सुखी।

0: होता है। और ये सब होना चाहिए। देखिए कोई पाक टूटी है तो पानी खोल दिया तो चल रहा है, कोई बंद करने वाला कोई नहीं है। अरे आने वाले समय में पिछले साल देखिए पानी रुक गया था तो कितना भी परेशान हो गया था, टैंकर से पानी गांव-गांव में आना शुरू हो गया था।
1: सही बात है।
0: ये सब पर आदमी को ध्यान, ये सब पर्यावरण का कमी के कारण होता है और हम लोग का सोच की कमी के कारण होता है।
1: चंदेश्वर जी इस कार्यक्रम में बने रहिएगा, सुनिएगा जरूर, क्योंकि अब जो हम चर्चा करने जा रहे हैं ना चंदेश्वर जी, वो यही करने जा रहे हैं कि वनों का जो महत्व है वो क्या है। और आपने जो कहा है कि पानी पानी जो है ना बिना वन के संभव भी नहीं है, है ना, कहीं अतिवृष्टि कहीं अनावृष्टि, कभी सूखा कभी बाढ़, ये समस्या है।
0: पूरा लास्ट तक सुनते हैं, कोई भी प्रोग्राम आपका जो पूरा लास्ट तक सुनते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका चंदेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से अपने सुनने वालों को बता दें कि आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र मीडियम वेव के 231.5 मीटर, साथ ही न्यूज ऑन AIR इस ऐप के माध्यम से भी आप हमें सुन पा रहे हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो जिंदगी। आज की हेलो जिंदगी का विषय है वन संरक्षण का महत्व और हमारी जिम्मेदारी। बतौर विशेषज्ञ आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं, उपस्थित हैं जाने माने पर्यावरण विज्ञान से जुड़े हुए शिक्षाविद, मारवाड़ी कॉलेज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश प्रसाद। डॉक्टर मुकेश प्रसाद से आप जुड़ सकते हैं फोन के माध्यम से, वन संरक्षण को लेकर कोई भी जिज्ञासा हो तो व्यक्त कर सकते हैं। नंबर हम बता देते हैं 9430029353009353। दूसरा नंबर है 0627222481, 0627222481। कार्यक्रम का समय 12 बजे तक का है, जुड़िएगा, कार्यक्रम सुनते रहिएगा। वन संरक्षण का महत्व और हमारी जिम्मेदारी, ये है आज की हेलो जिंदगी का विषय। डॉक्टर मुकेश प्रसाद जी एक और श्रोता जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, हेलो।
2: नमस्कार सर
1: जी, अपना नाम बताएं। नमस्कार
2: संजय हूँ। नमस्कार
1: जी। नमस्कार आपको भी हमारी तरफ से, मुकेश बाबू की तरफ से भी, बताइए अपना नाम बता दीजिए।
2: जी मैं दिनेश मिश्रा।
1: जी दिनेश मिश्रा जी बताइए। हाँ हाँ शिक्षक है आप, सेवानिवृत्त शिक्षक है, हालांकि सेवानिवृत्त में शिक्षकों को कभी बोलता नहीं हूँ। जी जी
3: नमस्कार
1: जी।
2: आपको विषय है सर
1: जी, हाँ
2: उसमें मेरा ये कहना है, इसको आलोचना नहीं समझे हैं।
1: बिल्कुल कहा जाए,
2: हम लोग मैथिल ब्राह्मण क्षत्रिय समाज से आते हैं।
1: जी
2: मैथिल ब्राह्मण क्षत्रिय समाज।
1: अच्छा
2: वो जो है हम लोग घर के आस पास आज से नहीं पुरातन जमाने से ही गंगा जारी रहता है चारों ओर। तो लोग कहता था, अगर बच्चे थे हम लोग बचपना में, लोग कहता था कि ये लोग क्या घर में रहेगा, घर के चारों ओर तो खाली जंगल ही जंगल रहता है।
1: अच्छा अच्छा जी।
2: तो उस दिन हंसी लगता था इस बात को, नहीं समझ पाते थे। लेकिन आज समझ में आ रहा है कि जंगल पूर्वज लोग क्यों लगाते थे।
1: जी
2: आज पूरा फिर वृक्षारोपण जंगल लगाओ अभियान चला है। जरूर कहीं न कहीं हम लोग के पूर्वज जो थे वो दूरगामी सोच के व्यक्ति थे।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: आने वाले समय में क्या होगा उसका दूरगामी सोच थे, दूरदर्शी थे। आज जो है जागरूकता है, पेड़ नहीं लगा रहे, सुन पेड़ लग भी रहा है
1: जी,
2: लेकिन कहीं कहीं ऐसा देख करके आसपास पद लगता है कि बड़े बड़े अधिकारी लोग जो है वो पेड़ लगाते हैं, छोटा सा ही पौधा क्यों लेकिन पेड़ लगाते हैं, और फोटो खींच करके मीडिया में देते हैं
1: जी,
2: लेकिन उस पेड़ का फिर क्या हुआ, पानी पड़ा कि नहीं पड़ा, गाछ मर गया या जिंदा है, उसको देखने वाले कोई नहीं होते हैं। तो क्या इसे
1: आपकी दिनेश दिनेश मिश्रा जी आपकी जिज्ञासा जो है दिनेश मिश्रा जी आपकी जिज्ञासा और चिंता दोनों बातें हमारी समझ में आ रही हैं। सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए और सोशल मीडिया में मीडिया पे पोस्ट करने के लिए अगर पौधरोपण कर रहे हैं तो वो सही नहीं है, ये आपका कहना है और ये आपकी चिंता भी है और सही

0: ही भी है ना। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि कम से कम पौधारोपण की जो बात सामने आती है तो लोगों में जिज्ञासा तो होती है ना कि पौधा रोपना तो जरूरी है, अगर वो भी ना हो तो वो हाँ बिल्कुल ये भी होना चाहिए, लेकिन पौधों का संरक्षण भी होना चाहिए ताकि वो पेड़ बन सके। बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं, और सिर्फ दिखाने के लिए दिखावे के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए।
1: हाँ
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर आप गुजरे उस जगह से जहाँ पर पेड़ लगाए गए हो और आपको सूखे हुए पेड़ दिखाई दे तो आपको हंसी जितनी नहीं आएगी दिनेश मिश्रा जी, उससे ज़्यादा दुख होगा, है ना। हाँ बिल्कुल सही बात है। और जो लोग तो ऐसे हमारे जो प्रतिनिधि लोग हैं समाज में, देश में, राज्य में, पूरे राष्ट्र में, जो पौधरोपण का कार्यक्रम करते हैं पूरे मनयोग से, वहाँ तक ये आवाज़ तो आपकी गई है कि उन्हें एक बार पलट कर देखने की भी ज़रूरत है। कभी कभी वो अपने पीए से कह दे, डायरी पे नोट कर लो भाई उस पेड़ की देखभाल हो रही कि नहीं, वो भी देखना है, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। कारखाने का शिलान्यास कर देने से काम नहीं चलने वाला है ना। उद्घाटन की भी ज़रूरत है, यानी पेड़ लगाए हैं तो उस पेड़ के फल को चखने की भी जहमत करे वो, ये बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा दिनेश मिश्रा जी आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।
2: जैसा कि अभी काफ़ी हमारे श्रोता लोगों का एक क्वेश्चन था कि आजीविका और दूसरे चीज़ों के लिए रहता है, तो उसमें क्या होते हैं कृषि वानिकी जो एक
0: कॉन्सेप्ट। एक बात मैं रखना चाह रहा था अपने डॉक्टर मुकेश प्रसाद कि अभाव में, आवश्यकता में, ज़रूरत के मुताबिक बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए हम पेड़ काट लेते हैं
2: जी।
0: लेकिन पेड़ को काटते समय हमारा कलेजा नहीं कांपता है ये सोच करके कि जिसे हम काट रहे हैं वो हमारे जीवन का हिस्सा है, हमारे जीवन की शर्त है।
2: सही बात है।
0: अगर हम वन के महत्व को समझेंगे तो पेड़ काटते समय हमारा कलेजा भी फटेगा और हाथ भी कांपेंगे।
2: बिल्कुल आपने सही बात कहा।
0: तो यही हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर पेड़ लगाने की जो बातें इतनी हो रही है और वन के कटने से जो दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, एक बार हम वनों के महत्व को समझ लें तो पेड़ काटने की जो दिक्कत है, पेड़ काटने की जो मंशा है, पेड़ काटने की जो व्यवस्था है, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी, पहली बात। और रोक लगे न लगे, आप काटें न काटें, अगली बार पेड़ लगाने के लिए उद्यत हो जाएं, ये भावना आप में आ जाए, तो इस कार्यक्रम में पेड़ों के महत्व को, वन के महत्व को हम आपके द्वारा, आपके माध्यम से जानना चाहते हैं। लेकिन हमारे श्रोता इस समय फोन लाइन पर आ गए हैं और श्रोताओं के लिए कार्यक्रम है, तो हम उनसे बात करते हैं। बेस लाइन पर भी हैं और फोन मोबाइल पर भी, पहले मोबाइल से जुड़ जाते हैं फिर बेस लाइन पर जुड़ेंगे। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं। हेलो, जी अपना नाम बताएं।
3: जी प्रणाम। सिमरिया भिंडी कल्याणपुर समस्तीपुर से बोल रहा हूँ।
0: जी अपना नाम बता दें एक बार फिर से।
3: राम कुमार शाह मेरा नाम हुआ।
0: हाँ राम कुमार शाह जी, कैसे हैं ये बताइए।
3: सिमरिया भिंडी जी, हाँ कृपा है आप लोगों के ऊपर वाले के।
0: चलिए बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से रहें। बताएं क्या जिज्ञासा है।
3: श्रीमान को और विषय विशेषज्ञ को मेरा प्रणाम।
2: प्रणाम आपको भी।
0: जी राम कुमार जी बताइए क्या जिज्ञासा है।
3: वृक्ष का संरक्षण और जिम्मेदारियाँ, सही ना है।
0: सही सही बात है जी। हाँ
3: मुझे याद है मैं प्राथमिक विद्यालय में जब पढ़ रहा था
0: जी,
3: तो उस समय एक शिक्षक नाम का बोल रहा हूँ
0: जी,
3: उनका कहना था कि देखो जिस दिन इस पृथ्वी पर से वृक्ष समाप्त हो जाएंगे मानव भी समाप्त हो जाएगा, है ना
0: जी, जी।
3: अब मैं अब देख रहा हूँ कि उनका जो कथन है वो एकदम पूर्णतः सत्य है। जैसे पृथ्वी ही एक ग्रह है जहाँ वायुमंडल है, जल मंडल है, भूमंडल है और इसके फलस्वरूप यहाँ जीव मंडल है।
0: सही बात है
3: जी श्रीमान।
0: बहुत बहुत हाँ, बड़े अच्छे विचार और बहुत अच्छी बातें आपने रखी कार्यक्रम में राम कुमार शाह जी, और आपकी जो चिंता है ना कि अगर वृक्ष समाप्त हो जाए तो मानव भी समाप्त हो जाएगा,

0: आपके शिक्षक,
1: जी
0: आपके
1: जी
0: प्राथमिक।
1: इसके श्रीमान, इसके साथ साथ एक ये अखंड ज्योति में मैंने पढ़ा था,
0: जी
1: इसमें कहा कि वराह पुराण जो है उसमें लिखा है कि एक पीपल है, एक नीम, एक बरगद, 10 फूल वाले वृक्ष, दो अनार, दो नारंगी या नींबू और 5 आम के वृक्षों को जो रोपण करते हैं वो नरक में नहीं जाते हैं।
0: देखिए, ये सारी चीजें हमारे मतलब परंपरा से आई हुई चीजें हैं। अथर्वेद में कहा गया है रामकुमार शाह जी के, रक्षाए प्रकृति पातु लोकाः, प्राणी मात्र के लिए प्रकृति की रक्षा करें। तो हमारी परंपरा में तो पूरी प्रकृति की ही रक्षा है, सिर्फ पेड़ पौधे की रक्षा की बात नहीं है। रहमन पानी राखिए, है ना, बिन पानी सब सून, इस तरह की बातें कही गई है ना। और एक बात, एक कदम आगे बढ़ के मुकेश प्रसाद जी, आपकी अनुमति हो तो हम कह दें कि आपने ही बोया था जमीन में बारूद, अब पूछते हैं आसमान को कोढ़ कैसे हुआ,
2: क्या बात है।
0: तो अगर चीजें हम ठीक से, हमारी प्रकृति को हम संभाल के नहीं रखेंगे, उसे बाहर मतलब बरकरार नहीं रखेंगे, तो अपने बरकरार रहने की प्रक्रिया भूल जाएं, ये तो बात तय है। बहुत बहुत धन्यवाद राम कुमार शाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: एक श्रोता बेस लाइन पर भी, उनसे भी लगे हाथ बात कर लें। जी नमस्कार, हेलो।
3: नमस्कार संजय भाई, मुकेश सर को भी नमस्कार।
2: नमस्कार
0: जी, बताइए क्या जिज्ञासा है, पहले नाम बता दीजिए अपना।
3: किशुन कुमार मंडल, मुंबई से बोल रहा हूँ।
0: हाँ किशुन कुमार मंडल जी, बताइए क्या जिज्ञासा है। डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा से जुड़ जाएंगे। बहुत सारी बातें वही आई हैं, उन्होंने कहा कि वृक्ष समाप्त तो मानव समाप्त है। आखिर वृक्ष का महत्व है क्या, वन का महत्व क्यों है, और ये कैसे कार्य करता है ताकि हम जीवित रहें, हमें प्राण वायु हमें मिले।
2: जैसे आपने वृक्ष के महत्व कहा, उससे पहले ये कह रहा हूँ कि मानव हम ये समझ रहे हैं कि वृक्ष सिर्फ हमारे लिए हैं। इस पे देखिए कि और जीव जंतु भी डिपेंड रहता है, लेकिन हमने हमारे पास हम पिरामिड के सबसे ऊपर है, तो हम ये सोचते हैं कि वृक्ष सिर्फ हमारे लिए है, और जीव जंतु भी है और जानवर भी है, उसके लिए भी वृक्ष उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे लिए है, तो उसके बारे में हम अभी नहीं सोचते। तो जैसा आपने कहा कि इम्पोर्टेंस, देखो आप वन को हम किस तरह देखते हैं, हमारी ज़रूरत के हिसाब से देखते हैं कि हमें लकड़ी की ज़रूरत है, हमें कहीं कुछ ज़रूरत है, हमें
0: ऑक्सीजन की ज़रूरत है।
2: हाँ, लेकिन लोग इस तरह नहीं देखते कि हमारे जीवन यापन के लिए जो हवा, पानी और जल और भूमि चाहिए, उसके लिए भी वृक्ष उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर हमें पानी चाहिए, शुद्ध पानी, तो जहाँ वृक्ष होगा वो अपने आप ही जल का स्रोत बनेगा और अपने ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा, जहाँ नहीं तो बह के बाहर चला जाएगा।
0: सही बात,
2: तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरा क्या, उपजाऊ भूमि, अगर जहाँ पे है आपने देखा उसके पत्ते या उसके होता है, तो उससे ज़्यादा हमें खेतों में जाता है, तो उससे खेतों की उपजाऊ भूमि बढ़ती है, तो वो भी हमारे उपजाऊ भूमि के लिए ज़रूरत है, अदर वरना वो पूरा अनुपजाऊ हो जाएगा। दूसरा क्या है कि आप उसके अलावा साफ हवा, जो सभी लोग जानते हैं, तो जो हमारे जिंदगी के लिए जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो तो हमें वृक्ष से मिल जाती है। तो ये हमें समझने की बात है, वृक्ष सिर्फ एक पेड़ या लकड़ी नहीं माने, उसको ये मनाए कि पूरा एक इकोसिस्टम है, एक पूरे वातावरण को वो अपने में समाये रखता है।
0: सही बात, एक श्रोता जुड़े हुए इसमें फोन लाइन पर
2: जी,
0: ऐसा ना हो कि उनका फोन डिस्कनेक्ट हो जाए,
2: ले लिया जाए,
0: आपकी बात को बीच में काटने की आवश्यकता तो हमें महसूस नहीं होती, लेकिन श्रोताओं के लिए जरूरी है कि वो हमसे जुड़े और अपनी जिज्ञासा भी व्यक्त करें। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं। हेलो
3: नमस्कार सर, मेरा फोन कट गया, किशुन कुमार मंडल ही बोल रहा
0: हूं। हाँ किशुन कुमार मंडल जी, बेस लाइन पर फोन डिस्कनेक्ट हो गया था आपका जी, बताइए क्या जिज्ञासा है।
3: वही सर, गांव में गए थे, बेलपत्र के घाट में रोका, मैं बोला ऐसा दिन फिर लगा हूँ जो धार्मिक भी हो और आदमी को ऑक्सीजन भी दे, इसके लिए अच्छा लगा, कितने उन्नति में हो रहा है, उसके क्या करना पड़े।
0: अच्छा, बेल के पेड़ मतलब ठीक से बढ़ नहीं रहा है ना, या फल नहीं रहा है, ये आप कहना चाह रहे हैं, है ना किशुन कुमार मंडल। हाँ किशुन कुमार मंडल जी, ये थोड़ा टेक्निकल इशू है, क्योंकि इसमें आपके बेल के पेड़ में जो मिनरल्स चाहिए, जो चीज़ें चाहिए, क्या मिल रही है नहीं मिल रही है, ये तो एक जो कृषि कार्य से जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं वो बता पाएंगे बेहतर, है ना। लेकिन जो

0: गांव घर में लोग जो है ना वो आपको बेहतर बता देंगे कि अगर पेड़ में पेड़ अगर ठीक से अगर नहीं बढ़ रहा हो तो उसके जड़ को देखना पड़ेगा, जड़ की मजबूती को देखनी होगी, ये बात तो तय है, है ना। तो एक कार्यक्रम हम फल वृक्षों को लेकर भी कार्यक्रम करते रहते हैं किशुन कुमार मंडल जी, है ना। हाँ, कई बार हमने आम के ऊपर, जामुन के ऊपर, लीची के ऊपर भी कार्यक्रम किए हैं, तो इस तरह के कार्यक्रम का इंतजार करें। तो उस समय हम जो वृक्ष फल वृक्ष के जो विशेषज्ञ होंगे ना उनसे आप मशवरा ले सकते हैं, लेकिन इतना तय माने कि अगर आपने बेल का पेड़ लगाया है तो अच्छा कार्य किया है, और दोनों स्थिति में लगाया है, बेल का शरबत गर्मी के दिनों में है ना, पेट को भी ठंडा करता है, दिमाग को भी ठंडा करता है
1: और बेल का पेड़ पर्यावरण को भी
0: बिल्कुल
1: सही बात है।
0: बाबा भोलेनाथ पर बेल पत्र,
1: उसकी भी जरूरत है।
0: तो ये सारी चीजें हैं, और प्रकृति को ऑक्सीजन। तो आपने अच्छा कार्य किया है और अच्छे अच्छे पेड़ लगाए किशुन कुमार मंडल जी, हम यही चाहेंगे। और मौके के मुताबिक हेलो जिंदगी में हम फल वृक्षों के विशेषज्ञ को भी बुलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका किशुन कुमार मंडल जी। तो पेड़ों की आवश्यकता है, वन की आवश्यकता है, लेकिन एक दो बातें इसमें आती हैं। डॉक्टर मुकेश प्रसाद, आज तो कार्यक्रम में हमने कभी सोचा नहीं था भाई कि वन संरक्षण पर कार्यक्रम हो और इतने श्रोता हमसे जुड़ेंगे। हमने सोचा था कि जुड़ेंगे लेकिन जिज्ञासु ही जुड़ेंगे, लेकिन अब तो बहुत सारे लोग जिज्ञासु हैं भाई। सुन लेते हैं ये कौन है। जी नमस्कार, हेलो हेलो जी नमस्कार, अपना नाम
2: जी,
0: नाम बताएं अपना।
2: मेरा नाम हो गया मोहम्मद मुस्तफ़ा, जामा मस्जिद के पीछे से बोल रहे हैं।
0: जी मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब।
2: जी जी, और जो है एक कम्प्लेंट आपके साथ है कि हेलो आकाशवाणी में जो है नाइट बजे जुमा और सोमवार को जो आप चलाते हैं उसमें हमेशा दूसरी दीदी बताता रहता है करीब तीन महीने।
0: अच्छा मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब, ठीक है, उसके लिए तो हम माफ़ी चाहेंगे, लेकिन ये ज़रूरी है कि एक साथ बहुत सारे लोग फ़ोन लगाते हैं तो बिजी मिलता होगा। बहरहाल आज कार्यक्रम में क्या जिज्ञासा है, रेडियो की आवाज़ बंद कर देंगे तो हम आपको ठीक से सुन पाएंगे।
2: अच्छा, दूसरा बात ये भाई जो है सो फूल का गाछ जो है तो सूख रहा है, अमरूद में फल होता है लेकिन भीतर में दृष्टि जो है खराब हो जाता है।
0: हम कार्यक्रम करेंगे फूल के पेड़ और फलों के पेड़ पर, जो हमारे विशेषज्ञ आएंगे कार्यक्रम में तो उसका इंतज़ार करिएगा मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब, हम उस पर भी कार्यक्रम करेंगे, ठीक है ना। कभी कभी कुछ बीमारियां लग जाती है पेड़ों में, कभी किस तरह की बीमारी है ये उसके विशेषज्ञ बताएंगे, कभी जड़ों में कीड़े लग जाते हैं उस वजह से भी दिक्कतें पेश आती हैं तो आपको वो बता पाएंगे। आज के लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन वन संरक्षण को लेकर यह कार्यक्रम है तो उस पर अगर कोई विचार होते हैं आपके तो अच्छा था, लेकिन कोई बात नहीं है, आप इंतज़ार करें, कोई उस तरह के कार्यक्रम में ज़रूर फ़ोन लगाइएगा आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। जी मैं सुन नहीं पाया। हाँ ठीक है, समझ गया, सोमवार और शुक्रवार को फोन आपका नहीं लग पा रहा है तो उसकी शिकायत या उसकी चिंता आप इस कार्यक्रम पे व्यक्त कर, समय तो ले लिया आपने उतना, जितने हम इस विषय पर चर्चा कर लेते माफ़ी चाहेंगे मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब से, और बाकी श्रोताओं को भी बताएंगे कि इस कार्यक्रम में इस कार्यक्रम से जुड़े हुए विषय की ही चर्चा करें तो समय का सदुपयोग हो पाएगा, अन्यथा समय बर्बाद हो जाता है। लाइन फोन लाइन तो मतलब हमेशा खुले रहते हैं। एक और श्रोता जुड़ गए हैं। जी नमस्कार, हेलो
3: जी नमस्कार सर, मेरा नाम रमन कुमार है।
0: रमन कुमार
3: जी, जगदलपुर गाँव बहादुरपुर प्रखंड जिला दरभंगा से बोल रहे हैं।
0: जी रमन कुमार जी, क्या जिज्ञासा है बताइए।
3: सर हम विशेषज्ञ सर जो है उनसे हम पूछना चाहते हैं कि जो गंगा माता का जो तट है उसके दोनों तरफ जो उसका किनारा होता है क्या उसके तरफ वृक्ष सरकार के द्वारा या फिर लोग के द्वारा लगाया जा सकता है जिससे कि आकस्मिक बाढ़
0: बहुत बढ़िया सवाल है। सिर्फ गंगा ही नहीं बाकी नदियां भी हैं जिसके दोनों तरफ, लेकिन दोनों तरफ आप वृक्ष क्या लगाएंगे जब सरकार की तरफ से बांध बना दिए गए ऊंचे ऊंचे लेकिन उन बांधों पर भी अगर पेड़ पौधे लगाए जाए तो मिट्टी का

0: खनन कम होगा। मुकेश प्रसाद जी बेहतर बताएंगे आपको।
1: इसमें सरकार की तरफ से कार्य योजना पे कार्य चल रहा है, जिसमें दोनों तरफ का जो वृक्षारोपण कार्य भी चल रहा है, और वन विभाग और जो लोकल प्रशासन है वो उससे आप संपर्क कीजिए तो आपको बता देंगे कौन से प्रजाति के लगाया जाए, तो आप भी लगा सकते हैं। उसके लिए कार्य योजना कई स्तर पे वो किया जा रहा है।
0: इनका कहना है कि नदियों के दोनों तरफ जो क्षरण मिट्टी का होता है, उससे कई बार नदियां दिशा बदल लेती हैं। क्या पेड़ लगाने से क्या उसे रोका जा सकता है, ये मूल सवाल है इनका।
1: हाँ, तो मैं इसका संक्षिप्त देता हूँ। जो ये क्षरण का है, जो मिट्टी क्षरण हुआ, तो कोई भी पेड़ लगाएंगे तो प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन बशर्ते कि नेटिव होना चाहिए, उस जगह का होना चाहिए। इसके लिए वहाँ पे जो लोकल है उससे संपर्क करके कि कौन सी स्पीसीज लगाया जाए, कौन सी प्रजाति का लगाया जाए, वो सुनिश्चित किया जाए कि सही प्रजाति का उस जगह लगाया जाए, ताकि मिट्टी का क्षरण रोका जाए।
0: बिल्कुल, मतलब जड़ जो है ना, पेड़ के जो जड़ हैं वो मिट्टी को अच्छे से पकड़े, ये पहली बात है। और ये बात सिर्फ नदी के तट पर ही नहीं है, ये हर जगह है, और खासकर उस जगह जहाँ पेड़ पहाड़ हैं। आज पहाड़ पे जो बादल फटने के बाद जो दुर्गति हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रमन कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। तो पेड़ पहाड़ खिसकने की घटनाएं बहुत हो रही है, और उसमें अभी तो कुछ साल पहले ऐसी त्रासदी आई थी उत्तराखंड में, जिसके बारे में हमारे श्रोताओं को पता ही होगा।
1: उस टाइम वहाँ पे था, देहरादून में ही था।
0: अच्छा, अच्छा।
1: और मैं बीच में देखा भी उस स्थिति को, भयावह स्थिति,
0: बहुत भयावह
1: जी।
0: धीरे धीरे पेड़ कटते हैं पहाड़ों पर, और पहाड़ों पर लोग मकान बना रहे हैं, होटल्स बना रहे हैं, नदियों के दोनों तरफ जो स्थिति है वो उस वजह से भी बहुत फर्क पड़ा है। और पेड़ों के कटने से जो त्रासदी है लोग समझ नहीं पाते हैं।
1: देखिए, जैसा इसी से क्वेश्चन है कि लोगों ने पेड़ को सिर्फ, मैं दोबारा यही कह रहा हूँ कि लोग पेड़ को सिर्फ ये समझते हैं कि हमारी ज़रूरत की चीज़ें, ये अभी ज़रूरत है वो पूरा कर लेते हैं, और मेनली हमारे जब लकड़ी या पैसों की ज़रूरत होती है हम उसे काट देते हैं। लेकिन जो वो पेड़, एक पेड़ पूरा एक इकोसिस्टम होता है, वो हवा, मिट्टी और जलवायु सभी को परिवर्तन रखता है। और स्पेशली आपने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो लैंडस्लाइड, मडस्लाइड, ये सारे जो दिक्कत आती है, जिसके एक बड़े स्तर का पहाड़ खिसक जाता है या पूरा मिट्टी खिसक जाती है, क्योंकि वहाँ पे पेड़ों का लगाना बहुत ज़रूरी है और वो बांधे रखती है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है वहाँ के लिए।
0: सही बात है। सतीश सिंह की एक कविता है पेड़।
1: जी
0: मुकेश प्रसाद जी, फूलों को मत तोड़ो, छिन जाएगी मेरी ममता, हरियाली को मत हरो, हो जाएंगे मेरे चेहरे स्याह, मेरी बाहों को मत काटो, बन जाऊंगा मैं अपंग, कहने दो बाबा को नीम तले कथा कहानी, झूलने दो अमराई में बच्चों का झूला, मत छांटो मेरे सपने, मेरी खुशियां लुट जाएंगी।
1: अरे वाह, उन्होंने अपने वेदना, और जो एक पेड़ बोल नहीं पाता उसकी वेदना को शब्दों में व्यक्त करना, ये उसका एक उदाहरण है। जिस तरह अगर आप सोचें कि अगर कोई पेड़ बोल पाता, अपनी व्यथा कह पाता, तो इनके शब्द यही होते।
0: पहाड़ के लिए उन्होंने लिखा, चाहता था मैं जीना, स्वच्छंद थी महत्वाकांक्षाएं मेरी भी, पर मुझे किसी ने कर दिया निर्वस्त्र, तब से चल रहा है सिलसिला यह अनवरत, और इस तरह होते जा रहे हैं मेरे जीवन के रंग बदरंग। पहाड़ों के जीवन के रंग बदरंग नहीं हुए हैं मुकेश प्रसाद जी, बदरंग तो हमारा जीवन हो रहा है। सही बात,
1: ये बात सही है।
0: क्योंकि अगर नदियों की बात उन्होंने की तो उन्होंने लिखा है कि हजार हजार दुख उठाकर जन्म लिया है मैंने, नदी कह रही है, हजार हजार दुख उठाकर जन्म लिया है मैंने, फिर भी औरों की तरह मेरी सांसों की डोर भी कच्चे महीन धागे से बंधी है, लेकिन इसे कौन समझाए इंसान को, लेकिन इसे कौन समझाए इस इंसान को जिसने बना दिया है मुझे एक कूड़ादान। कारखानों के अवशिष्ट,
1: सही बात,
0: घर के अवशिष्ट, नालों के पानी, नदियों में निर्विरोध अनवरत दिए जा रहे हैं, और हमारे पूर्वज जिन नदियों के पानी पिया करते थे,

0: अमृत समझते हुए आज वो गंदे हो गए, इतने गंदे।
1: अब इसमें लोगों की ये देखिए कि लोग पेड़ पौधे और चीजें देखने के लिए अपनी जगह से जहाँ अभी है वहां चले जाते हैं। आपने ये देखा होगा कि गर्मी हुई थोड़ी, लोग पहाड़ों में घूमने चले गए, जबकि वो उस एरिया को हरियाली कर सकते हैं। हरियाली स्वभाव में है मानव का कि हरियाली में रहे, उनको अच्छा लगता है, उनका जो अभिव्यक्ति होती है हरियाली में बेहतर होती है। आप कहीं भी देखें कि थोड़ी सी गर्मी पड़ी तो हम कहते हैं कि हम पहाड़ों में चले जाते हैं, कोई ऐसी जगह चले जाते हैं जो वहाँ पे नेचुरल रहे, हवा रहे, पानी रहे, जंगल रहे, हरा भरा रहे। लेकिन जो आपकी जगह है उसको उस तरह का बनाने की कोशिश हम नहीं कर रहे हैं। ये मानव प्रवृत्ति में है कि हम एक अच्छी जगह रहे जहाँ पे हरियाली हो, जहाँ साफ हवा हो, पानी हो, लेकिन जिस जगह हम रहते हैं उसको छोड़ के उस जगह चले जाते हैं जो अभी उस तरह का नहीं बना, उसको भी वैसी बना देते हैं।
0: आप, सही बात है।
1: अब अगर देखेंगे लोग भर भर के ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ कम लोग रहते हैं, जहाँ पे उस तरह का अभी नहीं हुआ है पर्यावरण की दृष्टि से, जहाँ पेड़ लगे हुए हैं, जहाँ नदी बह रही है, जहाँ सब फ्रेश है, लोग हर जगह, क्योंकि लोगों में प्रवृत्ति ये है। तो हम ये चाहते
0: लेकिन
1: हैं कि
0: ये जो प्रवृत्ति है वो कहाँ जाके रुकेगी? वो वहाँ जाके रुकेगी जहाँ लोग जो जिस जगह को देखने जाते हैं ना, कुछ सालों के बाद वो जगह देखने लायक रह नहीं जाती है।
1: ये
0: स्थिति है, क्योंकि वहाँ पहाड़ खिसकते हैं, वहाँ त्रासदी आती है, वहाँ गलत ढंग से बनाए हुए मकान ढह जाते हैं और सड़कें नेस्त नाबूद हो जाती हैं, और जो जो मंशा लेकर हम उस जगह को देखने जाते हैं वहाँ का भयावह मंजर अपने आंखों में समेट के वापस आते हैं।
1: क्योंकि उस जगह की जो चीज़ें हैं इतने लोगों के लिए नहीं बनी है, वहाँ जो लोग रहते हैं वो बहुत कम लगते हैं, और एक साथ इतने सारे चलेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो
0: दूसरी बात मुकेश प्रसाद जी, जहाँ जनसंख्या बढ़ जाएगी ना वहाँ पेड़ कटेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। हरियाली के पास आप अधिक संख्या में चले जाएं, है ना, हम जाएंगे भ्रमण करने के लिए पर्यटन के हिसाब से, तो वहाँ तो होटल बनेंगे ना हमारे रहने के लिए, हमारे लिए सुविधाओं के लिए लोग आएंगे, रोजगार ढूंढेंगे, संख्या बढ़ेगी वहाँ, और जो ऑक्सीजन तलाशते हुए वहाँ हम जाएंगे वहाँ ऑक्सीजन हमें मिलेगी नहीं आने वाले समय में, ये तो दिक्कत है, पेड़ लगेंगे नहीं। अच्छा, एक बात और मुकेश प्रसाद जी, इस कार्यक्रम में करना बहुत ज़रूरी है, कुछ विशेषज्ञों की राय है कि वन जो है ना, फॉरेस्ट, जंगल हमसे लेते कुछ नहीं है, वो सिर्फ हमसे ये कहते हैं कि आपको लगाने की क्या जरूरत है, पेड़ आप हमें छोड़ देना, हम खुद लगा लेते हैं।
1: हाँ, ये आपने सही बात है, इसे रिजेनरेशन, नेचुरल रिजेनरेशन कहते हैं। जैसे आपका एक पेड़ है, उसके बीज गिरते हैं, अगर आप उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना करें, उसके आसपास ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना करें, तो वो अपने आप ही रिजनरेट करके एक नया पौधा बना देता है, वो जो बाद में वृक्ष का रूप ले लेता है। ये तो नेचर का अपने आप ही फिनोमेना है, अपने आप ही अपने आप को हील करता है, बशर्ते कि आप उसे सुरक्षित रखें, छोड़ दें। लेकिन क्या होता है कि जब एक पेड़ भी एक जगह नहीं बचता तो उसके सीड कहाँ से बनेंगे, उसके बीज कहाँ से बनेंगे, उसके बीज नहीं बनेंगे तो उसके पेड़ कहाँ से होंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि ध्यान में रखना कि अगर हम कम से कम लगा नहीं सकते तो काटने और सुरक्षित रखने में ज्यादा रखें, कि अगर एक छोटा पेड़ है तो उसे ये रखें कि उसको सुरक्षित रखा जाए।
0: सही बात है, और पेड़ लगाएं ये जरूरी तो बहुत है, क्यों लगाएं ये बात अगर समझ में आ गई हो लोगों को तो आज हमारे कार्यक्रम का मकसद पूरा हो जाएगा। लेकिन एक बात और भी है, बात यह है कि सिर्फ नारों से बात नहीं बनने वाली है।
1: बिल्कुल,
0: है ना, कि एक ये जो वन महोत्सव सप्ताह चल रहा है 1 से 7 जुलाई, हम शुभकामनाएं देते हैं जो लोग इस मुहिम में लगे हुए हैं और निरंतर कार्य कर रहे हैं,
1: बिल्कुल,
0: पेड़ लगाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, वैसे लोग जो प्रेरित होकर पेड़ लगा भी रहे हैं, लेकिन पेड़ का संरक्षण भी करने की जरूरत है। जैसा कि हमारे एक श्रोता ने कहा था कि हम पेड़ लगाते हैं और फोटो खिंचवा लेते हैं, सोशल मीडिया पे डाल लेते हैं, वाहवाही आ जाती है, लाइक्स आ जाते हैं, शेयर कर दिए जाते हैं, और बाद में मालूम पड़ता है कि कुछ दिनों के बाद वो पेड़ लगाए हुए पेड़ सूख गया।
1: इसमें मैं एक कहना चाहूँगा कि पेड़ को एक बच्चे की तरह देखना चाहिए। अगर आपने जिम्मेदारी दी है, अगर एक बच्चे को आपने दिखाया कि हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है, तो जब तक वो अपने ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं रह जाता, जब वो लग नहीं जाता कम्प्लीटली, तब तक हमें ये देखना चाहिए कि ये हमारे बच्चे की तरह है और हमें इसको सुरक्षा प्रदान करना हमारी जिम्मेदारी है।
0: सही बात है।

0: वन महोत्सव चल रहा है आज, हेलो आकाशवाणी में, हेलो जिंदगी में कार्यक्रम में हेलो आकाशवाणी की चर्चा आ जाती है तो फिर वही बात आ जाती है। हेलो जिंदगी में आज हमने बहुत ही चर्चा की है वन संरक्षण को लेकर, उसके महत्व को लेकर, और साथ साथ हमारी जो जवाबदेही है, हमारी जो जिम्मेदारी है उसको लेकर। चलते चलते डॉक्टर मुकेश प्रसाद, इस मुहिम में लगे हुए लोग, चाहे वो घर में पेड़ लगा रहे हों, अपने बराम मतलब घर के दायरे में लगा रहे हों, अपने खेत में लगा रहे हों, जहां उनकी ज़मीन है वहां लगा रहे हों, और कुछ ऐसी जगहों पर जो सरकारी ज़मीन है वहां भी लगा रहे हों, और ऐसी जगह का चयन कर रहे हों जहां पेड़ नहीं है और वहां लगा रहे हों, या लगाने को लेकर लोगों को प्रेरित जागरूक कर रहे हों, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देंगे?
1: मेरा ये संदेश होता है कि वो सिर्फ मानव के लिए बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, राष्ट्र सेवा तो कर ही रहे हैं, पूरी मानव प्रजाति के लिए एक बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। सिर्फ मानव ही क्यों, सभी जीव जंतु का जीने का अधिकार इस पृथ्वी पे दिया है और इस पृथ्वी पे सभी को रहने का अधिकार है। तो मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद करूँगा जो जागरूक कर रहे हैं, जो पेड़ लगा रहे हैं और आगे भी जागरूक करते रहेंगे। वो सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं, तो उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा।
0: तो ये कहते हुए हम आपसे विदा लेते हैं कि महावीर उत्तरांचली के कुछ दोहे हैं, शुद्ध नहीं आबो हवा, दूषित है आकाश, सभ्य आदमी कर रहा स्वयं सृष्टि का नाश, ओजोन परत गल रही प्रगति बनी अभिशाप, वक्त अभी है चेतिए पछताएंगे आप। तो पछताना न पड़े हमारे हमारी आने वाली पीढ़ी को, ये संदेश देते हुए आज के दिन ये बताते हुए श्रोताओं हम आपसे आज्ञा चाहेंगे कि आज की हेलो जिंदगी का विषय था वन संरक्षण का महत्व और हमारी जिम्मेदारी। बतौर विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर पर्यावरण विज्ञान विभाग, मारवाड़ी कॉलेज, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा, आपने हमें समय दिया, हमारे श्रोताओं के लिए समय निकाला और इतने गूढ़ विषय पर अपनी विशेषज्ञ दृष्टि डाली इस कार्यक्रम में, आपके प्रति हमारा आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपको भी संजय जी और आपको श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं मिलेंगे अगले रविवार को इसी कार्यक्रम में, इसी समय दिन में 11 बजे। तब तक के लिए कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मितेश कुमार मिश्रा, संयोजक असद दाऊद के साथ मुझे संजय को अनुमति दीजिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। वन महोत्सव सप्ताह के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: ये था हमारा साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अगली प्रस्तुति सखी बहन।
2: सखी बहन,
3: नमस्कार। कार्यक्रम सखी बहिनक संग हम छी माला झा। आई एच दिन रेब जाय दिन धियापुता के विद्यालय संबंधी काज सँ त छुट्टी भेट जाइत अछि, मुदा आन बहुतो काज बढ़ि सेहो जाइत अछि। ओ सबटा काजक मध्य न्यूज ऑन एयर एप के माध्यमे वा रेडियो सेट पर सखी बहिन सब लेल विविध रंग में सजल कार्यक्रमक आनंद अवश्य ली, जाहिमे गीत संगीतक संग समसामयिक चर्चा, सुनर लगवाक किछु टिप्स, स्वास्थ्य रक्षा,

भानस भात आ आजुक कनिया सँ सुनब मनतब। तैं जुड़ल रही हमर संग सखी बहिन। एहि मध्य जखन ककरोसँ हालचाल पूछै छी तऽ सबसे पहिने गर्मी के गप करै छी कि अहाँ दिस कते गर्मी अछि, मानसून आयल कि नहि, कतौ समयसँ पहिने बरखा तऽ कतौ बेर पर सेहो नहि। अपने दिस देखी बरखा एक अछार कहियो कि आबि जाइत अछि, कनि मोन आ शरीरमे शीतलता आयल आ फेर चल गेल। ओहिना फेर भीषण गर्मीक प्रकोप, पृथ्वीके मौसमके जे चक्र चलैत अछि ओहिमे असंतुलनके स्थितिमे एहि तरहक समस्याक सामना करऽ पड़ि रहल अछि। जलवायु परिवर्तन, जेना बेर पर बरखा नहि भेनाइ, बेसीतर लू जेहन स्थिति उत्पन्न केने अछि। मात्र अपने सबटा नहि, मालजाल, पशु पक्षी, गाछ वृक्ष, नदी पोखरि सब एहिसँ प्रभावित अछि। मनुखके सबसे बेसी विवेकशील प्राणी बनाओल गेल अछि आ मानल जाइतो अछि, मुदा अपन प्यार पर कुल्हाड़ि मारब सैह तऽ भऽ गेल ने। हमही सब प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपे एकर कारण छी। प्रकृति के महत्व, पर्यावरण संतुलन, सबक सम्मान केनाइ मनुख के परम कर्तव्य थिक। आ जँ एहिसँ भागब तऽ धरतीक ताप कतेक बढ़ि रहल अछि देखिए रहल छी अपने लोकनि। अपना ओहिठाम के तऽ गप सब एक दूसरा सँ बुझि जाइ छी, मुदा जँ यूरोपीय देशक, पश्चिमी देशक गप सुनब तऽ आश्चर्य लागत। जतय तापमान ततेक कम रहैत छल जे पंखा केओ नहि रखैत छल, ओकर काजे नहि होइत छल, ओतो एहि बेर ततेक तापमान बढ़ि गेल अछि जे की कही, अपने सब जकाँ पर्यावरण भऽ गेल। एहि सबसे इएह बुझना जाइत अछि जे प्रकृति संकेत दऽ रहल अछि, सचेत कऽ रहल अछि जे आबो धरतीक रक्षा सब मिल करी, गाछ वृक्ष लगाबी, पानिके नदी पोखरिके दूषित नहि हुअ दी। कोनो योजना ताबत धरि काज नहि करत जा धरि हमरा लोकनि अपन व्यवहारमे अंतर नहि आनब, अपन दिनचर्यामे अनुशासन नहि आनब। सखी बहिन, जखन कतौ भोज भातमे जाइ छी तऽ आवश्यकतासँ बड्ड बेसी भोजन बनि जाइत अछि। जाड़ मासमे तऽ कोनो कोनो चीज भोरमे खायल जाइतो अछि, मुदा अखुनका बेरमे की कयल जाय। अखन तऽ विवाह दान वा कोनो सुअवसर पर नीकसँ ख्याल सेहो नहि जाइत अछि, मुदा एहि मध्य गीत सुनैमे मोन बड्ड लगैत अछि। तऽ सुनै छी एहने सन एकटा गीत।

0: सुन रहल छलहुँ अखन अपने लोकन ई गीत। गर्मी हुए वा बरखा, गीत सुनैमे कखनो मोन लागि जाइत अछि। एहन गर्मी आ तखन कोनो काज करतेवतामे जो हमरा लोकनि भारी भरकम साड़ी पहिर लै छी, गहना पहिर लै छी, सोचिए कि अनछज लागत। गर्मी मासक करतेवतामे भारी साड़ी जरीवला कोनो साड़ीसँ बेसी नीक होइत अछि जे आरामदेहवला कोनो साड़ी पहिरी। जेना हल्लुक सिफोन साड़ी पहिर सकै छी, लिनन साड़ी पहिर सकै छी आ सूती आ ताँ तक साड़ी पहिर सकै छी। आप रुचि भोजन आ पर रुचि श्रृंगार, एहिठाम तऽ रुचिके की करी गप। देहमे आराम तऽ लगबाक चाही, कतेक सखीके तऽ शरीरमे घमौरी नोचनी जेहन त्वचा रोग सेहो भऽ जाइ छनि आ कतेक एलर्जी सेहो भऽ जाइ छनि। तैँ विवाह हुए वा कोनो सुअवसर जे शरीर आ मोनके आराम दिए, व्यक्तित्वक शोभा बढ़ाबे वैह परिधानक चयन करी। हमसब धियापुताके नेनपनीसँ किछु किछु सिखबैत छियनि। कतेक बेर तऽ बच्चा सने अपनो बच्चा बनि जाइ छी, जे बच्चामे अनुकरण करबाक क्षमता बड्ड बेसी होइत अछि ई तऽ जनिते छी। आदत सेहो कहि सकै छी, जेकर सम्पर्कमे ओ बेसी काल रहैत छथि प्रायः हुनके अनुकरण ओसब करैत छथि। तैँ सखी बहिन, एहिठाम अपनो लोकनिके सचर रहबाक अछि। माँ हेबाक कारणे शिक्षिका आ घर प्रथम पाठशाला। घर परिवार आ माता पिता बड्ड प्रभावित करैत अछि कोनो बच्चाके। एहि विषयपर एकटा कनिया दऽ रहल छथि अपन मन्तव्य, तऽ सुनै छी हुनकेसँ।
1: नमस्कार, हम भारती कुमारी। हम सब सखी बहिनके नमस्कार करैत छी। हम सम्प्रति लक्ष्मी सागरमे रहै छी। एकटा गप सत्य थिक जे बच्चा तऽ बच्चा होइत अछि, बच्चाके विकास एकटा सतत प्रक्रिया थिक। गर्भाधानसँ लऽ कऽ मृत्यु पर्यन्त धरि सब प्राणीके जीवन अछि। ओ अपन कर्म आ परिवेशक अनुरूप जीवन यापन करैत छथि। ओना तऽ शारीरिक विकास निरन्तर होइत अछि, मुदा एक सीमाके बाद ओ रुकि सेहो जाइत अछि। शारीरिक क्रियामे निरन्तर विकास होइत रहैत अछि। एहि क्रियाके अन्तर्गत मानसिक, भाषाक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास अबैत अछि। एकर विकास विभिन्न आयु स्तरपर भिन्न भिन्न प्रकारक होइत अछि। यह आयु स्तर मानव विकासक अवस्था कहबैत अछि। भारतक मनीषी लोकनि मानवक विकासक अवस्था 7 टा बतेने छथि, जाहिमे गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था आ वृद्धावस्था होइत अछि। जन्मसँ 6 वर्ष धरि जे अवस्था होइत अछि से शैशवावस्था कहबैत अछि। एहिमे जन्मसँ 3 वर्ष धरि बच्चामे शारीरिक आ मानसिक विकास बड़ तेज गतिसँ होइत अछि। बच्चा लोकनिमे नीक आदतक विकास करब ओकर भविष्यक लेल बड़ महत्वपूर्ण होइत अछि। एतय किछु तरीका हम बतबैत छी जाहिके माध्यमसँ बच्चामे नीक आदतक विकास कयल जा सकैत अछि। जाहिमे सबसँ पहिने हम कहब जे बच्चा हमरा अहाँके देखि कऽ सीखैत अछि। एहि लेल नीक आदतक पालन हमरा लोकनिके करबाक चाही आ बच्चाके समक्ष प्रस्तुत करबाक चाही। दोसर हमर विचार अछि जे बच्चामे नियमितता बनल रहबाक चाही। बच्चाके लगातार रूपसँ नीक आदतक पालन करैक लेल हमसब हुनका प्रोत्साहित जरूर करी। तेसर विचार अछि जे बच्चा लोकनिके नीक आदतक महत्वके लेल सेहो हुनका बुझाबी आ हमरा लोकनिके चर्चा अवश्य करबाक चाही। ओना तऽ सबटा गप महत्वपूर्ण अवश्य अछि, मुदा

0: जँ समय के दिस ध्यान नहि देल जाय तँ सबटा बेकार भऽ सकैत अछि। एहि लेल बच्चा मे नीक आदतक विकास करबा लेल उचित समय पर हमसब प्रयास शुरू करी। बच्चा लोकनि मे नीक आदतक विकास होबय मे समय लगैत अछि, एहि लेल हमरा सबके धैर्य सेहो राखय पड़त। बच्चा सबके छोट मोट जवाबदेही सेहो देबाक चाही, जाहिसँ हुनका नीक आदतक विकास करबामे मददगार साबित हेतनि। संगहि संग हुनक प्रशंसा सेहो हेबाक चाही आ प्रेरित सेहो करबाक चाही। एकर अलावे किछु आर नीक आदतक विकास सेहो प्रारंभसँ कयल जा सकैत अछि, जेना समय पर सुतब आ जागब, नियमित रूपसँ पठन पाठन कार्य करब, वर्तमान परिप्रेक्ष्यमे स्वच्छता पर विशेष ध्यान देब। एकर अलावे एकटा मुख्य गप ई थिक जे सच बाजी आ ईमानदार रही, संगहि संग आन गोटे सबके सम्मान सेहो करथि। यदि एहि प्रकारसँ नीक आदतक विकास बच्चा लोकनिमे आरम्भसँ कयल जाय तँ ओ निश्चित रूपसँ महान बनि सकैत छथि।
1: सुनि रहल छलहुँ आजुक कन्यासँ हुनक मन्तव्य। सखी बहिन, छोट बच्चा माटिक काँच घैल जकाँ आ हमसब कुम्हार जकाँ नेनपनेसँ जेहन बनाबऽ चाहब बनेबाक चेष्टा करिते छी। बहुतो गोटे सफल होइत छथि आ किछु गोटेके अपन बच्चा लेल टोल पड़ोससँ उलाहना सुनऽ पड़ैत छनि जे ओ अपन बच्चाके ठीकसँ नहि रखैत छथि। आब जेना कखनो कऽ बच्चा आम तोड़ि लैत अछि, हुनका ठामसँ लताम तोड़ि लैत अछि आ ओहि लेल पाथर सेहो फेंकैत अछि बच्चा, किनको चोट सेहो लागि जाइत छनि। तऽ किनको किशोर वर्गक बच्चा बाइक चलबैत छथि, ताहू परसँ एहन तरहे जेना कोनो साँप दौड़ैत अछि, जँ बचिके रहलहुँ तऽ जान बचल आ नहि तँ की हैत से नहि जानि। तैँ जा धरि ओ वयस्क नहि भऽ जाइत, लाइसेंस नहि भेट जानि, ता धरि गाड़ी नहि चलबऽ दियनि। पैघ भेलापर यातायातक नियम बुझाबी। हुनकर सबटा माँगके बिना सोचने विचारने पूरा नहि कऽ ली, विशेषके कोनो मोबाइल वा आन तकनीकक वस्तुके समुचित उपयोग करबाक लुरि सेहो सिखाबी। रातिमे अकारणे बाहर नहि रहैत, तकर ध्यान अपनो सबके रखबाक अछि। बेर रहैत जँ नहि बुझेबन तँ बादमे कतबो सिखेबन बाते नहि मानत बच्चा, तखन माथ पीठके कोन लाभ। एहि मध्य कखनो एक अछार बरखा आबि जाइत अछि तँ कखनो ठनका खसि पड़ैत अछि। देखतो छी आ समाचारमे सुनितो छी जे कतेक नुकसान पहुँचौलक अछि। बुझले हैत सखी बहिन जे बरखा काल हवा बड्ड तेजीसँ ऊपर नीचा होइत अछि, जाहिसँ मेघक छोट छोट बर्फक कण आपसमे टकराइत अछि, जाहिसँ ऊपरी हिस्समे धनात्मक चार्ज आ निचला हिस्समे ऋणात्मक चार्ज जमा भऽ जाइत अछि। जखन नीचा ऋणात्मक चार्ज बड्ड बेसी भऽ जाइत अछि तँ धरती पर गाछ वृक्ष, पैघ पैघ मकान आ मनुखक ऊपर धनात्मक चार्ज जमा हुअ लगैत अछि। आ जखन मेघ आ धरतीक मध्य ई चार्ज असंतुलित भऽ जाइत अछि तँ बड्ड पैघ आगिक चिंगारी जकाँ बिजली बड्ड तेजीसँ धरती दिस अबैत अछि। एहन बिजली सतत हवाक ओहि दिशासँ भऽ के जाइत अछि जतय ओकरा कमसँ कम बाधा भेटै। आ यह कारण थिक जे बेसी पैघ मकान, बेसी पैघ गाछ वृक्ष वा खुजल ठाम केकरो पर पड़ि जाइत अछि। एहनमे बचाव कोना करी? जँ ठनका कखनो बुझना पड़ै जे आबि रहल अछि तँ तुरंत कोनो पकिया मकानमे चल जाइ, कखनो गाछ तर नहि ठाढ़ रही आ न बैसी। जखन खुजल मैदानमे छी आ बचऽ लेल लग पास कतौ घर नहि देखा रहल अछि, एहनमे अपन प्यारके आपसमे सटाके माथके दुनू ठेहुनके मध्य जोड़ झुकिके बैस जाइ, जमीन पर कखनो नहि पड़ी। तँ मौसम सम्बन्धी समाचार रेडियो पर वा समाचार पत्र वा सोशल साइट्स पर देखैत रही। आ बड्ड आवश्यक काज नहि रहै तँ ओहन बेरमे बाहर न अपने

निकली आने के क्रोजादी जान त जहान एतवे ने खेत पर कतेक काज करे वाला किसान बंधु सब रहे छथि, पशुपालक बंधु आ और तरहक छोट पैघ क्षेत्र में खुजल ठाम काज करे वाला श्रमिक वर्ग अपन बचावक पूरा ध्यान राखत। एकरो ध्यान रखबाक काज त सखी बहिन के भ जाय छनि। आ हाँ, जखन बेर नीक रहे कखनो हल्लुक फुहार कखनो हरियाली त गीतक आनंद अवसली आ गुनगुनेबो करी।

0: राखी बहिन, आब किछु भानस भातक गप कऽ ली, नहि तऽ कोनो आओर गप लेल ऊर्जा नहि बचत। आइ हम केरा कोसाक तरकारी बनायब। सामग्रीमे चाही केराक कोसा, अल्लू, करू तेल, चाउरक आटा वा बेसनके प्रयोग कऽ सकै छी, घी, जीर, सौंस गरम मसाला, आद, काँच मिर्चाइ, नून, हरदि, धनी जीरक बुकनी, मिर्चाइ बुकनी आओर जे मसाला प्रयोग अपना सब करै छी जे भानसमे रहैत अछि ओ सब चीज। एकर अलावा चाही टमाटर, तेजपात आ धनी पात। सबसे पहिने केरा कोसा के छिलका आ फूल ओकर निकालि ली। सबसे अंदर ओकर रंग बदलैत रहैत अछि, ओकरा धो के पातर पातर काटि लिया। ओहिमे आवश्यकता अनुसार चाउरक आटा वा बेसन के आटा दऽ सकै छी। हरदि, नून, हींग, आद मिर्चाइ, धनी पात के छोट छोट टुकड़ी काटि के सबटा मिला दियो। ओकरा सानि ली। पानि एक रत्ती दै के काज, बेसी नहि देबाक। आब करू तेल के आगि पर खूब गरम कऽ लिया, आँच के कम कऽ दियौ आ टिकिया के 4-5 एक बेर में दऽ के ओकरा छानि लिया, तैर लिया, ओकर बाद ओकरा हटा लिया। आब जकना अल्लू ओहिमे देबाक अछि तऽ अल्लू के सेहो तैर ली। टमाटर आ बाकी जे मसाला के गप केने रही ओ बेराबेरी के सबटा मसाला दऽ के कनी काल ओकरा भुजि ली। भुजि लेला के बाद ओहिमे कनी झोर दऽ दी। एक बेर पहिने कनी कम झोर देबै, ओकर बाद ओहिमे धीरे धीरे कऽ के और देल जा सकैत अछि, जेहन अहाँके नीक लागे मोट वा पातर देल जा सकैत अछि। जखन खूब नीक जकाँ ई सब बरक जाय, ओकर बाद ओहिमे जे टिकिया अपना सब तैर के रखने छी ओ टिकिया ओहिमे मिला देबै। तकर बाद 4-5 देरमे ई बरकलाके बाद ई तैयार भऽ जायत। अलग से ओकरा कनी घी, जीर आ जेना छोट अणाची दऽ के अपना सब ओकरा छौंक सकै छी। उतारलाके बाद धनी पात काटि के जे दऽ देबै तऽ खूब नीक लागत। एहि तरहें अल्लू आ केरा कोसा के ई तरकारी बनि जायत। ई गरम गरम भात सने जे खायब सखी बहिन तऽ खूब नीक लागत। तऽ आब सौन्दर्य रक्षाके सेहो किछु चर्चा कऽ ली, किएक तऽ जखन अपना सब बैसै छी तऽ कनी कनी सब विषयमे चर्चा करै छी। तऽ सौन्दर्यमे स्वस्थ केश सेहो बड्ड महत्व रखैत अछि आ कतेक रुपया सेहो एहि लेल अपना सब खर्च करै छी। तऽ आब ओतेक खर्च करबाक नहि काज केश लेल, किछु घरेलू उपचारसँ केशमे निखार आनक आइ प्रयास करब। सामग्री चाही मेथीके दाना 3-4 चम्मच, ओकरा फुलाके राति भरि जेना फुला लै छी भोरमे ओकरा पीस ली। आब ओहि पीसल मेथी दानामे दही 2 चम्मच, एलोवेरा जेल 1-2 चम्मच, ई तीनों चीज के मिला के पेस्ट बना लिया। ई पेस्ट के पूरा केस में लगा लिया, गौहे गौह नीक से लगायब। खूब नीक जका मसाजक संग लगेलाक बाद 40-45 छोड़ देब। ओकर बाद पानि से धो लेब। केस सुखेलाक बाद कतेक नीक लागत से अपने सब अनुमान लगायब जखन ई प्रयोग कऽ के देखब। सखी बहिन, कार्यक्रमक प्रति कोनो प्रतिक्रिया, सुझाव कहबाक हुए तऽ पत्रक माध्यमसँ अवश्य पठाबी। कार्यक्रम सखी बहिन द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा 8460004 वा मेल करी akashvanidarbhanga@gmail.com पर। और बहुत चर्चा के संग अगला रवि दिन अपने लोकन सुनब कार्यक्रम सखी बहिन। ताधर दी आज्ञा, नमस्कार।
1: सखी बहिन,
2: ये था बहनों को संबोधित कार्यक्रम सखी बहिन। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

आकाशवाणी दरभंगा से अब लीजिए सुनिए मैथिली नाटक गुरुआइन। इसके लेखक हैं फूलचंद्र झा प्रवीण।

0: करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं
1: सदा
0: वसन्तं हृदयारविन्दे भवन भवान
1: भरि दिन पूजा पूजा पूजा
2: की भेल
1: कपार भेल छौरा के कोन हकर मिला गेलिए से नहीं जाए भरि दिन बफाय काटत रहिए आ बाप केहन छथिन जे एको बेर
2: हाय रे बाप एकरा किया एना ठुनकबै छिए
1: हे हम अहाँ के गोर लगै छी की करू फाट के मर जाओ की एक भोर जे उठलो से दस बजे राति धरि परेशान भेल रह यौ एको बेर मुँह गेनाइत अछि जे लाओ कोनो काज कऽ दै छी
2: अरे पुरुषक जे काज हेतै सह न हम कह देब आ कि स्त्रीगण वाला काज हम ही कह दी
1: देखियो रे जाकर अपना अगल बगल में केहन केहन बड़का हाकिम सब छथिन जे रोटी बेलो से लऽ कऽ आ नुआ धरि खींच दै छथिन आ एकटा अहाँ छी एह होइ छनि जेना अमले ओछ भऽ जेतनि ई तऽ हमर कपारक दुख
2: हे राति दिन ई रामा खटोला हमरा नीक नहीं लगैए अखन कोन बड़का बात भेलैये जे अहाँ एना नेप चुआबऽ लगलहुँ

0: हे हम बेर बेर अहाँ के कहे छी जे हमरा से मुँह जुन लगाओ आ हे एने कर लियो अपन जनमल के अकर उगनी मेरा
1: एहन तो लोक नहीं देखलो महान चंडालनी पाला पड़ गेल मुदा करब की दोसर तो कोनो उपायो नहीं है लक्ष्मी लक्ष्मी अहाँ सरपो हमर भाग्य लक्ष्मी छी
0: अंगोरा छी धड़कल छी चूल्हा के छाव छी जाओ जाओ हम कत से एलू भाग्य लक्ष्मी से रहितो हमर यह दुर्दशा रहित
1: हे देखू बच्चा सुत रहल एकरा अपना लग सुता लिया आ बाजू ने जे अहाँ के की कष्ट है हम सबटा दूर कर देव
0: लो जाओ अपन बच्चा के आ लुट्टी पसाही लागो अहाँ के कमाई में हमरा ऐसे कौन लेना देना नहीं जैन कौन जन्मक अदला कर्म के ने छलो जे अहाँ सब लोग सियूत छुलक
1: आखिर कोनो गप फरछा का बाजा तखन ने बुझबे हम तो सोझ लोग छी आ सोझ बात बुझे छी
0: आहा आहा यो अहाँ का अतरी तो 72 हाथक है अहाँ के तो हम ही ता चिन्हे छी दोसर के चिन्हक अहाँ संग चंडाल कसाई आ निर्दय लोग ऐ दुनिया में कतौ नहीं छे
1: अहाँ के की कष्ट है से बुझब तखन ने
0: हमर कष्ट बुझब
1: हैं हाँ हाँ बाजू ने
0: अच्छा ऐ मासक दरमाहा जे उठेलिए से की केलिए
1: ओ आप बुझलिए तकरे ई सब नाटक भ रहल छे ने
0: ऐ यो सब त पर गाम पठा देलिए आ कहे छे जे तकरे ई नाटक हे नाटक तखन शुरूए भेल है
1: हे अच्छा है नहीं भूख लगी रुपया तो हिना रखले छे अरे क्यों गाम जा

0: कला हेतै तखन ओकरा द्वारा पठेबै।
1: एहि मासमे गाम रुपैया नहि जेतै।
0: से कोना हेतै? गाम पर माँ बाबूजी कतौ सँ की करथिन?
1: से अपन जतौ सँ जे करथुन, मुदा कहि देलहुँ हैं गाम रुपैया नहि जेतै, नहि जेतै।
0: अहाँक माथा ठीक है कि नहि? कहू तऽ, ओ बुढ़वा बुढ़िया ककरा लग जाकर हाथ पसारतै?
1: बड़ माय बाप भला भेला है। कहलकै कि जे लोक सब शहर में जमीन किनैया, घर बनबैया, अहिनका गाँव में भागल जाय छै। हमरा घर में एकटा टीवी नहीं, फ्रिज नहीं, जो लोग जे डेरा पर आबैया तो लाजे काठ भ जाय छी।
0: लक्ष्मी, अखन देर अहाँ के भगवान ज्ञान नहीं देलन, लोक धिया पुताक लेल रने बने बौआत अछि, कारण जे बुढ़ारीक लाठी बनत, ताहि धिया पुताक ई काज जे अपने सब परिवार इलवाइश करे आ माँ बाप कष्ट भोगे।
1: तब जाओ ने, जे फुराया से करू, हमरा तो बुझले अछि हमरा लेल एहि घर में क्यों नहीं।
0: अहाँ तो हमरा माथा खराब कर के राख दे। अरे लोग सुनत तो की कहत, जे केहन लोग सब हमरा एहि मोहल्ला में चल आयल है, जे कखनो शांति नहीं रही है, तकर सबक कोनो विचार नहीं।
1: हे कहत नहीं, अपना तो कोनो विचारे नहीं छन। आ
0: चुप, एक बेर जब मुंह से आवाज निकाल लूं तो बहुत बेजाय बात भ जाए, बुझलिए? हे लियो रुपया, आप जे मन फराय से कहो।

0: दिल में तो कोनोहना पार लागल, नवादा वाली कन्या थोड़क मरवा देने रहथिन, मुदा आब की करबैक।
1: देखियो ने केहन समय साल खराब भ गेलै है, जे जमीनो नहीं केओ भरना लेबो चाहै छै, आ जँ ककरो एक अति मोनो डोले छै तो चासक जे सबसे नीक जमीन से मंगेत अछि।
0: तो की करबैक, आश्रमी खेत तो नहीं भरना लगा, किछ सात करोटा खेत बेच लिया, यह न छोटका छोरा बिलेट जेते, ओइ बाबू के की लगतन, कमाई छत मौज करे छत।
1: सर, आश्चर्य ही दुनिया है, ये हमरा नहीं आशा छल जे मनोज सन बेटा एहन भ जात, कुन धरानिये ओकरा पढ़ेलहुँ लिखेलहुँ, मन में छल जे कमायत खटायत सब दुख दूर भ जात, पर हाय रे विधाताक विडम्बना, सब कल्पनाक शीश महल समयक झंझावात में चकना चूर भ गेल।
0: हाँ, अइमे ओकर कोनो दुख नहीं छै, सबटा अहीं के कयल अछि, हम कहने रही ने ओहि छोट लोक सभक ओहिठाम बेटाक विवाह नहीं करू, मुदा हमर की सुनैया, टाका देलक एक ढाकी आ लोभे कऽ लेलहुँ।
1: ई गप अहाँ सत्ते कहै छी, जावत ओकर विवाह नहीं भेल रहे कि 7 दिन पर नहीं तो 15 दिन पर अवश्य गाम अबै छल, गाम घरक सब लोक से गप सप रखै छल, हे दरमाहा जे किछ भेटो, मुदा हमरा लोकनिक खर्च जोगर टाका तो अवश्य पठा दे छल। परंच जहिया
0: हम कहैत रही ना ओहि गाम विवाह नहीं करब, ताहो में ओहि सब घरक बेटी छिया छिया।
1: हाँ, ये गप तो सबटा ठीके कहै छी, मुदा लोक की ई सब जाने छलै, विवाहो जन्म मरणस्य यदा यत्र भविष्यति।
0: हम ई सब नहीं बुझे छियै, सबटा अहाँ अगर जीत जेका केलहुँ तकरे ही फल अछि।
1: तै ने हमरे सबटा भोगऽ पड़ि रहल है, नहीं तो जेकर बेटा कमुआ रहते से बाप ए अवस्था में दू सेर अन्न आ दूटा टका के लेल दरवज्जे दरवज्जे भटकैत रहते।
0: देखू, हम ई आहे माहे नहीं सुनऽ चाहैत छी, ओ अपन निमेरा तो करिए कि ना, हमरे सब लेल ने ओकरा पाई छैक, ई संपत्ति तो ओकर अर्जनू थिकैक,

0: अहाँ जमीन बेच कर कन्यादान कर लिया, कारण समर्थ बेटी मातृ को गरने अछि, घरक खर्ची से हो चला, तखन कनिये छोटका छौरा ले हुई है जे ई कोना पढ़ते लिखते, समयो साल एहने छै कतो नौकरियो चाकरी हेते कि नहीं हेते।
1: अरे अहाँ तो कन्यादान नौकरी चाकरी पढ़ाई लिखाई गप करो लगलो, आ घर में मुसरी डंड खींचे ये से ध्यान ले।
0: तै ने कहे छी कोनो उपाय तो अही ने करबे, हम जे मौगी भक ककरो कह जेबे सेहो तो अही सभक प्रतिष्ठा पर पड़त, ई काज सब तो पुरखे पात्रक छिए कि ना।
2: माँ
0: की बउआ, फरवरी बीत रहल अछि, किताब नहीं किन ले।
2: हाँ हाँ,
0: पायक जोगार करे छिए किया ने किन दे, अपना बउआ के किताब नहीं किन दे तो ककरा किन देबे।
2: तू फुसिए कहित छ, सब दिन पाइये के जोगार करे छथिन, क्लास में सब कत्त से कत्त आगू बढ़ गेल। आहा
1: सरोज एम्हर आओ, बउआ आ चिंता जुन करी, कल चौक पर से आन दे।
2: ठीक छ, कल नहीं आन दे तखन ने।
1: हाँ हाँ आन दे, अवश्य आन दे, जाओ पढ़ू गे।
0: तो की सोचे छिए गे?
1: सोचे थी जे ककरा लग जाए जे किछ टका के बंदोबस्त कह दिए।
0: एकटा बात पूछू।
1: की पूछू ने?
0: मनसी बाबू आइ काल्हि दरभंगा नहीं जेथिन, ओतो मुकदमा लाग कर जायत रहे छथिन, हुनका दिया एक बेर आर समाज द कर देखती है कि जे।
1: ओ तो आइयो भोर में भेटल छला है, पूछबो कैलन जे बेटा को कोनो समाज बारी हुआ तक कह, हम कल दरभंगा जाए।
0: अहाँ किछ कहलिए नहीं कि?
1: की कहती है समाज, उन्हीं जने छत घरक हालत, ओ अन्न नहीं घास खाई छत की, आहा के एखनो धरि बेटा के ममता जा नहीं रहल है।
0: दूर जा, एमन कतो तो लोग बाजे, यो हमरा कोना नहीं ममता रहत, 9 मास धरि अपन सोनित पिया पेट में रखलो, ओ केहनो भ जाए, परंच हमार हृदय तो मायक हृदय अछि कि ना, कोना नहीं ममता रहत।
1: पहले नहीं छी, मुर्रा पठा दइए, पढ़ल सुगा भूख भ गेल, ये आब ओकरा की समाद देबे, जेना भगवानक इच्छा हेतन समय बिता लेब।
0: कने हमरो बात सुनू ने, एक बेर हुनका लग जाओ आ कहबन जे बुझा सुझा कर सब गप कहथिन, भ सकैया हुनका से कहला से मन बदलि जाए आ लाजे पछे।
1: निर्लज के लाज होइ छै कि? बेस अहाँ जिद करै छी तो हम जाइ छी।
0: हे हुनका लग नहीं सब गप बाजि देबे, झपले तोपल कहबन।
1: से तो आब हम न बुझबै, अहाँ हमरा बुझबै छी, तो हम आब जाइ छी।
0: बेस

0: हाँ मनसी ची हो के बाहर खोला ने
1: आ हा मनसी कका गोर लगे छी
0: आ नीके रहो
1: आओ बैसू तनी चाह ता पी लिया आओ बैसू

0: चाह बनाओ। मंशी कका आयला है।
1: हम अखन कतौ नहीं जाए। यौ हे देखियो ने, देखियो देखियो टीवी में कतेक सुंदर डांस दऽ रहल छै।
0: एको बिसिया ज्ञान नहीं अहिती।
1: मार बाहिन धऽ कऽ कतौ कहां से के आबि कऽ माथ पर बैठा जाइए। ए यौ रैकियो में अहिठाम रहथिन की?
0: ई बात सब पूछऽ वला छै। एतेक अबेर कऽ एलखिन हैं तऽ फेर कतौ जेथिन?
1: हे भगवान, आब एतेक गोटाक भानस कोना करब हम? मर जायब हम एहि घर में। भगवान और दो कतेक टा दऽ देलनि हैं हमरा से नहि जानि।
0: अच्छा अच्छा भेल भेल, चाह बनाओ आ भऽ जायत तऽ कने कहब। कका, गाम घरक हाल चाल सबटा ठीक छै ने?
2: तो अपन हाल चाल कह। गाम घरक कोन हाल चाल? सब ठीके छै।
0: हाँ, अहाँ लोकनिक आशीर्वाद सँ सब ठीक ठाक छै। मुदा गाम पर सब निके नाच छै ने?
2: हाँ, सब ठीके अछि।
0: एना किया बजलौ?
2: कोना बाजू, कहलिए तऽ सब ठीके अछि।
0: हे लिया, चाह पी लिया। अरे गप सप तऽ तकर बाद हेबे करते। एहि बेर उपजा बारी तऽ सुनलिए जे?
2: हाँ, एहन तऽ कहियो देखने नहि रही, लोक अन्न अन्न के मरि जायत।
0: हाँ, सह सुनलिए। बाबूजी कोनो समादो कहलनि?
2: हो, समाद तऽ एक ढाकी कहलथुन, मुदा ओ जे कहथुन से तो की नहि जनै छह?
0: हाँ, से तऽ जनिते छियै, मुदा की करिए। अहाँ तऽ जनिते छी हमर सभक हालत, सुखायल दरमाहा पर की करू। ताहू में एहि मास में एकटा टीवी आ फ्रिज लऽ लेलियै, तैं रुपया नहि पठा सकलियनि। दिक्कत तऽ हेबे करतनि, कहबनि जे कोना कहकऽ कोनो तरहें समय काटि लेता। कका, अगला फसिल नीक छै कि नहि?
2: हाँ, अखन तऽ छै, मुदा लोक अगला फसिल तक बाँचत तखन कि नहि?
0: से तऽ ठीक, बड़ अघोर काल बीत रहल छै। सोचने रही जे कम से कम 50 टाका पैंच लऽ कऽ पठा देतियनि, मुदा आइ काल्हि तऽ केओ ककरो नहि पैंच दै छै।
2: हाँ, से गप तऽ छै के, मुदा हो, जखन तोरा सब सन कमौआ सबके केओ एकटा पाई देनिहार नहीं छ, तखन गृहस्थ के की हालत हेतै एक से सोचलह।
0: अच्छा कका, अहाँ के जो परमेश्वरा वाला केस छल तकर की भेलै?
2: ओकरे आइ तारीख छलैया, अखन की हेतै? कोर्ट कचहरीक बात बुझल नहीं छ, तखन देखक तक की होइ छैक।
0: बाबूजी कोनो खास समादो कहलन है?
2: हो, बाबूजीक समाद आब हम की सुनेबा तोरा? तो त अपने समाद ततेक सुना देला
0: से की?
2: नै किछ, सह कहलिया, हमरा जे बुझबाक छल से बुझलो, आब बुझबा में कोनो भांगट थोड़बे अछि।
0: नै नै, स्पष्ट कहू ने।
2: स्पष्ट की कहू, ककरा कहू? हो, लोकनि बहुत बेसी कष्ट में छथि, साझक साझ बीत रहल छै। संध्या काल हमरा कह आयल छला जे अहाँ दरभंगा जायब तो मनोज सँ निश्चित रूप सँ भेट कऽ ओकरा एहिठामक सब गप कहबैक, मुदा हाय रे ईश्वर, जखन गाम पर सँ निकल गेल रही भोर में तो मरना कहलक जे हुनका हार्ट अटैक भऽ गेलनि। घबरेबाक बात नहीं, अखन तो ठीके छथि, दवाई दारू चल रहल छनि।
0: तेसर बेर हार्ट अटैक? तखन तो एक मिनट कका, अबै छी। लक्ष्मी, लक्ष्मी, अंत्याय भ गेल।
1: की भेल?
0: बाबूजी के तेसर बेर हार्ट अटैक भ गेलन।
1: तेसर बेर हार्ट अटैक?
0: लक्ष्मी, तुरंत गाम चलू, जल्दी करू।
1: मुदा एना धरफड़ में कोना की करबे?
0: लक्ष्मी, जो बाबूजी के किछ भ गेलन तो
1: एते कतु लोक अबतै? यह बूढ़ छलखिन, हुनका सब लेल कतौ।

0: लक्ष्मी, ई गप अहाँ बाजि रहल छी?
1: कका, हम सब अखने गाम जयबाक तैयारी कऽ रहल छी।
0: की विचार?
2: उत्तम विचार। बस तऽ आब निकल गेल हेतै, मुदा ट्रेन छैक
0: तऽ हमरा सबके तैयार भऽ जेबाक चाही ने।
2: हाँ हाँ, विलम्ब करबाक

0: डॉक्टर साहब की हालत छन?
1: बेसी चिंता करबा काज नहीं, परंच तेसर अटैक छन ते किछ कहब कठिन। ओना हम ई दवाई लिख दे छी, जब तुरंत ही पड़ जाए तो ठीक भ जेबाक चाही।
0: कतेक ई दवाई हेतै?
1: दवाई तो थोड़े महग छै, लगभग 500 टका तो चाही।
0: 500? हे भगवान, आब कोन उपाय करबैक, ककरा कहबैक?
1: बेसी चिंतित होबाक काज नै छै। चौक पर ककरो पठैयौ, छोटू बाबू के हमर नाम कहतै, ओ दवाई दऽ देथिन। दहे कने जल्दी में।
0: सरोज, हाँ मैं ककरो से साइकिल मांग कर फुर्ती में दवाई लेने आबुआ। अच्छा जाय छी। हिनका एना किया भ गेलनि डॉक्टर साहब?
1: हिनका हार्ट डिजीज छनि कि नहीं? एहि बीच में बुझाइत अछि जेना बेसी मानसिक तनाव रहलनि अछि। हार्ट डिजीज वाला के बेसी चिंतित नहीं रहबाक चाही।
0: चिंता तो जना नहीं है बुझू, आखिर करबो की करती। भगवान एकटा बेटो देलथि, लेकिन
1: एकटा झुनका नहीं तो अनर्थ भ जाय।
0: कानूनी तो की करू, कपार पर कन्यादान, सरोजक पढ़ाई लिखाई, आप परिवारक भरण पोखन के करते रहो दई।
1: बहुत विलम्ब भ रहले है। आप पेशेंट के बचाय मुश्किल सन लाग रहल अछि। के सरोज, की भेल?
2: छोटू बाबू के दुकान बंद छले आ दोसर दुकान वाला उधारी नहीं देलक, लात क लेलक जे दवाइये नहीं है।
0: तखन आप कौन उपाय करबे डॉक्टर साहब?
1: काकी, आप दवाई कोनो प्रयोजन नहीं। आप आगे काज देखते
0: हो। बाप रे बाप।

0: बउआ बाबूजी आ बाबूजी लक्ष्मी बाबूजी माँ माँ हमरा माफ कर दिया माँ हमरा बात की के माफ कर दिया बउआ हमरा अपन पापी वसुंधरा पर दोसर क्यों ने जे संतान रहलो संता हमर कसर एते नी जे बाबूजी के दाह संस्कार तक नहीं कर सकल
1: भाना करे छे जावत काल दे जीवे छला खोज पूछाई तक नहीं पार लगे छले अन्य अन्य के मर गेला बेचारे अखन देखू ने नाटक लगे ये जना केहन पित्र भक्त राम और श्रवण कुमार चाहे अखन की भेला जावत काल ई गुरु आइन कृपा रहत एना है विचार तो होते न छे इनका सबक इलवाइश में देखू दरभंगा में आ गांव पर माए बाप अन्ना दवाई दारू खाते मरे छे कुल अहंकार कुल कलंक नी सब नहीं
2: कौन करा छी आक्रोश माए हृदय तो गंगा के समान विशाल

गुरुआइन फूलचंद्र झा प्रवीण का लिखा यह मैथिली नाटक अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। नित्यानंद झा, मीरा झा, अरुण कुमार झा और कल्याणी कुमारी भाग लेने वाले सभी कलाकार और निर्देशक थे सीताराम शर्मा।

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
3: साहित्य, संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन बरतुहार आबै छल कहियो थमहु अगला साल, हमर गर्दन काटि लेला आ अपने बनल मालू मा।
1: गुआ सुपारी के कहल जाते छ, मुदा अखन कहे छन कि गुआ कनियान के दिया था, बहुत कमे लोग हेता जे गुआ बुझ के सुपारी बुझ के आन के देता।
2: अपन परंपरा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजित मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: अब नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी आवाज में कविता, कहानी, पहेली और चुटकुले सुन सकते हैं फुलवाड़ी कार्यक्रम में रविवार सुबह 10:30 पर। तो रिकॉर्ड करवाएं प्रत्येक शुक्रवार 3:30 से 4 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0627222481, मोबाइल नंबर है 9430029353।
4: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1 बजने ही वाला है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियों को हटा लिया है। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में भी महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिक्स महिला ट्रैक ने 4 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये वैश्विक संवाद एआई के अंतर्राष्ट्रीय संचालन को आगे बढ़ाने का अनूठा अवसर है जो अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और बहुहितधारक प्रयासों का पूरक है। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दी। महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की

0: उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतकर्ताओं में से एक बना दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजनबाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से।

श्रोताओं, अब जानकारी प्राप्त कीजिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। 1:10 पर अब से थोड़ी ही देर बाद में आप सुनेंगे समवेत स्वर में देश भक्ति गीत। 1:15 से सुनिएगा पत्रों पर आधारित फार्मेसी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

दिन के 2 बजे प्रादेशिक समाचार और 2:05 पर आप सुनेंगे इलाकाई खबरें। दो बजकर 10 मिनट पर सुनिएगा रोजगार सूचना और दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे दिन के 2:15 पर।

दिन के 2:30 बजे श्रोताओं हम आप तक पहुंचाएंगे कार्यक्रम रेडियो की बात श्रोताओं के साथ। समय याद रखें दिन के 2:30 बजे और अपराह्न 3 बजे सुनिएगा कुछ विद्यापति गीत। ये थे पहली सभा के शेष कार्यक्रम। एक नज़र हम डालते हैं अपनी दूसरी सभा के ऊपर।

हमारी दूसरी सभा की शुरुआत शाम 5 बजे चंद गजलों के साथ।

शाम 6:25 पर मैथिली संवाद, शाम 6:30 कार्यक्रम गाम घर। इसके अंतर्गत हम आप तक पहुंचाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल। शाम 6:45 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल। शाम 7 बजे कार्यक्रम खेती गृह

थी। खेल गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम क्रीड़ा जगत आप सुनेंगे। शाम समय याद रखें रात 8:15 पर, और समाचार संध्या का समय है रात 8:45 पर। News@9

बजकर 45 मिनट पर। न्यूज एट 9 रात 9 बजे और उर्दू में खबरें रात 9:15 पर हम आप तक पहुंचाएंगे। रात 9:30 सुनिएगा रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात 10 रवि बासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आप तक पहुंचाएंगे। तो ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों का रूपरेखा। अब लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

देशभक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

जुलाई माह के पहले रविवार के साथ हाजिर हूँ आपके द्वारा भेजे गए ढेर सारे अनुरोध के साथ। स्वीकार कीजिए रंजू का सस्नेह नमस्कार कार्यक्रम आपके अनुरोध पर में। जी हाँ श्रोताओं, कैसे हैं आप लोग? हम तो उम्मीद करते ही हैं जो आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, और भला हो भी क्यों नहीं, और इंतज़ार भी तो रहता है पूरे सप्ताह का। जो अपने फरमाइश किए गए गीत आप हम तक भेजते हैं और हम आपके मन को, आपके तन को और आपके समय को खुश रखने के लिए, आनंदित रखने के लिए इंतज़ार में होते हैं जो एतबार का दिन कब आएगा। और ये इंतज़ार भी अब ख़त्म हुआ। और जैसा कि श्रोता आप सभी जानते हैं और पूरे आकाशवाणी परिवार की तरफ से भी मैं यही कहना चाहूँगी, जो अभी वन महोत्सव सप्ताह हम लोग मना रहे हैं, चल रहा है, तो सभी हम जानते हैं और जानना भी चाहिए। और जो स्थिति अभी चल रही है पर्यावरण की बारे में, तो हम तो यही कहना चाहेंगे जो ये हमारे जीवन का आधार है। चारों तरफ मौजूद हवा, पानी, मिट्टी, पशु पक्षी और जीव जंतु, ये सभी मिलकर हम पर्यावरण का निर्माण करते हैं। स्वच्छ और संतुलित पर्यावरण के बिना पृथ्वी पर जीवन संतुलित संभव नहीं है, संतुलन नहीं रह सकता है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण करना हम सभी का कर्तव्य है। और आज की इस बढ़ती जनसंख्या में तो श्रोताओं देख रहे हैं अंधाधुंध पेड़ की कटाई हो रही है, औद्योगिकरण हो रहा है, प्रदूषण का ये सब जो कारण बनते जा रहा है, ये सब पर्यावरण को नुकसान कर रहा है। और जिसमें वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण तो लगातार ही बढ़ रहा है, तो इसमें हम सबों को आगे बढ़कर हिस्सा लेनी होगी। और कोशिश हम अपने आप में प्रत्येक व्यक्ति यदि करेंगे तो आने वाले समय को चुनौती दे सकते हैं और आने वाला समय हमारा बेहतर हो सकता है। तो बातें तो हम और भी करेंगे, लेकिन अब बगैर देर करते हुए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। और शुरुआत में जो हमारे साथ बहुत सारे खत हैं, तो मैं शुरुआत कर रही हूँ, ये बहुत दूर से आया है। और खुशी की बात ये है, जो एक तो वन महोत्सव सप्ताह मना रहे हैं, उसमें ये कार्ड जो आया है एकदम हरा भरा है, इतनी खूबसूरती से इन्होंने सजा के भेजा है, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। हमारे श्रोता हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, अमनदीप, अनिल कुमार शर्मा, शुभचंद्र बजाज, बेटा बजाज और साहिल बजाज जी ने, इन्होंने आकाशवाणी दरभंगा को ढेर सारी बधाई दी है और एकदम सजा हुआ कार्ड है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को श्रोताओं। और इन्होंने ये भी लिखा है कि आप अपने पसंद का कोई भी गीत सुना दें, तो ठीक है, आप इंतज़ार करिए और रेडियो सेट और अपने मोबाइल ऐप से जुड़े रहिए, हम आपकी पसंद और को अपनी पसंद और अपनी पसंद को आप अपनी पसंद बनाइए और आप तक हम पहुंचाएंगे मेरे हमदर्द मेरे दोस्त फिल्म का प्यारा सा गीत, लता मंगेशकर की आवाज़ है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत निर्देशन है। और इसी गीत को सुनने की जो फरमाइश आई है ये है, बोरखेरा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से, आप हैं विनोद भूपत, नेहा जैन, दीपक मयंक भूपत, चेतन नाटा, दीक्षा कुश भूपत, दिलीप सिंह और आपके परिवार के सभी लोग। झंझारपुर लांगरा चौक जिला मधुबनी बिहार से आप हैं हरे राम पासवान,

जयशंकर पासवान, काजल कुमारी, रानी कुमारी और आपके सारे दोस्त। पाकुड़ झारखंड से हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु, तासु, अर्णव, आनंद, सत्यम, आनंद और आपके माता पिता। औरंगाबाद से आप हैं राजेश सामले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश जी। और आप हैं ग्राम महेश्वरी तहसील मलकापुर महाराष्ट्र से नीना जी धारे, बाल्मीकि धारे, स्वप्निल धारे, अजय सिरोडकर। आप हैं लाल पोखर जिला दरभंगा बिहार से मोहम्मद कलीम दीवाना, दानिश बाबू, अमन बाबू, सरफराज बाबू, सोनी बेगम, रोजी प्रवीण, खुशबू प्रवीण, साहिस्ता प्रवीण, डॉली प्रवीण और मेहरा प्रवीण जी। तो लीजिए, आप सबों के फरमाइश पर पेश है कार्यक्रम का पहला गीत। ये रहा आपके रेडियो सेट और मोबाइल ऐप पर मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का ये गीत है।

अपनापन फिल्म का ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। पसंद करने वाले हमारे श्रोता थे जतू का किशनपुर, जिला दरभंगा बिहार से आलम दिलकश, शवाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, सवाना आलम, हिना कैसर, मोहम्मद वकील राही, फिरोज आलम और नाज प्रवीण जी। गोविंदपुर धनबाद से आप थे शराफत हुसैन अंसारी, बेगम रेहाना, परवेज अशरफ, हसन इमाम और आपके सारे दोस्त। बेरडी से आप थे राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सब्बा सेरे जी। कोटबा, नारायणपुर, बाबापट्टी, बलिया उत्तर प्रदेश से आप थे ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय जी। शेरपुर कला, गाजीपुर उत्तर प्रदेश से आप थे अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय जी। दुबिहा, नेवादा, गाजीपुर से आप थे प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय जी। और अगला खत जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये आया था जिला किशनगंज बिहार से। आप हमारे श्रोता थे रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, माधुरी किरण और अनुराग मोहन जी। और इस गीत को सुनने की फरमाइश आई थी कुशेश्वर स्थान सलमगढ़, जिला दरभंगा बिहार से, मोहम्मद ईशा, सबीना नाज, मोहम्मद इरफान आज़ाद, मोहम्मद मुस्तफ़ा, नवासी सना आफरीन, नवासी सादिया नूर, नवासा आरिस बाबू, शमा प्रवीण, साहिन प्रवीण, नेमत प्रवीण, रौनक प्रवीण और सुनैया फातिमा जी का। श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए उठाइए कलम और कागज, लिखिए हमारा पता कार्यक्रम आपके अनुरोध पर द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा। हमें रहता है आपके खतों का बेसब्री से इंतजार, तो देर मत कीजिए, लिख डालिए ढेर सारे खत और सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।

और अभी अभी जो नए श्रोता जुड़ना चाहते हैं तो न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड कीजिए और अभी से हमारे साथ बने रहिए दिन के 2 बजे तक। श्रोताओं, अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में अगले अनुरोध की तरफ। तो मैं देख रही हूँ ये चिट्ठी आई है ग्राम खरारी जिला दरभंगा बिहार से। हमारे श्रोता हैं गोपाल बाबू मुखिया जी, छोटका बउआ और आपके घर के सभी लोग। गांव चौहलदा से बागपत से आप हैं संजय ढिंगिया, नमन, मुस्कान, कुणाल और आपके मम्मी पापा। पिपरा पारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से आप हैं उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन दिवाकर और वंशिता दिवाकर जी। एकता रेडियो श्रोता संघ बरी खंजरपुर भागलपुर बिहार से आप हैं भाई गुलफराज आलम, बेगम शमा आरा, दोस्त जमालुद्दीन नेपाली, फाइजा फातमा, यूसुफ हामजा। अनुपुर मध्य प्रदेश से आप हैं जयमंत्री केबट, कृष्णा केबट, रुद्रानी केबट और अंजलि केबट जी। तो लीजिए, आप सबों की फरमाइश पर पेश है लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान। गीत के बोल वर्मा मल्लिक के हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। तो लीजिए, ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत आपके रेडियो सेट और मोबाइल ऐप पर।

जी हाँ श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा और इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। और मैं देखती हूँ अगला अनुरोध किनका आया है। तो आप हैं दौलत बाग मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से जाफ़र हुसैन, नायमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी। हनुमानगढ़ राजस्थान से आप हैं महाकांत सिंह और सिंह परिवार के सभी लोग। और अगला अनुरोध है जिला मधुबनी बिहार से आप हैं नवीन सिंह, ज्योति सिंह, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल रानी, प्रदीप कुमार नायक, लाल बाबू शास्त्री। साथ ही तारसराय जिला दरभंगा बिहार से आप हैं कपिलेश्वर प्रसाद गुप्ता, भूलिया देवी गुप्ता, घूरन बाबा, करिया बाबा, प्रेम पासवान और आपके सारे दोस्त। बैंक रोड भगवतीपुर वार्ड नंबर 3 जिला दरभंगा बिहार से आप हैं संतोष कुमार मुखिया, रानी अनीता राज, गरिमा राज, अभिषेक कुमार, अविनाश कुमार, अमरेंद्र और वंश प्रसाद जी। पुणे से आप हैं पंकज बरोद, आर्या, प्रियंका, जरूर बरोद, बाबा साहब बरोद, मीनाक्षी चरणे और रजनी कानीरे जी। बोडूसरा नैला से आप हैं प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली, प्रियांशु साहू जी। और आप हैं नाहर मंटोला जिला दरभंगा बिहार से भाई कादिर अली, जाकिर अली, हामिद अली, जाबिर अली, मोहम्मद अरमान और मोहम्मद सलमान जी। नरहन एस्टेट जिला समस्तीपुर बिहार से आप हैं अमन पराशर, उदयकांत ठाकुर, बेबी आराध्या, नूतन भाभी जी और ललन मिश्रा जी। तो लीजिए, आप सबों के अनुरोध पर पेश है कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है ये रात फिर ना आएगी।

फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो। ये रात फिर ना आएगी। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में ये प्यारा सा गीत हम आप तक पहुंचा रहे थे। पसंद आप सबकी थी इस समय। जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फार्मेसी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। अगला अनुरोध है नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल मैसोल सीतामढ़ी बिहार से। आप हैं अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, बहुरुबीना वसीम, बाबू आरिज वसीम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, नवासा अरहान बाबू, नवासा हामजा बाबू, नवासा मुजम्मिल बाबू, हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, अबीहा नाज, साजिया साहिन नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू शेख और चीना शेख जी, कोकिलवारा ओरा जिला मुजफ्फरपुर से आप हैं मोहम्मद फैजल शेख और नुजहत जहां नाज, शेख टोली समस्तीपुर जिला से आप हैं मोहम्मद शहनवाज परवेज मुशर्रत जहानाज। आप हैं सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरबा जिला समस्तीपुर बिहार से। भाई कारी राय कारी, श्रीमती मीना कारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, नीतू, मोहम्मद फारूक और आपके सारे दोस्त। ग्राम झांसी से आप हैं राजकुमार डूडी, सरजीत सिंह डूडी, प्रमोद कुमार डूडी। हांसी शहर से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू जी। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे जी। साथ ही खुर्दी रोड मानपुर से आप हैं विजय वैद्य, रानी वैद्य, महिमा वैद्य और नीतू वैद्य जी हैं।

और आप हैं अमरपुर पैंड्रा छत्तीसगढ़ से, दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा और लब श्रीवास्तव जी। तो लीजिए, आप सबों के अनुरोध पर पेश है कार्यक्रम का अगला गीत जो हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वरों में है। गीत रचना आनंद बख्शी की है और संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्म का नाम है सरगम। तो लीजिए, ये रहा अगला गीत।

श्रोताओं, अब कार्यक्रम अंतिम पड़ाव पर है और कुछ खत मेरे हाथ में बचे हुए हैं। तो ये है टावर चौक आशापुर जिला दरभंगा बिहार से भय प्यारे लाल मनोहर, अमर लाल मनोहर, दुलारे लाल मनोहर, सुंदर लाल मनोहर और प्रेम लाल मनोहर जी। आप हैं ग्राम मठिया भोपत भेलवा सर्किल से, पूर्वी चंपारण से आप हैं बसंत कुमार राय, जग देव राय और आपके घर के सभी लोग। इनामा टोला भगवतीपुर पंचायत जिला दरभंगा बिहार से आप हैं नूतन सहनी, कंचन सहनी, बबीता सहनी, कोमल सहनी, नव्या, विभा, सुधा, ज्योति, पार्वती, त्रिपुरारी, राशो देवी, रिंकू देवी, रुचि कुमारी और एस के सहनी जी। और गोकुल चौक गंगजला सहरसा से आप हैं राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन, राजीव रंजन, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, यारानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी और बुल्की बाली। और ये खत है डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजाभिये, राधिका गजाभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजाभिये जी का। तो लीजिए, आप सबों ने सुना चाहा है लता मंगेशकर का गाया हुआ रजनीगंधा फिल्म से ये गीत।

श्रोताओं, घड़ी हमें इशारा कर रही है इस कार्यक्रम से विदा लेने के लिए। तो चलते चलते आप सबों से गुजारिश है, खुश रहेंगे, अपनों के बीच खुशियां बरकरार रखेंगे, इसी उम्मीद के साथ अगले अंक तक के लिए इस कार्यक्रम से रंजू को दीजिए विदा। नमस्कार।

ये था पत्रों पर आधारित फार्मेसी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 2 बजने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे पहले प्रादेशिक समाचार, उसके बाद इलाकाई खबरें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण 2025 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू हो गया है। मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत के विजन को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए इस अधिनियम के तहत अगले 5 सालों में 2,86,000 पंचायतों में 7.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आज पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रामविलास पासवान ने समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रामविलास पासवान को जनसेवा और राष्ट्र सेवा के प्रति उनके समर्पण के लिए हमेशा याद किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि रामविलास पासवान का पूरा जीवन गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित था। लोजपा आर प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान समाज के वंचित और दलित वर्गों के हिमायती थे और सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध थे। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। यह सत्र 24 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। मानसून सत्र के पहले दिन सदन में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट पेश किए जाएंगे। अगले दिन कार्य दिवस में इस पर सामान्य वाद विवाद होगा और मतदान के बाद इसको मंजूरी दी जाएगी। इधर संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल का 30वां स्थापना दिवस आज प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। पटना स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस मौके पर राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने अपने संदेश में कहा है कि पार्टी की स्थापना गरीबों, शोषितों और अकलियतों के अधिकारों की लड़ाई के उद्देश्य से की गई थी। उन्होंने पार्टी की एकजुटता पर बल देते हुए कार्यकर्ताओं से जनहित के मुद्दों पर संघर्ष करने की अपील की है। श्री यादव ने इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं के संघर्ष और समर्पण की सराहना की। मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई है। दिल्ली की एक अदालत ने सुनवाई करते हुए विधायक को इस मामले में दोषी करार देते हुए पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। गौरतलब है कि दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित राजू कुमार सिंह के भाई के फार्म हाउस में

पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग में एक महिला की मौत हो गई थी। केंद्र सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस LNG की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली है। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन खास आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिसके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित LNG के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। हॉर्मुज जल डमरू मध्य से LNG की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत यह आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

ये आकाशवाणी पटना है। अब आप शर्फुल हुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। देही तरक्यात के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन देही 2025 1 जुलाई से कामयाबी के साथ नाफिज हो गया है। वजीर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवसुत से इस मिशन के तहत रियासतों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की इमदादी रकम जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा की मुद्दत सर्फ हो गई थी, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे मुल्क में महज 1 दिन में नाफिज कर दिया गया। जनाब चौहान ने कहा कि विकसित भारत के विजन को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए इस जाब्ते के तहत अगले 5 वर्षों में 2,86,000 पंचायतों में 7.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने आज साबिक मरकजी वजीर आजहानी रामविलास पासवान की जयंती पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि रामविलास पासवान ने समाज के महरूम और कमजोर तबके की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। वजीर आजम ने कहा कि रामविलास पासवान को कौमी खिदमात के तहत उनके जज्बे को हमेशा याद किया जाएगा। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि रामविलास पासवान की पूरी जिंदगी गरीबों की फलाह के लिए वक्फ थी। बिहार कानून साजिया का मानसून इजलास 20 जुलाई से शुरू होगा। ये इजलास 24 जुलाई तक मुनक़िद किया जाएगा। मानसून सेशन के पहले दिन ऐवान में माली साल 2026-27 के ज़िमनी बजट पेश किए जाएंगे। अगले काम के दिन इस मौजू पर बहस व मुबाहसा होगा और वोटिंग के बाद इसे मंजूरी दी जाएगी। इधर पार्लियामेंट का मानसून इजलास 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। पार्लियामानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से पार्लियामेंट का मानसून सेशन बुलाने के हुकूमत की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सेशन में कौमी अहमियत के मौजू पर बामानी बहस पर तवज्जो दी जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल का 30वां यौम तासीस आज पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। पटना वाक़े पार्टी सदर दफ्तर में मुनक़िद प्रोग्राम में पार्टी के रियासती सदर मंगनी लाल मंडल समेत दीगर सीनियर रहनुमा मौजूद थे। इस मौके पर आरजेडी के कौमी सदर लालू प्रसाद यादव ने अपने पैगाम में कहा कि पार्टी का क़याम गरीबों, इस्तेहसाल ज़दा और अक़लियतों के हकूक़ की लड़ाई के मकसद से किया गया था। उन्होंने पार्टी के इत्तेहाद पर जोर देते हुए कारकुनों से अवामी मफाद के मौजूदात पर लड़ाई लड़ने की अपील की है। श्री यादव ने इस मौके पर पार्टी कारकुनों के जज्बे की तारीफ की। मुजफ्फरपुर जिले के साहिबगंज से बीजेपी रुकन असम्बली राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हलाकत और असलहा एक्ट के मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई है। दिल्ली के एक अदालत ने सुनवाई करते हुए रुकन असम्बली को इस मामले में कसूरवार ठहराते हुए मुतासरा खानदान को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी हुक्म दिया है। गौरतलब है कि दिल्ली के फतेहपुर बेरी वाक़े राजू कुमार सिंह के भाई के फार्म हाउस में पार्टी के दौरान ज्वाय फायरिंग में एक खातून की मौत हो गई थी। मरकजी हुकूमत ने रकीक कुदरती गैस LNG की सप्लाई से

लीजिए सुनिए आकाशवाणी दरभंगा से अब रोजगार सूचना। SBI 2026 कुल पदों की संख्या है 1500, आवेदन 18 जून 2026 से आरंभ है और आवेदन करने की अंतिम तिथि है 8/7/2026। न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल और अधिकतम उम्र सीमा 30 साल। विशेष जानकारी के लिए SBI के ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर देखा जा सकता है। बैंक ऑफ इंडिया कुल पदों की संख्या 779, आवेदन शुरू होने की तिथि 30/6/2026 से ही है, अंतिम तिथि है 20/7/2026। न्यूनतम उम्र सीमा 25 साल, अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष। ऑफिशियल वेबसाइट bankofindia.bank.in पर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक और सूचना हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेखा परीक्षक और सहायक की 2026 की भर्ती। कुल पदों की संख्या है 1829, आवेदन शुरू होने की तिथि आरंभ होगी 14/7/2026 से और आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी 3/8/2026। न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष। विशेष जानकारी के लिए आप upsc.gov.in पर जाकर लेखा परीक्षक और सहायक के पदों के लिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना।

0: हॉर्मुज जल डमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
1: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ VBG रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है 1 साल 2 साल नहीं पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं अब 125 दिन रोजगार 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे। समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: श्री चौहान ने कहा कि VBG राम जी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे।

0: इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:15 होने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार।

0: दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे, जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रम्बानन मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
2: The significance is immense.
1: भारत और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
2: Greater economic engagement between these two large countries.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। ये सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
4: देने देने वो मारा ढालते हैं जैसे पानी में घूरा ढेला।
5: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को

0: नहीं छोड़ा। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
1: दोनों जने मिलकर सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं।
2: अच्छा, जे जान पड़े तो ले गो, नहीं तो मोला छोड़ दे भैया, सेना ले ले चला। सावन में
0: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉ तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमेरिका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वॉशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में इस वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें पराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम श्रोताओं के साथ

0: रेडियो घर में रखा एक उपकरण नहीं, एक भावना भी है। यह सिर्फ सूचनाओं के संचार का माध्यम नहीं, बल्कि बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय का मूल मंत्र लिए भारतीय संस्कृति और भारत के अभिन्न ग्राम्य सभ्यता का एक परिचायक भी है। आकाशवाणी दरभंगा पिछले 50 वर्षों से आपके दिनचर्या का अहम अंग रहा है। सुबह वंदे मातरम से रात के जय हिंद तक हम आपका और आप हमारा साथ निभाते रहे हैं। हमारे इसी संबंध को बयां करता है हमारा यह कार्यक्रम, जिसका नाम है रेडियो की बात श्रोताओं के साथ। नमस्कार, मैं हूं मितेश कुमार मिश्रा। स्वागत है आपका आप ही के कार्यक्रम रेडियो की बात श्रोताओं के साथ में। चलते हैं श्रोताओं से जुड़ने के लिए, लेते हैं आज का पहला कॉल।
1: नमस्कार सर।
0: फट्टन झा जी, कैसे हैं आप?
1: हाँ जी, बहुत बढ़िया है सर। और ये आप जो प्रयास है, जो रेडियो का बात बात मतलब से जुड़ने के लिए, ये प्रयास बहुत बढ़िया है
0: जी। और जी,
1: आज मैं फोन इसलिए आपको किया हूँ कि मिथिला नमस्कार का जो मिथिला नमस्कार जो है, उसका प्रसारण जो है तो बहुत पसंद आ रहा है। फिलहाल अभी कुछ दिन से जो संस्कृति, सभ्यता, इतिहास ये सब जो बताते हैं वो बहुत सुंदर लगता है सुनने में।
0: जी,
1: और मैं ब्लाइंड हूँ और सब दिन रेडियो से जुड़ा हुआ, रेडियो से सब दिन जुड़ा हुआ हूँ, अभी फिलहाल मोबाइल से सुन रहा।
0: कब से रेडियो के प्रति मतलब आपका लगाव?
1: सर, रेडियो 90 से सुन रहा हूँ, 87 से सुन रहा हूँ।
0: अच्छा, काफी दिनों से रेडियो सुन रहे हैं इसका मतलब आप?
1: हाँ, दिन से रेडियो सुन रहा हूँ। और मतलब
0: तो आकाशवाणी दरभंगा से कौन कौन से कार्यक्रम ऐसे हैं जो आपको काफी पसंद आ रहे हैं?
1: मतलब ये मिथिला नमस्कार था, पहले लोकगीत आता था, डेढ़ बजे में लोकगीत आता था जो बहुत पसंद आता है। ये लोग किसान लोगों के लिए आता है, घर आंगन जो कार्रवाई है, ये मिथिला, ये तो हेलो मिथिला आता है, रात को आता था, ये तो फरमाइशी गाना हेलो आकाशवाणी।
0: हेलो आकाशवाणी अभी भी हमारे यहाँ से
1: नहीं, अभी हम जुड़ नहीं पाते हैं उससे, क्योंकि रेडियो से है नहीं। और लड़का मोबाइल पर महावी रहता है, लड़का का मोबाइल है, मोबाइल पर वो जब देता है तब ये सुन पाते हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ, उससे जुड़े रहते हैं। अब ये प्रोग्राम खास करके अभी मिथिला नमस्कार जो है बहुत अच्छा, मतलब
0: नमस्कार मिथिला ये हमारा कार्यक्रम है जो प्रतिदिन 7:05 से 7:55 तक जाता है।
1: अच्छा है, उस संस्कृति, सभ्यता, रीत रिवाज, अनुशासन, शिष्टाचार, मतलब जो हमारे मिथिला का महत्व है, जो हमारे मिथिला का पहचान है, उसे वो बहुत अच्छे से प्रयास, उसके लिए मैं उनको खास करके धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके द्वारा।
0: हम चाहते हैं कि आप हमारे और भी कार्यक्रम को सुने और बाकी कार्यक्रमों के बारे में अपना फीडबैक जो है आप हमें लिख भी सकते हैं पत्र के द्वारा। और ठीक है, हमारा हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले और भी जो कार्यक्रम हैं उनको भी सुने आप, ठीक है?
1: प्रयास बहुत अच्छा है, प्रयास प्राय देखा गया है कि प्रयास बहुत अच्छा है
0: जी। लेकिन
1: कभी कभी कभी सम्मेलन जो होता है, कभी का प्रसारण आज तक मैं मांग करूंगा कि कभी का जो प्रसारण कविता का
0: जी जी
1: नहीं, उसका प्रसारण एक ऐसा समय पर लिया जाए जैसे सिंघार है, सिंघार हम प्राय सुनते हैं रात को,
0: सिंगर हार है कार्यक्रम हमारा।
1: हाँ,
0: इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा एक कार्यक्रम होता है विविधा के नाम से, तो वो आप सुन सकते हैं। और उसमें मैंने, हम लोगों ने अभी हाल फिलहाल में ही जो है एक कवि गोष्ठी हमारे यहाँ आयोजन हुआ था, तो वो भी बहुत हाल फिलहाल में ही प्रसारित हुआ है। YouTube पे अभी वो मौजूद है, आप चाहें तो YouTube पे इसको सुन भी सकते हैं।
1: बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा, बढ़िया है। मिथिला का स्थान है ये जो आकाशवाणी जो है, वो मिथिला का पहचान है, मिथिला में आकाशवाणी दरभंगा से ही मिथिला को इतना, मैथिली को इतना पहुंच मिला है।
2: जा जी, हम लोग बस प्रसारण कर सकते हैं, हम लोग बस कार्यक्रम बना सकते हैं, लेकिन जो शान हमारी होती है वो श्रोताओं से होती है। आप इसे सुनते हैं, सराहते हैं तो हम सफल होते हैं
1: जी। तो यही तो बात है ना, इसका इसका इसी के मतलब आपका मनोबल को बढ़ाने के लिए मैंने ये फोन लगाया कि बिल्कुल ये मतलब दरभंगा, ये यदि आकाशवाणी दरभंगा नहीं होता तो हम लोग का खास करके ये मिथिला जो है

0: जी
1: मिथिला का इतने पहचान मतलब इतने पहचान नहीं होता या मैथिली का इतने प्रसारण नहीं होता ये समझ नहीं पाता, क्योंकि हम मिथिला में एक मतलब मैथिली में देख लीजिए, बिहार को बोलिए जी संस्कृति, ये अपने संस्कृति के बारे में इतने जागरूक नहीं है, अपने पूर्वजों के मतलब प्रोत्साहन देने में या उनको मतलब आगे बढ़ाने में या बूढ़ बुजुर्गों का जो सम्मान मिलना चाहिए, जैसे विद्यापति हैं, जैसे माँ जगजननी सीता हैं, जैसे कालिदास जी हैं, इन लोगों को जो मतलब सम्मान मिलना चाहिए हम लोगों के द्वारा वो हम उनको नहीं दे पाए।
0: बिल्कुल, आकाशवाणी पूरा प्रयासरत रहता है क्षेत्रीय चैनलों का विस्तार करने का, यह जो हमारा कार्य था वो इसीलिए था कि जो क्षेत्रीय हमारी चीजें हैं हम उनको विस्तारित कर सके, अपने क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा दे सके, सभ्यता को बढ़ावा दे सके, और हमें लगता है कि आकाशवाणी दरभंगा इस क्षेत्र में कार्य करके आपको संतुष्ट कर रहा होगा।
1: जी जी जी संतुष्ट बहुत देता है, और खास करके एक बार लास्ट में यही मतलब मैं रंजीत जी का बहुत बड़ा, मणिकांत जी भी रहते हैं, बहन जी भी कितने आते हैं
0: जी,
1: नाम सबका मतलब उतना केयर नहीं कर पाते हैं, लेकिन मणिकांत जी भी आते हैं, बहुत अच्छा से देते हैं
0: जी,
1: बहुत सुंदर लगता है सुनने में, और बहुत बहुत मतलब धन्यवाद, ऐसे ही मतलब और कीजिए, और ये मिथिला नमस्कार में किसी एक दिन मतलब 10 मिनट मतलब कविता के लिए निकालिए, किसी कवि को निकालिए जो मतलब रहते, बहुत सारे कवि हैं हम लोगों का,
2: जी ऐसा है कि
1: कविता मिथिला मैथिली कविता का मतलब प्रोत्साहन मिले,
2: ऐसा है जाजी कि हर कार्यक्रम का अलग अलग चंक है हमारे यहाँ, आप जो कवि गोष्ठी की बात कर रहे हैं वो हमारे दूसरे अलग अलग जो कार्यक्रम है उसमें वो प्रसारित हम लोग करते हैं, अगर आप लगातार सुनिएगा तो आपको वो भी चंक मिलेगा, वैसे यूट्यूब पे और वैसे यूट्यूब पे जो है आपका जो है ये हमारा कवि गोष्ठी हम लोगों ने अभी हाल फिलहाल में अपलोड किया है, तो आप वहां से भी सुन सकते हैं, और हम लोग चाहेंगे कि इसी तरह आप आकाशवाणी दरभंगा को सुने और हमसे जुड़े रहें, ठीक है,
1: आपका टेक्निकल प्रॉब्लम जो टेक्निकल प्रॉब्लम होते तो आप कुछ नहीं कर पाएगा, तो आपको साफ भाषा में बोल दिया है कि उसको हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और रेडियो अवेलेबल नहीं होता है, कुछ रेडियो ले लीजिए जो 2-4 साल भी नहीं टिका, एक रेडियो लिए थे तो कम से कम 15 साल बजाए थे ये फिलिप्स का, वो अभी मिल नहीं रहा,
0: हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ही रेडियो कंपनी से रिक्वेस्ट कर देते हैं सर कि वो ऐसी रेडियो बनाए जो सालों साल टिके, जैसे हमारे श्रोता बन के आप टिके हुए हैं, आपने हमें कॉल किया रेडियो की बात श्रोताओं के साथ में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
1: धन्यवाद
2: धन्यवाद। हेलो
3: हेलो,
2: हाँ कौन श्रोता हमारे बोल रहे हैं,
3: नाम
2: नाम बताए अपना,
3: धर्मदेव ठाकुर मधुबनी बिहार मधेपुर थाना
2: जी जी धर्म
3: बाकी गाँव,
0: बहुत बहुत स्वागत है सर आपका रेडियो की बात श्रोताओं के साथ में, कहिए सर अभी आजकल क्या कर रहे हैं आप,
3: आजकल साहब घर में बैठे हैं, 18 वर्ष तक समझिए जो हम पेपर बेचे हैं, अब तो पेपर को समझिए मोबाइल खा दिया, अब घर में बैठे हैं मगर रेडियो सुनते हैं,
0: मोबाइल ने कुछ चीजों को खाया जरूर है मगर मोबाइल के माध्यम से रेडियो भी आपके पास तक पहुंच रही है, तो मोबाइल का शुक्रिया भी कभी कभी कहना चाहिए हमें,
3: साहब बड़ा वाला मोबाइल जो है वो हम चला ही नहीं पाते हैं, और टीवी घर में भी है उसको नहीं देखते हैं, क्योंकि हमको जो रेडियो से मिला है चीज जानकारी हर चीज वो हम न टीवी न मोबाइल को देखते
2: हैं। कौन कौन से हमारे कार्यक्रम सुनते हैं धर्मदेव जी आप,
3: क्या कहें अब आपको, हम कौन कौन से सुनते हैं, सुबह से जो 5:45 बजे से समझिए होता है
2: जी जी।
3: प्रोग्राम वो लेकर के और दिन के 3:30 बजे तक वो सुनते रहते हैं,
2: अच्छा
3: आपको एक एक चीज कहें वो तो रेडियो ही कह दिए मुख जर, जो हमें रेडियो से इतना लगाव है, अब आप लोग को हम क्या सुनाए, कहना है जो गुजर रही है मुझ पर उसे कैसे मैं बताऊं, वो खुशी मिली है मुझको मैं खुशी से मर न जाऊं,
0: क्या बात है, हम जानना चाहेंगे सर कि आपकी जिंदगी में रेडियो पहली बार कब आया,
3: हम तो साहब रेडियो को अपना जीवन समझे अभी 68 वर्ष को, और कोई गम या कुछ आता है तो समझिए रेडियो को खोल के उसमें ऐसे ऐसे बात आप लोग द्वारा मिलता है जो हमें उससे आत्मा में शांति मिलती है
0: जी, तो कितने साल हो गए आपको सुनते हुए,
3: रेडियो हम सन 1978-77 में खरीदे थे, तब से हम रामलीला पार्टी में रहते थे उत्तर प्रदेश में, उस समय तो रेडियो में समझिए तो बहुत कुछ ही, उधर उत्तर प्रदेश में रहते थे तो सिवा का ये सब जितना कितना आप लोग को बताए, हम रेडियो का ही नकल करके समझिए रामलीला पार्टी में हम नौकरी भी करते थे, गाना भी गाते थे, तो साहब हम बहुत कुछ सीखे हैं, और हम क्या आप लोग को बताएं, रेडियो को हम अपना भगवान मानते हैं।
2: धर्मदेव जी,
3: हाँ हाँ।

0: कि रेडियो से जुड़े हुए आपके कुछ रोचक किस्से जो आप से हम लोगों से साझा करना चाहें, हमारे श्रोताओं से कुछ ऐसी बातें जो रोचक हों जो आपको अचानक से आज याद आ गई हो कि हमको बताना चाहिए सभी लोगों को।
1: रोचक क्या कहे, हम तो गम के मारे हैं। वो रेडियो से क्या आपको बताए रोचक दाहर बात क्या। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम तो ये कहिए लग गया, 3 बार लगाए हैं, तब लगा है तब आप लोग से बात हो रही है। खुशी हुई है जो आप लोग कम से कम हमारी पुकार को, हमारी दिल की धड़कनों को थाम लिए।
2: बहुजन हिताय बहुजन सुखाए, ये हमारा माध्यम है रेडियो का और हम आपके साथ जुड़े रहते हैं। बस इस बात का गम मत कीजिए कि 3 बार में आपका कॉल लगा है। कुछ लोगों का कॉल अभी तक लगा भी नहीं है, वो ज्यादा गमगीन है। तो हमें बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करते हुए, और आप चूंकि खुद आर्टिस्ट हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने रेडियो को एक माध्यम बनाया, अपने आर्ट में उसको जोड़ा है, हमें बहुत खुशी है।
1: हाँ साहब, हमको इतने खुश है जिसका कोई जवाब नहीं। अब आप लोग जो कहते हैं बोलते हैं तो होता है कि सुनते, हम तो ये बात कर लिए हैं, हो सकता है अब नहीं भी करें आप लोगों से।
0: ऐसा
1: लेकिन
0: क्यों?
1: हमें बहुत खुशी है कि आप लोगों ने ये बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम दे दिए हैं। अब तो जो है प्रेमी वही आपको कुछ कहेगा, लेकिन हम अपने विषय में यही कहेंगे कि रेडियो मेरे लिए एक समझिए जिंदगी दवा सब कुछ, उसको मैं समझता हूँ।
2: बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप रेडियो को इतना चाहते हैं, इतना प्यार देते हैं। आपकी चाहत और आपके प्यार के बलबूते ही आकाशवाणी दरभंगा अपना 50 साल पूरा कर पाया है और बेहतरीन कार्यक्रमों को लेके आपके साथ बना हुआ है। उम्मीद करते हैं हमारा आपका साथ लगातार बना रहे।
1: समय भी कम मिलता है ना, किसी समय को देंगे नहीं 10 मिनट या 20 मिनट। आप सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है।
2: आपका
1: बड़ों
2: बहुत
1: को
2: बहुत
1: मेरा प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद और वालों को नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धर्मदेव जी।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद साहब।
3: मैं सतीश चंद्र मिश्र अवकाश प्राप्त शिक्षक ग्राम हाजिर हुआ बेनीपुर दरभंगा से बोल रहा हूँ।
0: जी सतीश जी, कैसे हैं आप?
3: कृपा है प्रभु की और आप लोगों का, दैनिक कार्यक्रम जो सुनते हैं वो एक नव जीवन का संचार दे रहा है, तो उसी के माध्यम से एक संजीवनी मिल रहा है आपके माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से जी रहे हैं। और एक मेरा जैसे मेरी जीवन संजीवनी कहती है, बार बार कहा करती है कि यार रेडियो तो आप दूसरा जीवन संजी ला दिए।
0: तो ये आपका रिटायरमेंट के बाद का जो जीवन शैली है उसमें रेडियो का अहम योगदान है, जैसा आपकी बातचीत से लग रहा है हमें। कौन कौन से कार्यक्रम ऐसे हैं जो सुन रहे हैं आप अभी आकाशवाणी दरभंगा से प्रसारित होने वालों में?
3: अभी अभी मैं सुबह में जो वंदना कार्यक्रम होता हूँ
0: जी जी,
3: तो जब जब रेडियो ऑन करता हूँ तो जैसे घर का प्रांगण जो है वह गूंजने लगता है। और उसके बाद तुरंत रामायण रामचरितमानस आ जाता है, तो एक अध्यात्म का शुरुआत हो जाता है और जीवन दैनंदिनी में एक नया जीवन आ जाता है, समझा
0: जी।
3: तो शुरुआत उसी से, उसके बाद अपना चाय उलिए और अपना घर गृहस्थी में लग जाए, गाय है उसकी सेवा में लग जाए। लेकिन और कार्यक्रम जो है जो फिल्म संगीत होता है 1-15 से
0: जी,
3: मैं उसके बाद समाचार, फिर समाचार और फिर संगीत, बस 3 बजे तक मैं इसे चिपका रहता हूँ।
2: सतीश जी, ये तो आज की दिनचर्या हो गई जब सतीश जी रिटायर हो चुके हैं और एक उम्र में पहुंच चुके हैं। हम जानना चाहते हैं कि सतीश जी ने सबसे पहली बार रेडियो कब ट्यून किया था और कौन सा कार्यक्रम सुना था।
3: हाँ, मेरे पिताजी श्री स्वर्गीय अमृतांत मिश्र
2: जी,
3: तो उस समय रेडियो नहीं था, वो ट्रांजिस्टर छोटा सा था जिसमें एक एरियल लगा होता था। तो मैं 67 ईस्वी से मेरे मन में विचार आया, जब एरियल लगा हुआ है तो एक नंगा तार जो उनका क्वार्टर था उसमें नंगा तार लगा,

0: एरिया उसने बांध देते थे तो आवाज और तो
1: बहुत बड़ी तकलीफ हुआ करती थी एक जमाने में, ये उसके एरियल में तार लगाना है ना।
0: है तो बाबू जी एक यही था कि उस समय पोस्ट ऑफिस में जमा करना पड़ता था फी, तो बाबू जी पंक्चुअल थे, 20 रुपया या कुछ समथिंग देते थे और जाके वो स्टैंप से वो पोस्ट ऑफिस में, तब बाबू जी सांत्वना उनके हृदय में होता था। बाबू जी जब सामने होते थे तो अपना रेडियो सुनते थे, तो हम भी जब नहीं थे तो चुपके से अपना खोल लिया, लेकिन नहीं कुछ बोलते थे।
2: सतीश जी, जैसा कि आपकी बातों से हमें पता चला है कि आप 1967 से लेकर के अब तक रेडियो सुन रहे हैं, तो जानना चाहेंगे कि इस अवधि में, ये बहुत लंबी अवधि होती है, लगभग मुझे लगता है 55 वर्षों के आसपास से आप लगातार रेडियो सुन रहे हैं, तो इन इस लंबी अवधि में ऐसा कोई समय या ऐसा कोई पल आपको याद आ रहा है जो बहुत ही रोचक रहा है और रेडियो के माध्यम से आपके जीवन में थोड़ा सा वो क्या ऐसा पल आया है जो आप हमसे साझा करना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से?
0: हाँ, रोचक पल ही है कि उस समय पटना से पहले कार्यक्रम होता था तो चौपाल लगता था
2: जी,
0: तो खुरखुर भाई और लोहा सिंह लोग थे, इन लोग अपना जो देते थे तो बड़ी मस्त प्रोग्राम हुआ करता था और एक भाषा का जैसे वहाँ समन्वय होता था, विभिन्न भोजपुरी, मैथिली, हिंदी, ये वो, और तो मेरे मन में भी जिज्ञासा गया कि मैं भी संस्कृत पढ़ूं और हम भी हिंदी पढ़ूं, इंग्लिश, ये वो, तो वही हुआ। इस बीच में एक कार्यक्रम होता था जिसे आप लोगों ने शायद इग्नोर कर दिया है, रत्ती की टोकरी में रथ डाला है, वो था भदवा में कदवा।
2: ये बहुत पहले की बात कह रहे हैं आप, लेकिन आपका सुझाव हम अपने वरीय पदाधिकारी तक जरूर पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ जो कार्यक्रम की रूपरेखा जब भी तय हो तो इसमें आपके सुझाव को हम वहाँ तक पहुँचा करके कार्यक्रम से इस नए फॉर्मेट को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे।
1: अब देखिए सतीश जी, वक्त भी बदल गया, जहाँ तहाँ जो है वो कंक्रीट की सड़क बन गई, तो अब भदवा में कदवा होना बंद हो गया, तो हम लोग भी उससे थोड़े दूर हो गए हैं। तो सतीश जी, वैसे चेष्टा करेंगे कि पुरानी चीजों को फिर से लाने की कोशिश करें आप जैसे श्रोताओं के लिए।
0: तो उसमें होता है क्या, ये जो रविवार में
2: जी
0: 12:30 से प्रोग्राम होता है नाटक का, ये एकांकी का, जिसमें बस रिपीट हुआ करता है, वही दहेज वाला प्रोफेसर साहब, इंजीनियर साहब, वो घसल अठन्नी, बाज उठल, हाँ कतो जाओ, अवलंब पाओ, तो ये सब तो है, लेकिन आखिर इसमें तो होना चाहिए विभिन्न भाषाओं का
1: सतीश जी, हमारे पास अभी भी आकाशवाणी के पास बहुत सारे संचित नाटक हैं और हम पूरी चेष्टा कर रहे हैं कि उनको नए तकनीक में ढालने की कोशिश करें। दरअसल वो पुराने फॉर्मेट में रिकॉर्डेड हैं और हम उन्हें नए तकनीक में ढाल के आप तक लाएंगे।
0: अभिलाषा पूरी होगी
1: जी,
0: और एक जो है अर्थ, समय का अर्थ जो देने वाला ये माध्यम है, आप जो एक साथी है, पहले समय बताता था ये रेडियो माध्यम था, लेकिन अब तो समय को अर्थ देने वाला ये साथी बन चुके हैं आप, तो एक साथी के साथ जब मैंने सुना दुरा रहा हूँ, मेरी जीवन संगिनी जो है धर्मपत्नी, वो कह रही है कि अलग साथी बना रहे हैं, ना भाई तू तो ये हो।
1: हम कामना करते हैं सतीश जी कि आप और आपकी जीवन संगिनी दोनों मिलकर के इस रेडियो का आनंद लीजिए, ये आपका तीसरा साथी बनकर आपके साथ रहे।
2: आकाशवाणी दरभंगा से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। हेलो,
3: हाँ नमस्कार सर।
2: हाँ जिवेश जी नमस्कार।
3: हमारे ओर से समस्त आकाशवाणी परिवार को 50 वर्ष पूरे होने पर शुभकामना, और सारे रेडियो के श्रोतागण सभी श्रोतागण सबको हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामना।

0: धन्यवाद जिवेश जी आपका। कब से रेडियो सुन रहे हैं जिवेश जी आप?
1: हम सर लगभग 74-75 से सुन रहे हैं।
0: 74-75 का लगभग, ये तो 52 साल के आसपास का ये समय हो गया। तो 52 सालों में रेडियो के तब का और अब का जो कार्यक्रम है, इसमें ये जो बदलाव का जो चला है ये दौर, ये कैसा लग रहा है आपको अभी?
1: जमीन आसमान का अंतर है।
0: अच्छा है या बुरा है ये?
1: क्योंकि हम रेडियो स्टेशन के अंदर जा कर के
0: जी
1: हमारे पिताजी वहीं पर जो हवाई के पश्चिम सौ में ग्रामा डिवीजन का सेंटर है
0: जी जी जी
1: उसी में कार्य करते स्वर्गीय छत्रनाथ मिश्रा।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: ताराचरण जी थे, सीताराम शर्मा जी थे।
2: बिल्कुल, ये वो दौर था जब हराही पश्चिम का वो किनारा बहुत गुलजार रहा करता था कलाकारों से, है ना?
1: जी जी जी जी। उसी हमारे पिताजी थे।
0: कौन कौन से कार्यक्रम हमारे केंद्र के ऐसे हैं जो सुनते हैं जिवेश जी आप अभी?
1: कोई ऐसा कार्यक्रम बोले कि नहीं सुनते हैं।
0: तो एक आध कार्यक्रम जिनसे जुड़े हुए कुछ रोचक कुछ बातें बताएं हम लोगों से साझा करें जी।
1: रात 9 बजे के बाद नहीं सुनते हैं।
2: तो जिवेश जी, कोई ऐसा खास कार्यक्रम जो आपको बहुत पसंद आता हो?
1: सबसे ज्यादा हमको पसंद आता है आपको ये नमस्कार मिश्रा
2: जी,
1: और उसके बाद समाज सेवा से विद्यापति जी
2: जी जी,
1: घर आंगन
0: जी जी, जी ये गांव घर के अंतर्गत है।
1: हाँ, गांव घर नैना भुटका
0: जी जी,
1: शुक्रवार जो आज के दिन में जो होती है
0: जी जी जी,
1: और सबसे अच्छा लगता है इतवार को जो आपका ये नाटक का कार्यक्रम होता है
0: जी, 12:30 बजे के आसपास ये कार्यक्रम होता है।
1: 12:30 बजे के आसपास 1 बजे तक
0: जी,
1: वो मैंने चौक से सुनते हैं क्योंकि हम शिक्षक हैं पेशे से
0: जी,
1: और एक कलाकार भी है। नाटक वगैरह मंचन हम बहुत सारे ढंग से करते हैं
0: जी जी,
1: तो कुछ परिपेक्ष में सुनना बहुत सुंदर लगता है
0: जी। आकाशवाणी से जुड़े हुए कुछ अपने रोचक अनुभव कुछ आप हमसे साझा करना चाहते हो इस कार्यक्रम के माध्यम से?
1: हाँ, तो ऐसा कि जब तीसरी चौथी क्लास में पढ़ रहे थे
0: जी,
1: तो हम जो भाई बहन थे, हम और विभा जी थे, जो भी आती है हमारी छोटी बहन
0: जी,
1: दोनों हमारे पिताजी साथ लेके गए थे कपड़ा खरीदने के लिए दरभंगा
0: जी जी,
1: तो उसमें जो है हमको ले जाया गया था अंदर जब रिकॉर्डिंग हो रही थी
0: जी
1: उस रूम में, लेकिन हिदायत दिया गया था कि कुछ बोलना नहीं
0: जी। हाँ, वो रिकॉर्डिंग
1: साथ लोग देखते रहोगे कुछ बोलना नहीं
0: जी जी,
1: तो उसमें जो नजारा देखे थे जब रिकॉर्डिंग हो रही थी,
0: हाँ
1: नजारा जो देखे थे हम बजाते हुए
0: जी,
1: वो नजारा हमको अभी भी याद है उसी रूप में।
0: तो ये तो कार्यक्रम निर्माण का की चर्चा आप कर रहे हैं, कार्यक्रम को रेडियो सेट पे सुनने का जो अनुभव आपका रहा है अब तक का, उससे जुड़े हुए कुछ रोचक कुछ ऐसे वाकयात आपके साथ में कुछ हमसे साझा करना चाहते हो जो आप?
1: हाँ बिल्कुल सर, उसमें हेलो डॉक्टर जो होता है
0: जी, हाँ हेलो जिंदगी,
1: हेलो जिंदगी डॉक्टर कार्यक्रम जो इतवार को होती है
0: जी जी,
1: वो से सुनते हैं चाहे वो हमसे संदर्भित हो
0: जी
1: या मगर सुन करके किसी दूसरे को मैंने सत्र का जागरूक करना हो
0: जी जी,
1: वो हम चौ से सुनते हैं
0: जी। बिल्कुल, आपके माध्यम से हम अपने सभी श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि आकाशवाणी दरभंगा के सभी कार्यक्रम से हम ये उम्मीद करते हैं कि श्रोताओं को कुछ नई नई रोचक जानकारियां उन तक हम साझा कर सकें और उनका साथ में मनोरंजन भी कर सकें। जी हाँ जी हाँ, कहिए जी वैसे
1: इतवार को जो नाटक के बारे में जिक्र किया हूँ
0: जी जी जी,
1: हाँ वो आपको नाटक था जैन ईसाई पर आधारित
0: जी,
1: वो आज से साल भर 6 महीना पहले बराबर आता था
0: जी जी,
1: जमर अमर करके।
0: अच्छा,
1: वो जैन ईसाई पर था जो बच्चा गया था रसाम के खाने के लिए और उसको माँ मना कर दी कि वो जैन है उनके घर का सामान मत खाओ
0: जी,
1: तो जैन जोगिन के प्रसाद पर जो खेत लगता है
0: जी
1: आज के मैंने विकसित युग में

0: ठीक है, आपकी बात जो है सो हम लोग ध्यान में रखेंगे और बहुत जल्द आपको वो नाटक जो है दोबारा फिर से सुनने को मिल सकता है।
1: और एक बात और आपको कहना चाहेंगे सर
0: जी,
1: ये कार्यक्रम तो मैंने कितना प्रसारित अप्रसारित लोकप्रिय है ये तो कहना मुश्किल है।
0: जिवेश जी, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा ये उद्देश्य है, आकाशवाणी दरभंगा का ये उद्देश्य है कि हम श्रोताओं के मन की बात जो कार्यक्रम में बदलाव को लेकर के अच्छी या बुरी जो भी है उसमें हम सुधार करने के प्रक्रिया में उसको हम अमल कर सकें। तो कार्यक्रम का मूल उद्देश्य यही है कि आपसे जुड़ें, आपसे आपकी बातों को हम सुनें और जो कुछ भी बदलाव हम कर सकते हैं यथासंभव उसको करें और कार्यक्रम को और रोचक और मनोरंजक बना सके आप लोगों के लिए। जी हाँ, बीच में दो एपिसोड का गैप हुआ था लेकिन अब ये कार्यक्रम लगातार रेगुलर जो है आपको सुनने को मिलेगा। नहीं नहीं, बंद नहीं हुआ था। नहीं जी नहीं, बंद नहीं हुआ था, ये तकनीकी कारणों से बंद था लेकिन अब ये लगातार आपको सुनने को मिलेगा। हर एक प्रत्येक महीने की पहली रविवार को दिन के 2:30 से 3 बजे के बीच। कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद जिवेश जी।
1: नमस्कार।
0: श्रोताओं, 2 महीने के लंबे अंतराल के बाद आज हमें आपके ढेर सारे कॉल प्राप्त हुए हैं, आपसे बातें भी हुई। कुछ श्रोताओं की हमसे बात नहीं हो पाई जिसका हमें बहुत दुख है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले अंक में आपसे निश्चित ही बात होगी। इसी तरह आप सभी श्रोता अपना प्यार आकाशवाणी दरभंगा पर बनाए रखें।
2: ये था कार्यक्रम रेडियो की बात श्रोताओं के साथ। स्वर सहयोग सागर कुमार सिंह का था, परिकल्पना और प्रस्तुति मितेश कुमार मिश्रा का, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

आकाशवाणी दरभंगा से लीजिए अब सुनिए विद्यापति गीत। पहले सुनिए गौतम मिश्र का गाया हुआ ये गीत।

विद्यापति गीतों के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गौतम मिश्र का गाया हुआ ये गीत। अब सुनिए कुंज बिहारी मिश्र के स्वर में।

इसी गीत के साथ ही विद्यापति गीतों का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। गायक कलाकार थे गौतम मिश्र, कुंज बिहारी मिश्र और राम कुमार मल्लिक। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:20 हो चुके हैं। आज की पहली सभा यहीं समाप्त होती है। दूसरी सभा इसी मीटर पर संध्या 5 आरंभ होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

दो गुलाब फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अगले गीत की फरमाइश हमें आई है पारण सावंगी से, गजानन निखार, खुशाल सोनकुसरे और नामदेव भूते की। और आपने सुनना चाहा है आवारा फिल्म से गीत, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, मुकेश की आवाज। सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

कार्यक्रम मन चाहे गीत में अगली फरमाइश जो पूरी हो रही है सौदागर फिल्म के लिए, ये गीत की फरमाइश आई है ग्राम सरखों जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से राजेश रेखा साव, कमलेश रावी साहू, हनी हिमांशु, डिम्पी और सेजल साव के साथ ही ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित वायात, सर्वद देशमुख, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली सानवी और कल्पना की। आप सभी के पसंद पर सौदागर फिल्म से गीत सुनिए। कविता कृष्णमूर्ति, मनहरदास की आवाजें, सुखविंदर सिंह की आवाज भी साथ ही आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत।

0: इस गीत के साथ ही आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपको सुनवाते हैं नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग। महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है। हिंदी रूपांतरण किया है सीताराम चतुर्वेदी ने, रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक चिरंजीत। तो आइए सुनते हैं नाटक माल

0: अग्निमित्र का दूसरा और अंतिम भाग।
1: हाँ तो महाराज, आज्ञा कीजिए।
2: देखो सुंदरी, बहुत दिनों से इसी अशोक की तरह मुझ में भी थैले के फूल नहीं आ रहे, इसलिए आज तुम अपने स्पर्श का अमृत पिलाकर अपने इस अनन्य प्रेमी के मन की भी साथ पूरी कर दो।
3: हाँ हाँ मालविका, पूरी कर दो इनके मन की साथ।
4: कौन रानी हीरावती?
3: अशोक में तो अभी फूल नहीं आए हैं, पर ये महाराज तो अभी से फूले जा रहे हैं। ये मालविका तो जैसे गूंगी हो गई है। मैं पूछती हूँ, तू चुप क्यों?
2: मित्र, अब क्या किया जाए?
4: जल्दी से पांव का सहारा लिया जाए महाराज।
3: बकुला वालिका, तूने ये दूती का अच्छा काम अपने ऊपर लिया है, अब कराना आर्य पुत्र के साथ पूरी।
5: देवी, आप तो व्यर्थ ही हम पर क्रोध कर रही हैं।
6: भला हम कौन होती हैं
5: महाराज के साथ पूरी करने वाली। आओ मालविका, हम चले।
6: चलो।
3: ओह, इन पुरुषों पर भूल कर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं अब तक आर्य पुत्र की चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास करती रही। ओह, मैं क्यों इनके प्रेम जाल में फंसी।
4: महाराज, अरे महाराज, कुछ तो बात बनाइए। रंगे हाथों पकड़ा गया चोर भी कह देता है। मैं चोरी करने के लिए सिर नहीं लगा रहा था, मैं तो ये देखना चाहता था कि आया मैंने दीवार फोड़ने की विद्या ठीक ठीक सीख ली है या नहीं।
2: सुंदरी, मालविका जैसी दासी से भला हमें क्या लेना देना। तुम्हारे आने में देर हो रही थी, इसलिए थोड़ा मन बहलाने के लिए हम।
3: जी हाँ, आप एकदम सच कह रहे हैं। मुझे यदि पता होता कि बेचारे आर्य पुत्र को मन बहलाने के लिए यही वस्तु मिली है, तो मैं अभागिन बीच में आती ही क्यों।
2: परंतु देवी,
3: मेरे साथ छल न कीजिए। वहाँ आड़ में खड़े होकर मैंने सब कुछ देखा भी और सुना भी।
2: ओह, मुझसे निश्चय अपराध हुआ, क्षमा कर दो। शांत हो जाओ देवी, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, अब मान भी जाओ ना।
3: ये मालविका के पैर नहीं जो आपके मन के साथ पूरी कर देंगे। आनी पुड़ी का हम चले यहाँ।
4: महाराज अनर्थ हो गया महाराज।
2: क्या हुआ?
4: महारानी धारिणी ने मालविका और बकुला वालिका के पैरों में बेड़ियां डलवा कर दोनों को नीचे के भंडार वाली काल कोठरी में बंद कर दिया महाराज।
2: ओह, ये सब हमारे प्रेम की बात जानकर ही किया गया होगा। हमारी किस वैरी ने देवी धारिणी को जाकर भड़काया?
4: छोटी रानी इरावती ने महाराज।
2: लगता है इरावती हमसे बहुत रुष्ट हो गई है।
4: महारानी धारिणी की पांव की चोट अभी ठीक नहीं हुई है ना महाराज, तो परिवराज का कौशिकी उनके पास बैठी थी, तभी इरावती भी कुशल मंगल पूछने के लिए वहां पहुंच गई और बातों बातों में आपका पूरा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया।
2: फिर क्या हुआ?
4: अब क्या होना था महाराज, मालविका और बकला वालिका को बंदी बनाकर नाग कन्याओं के समान ऐसे पाताल में भेज दिया जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती महाराज।
2: ये तो बहुत बुरा हुआ। कहो मित्र, उन्हें छुड़ाने का कोई उपाय हो सकता है या नहीं?
4: अब उपाय क्या होगा महाराज, निचले भंडार की पहरेदार को महारानी धारिणी ने कह दिया है कि उन दोनों अभागिनों को बिना उनकी अंगूठी देखे कभी ना छोड़े। अब महारानी की वो अंगूठी कैसे हाथ लगे महाराज?
2: मित्र, कोई युक्ति तो लड़ाओ।
4: युक्ति महाराज, महारानी की अंगूठी में नाग मुद्रा जड़ी हुई है ना।
2: हाँ।
4: तो उपाय मिल गया महाराज। कोई छिप कर सुन रहा हो, कान में सुनिए।
7: मैं नाग को बांध करके नाग मुद्रा लेके
2: जियो मित्र, बहुत बढ़िया उपाय सोचा तुमने, बस अब देर न करो।
4: तो आप महारानी धारिणी के पास जाइए, वे इस समय पवन गृह में दासियों से घिरी पलंग पर बैठी परिवराजिका से कथा सुनकर मन बहला रही हैं।
2: तो हमारे लिए वहां जाने का ये अच्छा अवसर है, इस प्रतिहारी जैसे इनको सब समझा दो।
4: अभी समझाए देता हूँ महाराज, आप वहां पहुंचे।
8: जयसेन इधर आओ।
9: कहिए आज ये गौतम।
8: कान में सुनो।
10: जय हो, अरे पुत्र की जय हो। विराजी, आपकी विजय हो देव।
2: प्रणाम भगवती। कहो देवी, पाँव की पीड़ा कुछ कम हुई?
10: आज तो कुछ कम है देव।
3: अरे श्यारी गौतम घबराया हुआ इधर चला रहा है, हाथ का अंगूठा इसने जनेऊ से क्यों बांध रखा है?
11: महाराज मर गया, मुझे बताइए महाराज, मुझे सांप ने काट लिया।
2: ये तो बहुत बुरा हुआ। प्रतिहारी, भाग कर वैद्य ध्रुव सिद्धि को बुला लाओ।
9: जैसी देखती आज्ञा।
2: मित्र गौतम, कहाँ घूम रहे थे

0: तुम जो सांप ने
1: महाराज, मैं देवी का कुशल मंगल पूछने के लिए आने लगा तो सोचा भेंट के लिए दो चार फूल ही लेता चलूं। मैं प्रमद वन चला गया, वहां फूल तोड़ने के लिए दाहिना हाथ बढ़ाया ही था कि काल परी का सांप ने मुझे डस लिया। महाराज ये देखिए अंगूठे पर उसके दांतों के चिन्ह।
2: हाय हाय, मेरे ही कारण बेचारे ब्राह्मण के प्राण संकट में पड़े हैं।
1: अरे फांसी काल ने मुझे दबोच लिया।
0: घबराओ मत, हो सकता है कि सांप विषैला ना हो।
1: मेरा तो अन्नंगा करता जा रहा है, सारे शरीर में फैलता जा रहा है।
2: हाँ, इसकी तो दशा बिगड़ती जा रही है। अरे कोई संभालो इस दीन ब्राह्मण को।
3: अरे गौतम, तनिक संभलिए, धीरज से काम लीजिए।
1: महाराज, मैं आपका मान सका हूँ, सुनाते मेरे बात मेरी निपुती माँ की देखभाल कीजिएगा।
0: ये क्या कह रहे हो मित्र, अभी वैद्य आकर तुम्हें अच्छा कर देगा।
4: महाराज महाराज, वैद्य जी ने कहा है कि आज गौतम का उपचार उनके चिकित्सालय में ही हो सकेगा, इन्हें वहां ले जाना होगा। महाराज
0: तो संभाल कर इन्हें वहां ले जाओ।
4: देव की कैसी आ गया,
1: कौन जाने मैं जीव या मरू। सेवा करते हुए मुझसे जो कुछ भूल चुक हो वो क्षमा कीजिए।
2: नहीं नहीं आर्य गौतम, भगवान करे तुम बहुत दिन जियो।
4: याद आया महाराज, वैद्य जी ने कहा है कि जलघट विधान द्वारा किसी ऐसी वस्तु से इनका विष उतारा जाएगा जिसमें नाग मुद्रा जड़ी हुई हो। क्या कोई ऐसी वस्तु मिल सकती है?
2: मेरी अंगूठी में नाग मुद्रा जड़ी हुई है, ये ले जाओ, काम हो जाने पर मुझे लौटा देना।
4: देवी की जैसे आज्ञा। आइए आइए।
5: जैसे ये अंगूठी मुझे दो। कुछ देर बाद मंत्री जी का बहाना करके महाराज को बाहर बुला लाना और फिर यथाशीघ्र उन्हें गुप्त मार्ग से प्रमद वन में पहुंचा देना, समझे?

0: कौन? अरे गौतम, आज आप निचले भंडार में कैसे आए?
1: ये देखो महारानी की अंगूठी।
0: अंगूठी तो उन्हीं की है।
1: तो तुरंत मालविका और बकला वलका को अपनी उस काल कोठरी से मुक्त करो।
0: ओह,
1: यहाँ कितना अंधेरा है, काल कोठरी में तो और भी।
0: अभी मशाल जलाती हूँ और उन दोनों को बंधन मुक्त करती हूँ। परंतु मैं सोच रही हूँ, इतने सेवकों के रहते देवी ने आप ही को क्यों भेजा?
1: देवी ने क्यों भेजा? अरे तो तुम्हें नहीं मालूम, ज्योतिषियों ने कहा है कि आजकल महाराज के ग्रह कुछ बिगड़े हुए हैं, इसलिए तमाम बंदियों को मुक्त कर दिया जाए। देवी ने तुरंत मुझे बुलाया और।
0: ठीक है ठीक है, मैं उन दोनों को अभी छोड़ देती हूँ।
2: आप धन्य है आर्य गौतम, परंतु आपने खेल कैसे खेला?
1: ये मैं फिर बताऊंगा बकला वलका। इस समय तुम मालविका को गुप्त मार्ग से समुद्र ग्रह में ले जाकर प्रतीक्षा करो, मैं महाराज को ढूंढकर वहीं लाया।
2: जो आज्ञा।

0: सखी मालविका, महाराज को प्रणाम करो।
1: आपको प्रणाम।
0: अरे ये तो समुद्र गृह में लगा हुआ महाराज का चित्र है। अच्छा सखी, तुम भी मुझे बना रही हो?
1: बनाना कैसा, इस चित्र में महाराज ही तो है।
0: हा?
1: तो आओ हम दोनों प्रणाम करें।
0: स्वामी की जय हो।
1: सखी, उस दिन हड़बड़ी में मैं महाराज को अच्छी तरह देख भी नहीं पाई थी। आज इस चित्र में चीख भर कर महाराज का रूप देखकर भी मैं अखा नहीं रही हूँ।
0: क्यों सखी, चित्र में ये कौन स्त्री है जिसकी ओर महाराज मुंह घुमाकर बड़ी प्रेम भरी चितवन से देख रहे हैं?
1: ये छोटी रानी इरावती है।
0: ओ सखी,

0: आज का प्रेम सब रानियों पर एक से नहीं जान पड़ता। देखो ना, सबकी ओर से ध्यान हटाकर वे केवल देवी इरावती का ही मुख निहार रहे हैं।
1: ये भोले चित्र के महाराज को सचमुच का महाराज समझकर दाह करने लगी है। अच्छा, तो मैं भी इसे बनाती हूँ।
2: क्यों ना महाराज देवी इरावती का मुख निहारे, यही तो महाराज को सबसे अधिक प्यारी है।
0: तो फिर मैं क्यों तिल तिल अपनी देह जलाऊं?
3: हे कमल नयनी,
0: स्वामी की जय हो।
3: प्रिय, चित्र में चित्रकार द्वारा अंकित हमारी मुख मुद्रा को देखकर तुम क्यों रो उठ गई? तुम्हारा ये अनन्य दास तो तुम्हारे सामने खड़ा है।
1: तो क्या मैं सचमुच चित्र में चित्रित स्वामी से रूठ गई थी?
0: स्वामी की जय हो।
3: प्रिय,
4: अरे आप कहते कहते चुप क्यों हो गए महाराज?
3: मित्र, क्या बताऊं, तुम पर भरोसा नहीं हो रहा। हमारी आंखों में बसी है परंतु देखते देखते ओझल हो जाती है। हमारी
0: सखी, तुमने महाराज को बहुत झकाया है, अब कुछ ऐसा जतन करो कि तुम पर भरोसा करने लगे।
1: सखी, मुझ अभागी की तो महाराज से स्वप्न के कभी भेंट नहीं हुई।
0: महाराज, इसका उत्तर तो आप ही दे सकते हैं।
3: उत्तर क्या दें बकलावाल का, हम तुम्हारी सखी से अपनी कोई सेवा नहीं कराना चाहते। हम तो एकांत में प्रेम की अग्नि को साक्षी बनाकर इनकी सेवा के लिए अपने को समर्पित किए दे रहे हैं।
4: अरे बकला बलिका, उधर देख, उस नन्हे अशोक के पत्तों को वो हिरण चले जा रहा है। आ आ, उसे भगा ले। चल चले। महाराज घबराइए नहीं, मैं इस समुद्र ग्रह के द्वार पर हूँ।
0: निपुणिका, ये सूचना ठीक है कि आर्य गौतम समुद्र गृह के द्वार पर अकेले सो रहे?
5: मैं स्वामिनी से झूठ थोड़ी ही बोलूंगी।
0: बेचारे को सांप ने काटा था, तो चल वहीं चलकर हम उसका हालचाल जान लें। और
5: देवी, आप कुछ कहते कहते रुक क्यों गई?
0: उस समुद्र गृह में महाराज का एक चित्र है ना, वहाँ चलकर चित्र में अंकित महाराज को भी मना लिया जाए।
5: चित्र की बजाय आप स्वयं महाराज को ही चक्कर क्यों नहीं मना लेती?
0: अरे पगली, किसी दूसरे से प्रेम करने वाले महाराज हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे उनका चित्र। मुझे दुख है कि उस दिन उन्होंने मुझे इतना मनाया पर मैं रूठी ही रही। आ चले समुद्र गृह की ओर।

0: देवी वो देखिए आज ही गौतम सांड की तरह समुद्र गृह के द्वार पर बैठे बैठे सो रहे हैं।
1: बेचारे की कैसी दशा है, लगता है विष का विकार अभी पूरी तरह दूर नहीं हुआ।
0: पर इनके मुंह पर जो प्रसन्नता झलक रही है उससे तो ऐसा नहीं लगता।
2: हे देवी मालविका। हाँ?
0: सुना स्वामिनी, यह गौतम पेट तो भरता है आपके दिए लड्डुओं से और स्वप्न में नाम रट रहा है मालविका का।
2: मालविका, तुम छोटी रानी रावती से भी ऊंचा स्थान पाओ।
1: ये कृतघ्न बामन,
0: ठहरिए आइए हम दोनों उस खंबे की वट में छिप जाएं। अब यहाँ से मैं इस डरपोक ब्राह्मण पर ये सांप जैसी टेढ़ी लकड़ी फेंकती हूँ।
3: महाराज बताइए, महाराज बताइए, मुझ पर सांप आ गया महाराज।
4: डरो मत मित्र, मैं आ रहा हूँ।
5: महाराज उधर न जाइए।
1: अच्छा तो ये बात है, समुद्र गृह में महाराज और मालविका।
2: अरे ये तो लकड़ी है, मैं समझा था कि केतकी के कांटों से सांप के दांतों का झूठ मूठ चिन्ह बनाकर मैंने सांप पर जो कलंक लगाया था उसी से मुझे दंड देने के लिए सचमुच का सांप आ गया। मैं बेकार ही डरा।
4: मैं कहां है सांप?
5: महाराज आगे न जाइए, वहां एक कुटिल सांप छिपा बैठा है।
1: महाराज रुकिए। कहिए, दिन में मिलने वाले इस प्रेमी युगल के मन की साथ पूरी हो गई?
4: देवी रावती,
1: सच्ची बकुलावली का ये किसान है। बकुलावली का तुझे बधाई है, दूती के रूप में तूने इन दोनों को मिलाने का जो संकल्प किया था वो आज पूरा हो गया, परंतु

0: मैं पूछती हूँ, तुम दोनों को बंदी गृह से छुड़ाया किसने? निपुणिका, भाग कर महारानी धारिणी के पास जा और पूछ के ये सब हुआ कैसे।
1: जो आ गया।
2: ओह, ऐसे तो सब गड़बड़ घोटाला हो गया। पिंजरे से छूटा हुआ कबूतर कैसा हमने आके रहा।
3: देवी, इन दोनों को हमने ही बंदी गृह से छुड़वाया है। उत्सव के दिन अपने सेवकों को बंदी बनाना उचित नहीं है ना।
1: देवी, क्या बात है निपुणिका, तू लौट आई? रास्ते में मुझे निचले भंडार की पहरेदार मिल गई, उसने बताया। आइए इधर, कान में सुनिए।
4: सेकी बकुला वाली का मुझे तो बहुत डर लगता है, पता नहीं क्या होने वाला है।
0: अच्छा, तो ये सब इस बामन के करतूत है? क्यों, प्रेम नीति के मंत्री महोदय?
5: यदि मान नीति का ज्ञाता होता तो क्या मैं महाराज को ऐसे फंसने देता?
0: मैं सब समझती हूँ, मैं अभी महारानी धारिणी के पास जाती हूँ।
6: राज प्रासाद वासियों सुनो, एक आश्चर्यजनक समाचार, हर्ष समाचार। महारानी के प्रिय सुनहरे अशोक वृक्ष का हर्ष समाचार। उसका दोहद पूरा हुए 5 रातें भी नहीं बीती कि उसमें फूल आ गए। अपने सुनहरे अशोक के फूलने पर महारानी अत्यंत प्रसन्न है। आज वे प्रमद वन में महाराज को बुलाकर सुनहरे अशोक के फूलने का उत्सव मनाएंगी।
7: वासियों सुनो सुनो, एक और हर्ष समाचार। वीरसेन के सेनापतित्व में महाराज की विजयनी सेना ने विदर्भ पर विजय पाली। विदर्भ राज के चचेरे भाई और महाराज के मित्र माधवसेन मुक्त हो गए। माधवसेन ने हे स्वरूप महाराज को बहुत से अनमोल रत्न, हाथी, घोड़े और उच्च कोटि के कलाकार सेवक भेजे हैं।

0: विदिशापति महाराज अग्निवीर
1: प्रमगमन उत्सव में बलारे
0: शुंग कुलभूषण विदिशापति महाराज अग्निवीर
1: प्रमगमन उत्सव में बधार रहे हैं।
2: जय हो विदर्भ विजेता आर्य पुत्र की जय हो।
3: देवी सुनहले अशोक के फूलने पर आपको भी बधाई।
2: विराजिए देव।
4: विदर्भ विजेता महाराज की जय हो।
3: प्रणाम भगवती।
4: आपके मन की साथ पूरी हो।
2: आर्य पुत्र फूलों से लदे सुनहले अशोक की शोभा निहारिए। आपके लिए अशोक का एक ऐसा प्रेम गृह बना दिया है।
3: देवी के हाथों अशोक का ऐसा आदर होना ही चाहिए, क्योंकि ये वसंत लक्ष्मी के कहने पर नहीं देवी के प्रयत्न से फूल उठा है। और हाँ देवी, आज ब्राह्मणों को भी दान दक्षिणा दे दी गई है ना?
2: हाँ महाराज, जब से अपने कुमार वसुमित्र को पूज्य सेनापति जी यज्ञ के घोड़े का रक्षक बनाकर ले गए हैं, तभी से उसके कुशल क्षेम के लिए मैं बराबर 400 स्वर्ण मुद्राएं योग्य ब्राह्मणों को दक्षिणा में देती रहती हूँ।
3: हमारा पुत्र चिरजीवी हो।
5: महाराज की जय हो। विदर्भ से जो कलाकार स्त्रियाँ आई हैं, यदि आज्ञा हो तो उन्हें सेवा में उपस्थित किया जाए।
3: ले आओ।
5: जैसी देव की आज्ञा। लीजिए महाराज प्रस्तुत हैं।
6: महाराज की जय हो। महारानी की जय हो।
3: आप लोग किस कला में निपुण हैं?
6: महाराज हम लोगों ने संगीत सीखा है।
3: लो देवी, इनमें से जिसे चाहो अपने लिए चुन लो।
2: मालविका आके देव देखो इनमें से कौन संगीत में तुम्हारा साथ देने के लिए ठीक रहेगी।
6: अरे राजकुमारी आप यहाँ? जय हो
7: राजकुमारी की जय हो।
2: अरे अरे मालविका राजकुमारी।
3: मालविका राजकुमारी।
6: हाँ महाराज ये हमारी राजकुमारी है।
3: कैसे?
6: सुनिए महाराज,

0: आपकी सेना ने विदर्भ के राजा को परास्त करके जिन कुमार माधव सेन को बंदी गृह से छुड़ाया है, ये उन्हीं की छोटी बहन मालविका जी है।
1: ओह, तो क्या मालविका राजकुमारी है? इसे मैंने दासी बनाया। ओह, चंदन से खड़ाऊं का काम लेकर मैंने कितना बड़ा पाप किया है।
2: भद्रे, बताइए ये इस रूप में यहाँ कैसे आई?
0: मैं निवेदन करती हूँ महाराज, कुमार माधव सेन हम सब लोगों के साथ राजकुमारी जी को लेकर विदिशा आ रहे थे। उनके मंत्री आर्य स्मृति जी भी साथ में थे। रास्ते में कुमार माधव सेन को उनके चचेरे भाई विदर्भराज ने पकड़कर बंदी बना लिया। स्वामी भक्त मंत्री सुमति जी हमें पीछे छोड़ राजकुमारी जी को वहाँ से सुरक्षित निकाल कर ले गए।
2: फिर क्या हुआ?
0: आगे का हाल मुझे नहीं मालूम महाराज।
3: आगे का हाल मैं अभागिन बताती हूँ महाराज।
2: भगवती, आप
0: राजकुमारी सन्यासिनी के वेश में ये तो आर्य कौशिक की जान पड़ती है।
4: हाँ, वही है। प्रणाम भगवती।
3: कल्याण हो।
2: भगवती,

0: की ही भविष्यवाणी आपके चरणों की सेवा करते हुए पूरी हो रही, तो मैं चुप्पी साधे रही। और
1: महाराज की जय हो। मंत्री परिषद ने पूछा है कि जीते गए विदर्भ देश की कैसी व्यवस्था की जाए।
2: हम चाहते हैं कि विदर्भ देश यज्ञ सेन और माधव सेन में आधा आधा बांट दिया जाए, दोनों भाई अलग अलग। वैसे

0: सुख से राज करें, जैसे सूर्य और चंद्रमा रात और दिन को आपस में बांटकर अलग अलग चमकते हैं। जाओ मंत्री परिषद को हमारी ये इच्छा बता दो।
1: जो महाराज की इच्छा।
2: राजकुमारी, ये तो बहुत अच्छा हुआ, आपके भाई राजकुमार को महाराज ने आधे राज्य का शासक बना दिया है। उनके प्राण बच गए, यही बहुत है।
1: महाराज की जय हो। आपके पिता पूज्य सेनापति पुष्यमित्र का ये पत्र आया है।
0: पिताजी का पत्र, लाओ देखें।
2: ओह, मेरा जी भी इसे सुनने को छटपटा रहा है। मेरे बेटे वसुमित्र का भी इसमें समाचार होगा। पूज्य सेनापति जी ने उसे यज्ञ के अश्व का रक्षक बनाकर बड़ा ही संकट पूर्ण कार्य सौंप रखा है। महाराज पढ़िए ना ये पत्र।
0: पिताजी हमें लिखते हैं, अश्वमेध यज्ञ का संकल्प करके हमने जो घोड़ा 100 राजपुत्रों सहित कुमार वसुमित्र के संरक्षण में 1 वर्ष की अवधि बांधकर मुक्त छोड़ा था, वो सिंधु नदी के दक्षिण तट पर पहुंचकर चल रहा था। उसे यवनु ने पकड़ लिया, फलतः हमारी और शत्रु सेना में घोर युद्ध हुआ।
2: फिर क्या हुआ?
0: फिर वीर वसुमित्र ने शत्रु सेना को परास्त करके हमारा घोड़ा छुड़ा लिया। जैसे पौत्र अंशुमान द्वारा छुड़ाकर लाए गए अश्व से राजा सगर ने यज्ञ किया था, वैसे ही अब हम अपने पौत्र द्वारा वापस लाए गए अश्व से यज्ञ कर रहे हैं। अतएव तुम प्रसन्न चित्त हो, बहुओं के साथ यज्ञ देखने के लिए तुरंत चले आओ। पिताजी की बड़ी कृपा है जो हमें बुलाया।
2: महाराज, महारानी, पुत्र की विजय के लिए आप दोनों को बधाई। देवी, अब तक आप वीर पत्नियों के ही सिरमौर थी, आज से आपको वीर माता होने का भी गौरव मिला।
3: भगवती, मुझे तो प्रसन्नता है कि मेरा पुत्र पिता के समान ही पराक्रमी निकला।
0: आज हम बहुत प्रसन्न हैं। मौदगल, जाओ यज्ञ सेन के साले समेत सभी बंदियों को मुक्त कर दो।
3: जय सेन।
1: आज्ञा देवी।
3: रनिवास की सभी रानियों को हमारे पुत्र की विजय का समाचार दो। और हाँ, देवी इरावती से निवेदन कर देना कि अशोक के फूलने पर मालविका को मोह मांगा पुरस्कार देने का मैंने वचन दिया था, हमें वो वचन पूरा करना चाहती हूँ, फिर कोई विघ्न न डाले।
1: देवी की कैसी आज्ञा।
3: मालविका इधर आओ। प्रस्तुत हूँ देवी। आर्य पुत्र, आपने कुमार की विजय का जो प्यारा समाचार सुनाया उसके बदले में यह प्यारा पुरस्कार स्वीकार कीजिए। अरे आप लजा क्यों रहे हैं, मालविका को ग्रहण कीजिए।
4: देवी, महाराज तो लोक व्यवहार दिखा रहे हैं, ऐसे अवसर पर सभी नए दूल्हे लजा ही करते हैं।
5: श्रोताओ, नाट्य तरंग में अभी आप सुन रहे थे नाटक मालविकाग्निमित्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण था। हिंदी रूपांतरकार थे सीताराम चतुर्वेदी, रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक चिरंजीत। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
6: दिल की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। आइए सुनते हैं तीसरी कड़ी।
1: वापस वहां चलते हैं जहां अर्धसत्य जो है वो हिट हो चुकी है। रीमा जी, किस तरह की फिल्में उसके बाद की आती हैं सदाशिव जी की, और उसके बाद जो बड़ा माइलस्टोन है वहां तक आएंगे इस बातचीत में?
2: जैसा मैंने कहा कि अर्धसत्य के बाद एक हफ्ते में पापा ने 200 फिल्में साइन की थी,
1: जो 8-10 साल तक चलता रहा मामला।
2: 8-10 साल तक वो मामला चलता रहा। और बात ये थी कि उस समय द रीजन इतनी सारी फिल्में उन्होंने एक साथ साइन कर ली, क्योंकि मतलब वही बताते हैं ये मजाक में कि वो कहते थे मुझे उस समय बीआर चोपड़ा और यश चोपड़ा में क्या फर्क है ये भी नहीं पता था। तो कौन सा डायरेक्टर सबसे अच्छा है, क्योंकि उनका जैसा मैंने कहा कि उनकी जिंदगी पूरी थिएटर थी, तो फिल्म से रिलेटेड ऐसे उनका स्टडी नहीं था, तो इसलिए उन्होंने जो फिल्म आई वो करते गए, राइट। तो उस समय कमर्शियल उन्होंने विलेन के रोल काफी किए, क्योंकि अपने इंडस्ट्री का वो एक
1: टैग
2: लग जाता है कि एक तरह का अगर काम कोई बंदा अच्छा कर रहा है तो उसे उसी तरह के सारे काम मिलते हैं, उसका पोटेंशियल एक्सप्लोर करना ये वाली जो बात है ये नहीं होती थी उस समय, तो बिल्कुल ही नहीं होती थी, क्योंकि उस समय एक फिल्म दो दो तीन तीन साल तक चलती थी, उसका शूटिंग भी चलता था और रिलीज के बाद भी वो उतना चलती थी। इसलिए जो चेंज होता था, ट्रेंड जो चेंज आजकल इतनी फटाफट हो जाता है, वैसा उस वक्त नहीं होता था। 8-10-12 साल तक लोग वही करते थे जो करते आ रहे हैं। फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब पापा को लगा यार अभी बहुत हो गया ना, बहुत मैंने विलेनी के काम किए, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा थोड़ा कम कर दिया था। पर फिर आया मौका उन्हें सड़क करने का, जो विच इज अगेन अ लैंडमार्क फिल्म, उनमें जो उनका महारानी का किरदार है, उस तरह के किरदार काफी लोगों ने करने की बाद में कोशिश की, पर मुझे नहीं लगता, मतलब मे बी ये मेरा बायस होगा पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता आज तक कोई उस लेवल तक वो निभा पाए हैं। ऑफ कोर्स इसमें भट्ट साहब का काफी बड़ा योगदान है कि उन्होंने सोचा कि ये कैरेक्टर ऐसा हो सकता है, और फिर उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, उन्होंने ही गेव द फ्रीडम, तुम्हें ये कैसा दिख रहा है वैसे तुम करो। तो उसमें एक साड़ी वाला सीन है जो पापा की आइडिया थी कि अगर ये तृतीय पंथी है तो साड़ी में तो एक सीन चाहिए ही चाहिए, विदाउट साड़ी तो नहीं हो सकता। तो इस तरह से उन्होंने वो किया था।
1: यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि ये रोल जब उनके पास आया तो क्या कोई पसोपेश रहा या सेकंड थॉट रहा कि ये लीक से एकदम हटके है, इसको करना है नहीं करना है?
2: बिल्कुल नहीं, इट वॉज अ चैलेंज। जैसा मैंने कहा कि अगर कुछ नया है, कुछ चैलेंजिंग है, तो वो हमेशा ही वॉज ओपन फॉर इट। तो और भट्ट साहब के साथ उन्होंने उससे पहले काम नहीं किया था, और भट्ट साहब वॉज अ बिग नेम एट दैट टाइम, राइट। तो उनके साथ काम करना इटसेल्फ एक बड़ी बात थी, और वो हेजिटेंट बिल्कुल नहीं थे। वो इसलिए कि जब वो कॉलेज में प्ले किया करते थे तब उन्होंने एक प्ले किया था भटाला दिली ओसरी, ऐसा उसका नाम था, और उसमें उन्होंने इस तरह का एक कैरेक्टर प्ले किया हुआ था जो थोड़ा सा ऐसा फेमिनिन एंगल वाला कैरेक्टर रहा, और वो उन्होंने बखूबी निभाया था। उसका भी एक किस्सा है, वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन इसलिए वो हेजिटेंट बिल्कुल नहीं थे। उन्हें ये पता था कि मैं जैसा दिखता हूं मैं सुंदर तो नहीं दिख सकता, तो अभी मैं अगर तृतीय पंथी होने वाला हूं या तृतीय पंथी की एक्टिंग करने वाला हूं तो उसमें मैं क्या अलग कर सकता हूं। बिकॉज हीरो हीरोइन फिल्म में होते ही है, प्यार होता है, मतलब गर्ल मीट्स बॉय, बॉय मीट्स गर्ल, दे फॉल इन लव, फिर एक विलन होता है, वो विलन कुछ अलग लाता है तभी जाके फिल्म अलग बनती है।
1: बिल्कुल, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है
2: एग्जैक्टली, वरना विलन ना हो तो

0: हीरो का काम ही नहीं है ना फिल्म में, इसलिए ये बहुत जरूरी था। और जब भट्ट साहब ने कहा कि बिकॉज ये एक रेड लाइट एरिया की स्टोरी है इसलिए हम इसमें तृतीय पंथी रखते हैं,
1: थर्ड जेंडर
0: जो है, तो फिर वो उस कैरेक्टर पे काम करने लगे। हालांकि पापा कहते थे कि मैं सुंदर तो किसी भी एंगल से नहीं दिख सकता बिकॉज उनका रूप ही वैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से वो बाल बनाए, मेकअप किया, जिस तरह से एक्टिंग करी, अगर आप देखोगे तो ये आप भूल जाओ कि वो एक पुरुष है, अगर ये आप साइड में रखते हो तो आपको लगेगा ये एक्सप्रेशंस बिल्कुल औरतों वाले आए हैं। कभी अगर आप देखो तो वो किसकी उन्होंने एक्टिंग की है वो तो मैं जानती हूं, मैं यहां नहीं बताऊंगी लेकिन उनके लिए ये नया नहीं था, वो पहले ये कर चुके थे।
1: यहां गाना सुनते हैं।

अब आते हैं उस किस्से की तरफ जब उन्होंने भटाला दिली ओसरी ये जो प्ले था इसमें किंचित गंधर्व मराठी में ऐसे रोल्स को कहा जाता है।

0: अब आते हैं उस किस्से की तरफ जब उन्होंने भटाला दिली ओसरी ये जो प्ले था इसमें किंचित गंधर्व मराठी में ऐसे रोल्स को कहा जाता है वो जब किया था हालांकि मेरे दादाजी का बिल्कुल विरोध था पापा जो प्लेज वगैरह करते थे बिकॉज जैसे मैंने कहा वो एक बिजनेसमैन थे और अहमदनगर वैसे ही बहुत पुरुष सत्ताक जिसे हम कहते हैं पेट्रियार्कल शहर है आज भी है तो बेटा कुछ नहीं कमा रहा है बहू पैसे कमा रही है बेटा नाटक वगैरह करता है इससे थोड़ी ना घर चलेगा ये जो सब संकल्पनाएं हमारे समाज में थी उस वक्त वो बहुत स्ट्रांगली हमारे घर में भी थी और इसलिए वो कभी जाते नहीं थे इनका कुछ नाटक का प्रयोग हो या कुछ हो शो हो तो बिल्कुल नहीं जाते थे लेकिन सब लोग शहर में कहते थे अरे वाह वाह वाह तुम्हारा बेटा क्या अच्छा काम करता है ये करता है वो करता है तो उन्होंने सोचा चलो आज मैं चलता हूँ देखता हूँ दोस्तों को लेके जाता हूँ इनका प्ले देखने और वो गए वो प्ले देखने और उसमें पापा ने ये किंचित गंधर्व जो फेमिनिन कैरेक्टर था वैसा रोल किया हुआ था ये तो मतलब अपमान हो गया पापा का कि मेरा बेटा इस तरह से काम कर रहा है तो वो घर पे आए और फिर वो रुके रहे हमारी जो हवेली है उसके गेट में फर्स्ट फ्लोर की गैलरी आती है ऐसे तो वो रुके रहे वहां पर और जैसे ही पापा रात में आए घर पे उन्होंने ऊपर से एक चप्पल दे फेंकी और कहा कि मराठी में नाचा बोलते हैं उसको कि थोड़ा सा यू नो ऐसे हिंदी में क्या कहा जाता है मुझे पता नहीं है पर थोड़ा सा फेमिनिन इस तरह से तो नाचा जी काम कराई तुला इस तरह के काम करोगे तुम हाँ तो खबरदार ऐसा फिर से काम किया तो वगैरह वगैरह वगैरह तो इसलिए आई थिंक जब सड़क फिल्म मिली तब पापा ने बताया नहीं होगा पर तब तक काफी पानी बह चुका था लॉर्ड ऑफ वाटर अंडर द ब्रिज दादाजी को भी समझ में आ गया था कि चलो एक्टिंग है चलो पैसे तो कमा रहा है तो चल रहा है लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं तो जब सड़क आई तब पापा को लगा था कि शायद फिर से एक चप्पल खानी पड़ेगी
1: कि एक बार फिर से वो जनाना
0: जनाना रोल आया है तो फिर से एक चप्पल खानी पड़ेगी लेकिन तब तक दादाजी भी काफी समझ चुके थे कि अभी ये तो जो भी कर रहा है वो बहुत बड़े पैमाने पे कर रहा है और घर में जो विरोध था उनकी एक्टिंग को लेकर वो काफी सेटल हो गया था और मुझे याद है दादाजी ऐसे छोटे छोटे जो आर्टिकल्स आते थे न्यूज़पेपर में छोटे से छोटा आर्टिकल भी वो ऐसे काट के भेजते थे बाय पोस्ट हमें बंबई में तो उनका ध्यान पूरा था
1: कहाँ क्या चल रहा है
0: कहाँ क्या चल रहा है मेरा बेटा क्या कर रहा है बहू क्या कर रही है पोतिया क्या कर रही है ये सब उनका ध्यान था बिकॉज ही वॉज द हेड ऑफ द फैमिली लेकिन उन्होंने वो ये दे रखी थी कि चलो ठीक है अभी करो तुम्हें यही करना है तो करो
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल और वो काफी सराहा गया महारानी वाला जो रोल है उसकी
0: बहुत,
1: आज
0: बहुत
1: तक उसकी रीलें चलती हैं और जो उनकी एक्टिंग है वो आज तक वो संवाद याद किए जाते हैं जो वहां उन्होंने किए थे लेकिन इससे पहले हुकूमत की बात करनी जरूरी है
0: ओह यस ऑफ कोर्स हुकूमत है तेरी मेहरबानियां है पुराना मंदिर है ये काफी सारी फिल्में हैं जो
1: 80s वाला दौर
0: हाँ हाँ हाँ 80s वाला पूरा 83 से आगे वाला पूरा दौर सो हुकूमत की बात करें तो हुकूमत वॉज अ लैंडमार्क फिल्म मतलब ऐसे कह सकते हैं कि उस समय धर्म जी का वो कमबैक था हुकूमत के साथ
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और पापा विलन और धर्म जी हीरो ऐसी बाद में काफी सारी फिल्में आई तो एक वो दौर चला एंड पापा प्रूव टू बी अ लकी चार्म
1: हाँ ये बात जो है बहुत ज्यादा इसका जिक्र होता है कि धर्मेंद्र की फिल्म में अगर सदाशिव जी हैं तो वो चलती
0: तो है। वो चलती है तो ये बहुत ही सही बात है और उस समय तो ऐसा था कि इतनी फिल्में वो एक साथ कर रहे थे पापा और धर्म जी या पापा और मिथुंदा के या तो पापा राजस्थान में शूटिंग कर रहे हैं या तो ऊटी में शूटिंग कर रहे हैं तो तो हुकूमत वॉज अ फिल्म लाइक दैट कि उस समय मुझे याद है कि तब मैं थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी कि बुरा क्या होता है अच्छा क्या होता है हाँ और उसमें एक सीन है जहां पर वो धर्मेंद्र की माँ होती है शायद अभी मैं भूल चुकी हूं वो रेफरेंस लेकिन उनके हाथ काट के पापा उसे टोंटी टोंटी ऐसा बोलते हैं कि हाथ कटी हुई इस तरह से और मैं

0: लगभग 8-9 साल की रही होंगी तब, और उस समय टीवी पे फिल्में नहीं आती थी, केबल भी नहीं था, तो हम लोग थिएटर में जाकर देखते थे। तो थिएटर में जाकर देखते थे और उस बड़े पर्दे पर जब मैंने देखा कि पापा उस बुढ़िया को टोंटी टोंटी बोल रहे हैं, तो मुझे इतना गुस्सा आया था उस वक्त कि मैं घर पे जाकर बाद में 2 दिन तक मैंने पापा से बात नहीं की थी। तो पापा ने कहा क्या हुआ, क्या ये वो। तो फिर अल्टीमेटली जब मैंने बात करी तब मैंने कहा यू नो बहुत अच्छा हुआ कि वो हीरो ने आपको ना मुंह में ऐसी बंदूक रख के गोली मारी। तो बोले क्यों, तो आप उस बुढ़िया को टोंटी टोंटी बोल रहे थे। तो वो उम्र भी ऐसी थी कि हम सब कुछ सच मानते थे।
1: हाँ, हाँ।
0: और उन्होंने भी कभी ये एफर्ट्स नहीं लिए कि मतलब उनको लगता था ये जो आपका इनोसेंस है ये इस तरह से बरकरार रहे तो बेहतर है। इस तरह से हुकूमत की याद तो मेरी ये है, और हुकूमत 50 हफ्ते चली थी, गोल्डन जुबली थी, तो पूरा साल भर थिएटरों में।
1: और बहुत खूंखार रोल था वो,
0: बहुत ही ज्यादा काला नाग।
1: हाँ।
0: काला नाग राइट, डीबीडीएन या काला नाग ऐसा ही कुछ शुरू।
1: हाँ, था। और वो डायलॉग भी बड़ा मशहूर है,
0: नाग हूं मैं नाग, काला नाग सामने आ जाए तो अपने बाप को भी डस लो। आई विल नेवर फॉरगेट, ये बहुत ही मतलब वो कुछ लैंडमार्क डायलॉग्स हम जिसे कहते हैं ना।
1: हाँ बिल्कुल,
0: वो जैसे सड़क का भी एक डायलॉग था, और ये डायलॉग्स मुझे याद है क्योंकि हम लोग जब दोस्त लोग बैठते थे तो हम लोग हंसी मजाक में ये डायलॉग्स बोलते थे।
1: अच्छा।
0: हाँ, और दे यूज्ड टू एक्सपेक्ट कि रीमा तुम बोलो ना पापा का एक डायलॉग।
1: अरे गजब।
0: तो बहुत मजा आता था। तो हुकूमत के कुछ डायलॉग्स थे, तो यही है वो चीटी जिसने अपने नाखूनों के दम पे हमारी हुकूमत को कुरदने की जरूरत की थी।
1: बाप रे।
0: तो इस तरह से डायलॉग्स काफी सारे, और उस समय डायलॉग्स की ऑडियो टेप्स आती थी और लोग बाकायदा वो सुन के बाय हार्ट करते थे फिल्में, बिकॉज जब तक आप थिएटर नहीं जाते थे आप फिल्म देख नहीं पाते थे, तो अगर नहीं देख पाते हो तो सुनते थे लोग फिल्में। तो ऐसी तो काफी सारी फिल्मों के डायलॉग्स और आवाज कलाकारों की उस वजह से बहुत ज्यादा फेमस और जहन में है लोगों के।
1: बिल्कुल, उस दौर की दो फिल्मों का जिक्र करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक तो पुराना मंदिर, क्योंकि वो उस स्टाइल की फिल्म थी भूतिया फिल्मों के दौर की, जिसमें वो एक एलिमेंट बनकर आते हैं जो कि एक विलेनिश रोल होता है खतरनाक वाला, और उनकी आंखों में वो डरावना।
0: मैं वो फिल्म आज तक नहीं देख पाई। मैं बताऊं क्यों, क्योंकि उसमें उनका चेहरा ऐसा आधा जला हुआ है।
1: बिल्कुल,
0: मैं आज तक इमेजिन ही नहीं कर सकती। मतलब जब वो फिल्म रिलीज हुई थी तब मैं बहुत छोटी थी, तो मैंने वो फिल्म प्रैक्टिकली आंखों पे हाथ रखते हुए देखी हुई है।
1: सिर्फ सुना है,
0: सिर्फ सुनी है वो फिल्म, और मैं आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाई हूँ वो फिल्म देखने की।
1: उस दौर की एक और फिल्म है विधु विनोद चोपड़ा की खामोश।
0: ओ,
1: क्योंकि वो एक लैंडमार्क मूवी है।
0: करेक्ट,
1: वहां
0: करेक्ट।
1: से वो पूरी यात्रा जो है वो आगे बढ़ती है। तो उसका हमने सोचा कि जिक्र करते हुए आगे बढ़े, लेकिन यहाँ अमिताभ बच्चन से उनका एक तूफानी सामना हुआ।
0: करेक्ट,
1: आखिरी रास्ता में वो भी बड़ा खतरनाक रोल था।
0: बहुत ही और उस समय
1: डरावना, और उससे लोगों की जो तारीफ है वो नफरत की शक्ल में उनको कितनी मिली।
0: नफरत तो लोगों ने की, बहुत ज्यादा नफरत की, लेकिन उस नफरत में प्यार ही छुपा हुआ था।
1: ऑफ कोर्स,
0: कलाकार के प्रति जो प्यार था वो। अगेन अमित जी का वो कमबैक था, आखिरी रास्ता जब आई थी, उनका कूली का एक्सीडेंट होने के बाद उनकी वो पहली कुछ फिल्मों में से वो फिल्म थी और पहली सुपर डुपर हिट फिल्म हुई थी। तो उस समय अमित जी एक फेनोमेना थे, राइट। सब लोगों को ऐसा जा रहे हो आप अमित जी के साथ काम कर रहे हो, अमित जी के साथ काम कर रहे हो ऐसे, और पापा बहुत कूल हुआ करते थे। मतलब हाँ ठीक है, ओके ऐसे। मतलब ये जो एक बात है ये उनमें थी कि सामने बैठा हुआ कलाकार कितना फेमस है या नहीं है इससे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। मुझे क्या करना है, उसमें वो रहते थे।
1: इसीलिए उस फिल्म में उनकी एक सशक्त मौजूदगी है, अमिताभ बच्चन के सामने विलेन, और पहले जो लोग विलेन करते रहे थे जिन्हें कहा जा सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री के उस समय के दिग्गज लोग, उनके अलावा सदा शिवजी आते हैं और वो अपनी पूरी छाप छोड़ते हैं। वो जिस तरह से वो नफरत हासिल करते हैं खतरनाक विलेन बन के, वो उसमें पूरा नजर आता है।
0: पूरा पूरा, दैट इज अगेन बिकॉज जैसा मैंने कहा वो भोला साम जो मैं कहते आ रही हूं वो वैसे ही थे। वो आप मस्त रहते थे, उन्हें क्या कर...

0: रुकना है, मुझे क्या करना है, मुझे अभी कैसे करना है,
1: अपना फर्ज निभाओ,
0: अपना फर्ज निभाओ, उसमें वो रहते थे। तो इसलिए कोई भी हो सामने, धर्म जी हो, हालांकि धर्म जी या अमित जी, धर्म जी तो पापा बचपन से उनका काम देखते आ रहे थे, राइट, तो
1: बिल्कुल
0: प्रेशर तो बनता है इज व्हाट आई थिंक। लेकिन फिर भी बिकॉज उनको लगता था मैं मेरा काम है, मैं मेरा काम करूंगा, मैं हट जाऊंगा, खत्म हो गई। और जो आप नफरत की बात करते हो, तो नफरत से ज्यादा डर, बिकॉज मैं छोटी थी उस वक्त और मेरे दोस्त भी सब मेरी उम्र के ऑफकोर्स, तो नफरत इतनी नहीं लेकिन डर बहुत लगता था।
1: बिल्कुल।
0: तो मेरी स्कूल के बच्चे या हमारी बिल्डिंग में भी जो बच्चे रहते थे, वो पापा अगर घर पे हो तो वो घर के अंदर ही नहीं आते थे, क्योंकि उनको लगता था अरे ये बहुत बड़ा विलन है, ये हम इसके सामने नहीं जा सकते।
1: अच्छा, स्कूल में ऐसा होता था कि सदाशिव अमरापुरकर की बेटी हैं तो थोड़ा डिफरेंट है?
0: लकीली नहीं हुआ वैसा, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि हमारे घर पे जो माहौल था वो काफी मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिलीज में जैसा होता है वैसा ही था। तो स्कूल में जाओ, अटेंडेंस पूरा रखो, होमवर्क करो, ये सब वैसा ही था। और स्कूल में ऑफकोर्स सब लोग मुझे जानते थे, बिकॉज मैं सदाशिव अमरापुरकर की बेटी थी, और मैं बहुत कम लोगों को जानती थी, बिकॉज मैं वैसे बहुत इंट्रोवर्ट थी उस वक्त। अच्छा। अब मैं जितनी बात करती हूँ उतनी उस वक्त नहीं करती थी, पर मैं बहुत लकी हूँ ये मैं कह सकती हूँ कि उस वक्त जो मेरे दोस्त बने वो आज तक मेरे दोस्त है, और वो जो सही में रीमा इंसान क्या है उसके साथ वो दोस्त है। टीचर्स को ऐसे लगता था जैसे अभी स्कूल में कुछ बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, उसके लिए डोनेशन चाहिए, तो रीमा तुम्हारे पापा तो देंगे ही ना डोनेशन, ऐसा ऐसा हुआ करता था। पर उसके अलावा वैसे अलग ट्रीटमेंट किसी ने दी नहीं। हमारी टीचर्स भी बहुत अच्छी थी, वो ये जानती थी कि हाँ ये पैम्पर्ड अपने घर पर होगी लेकिन यहाँ पर शी हैज टू परफॉर्म एज अ स्टूडेंट। तो उस तरह से स्कूल की ओर से ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जब हम कहीं बाहर जाते थे, किसी शादी में जाते थे या कोई इवेंट में जाते थे, तो एक सेपरेट आइडेंटिटी ये हमेशा होती थी, पापा साथ में हो या ना हो, ये सदाशिव जी की बेटी, ये जो है ये आज तक नहीं छूटा, ये हमेशा रहता था। और ये बहुत ही मजे वाली बात थी, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता था जब आप छोटे होते हो तो आप कुछ चीजों की अपेक्षा करने लगते हो कि अभी मैं वहां जाऊंगी वो कहेंगे सदाशिव जी की बेटी और फिर उनका बर्ताव इस तरह से बदलेगा, ये आप एक्सपेक्ट करते हो।
1: करेक्ट।
0: तो अगर आप कहीं जाते हो, जैसे हम अहमदनगर जाते थे कभी और उनके जो बचपन के दोस्त है उनके घर पे जाते थे, तो वहां पर तो ये रीमा तात्याची मुलगी इतना ही था ना, इट डिडंट मैटर वेदर ही वाज सदाशिव अमरापुरकर और नॉट। तो उस समय मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लॉस्ट लगता था कि अरे ऐसे कैसे, इन्होंने बताया अभी मैं पापा की बेटी हूं फिर भी ये लोग तो मुझसे नॉर्मली बात कर रहे हैं। तो ये कभी कभी होता था, पर अभी जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे समझ में आया कि वो क्रेडिबिलिटी जो है वो आपके पिताजी की है, आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी आपको कमानी पड़ेगी, तभी लोग आपको वो सम्मान देंगे।
1: बिल्कुल। सबसे व्यस्ततम दिनों में भी उनका क्या शेड्यूल हुआ करता था, जब शूट्स होते थे घर पर क्या उनका जीने का तरीका था?
0: बहुत ही सिंपल था, मतलब मुझे याद है पापा जब घर पे होते थे तो एक तो वो हॉल में बैठते थे शांति से।
1: अच्छा।
0: हाँ, और उनका ऐसा बिल्कुल नहीं था मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए या मुझे मेरा मी टाइम जिसे हम कहते हैं आजकल, वैसा उनका बिल्कुल नहीं था। जैसा मैंने कहा कि उनके दोस्त हमेशा उनके आसपास रहते थे, तो किसी ना किसी के साथ वो रहते थे, कुछ ना कुछ बातचीत होती थी। और वो सवेरे उठते थे, ब्रश करके चाय, ये उनकी क्या कहते हैं
1: जरूरत,
0: जरूरत से ज्यादा उनका प्यार था। दिन भर वो चाय पीते थे, एक एक घूट एक एक घूट ऐसे करके। तो चाय पीना, न्यूज़पेपर पढ़ना, रोज सवेरे एक डेढ़ घंटा वो शांति से न्यूज़पेपर पढ़ते थे।
1: अच्छा।
0: फिर सवेरे जो ये उनके सारे दोस्त थे उनको पता था कि अगर इससे बात करनी है तो सवेरे के टाइम फोन करो, वो जल्दी उठते थे, 6:30 बजे उठ जाते थे वो जब वो घर पे होते थे, और उठकर न्यूज़पेपर पढ़ना, चाय पीना, गपशप करना, फैमिली के साथ गपशप करना, फिर अलग अलग चीजों पर बातचीत करना, बिकॉज हमारे कुटुंब में हम लोग सब लोग बहुत अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं। मेरी सबसे बड़ी बहन जो है वो साइकोलॉजिस्ट है।
1: ओके।
0: तो मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी इनके बारे में उसकी पढ़ाई है और वो काम भी करती है उसमें। मेरी जो दूसरी बहन है उसने मास्टर्स इन सोशल वर्क किया हुआ है, और मैंने जो है वो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया हुआ।

0: हुआ है। तो वो दौर मुझे याद है जब मेरी बहन मास्टर्स इन सोशल वर्क कर रही थी और मैं मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर रही थी। तो ऐसे हो गया था ना हमारे घर पे कि मेरी बहन पूरी सोशलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी और मैं पूरी कैपिटलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी और हमारे घर पे घंटों तक ये वाद विवाद चलते थे।
1: पिताजी की भूमिका अंपायर की,
0: अंपायर की, कभी मेरी साइड लेते थे कभी उसकी साइड लेते थे, पर धीरे धीरे धीरे धीरे समझ में आया वो हमें ना हमें जो कहना है वो कहने देते थे। फिर अगर हमने कभी जाकर पूछा कि क्यों आपको ये बात मेरी क्यों नहीं अच्छी लगी या आपने क्यों नहीं ये सही समझा या क्या लगा आपको, तब वो जाके एक्सप्लेन करते थे कि देखो इसमें ये बात गलत थी इसलिए मैंने ये किया था। पर वो पूरी तरह से फ्रीडम देने के बिल्कुल पक्ष में थे कि आप पूरी तरह से सोचो, आप अपने अनुभव लो, आप उसमें से सीखो और आप समझो आपको क्या दिख रहा है आपके आसपास और उसका कैसे अर्थ निकालना है, आपके आजू बाजू जो घटनाएं घट रही है उसका अर्थ कैसे निकालना है या आप डिसाइड करो।
1: आप लोगों के एनुअल फंक्शंस में वो आते थे?
0: नहीं बिल्कुल नहीं।
1: क्यों?
0: क्योंकि फिर लोग एनुअल फंक्शन में परफॉर्मेंस देखेंगे ही नहीं, लोग इनको ही देखने बैठेंगे।
1: सख्त मनाही
0: सख्त मनाही, बिल्कुल नहीं आते थे। लोगों ने बहुत प्यार किया, तो इतना बड़ा नाम जब आपके साथ जुड़ा हुआ होता है तो जैसे उसकी कुछ अच्छी चीजें होती है वैसे कुछ बुरी चीजें भी होती है। मुझे याद है पापा को, जैसा मैंने कहा, इतिहास का बहुत शौक रहा है और हम जब छोटे थे तो पापा, मतलब हमारी फैमिली, उनके जो दो तीन दोस्त करीबी दोस्त है उनकी फैमिलीज, ऐसे हम चार पांच फैमिलीज मिलकर हर साल कहीं पर घूमने जाते थे। तो पापा को अजंठा एलोरा औरंगाबाद के पास जो है वो देखना था, बहुत उनकी इच्छा थी, बहुत सालों में उन्होंने नहीं देखा था तो वो उन्हें देखना था, इसलिए हम लोग औरंगाबाद गए। औरंगाबाद में दौलताबाद फोर्ट भी है, वहां पर बीबी का मकबरा भी है, तो एक तो जहां पर शहरों के अंदर जो मॉन्यूमेंट्स थे वो देखने के लिए तो पापा आ ही नहीं पाए बिकॉज वहां पर वैसे ही इतनी रश होती है, लेकिन अजंठा एलोरा तो हम लोगों ने एक बड़ी मैटेडोर की थी बिकॉज हम लोग 15-16 जन थे, बच्चे बड़े सब सब पकड़, एक घंटे की दूरी पर है छत्रपति संभाजी नगर से अजंठा की बुद्ध गुफाएं हैं, तो वो देखनी थी बिकॉज बुद्धिस्ट लिटरेचर और वो फिलॉसफी उन्होंने बहुत उस पर रिसर्च किया हुआ था, बहुत पढ़ा हुआ था और उनकी इच्छा भी थी कि कभी गौतम बुद्ध का रोल वो अगर कर पाए तो, लेकिन वो हो नहीं पाया। खैर वहां पर हम लोग जब गए उस समय, अभी तो हाईवेज बन चुके हैं पर उस समय छोटे छोटे चेक पॉइंट्स होते थे और उस समय हमारी मैटेडोर का जो नंबर था वो हर एक चेक पॉइंट पे पहुंच चुका था। हाँ, तो हमको लगता था हम मैटेडोर में हैं, किसी को पता नहीं है अंदर पापा बैठे हैं, पर हर एक चेक पॉइंट पे जो रश था, जो लोगों की भीड़ थी वो बढ़ती जा रही थी। तो अल्टीमेटली ऐसा हुआ वो अजंठा में जा ही नहीं पाए।
1: अरे अरे अरे,
0: क्योंकि वो उतर ही नहीं पाए, वहां पर एक रिजॉर्ट था, वहां पर जाकर एक रूम में वो बैठ गए, क्योंकि अगर वो बाहर आते तो हम भी नहीं देख पाते।
1: ओहो,
0: तो उन्होंने कहा मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम जाकर देख कर आओ। तो इस तरह से जब आपका नाम इतना बड़ा हो जाता है तो लोग जिस तरह से प्यार करते हैं वो अच्छा तो बहुत लगता है, हालांकि वो उस प्यार के लिए ही सब कलाकार काम करते हैं, लेकिन इस तरह से कभी कभी उसका एक नेगेटिव या बुरा असर पड़ता है कि भूल जाते हैं लोग कि ये कलाकार तो है, हम इस पे प्यार तो करते हैं पर ये एक फैमिली मैन भी है, इसकी भी एक निजी जिंदगी है, इसे भी कुछ उसके बीवी बच्चों के साथ दोस्तों के साथ वक्त बिताने का हक है।
1: बिल्कुल,
0: ये लोग भूल जाते हैं। ऑफ कोर्स अभी जैसे सोशल मीडिया का दौर चला है वैसे लोगों को भी ये समझ में आने लगा है कि ये कलाकारों की जिंदगी भी आम लोगों की तरह ही होती है, इसलिए अभी थोड़ी बहुत स्पेस काफी अच्छे से देते हैं लोग जो है वो, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा एक श्राप है ऐसे हम कह सकते हैं।
1: बिल्कुल, यहां हम साथ साथ हैं फिल्म का गाना सुनते हैं।
0: Sure.

0: देखिए, हम 80 के दशक की बातें करते करते 90 के दशक तक पहुंच गए। हमने सड़क की बात कर ली और उनकी जो यात्रा है उसमें अचानक से एक बाढ़ आती है कॉमेडी रोल्स की, जो उसके बाद फिर पूरी एक धारा चल पड़ती है। मुझे लगता है कि आंखें से वो मामला शुरू होता है और फिर आंखें, इश्क और कुली नंबर वन पूरी लिस्ट है।
1: करेक्ट।
0: तो ये जो यात्रा है इसकी बात करते हैं। कभी उनसे ये बातें हुई कि विलेन के रोल करना उनको ज्यादा लुभाता है या ये जो कॉमेडी की धारा में वो किस तरह से मुड़ गए?
1: तो पापा की एक बात जो शायद ही मैंने आज तक कहीं पर कही हो वो ये थी कि उनका कॉमेडी का जो टाइमिंग था वो बहुत बहुत कमाल का था। मतलब अगर हम बैठ के बात भी कर रहे हैं ना
0: जी,
1: तो उसमें भी वो जिस तरह से रिएक्ट करेंगे कॉन्वर्सेशन में, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, वो भी बहुत मजा किया था।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो उनकी कॉमेडी वो ऐसे चेहरे ऐसे ऐसे करना ऐसी नहीं थी।
0: वो उनके पंच आते थे।
1: पंच आते थे और वो उसी तरह से बात करते थे। कभी अगर मम्मी पापा की भी बात चल रही हो घर पे तो पापा कुछ ऐसी एक लाइन बोल देते थे कि जिसके ऊपर पूरा घर हंस रहा है और मम्मी ऐसे तिलमिला उठी है कि पर कुछ बोल नहीं पा रही है।
0: ओके। फिर वो जवाब बाद में।
1: हाँ, वो बाद में वो उनको मिलता होगा जवाब, पता नहीं क्या है। तो वो उनका जो कॉमेडी का टाइमिंग था वो पहले से था और कॉलेज के दिनों में उन्होंने काफी सारा कॉमेडी किया हुआ।

0: था। जैसा मैंने कहा कि एक बार वो विलन बन गए तो विलनी का एक छाप उन पे बैठ गई और उसी तरह से काम वो करते रहे करते रहे करते रहे। एक पॉइंट ऐसा आया कि जब उनको लगा कि अभी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए और उस समय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी एक दौर से गुजर रही थी जहां पर मैंने प्यार किया जैसी फिल्म आई थी जहां पर विलन तो था पर वो पूरी तरह से विलन नहीं था। उसके बाद हम साथ साथ है आई जहां पर विलन ही नहीं था, राइट। तो धीरे धीरे धीरे धीरे इंडस्ट्री का दौर भी बदल रहा था।
1: बिल्कुल, वो जो हिंसा वाली फिल्में हैं उसकी बजाय एक दूसरी
0: फैमिली
1: चल रही थी।
0: फैमिली सिनेमा ज्यादा आ रहा था और कॉमेडी, और उस समय गोविंदा, शक्ति कपूर, कादर खान, इनकी जो ये एक वेव आई थी,
1: बिल्कुल
0: उसमें पापा एकदम फिट बैठे बिकॉज उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल मैच करता था इन सब लोगों के साथ। इसलिए आई थिंक ही स्विच्ड टू कॉमेडी बिकॉज उन्हें मजा भी आता था वो करने में। चंकी पांडे हो, गोविंदा हो, मिथुंदा हो, कादर खान हो, असरानी हो, जॉनी भाई हो, इन सब लोगों के साथ एक अलग इक्वेशन और हर एक फिल्म में अलग किरदार के साथ अलग इक्वेशन।
1: उनको डायलॉग्स भी मजेदार मिलते थे,
0: बहुत मजेदार मिलते थे। और क्योंकि विलन जब आप होते हो तो आपका वो पक्का होता है, आप बुरे होते हो और आपका एक एक ही ग्राफ होता है, राइट, कि हीरो आएगा आपको मारेगा, खत्म, राइट। पर कॉमेडी में वैसा नहीं होता। कॉमेडी में जो कैरेक्टर होता है वो कभी कभी कॉमेडी करता है, कभी कभी इमोशनल सीन भी करता है, कभी कभी अच्छे काम भी करता है, कभी कभी बुरे काम भी करता है। तो ये वैरायटी जो थी आई थिंक वो उन्हें बहुत दिलचस्प लगी होगी उस वक्त, और इसलिए उन्होंने किया, वो इश्क किया उन्होंने, आंखें की, फिर
1: आंटी नंबर वन,
0: आंटी नंबर वन, कूली नंबर वन, फिर ये हम है कमाल के, ऐसी काफी सारी फिल्में हैं। और फिर अरुणा जी के साथ, अरुणा ईरानी जी के साथ काम किया, बिंदु जी के साथ,
1: सो रहे हैं और वो जगाने आती है।
0: वो YouTube पर आज भी अगर आप देखोगे पापा का नाम डाल के सदाशिव अमरापुरकर कॉमेडी सीन्स, तो इतने सारे वीडियोस उसमें निकल के आते हैं, तो बहुत ही फनी है। तो जब मेरी बेटी छोटी थी तो विलन वाली फिल्म में दिखाऊं कैसे उसे, है ना, क्योंकि इतना वायलेंस तो नहीं दिखा सकते। जब हम लोगों ने सोचा कि अभी उसको कुछ पापा का दिखाना तो चाहिए बिकॉज सब लोग आजू बाजू, अच्छा सदाशिव जी की पोती हो, सदाशिव जी की पोती हो, ये तो वो सुन ही रही थी। तो उसे हम लोगों ने सदाशिव अमरापुरकर कॉमेडी सीन्स ऐसे वहां से शुरुआत की थी। मेरी बेटी कभी मिल नहीं पाई पापा से, लेकिन उसे ये पता है ये बहुत मजा किया थे, तो बहुत मजा आता था। फिर हमने उसे हम साथ साथ है फिल्म दिखाई, फिर इश्क दिखाई थोड़ी बहुत, तो इस तरह से वो थोड़ी और बड़ी होगी फिर उसे शायद मैं सड़क दिखाऊंगी,
1: दिखाऊंगी,
0: ये सारी फिल्में दिखाऊंगी।
1: इश्क का रोल तो बहुत ही अलग था,
0: बहुत ही अलग,
1: क्या लीग थी वो।
0: वो तो मतलब इंदु जी की फिल्म थी वो, इंदर कुमार। एक तो इंदु जी का खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर और टाइमिंग कमाल का है, ऊपर से आमिर और जूही इनके साथ जो इनकी कॉमेडी की टाइमिंग बैठी है, जो एक्टिंग की है, मतलब मुझे लगता है इतना ओवर द टॉप कॉमेडी हम जिसे कहते हैं वो पहली बार ही आया। मतलब आंखें में भी कॉमेडी थी
1: बिल्कुल,
0: पर
1: लेकिन
0: वो इतनी ओवर द टॉप
1: था,
0: नहीं थी, वो सिचुएशनल कॉमेडी थी।
1: यस,
0: और ये ओवर द टॉप कॉमेडी थी। तो जो चाहिए वो करो, मतलब मुझे याद है हमारे घर के बिल्कुल पास में इश्क का सेट लगा हुआ था।
1: अच्छा।
0: तो एक दो बार मैं गई थी वहां पर ऐसे ही कुछ मैसेज देने या कुछ करने, मुझे याद नहीं है अभी क्यों गई थी, लेकिन मैं गई थी। और उस वक्त इंदु जी ब्रीफ दे रहे थे, सदा जी आपको जैसा लगता है ना आप वैसा कीजिए। फिर वहां से आमिर का ये आता था, सदा जी ऐसा ट्राई करते हैं, फिर दिलीप ताहिल जी थे उनका होता था। तो ये सब लोगों ने मिलके वो जो कुछ भी किया था, स्क्रिप्ट तो फैंटास्टिक लिखी ही थी, इंदु जी का डायरेक्शन भी था, लेकिन ये जिस तरह से इन सब की जो केमिस्ट्री जम गई थी वो बहुत ही फैंटास्टिक थी। आई थिंक इट इज अ वर्ल्ड अपार्ट फिल्म। ऐसी फिल्म मुझे नहीं लगता अभी फिर से कभी बन पाएगी।
1: बिल्कुल,
0: बिकॉज जिस तरह से उसमें आमिर ने पापा की भी एक्टिंग की है, ऐसी काफी सारी सिचुएशंस है जिसमें वो हुआ है।
1: बहुत मजेदार बातें चल रही हैं इस फिल्म से जुड़ी हुई, तो मुझे लगता है कि इसका गाना सुन लिया जाए
0: प्लीज।

0: कि वो दौर था जब वो एक तरफ ये सारी कॉमेडी फिल्में कर रहे हैं, आउट एंड आउट कॉमेडी है, और एक अलग धारा चल रही है जहां इसी समय में वो दोगी भी कर रहे थे, कदाचित भी कर रहे थे, वास्तु पुरुष भी कर रहे थे,
1: देवी अहिल्या भी कर रहे थे।
0: यस,
1: तो ऐसा मैंने पहले भी कहा कि कलाकार थे और उन्हें अगर कुछ अच्छा लगता है और उन्हें अगर विश्वास है कि ये निर्देशक है और ये अच्छी फिल्म बनाने वाला है या बनाने वाली है, तो वो उसमें बिजी हो जाते थे। दोगी ये जो फिल्म थी एनएफडीसी की फिल्म थी।
0: बिल्कुल
1: हाँ, और सुमित्रा भावे, सुनील सुकतनकर इनकी पहली कमर्शियल फिल्म थी। और उस समय पापा ने सुमित्रा मावशी के साथ इसलिए काम किया बिकॉज ये कुछ अलग विषय है जो ये औरत रखना चाहती है और इसे साथ देनी चाहिए, बिकॉज सुमित्रा भावे ये अगेन उनका जो सोशल सर्कल था, डॉक्टर अनिल अवसट, निलो फुले, डॉक्टर लागू, इन सब सोशल सर्कल में ही सुमित्रा मावशी भी थी। तो पूरा महाराष्ट्र उन्हें सुमित्रा मावशी कहता है, तो इसलिए मैं भी उन्हें सुमित्रा मावशी कहती हूँ। तो उस समय उन्होंने दोगी की थी। दोगी में फिर से उनके सिर्फ 3 या 4 सीन थे पर उन्होंने वो किए थे। वो सोनाली कुलकर्णी जो है दिल चाहता है मैं जो थी उनकी वो पहली फिल्म थी,
0: तब और तक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म,
1: बहुत महत्वपूर्ण फिल्म थी। और उसके बाद ही वास्तु पुरुष, बिकॉज उनका और सुमित्रा मावशी क्योंकि वो फेमिनिस्ट थी तो उनकी फिल्मों में हमेशा औरत का मुख्य किरदार हुआ करता था। तो ये पापा और उनके बीच में हमेशा ये जोक चलता था कि जब तक आप अभी मुझे लेकर फिल्म नहीं बनाओगे, मेरा सेंट्रल कैरेक्टर लेकर, तब तक मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी हर बार सुमित्रा मावशी फोन करती थी और पापा उनके साथ काम करते ही थे। तो उसी तरह से वास्तु पुरुष फिल्म जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म रही है और उसे नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है।
0: हाँ।
1: पापा को नहीं मिला लेकिन उस फिल्म को मिला नेशनल अवार्ड। यस, तो पापा जो आप कह रहे थे कि एक दौर ये था कि वो आउट एंड आउट कॉमेडी कर रहे थे
0: और दूसरी तरफ ये इंटेंस काम कर रहे थे
1: बिकॉज वो उनकी पर्सनालिटी की ही दो साइड्स थी। जैसा मैंने कहा कि वो सामाजिक रूप से बहुत अवेयर हुआ करते थे कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वैसे ही ये फिल्में आना बहुत जरूरी है। आउट एंड आउट कॉमेडी जब आती है, कमर्शियल फिल्में जब आती है, तो वो कहते थे ना ये मेरा दुकान है, मेरा घर चलता है इसलिए मैं ये करता हूं, लेकिन मेरा मन अगर मुझे चलना है, मन अच्छा रखना है, तो मुझे ये दूसरा करना भी जरूरी है। तो इस तरह से उनका वो बैलेंसिंग गेम चलता था। तो एज एन एक्टर उस समय, क्योंकि एक टाइम पे एक्टर्स 8-8, 10-10 फिल्में करते थे, उनमें वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी कि इस सेट पे मैं अगर हूं और मेरा रोल अगर ये है तो मैं वैसा हूं। मतलब आप ऐसे सोचिए कि दोगी फिल्म जो है वो इतनी सीरियस फिल्म है और आप इश्क फिल्म कर रहे हो, उस सेट पर आप 2 दिन शूट करते हो और आप इमीडिएटली जाते हो एक छोटे गांव में जहां पर आप दोगी या वास्तु पुरुष जैसी फिल्म शूट कर रहे हो और आप उस सीरियस मोड में चले जाते हो। तो मेरे ख्याल से ये जो फ्लेक्सिबिलिटी उस समय के कलाकारों की थी ये बहुत अच्छी चीज थी जो आजकल के कलाकारों में थोड़ी बहुत कम हो गई है क्योंकि वो एक टाइम पे एक ही फिल्म करते हैं तो वो एक ही किरदार में जाते हैं, वो पूरा जीते हैं और बाहर निकलते हैं।
0: राइट,
1: आई थिंक इसका क्रेडिट काफी सारा इसमें भी जाता है क्योंकि उस समय जो फिल्मों के कलाकार थे वो काफी सारे थिएटर से भी आते थे
0: जी।
1: तो थिएटर में जब आप शो करते हो तो उस 3 घंटे के लिए आप वो किरदार बनते हो और फिर आप हो, फिर आप वो किरदार बनते हो। अगर आप 2 प्लेज कर रहे हो तो दूसरे प्ले में जो आपका किरदार है आप वो बन जाते हो।
0: एक अच्छी ट्रेनिंग है वो, एक अच्छी बुनियाद,
1: बहुत अच्छी बुनियाद है। और उस वजह से ये सारे ही कलाकार, ओम पुरी जी हो, अमरीश पुरी जी हो, अगर आप देखेंगे अमरीश पुरी जी का भी बाद में जो उन्होंने कॉमेडी की है, मालामाल वीकली हो या ये जो सारी फिल्में हैं, विरासत में उनका कितना प्यारा है। तो इन सारी फिल्मों में आप देख सकते हो कि उनके कैरेक्टर आर्टिस्ट भी उतने ही ताकतवर है जितने उनके विलन रहे हैं। आई थिंक दिस इज एन ओड कि उस समय एक तो कलाकार रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे कि मैं हीरो हूं तो मैं हीरो ही रहूंगा, ये भी नहीं था। मराठी में हम जिसे देवाण घेवाण कहते हैं, लेन देन, जो एक लेन देन थी वो बहुत क्लियर थी, कलाकारों तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं था। इसलिए आप कोई छोटी फिल्म भी बना रहे हो तो आप कलाकार

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सभा की शुरुआत करते हैं चंद गजलों से।

अभी आप सुन रहे थे चंद गजलें। फनकार थे हरिहरन, अलका याज्ञिक, अनुराधा पौडवाल, चंदन दास, पंकज उधास, जसवंत सिंह, भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। लीजिए पेश है कुछ और गजलें फिल्मों से।

0: श्रोताओं, हमें खेद है कि समय अभाव के कारण ये गजल आप पूरा नहीं सुन सके। फिल्म थी उमराव जान, तरकीब नरगिस और मासूम, आवाज थी आशा भोसले, जगजीत सिंह, अलका याज्ञिक और लता मंगेशकर की। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। आप हमारा प्रसारण न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। शाम के 6 बजा चाहते हैं, अब हिंदी में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस LNG की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों ने संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000

0: बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि बैठक में होने वाले विचार विमर्श से मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने तथा गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यापार, प्रवासन और अन्य नीतिगत मामलों पर मंत्रालय को सलाह देने संबंधी दावों का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये सोशल मीडिया हैंडल मंत्रालय के साथ काम करने के तरीकों पर सशुल्क सलाह के साथ साथ सत्र भी आयोजित कर रहे हैं। इकाई ने स्पष्ट किया है कि इन व्यक्तियों का विदेश मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है। मंत्रालय ने लोगों से इस तरह के फर्जी दावों से सावधान रहने को कहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज भारतीय मजदूर संघ और संबद्ध कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रतिनिधिमंडल से सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। अधिकारियों ने लोगों को मॉनसून के दौरान नदियों, जलप्रपातों और अन्य जल निकायों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। सतारा, पुणे और कोल्हापुर जिलों के घाट क्षेत्रों में भी तेज वर्षा का अनुमान है। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज ब्राजील का सामना नॉर्वे से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। आइए अब जानकारी प्राप्त कीजिए हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। पहले आज के शेष मुख्य कार्यक्रम।

अब से थोड़ी देर बाद यानी संध्या 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीतों का कार्यक्रम। संध्या 6:25 पर मैथिली संवाद प्रसारित किए जाएंगे। ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम गामा घर सुनेंगे संध्या 6:30 पर। आज इसके अंतर्गत शामिल है प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल। संध्या 7:00 किसान भाइयों के लिए खेती गृहस्थी। कुछ फिल्मी गाने आप सुन सकते हैं संध्या 7:52 पर।

लोगों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। रात 10 बजे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रेल कर आप तक पहुंचाएंगे। ये थे आज के शेष मुख्य कार्यक्रम और अब कल के बारे में।

खेल गतिविधि पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम क्रीड़ा जगत का प्रसारण किया जाएगा रात 8:15 पर। रात 9:30 पर आप सुनेंगे रूप

कल प्रातः 7:05 पर आप सुनेंगे नमस्कार मिथिला कार्यक्रम। सुबह 9:10 पर उर्दू कार्यक्रम अंजुमन पटना केंद्र से रिले कर आप तक पहुंचाएंगे। कुछ विद्यापति गीत सुनिएगा दिन में 10:30 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कलाकार हैं पंडित जसराज दिन में 11:00। दिन में 11:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। महिलाएं अपना कार्यक्रम नाड़ी संसार सुनेंगी 2:12:30 पर। रोजगार सूचना 2:02:10 पर। हमारी सांध्यकालीन सभा की शुरुआत होगी 5:00 युवा श्रोताओं के लिए युववाणी कार्यक्रम से। कुछ विद्यापीठ गीत सुनिएगा 6:10 पर। मैथिली संवाद का प्रसारण किया जाएगा 6:25 पर। शाम 6:30 पर गांव घर कार्यक्रम, जिसमें आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद। 7:00 किसान भाइयों के लिए खेती गृहस्थी का प्रसारण किया जाएगा। 8:15 पर आप सुनेंगे मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार। कल रात 9:30 पर आप सुनेंगे पब्लिक स्पीक। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 10:00 समय है फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी का। अभी आप हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विद्यापति गीतों का कार्यक्रम।

अभी आप सुन रही थी काशीनाथ झा किरण के सुर में विद्यापति की ये रचना, और अब गौतम मिश्र के सुर में विद्यापति की रचना।

0: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। संध्या के 6:25 होने वाले हैं। अब मैथिली संवाद प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दरभंगा FM रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी बैजू कुमार झा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहलनि अछि जे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आ आजीविका मिशन ग्रामीण 2025 1 जुलाई सँ सफलतापूर्वक लागू भऽ गेल अछि। मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केर माध्यम सँ एहि मिशन केर अंतर्गत राज्य सभक लेल 25,000 करोड़ टाकाक सहायता राशि जारी कयलनि। ओ कहलनि जे मनरेगा के लागू होबामे 3 साल सँ बेसीक समय लागल छल, जखनकि विकसित भारत जी राम जी के देश भरि मे सिर्फ 1 दिन मे लागू कऽ देल गेल। श्री चौहान कहलनि जे विकसित भारतक विजन के तेजी सँ आगू बढ़यबाक लेल एहि अधिनियमक तहत अगला 5 साल मे 286,000 पंचायत सभ मे 7.5 लाख करोड़ टाका सँ बेसी केर निवेश कयल जायत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आई पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवानक जयंती पर हुनका श्रद्धांजलि अर्पित कयलनि। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी कहलनि जे रामविलास पासवान समाजक वंचित आ कमजोर वर्ग सभक उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान देलनि। प्रधानमंत्री कहलनि जे रामविलास पासवान के जनसेवा आ राष्ट्र सेवाक प्रति हुनकर समर्पण लेल सदैव याद कयल जायत। गृहमंत्री अमित शाह कहलनि जे रामविलास पासवानक संपूर्ण जीवन गरीबक कल्याणक लेल समर्पित छल। लोजपा आर प्रमुख आ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कहलनि जे स्वर्गीय रामविलास पासवान समाजक वंचित आ दलित वर्गक हिमायती छलाह आ सभ वर्गक विकास लेल प्रतिबद्ध छलाह। बिहार विधानमंडलक मानसून सत्र 20 जुलाई सँ शुरू होयत। ई सत्र 24 जुलाई धरि आयोजित कयल जायत। मानसून सत्रक पहिल दिन सदन में वित्तीय वर्ष 2026-27 केर अनुपूरक बजट पेश कयल जायत। अगला कार्य दिवस में एहि पर सामान्य वाद विवाद होयत आ मतदानक बाद एकरा मंजूरी देल जायत। एम्हर संसदक मानसून सत्र 20 जुलाई सँ शुरू होयत आ 13 अगस्त धरि चलत। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कहलनि जे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 जुलाई सँ संसदक मानसून सत्र बजयबाक सरकारक प्रस्ताव के मंजूरी दऽ देलनि अछि। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू कहलनि जे सत्र में राष्ट्रीय महत्वक मुद्दा सब पर सार्थक बहस, चर्चा आ निर्णय लेबा पर ध्यान देल जायत।

0: जदयूक राष्ट्रीय अध्यक्ष आ पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा जिलाक दुईया मे शांतिमणि पेपर मिलक विस्तारीकरण परियोजनाक शुभारंभ कयलनि। एहि दरमियान ओ मिल परिसर केर भ्रमण कऽ उत्पादन प्रक्रिया आ अत्याधुनिक मशीन सभक निरीक्षण सेहो कयलनि। राष्ट्रीय जनता दल केर तीसम स्थापना दिवस आइ प्रदेश भरि मे मनाओल जा रहल अछि। पटना स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टीक प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल समेत आन वरिष्ठ नेता उपस्थित छला। एहि अवसर पर राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अपन संदेश में कहलनि जे पार्टीक स्थापना गरीब शोषित आ अकलियत सभक अधिकारक लड़ाई के उद्देश्य सँ कयल गेल छल। ओ पार्टीक एकजुटता पर जोर दैत कार्यकर्ता लोकनि सँ जनहितक मुद्दा सब पर संघर्ष करबाक अपील कयलनि। श्री यादव एहि अवसर पर पार्टी कार्यकर्ता लोकनिक संघर्ष आ समर्पणक सराहना कयलनि। जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर के बांकीपुर विधानसभा उपचुनावक लेल अपन प्रत्याशी घोषित कयलक अछि। पार्टीक कोर कमेटी केर बैसारक बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस मे पार्टीक प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती श्री किशोरक नामक घोषणा कयलनि। पार्टी उम्मीदवार घोषित कयल गेलाक बाद प्रशांत किशोर संवाददाता सब सँ गपशप मे कहलनि जे पार्टी जे जिम्मेदारी तय कयलक ओकर सम्मान करैत छी। बांकीपुर उपचुनावक लेल काल्हि अधिसूचना जारी होयत। मतदान 30 जुलाई के होयत जखनकि मतगणना 3 अगस्त के कयल जायत। ध्यातव्य अछि जे एहि सीट पर उपचुनाव भाजपा विधायक नितिन नवीनक इस्तीफाक कारणे भऽ रहल अछि। प्रदेश मे मानसूनक सक्रियता सँ आइ पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण पूर्णिया किशनगंज सहरसा सुपौल पटना आ भोजपुर समेत कतेको जिला सब मे हल्लुक सँ मध्यम वर्षा भेल अछि। मौसम विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार पछिला 24 घंटाक दरमियान पश्चिम चंपारणक बगहा मे सबसँ बेसी 20 मिलीमीटर वर्षा भेल अछि। मौसम पूर्वानुमान मे कहल गेल अछि जे काल्हि राज्यक औरंगाबाद भभुआ आ रोहतास जिला में एक दू ठाम भारी वर्षा होयबाक संभावना अछि। एम्हर वर्षा होयबा सँ अधिकतम तापमान में 1 सँ 3 डिग्री सेल्सियस धरिक कमी आयल अछि। पिछला 24 घंटाक दरमियान 39.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमानक संग कैमूरक भभुआ प्रदेशक सबसँ गर्म स्थान रहल। राजधानी पटनाक अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कयल गेल। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों के लिए कामघर कार्यक्रम।

0: कार्यक्रम गाम घर सुनिहार सब श्रोता लोकन के मीर कुमार झाकर नमस्कार स्वागत संगे लाल बहन गोर लगे छी।
1: खूब प्रसन्न रहू मिहिर भाई आ संगे कार्यक्रम गुनगुनैत मन में समस्त स्नेही श्रोता लोकन के लाल बहनक नमस्कार। मिहिर भाई आई से रवि दिन है आ रवि दिन अपना सब गुनगुनैत मन कार्यक्रम ल क अबैत छी न एमे अपन श्रोता लोकन के हुनक मन पसंद लोकगीत सुनबै छियन आ संगे एकटा दोहा सेहो हम सब सब रवि के अपन श्रोता लोकन के सुनबै छियन। त देखियौ गुनगुनाइत मोन ई कार्यक्रम में एहन है जे मोन हर्षित भ जाइए मोन में किछ जे होइए अपना सबके त कनी मोन जहन प्रसन्न रहैए त मोन में गुनगुनाइ छी कोनो गीत नाद किछ मोन एहन में अबैए जाहिसँ प्रसन्नता के अनुभूति होइए न। आ दोहा देखियौ दोहा त सब श्रोता लोकन के बुझल छन जे दोहा के की महत्व अछि मुदा जब मोन पड़ैत रहै छन हम सब तो ओहि दोहा के अपन चरित्र में अपने वाक आत्मसात करवा के हमरा लोकन के ई होइए इच्छा तो ओहिसँ हमरा लोकन के अपन विश्वास आत्मविश्वास बढ़िए। आई के दोहा कौन अन्य छीन मिहिर भाई से अपन श्रोता लोकन के पहले कह दियो।
0: देखियो लाल बहन आ दोहा तो अपना सब बच्चा में कतेक पढ़ने रहै छी तो अखन जे कोनो दोहा जे हुनका मन लय के सुन जाय छथि कहै छै हां ठीक है ई बच्चा में सुनने जाय दे जाय छे

0: आज हम दोहा लाल बहन श्रोता अनल से कबीर दास के छे गुरु गोविंद दौ खरे काको लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए।
1: बा बहुत सुंदर बहुत निक दोहा मिहिर।
0: देखियो लाल बहन कबीर दास का कहब छन जे गुरु आ भगवान जो दुनू गोटे सामने छथि त पहिने गुरु के चरण स्पर्श करक चाहे किएक त गुरु के आशीर्वाद आ हुनक कहब से भगवान तक पहुंचे के मार्ग अपना सब बुझलौं।
1: मिहिर भाई अहां बहुत निक गप कहलौं ठीके हां कहलौं जे भगवान के क्षेत्र जन हम सब जन जन्म के ठार भेलौ जन ज्ञान भेल त ई त गुरुए ने बुझलन बड़ा जे ई भगवान छथिन कि ई ओ छथि कि ई कक्का छथि कि मामा छथि कि नानी छथि कि नाना छथि कोनो संबंध जे से त हमर जे अभिभावक होइ छथि या गुरु वएह ने बतबै छथि त हमरा त भगवान के विषय में वएह बतेलन त पहिने त हुनको से पहिने हम गुरु के चरण स्पर्श करबन त गुरु के कते महत्व है से देखू त ए बात के हमर जे अखन सब लोकन छथि श्रोता लोकन छथि सबके ऐ बात के बुझबाक चाहिए अपन गुरु ही ने जे हमरा पढ़ेलत सह गुरु ने छे माता पिता पहिल गुरु है छे जे हमरा कोनो तरह के ज्ञान देलत शिक्षा देलत ओ हमर गुरु छे आ हुनका हमरा लोकन के सम्मान निश्चित रूप से देबाक चाहिए जहन हुनका सबके हम सम्मान देवन तखने जीवन में हम सब आगू बढ़ सके छी नहीं त कदापि हम सब आगू नहीं बढ़ सके छी।
0: देखियो लाल बहन गुरु के माने होइत छे गुरु गु माने अंधकार आरु माने दूर करो अर्थात जे मानव के जीवन से अंधकार ज्ञानांधकार जे छे से दूर करत हुआ गुरु छे आ देखियो मानव के मानवता के उच्च शिखर पर प्रतिपादित करे के आ मेहनत से मानव के त्राण दियावे के लेल सच्चा गुरु वह छे जे अंधकार से प्रकाश माने छे।
1: बहुत निक गप कहलौं तै हमरा लोकन के ई बात के बुझबाक चाही आ सदैत अपन अपन गुरु के से हमरा लोकन के से सम्मान देबाक चाही मान करबाक चाही तखने हम सब अपन जीवन में
0: देखियो लाल बहन
1: सफल है।
0: गुरु मतलब जे सच्चा गुरु होय छै त नर रूप में नारायण के स्वरूप में रहै छै। त लाल बहन गप सब अपना सब समय अनुकूल और रहे त आइ
1: बहुत रास चिट्ठी सेहो है त अपन श्रोता लोकन के हुनक मन पसंद लोक गीत सेहो सुनबै त मिहिर भाई हमरा हाथ में जे चिट्ठी आयल है ओ चिट्ठी है बैंक रोड भगवतीपुर वार्ड नंबर 300 लिखे वाला हमर श्रोता छत संतोष कुमार अनीता राज गरिमा राज अभिषेक कुमार अविनाश कुमार आ एकटा चिट्ठी हमरा आ रहल है मधुबनी जिला के कोयलक ग्राम से ओ चिट्ठी लिखे वाला हमर श्रोता छथि जितेंद्र कुमार चौधरी चंदा चौधरी वैष्णवी आ हुनक परिवारक सदस्यगण।
0: हमरा लग जे चिट्ठी आयल लाल बहन इनामत टोला भगवतीपुर पंचायत से लिखनहार छथि नूतन सहनी कंचन सहनी बबीता सहनी कोमल सहनी नव्या सहनी सुधा सहनी विवाह सहनी ज्योति सहनी पार्वती सहनी त्रिपुरारी सहनी संतोष कुमार सहनी रासो देवी रुचि कुमारी रिंकू कुमारी एक और चिट्ठी आयल है फुटानी चौक नरहन स्टेट से लिखनहार छथि भाई फटफटिया झा फुलेश्वरी देवी उदयकांत ठाकुर अमन परासर बेबी आराध्या ललन मिश्रा इस सब सुनै छथि ई गीत
1: तो सुनी

0: हाँ अखन अरविंद कुमार झा से ये गीत सुने छलो आ और अहाँ लग कौन चिट्ठी आयल
1: हमरा लग में चिट्ठी आयल नाहर मन टोला से लिखे वाला श्रोता सत भाई कादिर अली जाकिर अली हामिद अली अजाबीर अली
0: हमरा लग जे गोला बाजार बक्सर से लिखनहार छ श्रद्धानंद राय अभय नंद आर्य परमानंद आर्य ये सब सुनना चाहे
1: विदुषी शारदा सिन्हा के स्वर में ये लोकगीत

0: मिहिर भाई एकरा अपना सब भी सादा सुना के सुनमे सुनलो आ हमर सबके कार्यक्रम में भीड़ भ गेले प्रायोजित कार्यक्रम के तो सुनी हमरा लोग एक कार्यक्रम ममता का आंचल
1: सुनल जो
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रद्धा आईवीएफ भिकना पहाड़ी पटना 4।
3: नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से आप सबों के बीच आ गया। आप सुनने जा रहे हैं कार्यक्रम ममता का आंचल, आकाशवाणी पर हर हफ्ते या सप्ताह आने वाला वो कार्यक्रम जो उन सवालों की बात करता है जिन्हें अक्सर घर के चार दीवारी के अंदर भी नहीं पूछा जाता। आज का एपिसोड थोड़ा अलग है। आज हम किसी एक पहलू पर नहीं बल्कि पूरी बात करेंगे। मान लीजिए आप ये विषय पहली बार सुन रहे हैं, ना कोई जानकारी ना कोई पूर्वाग्रह। आज हम शुरू से समझेंगे निसंतानता क्या है, क्यों होती है और विज्ञान इसका समाधान कैसे देता है, यानी आईवीएफ क्या है असल में। मेरे साथ बैठी हैं डॉक्टर श्रद्धा चखैयार, MRCOG लंदन और श्रद्धा आईवीएफ एंड मैटरनिटी पटना की प्रजनन चिकित्सा विशेषज्ञ। इनको हम नमस्कार करते हैं और उससे पहले डॉक्टर श्रद्धा का नंबर हम शेयर करते हैं कि कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछ लीजिएगा सीधे सीधे। नंबर है 9162562266 9162562266। ये नंबर है और ये ममता का आंचल कार्यक्रम हम लेकर आते हैं श्रद्धा आईवीएफ एंड मैटरनिटी की तरफ से, जो कि पटना के भिकना पहाड़ी मोड़ में है। आप यहां से संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर श्रद्धा, जैसा कि हमने कहा, बहुत बहुत नमस्कार आज के एपिसोड में।
4: नमस्कार राजेश जी, नमस्कार श्रोताओं।
3: डॉक्टर श्रद्धा, सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल, निसंतानता क्या है?
4: निसंतानता जानना बहुत जरूरी है उस दंपति के लिए जो इसे जूझ रहे हैं।
3: जी,
4: निसंतानता कहते हैं वैसे दंपति को,
3: हाँ,
4: जो पिछले एक साल से कोशिश कर रहे हैं बिना किसी गर्भ निरोधक के,
3: हाँ,
4: और उन्हें बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो वैसे दंपति को कहा जाता है कि वो निसंतानता से जूझ रहे हैं।
3: जी जी।
4: लेकिन अगर कोई दंपति जहाँ की महिला का उम्र 35 ईयर से ज्यादा है, तो वहाँ हम लोग एक साल रुकने के लिए नहीं बोलते हैं, 6 महीना तक ही कोशिश करें।

0: और अगर
1: हाँ,
0: अब अभी तक बच्चा नहीं ठहरा
1: जी,
0: तो जरूरी है अब इलाज का।
1: हाँ, हाँ।
0: और उन्हें इलाज कराना चाहिए। अभी तो आप किसी भी प्राथमिक कहीं भी इलाज करा सकते हैं जानने के लिए क्या कारण है
1: जी।
0: और अगर अगले एक साल में आपको बच्चा ठहर जाता है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आपको प्रयास करते हुए 2 साल से ज्यादा हो गए बच्चा नहीं ठहर रहा है तो जरूरी है निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिले ताकि वो आपकी बीमारी का बेहतर निदान कर सके।
1: एक बात पूछना चाहते हैं डॉक्टर श्रद्धा कि क्या निसंतानता कोई श्राप या अभिशाप है?
0: नहीं, निसंतानता कोई अभिशाप नहीं है। कोई कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि पिछले जन्म का पाप है, ऐसा कुछ नहीं। निसंतानता सिर्फ और सिर्फ एक बीमारी है, यानी कि मेडिकल कंडीशन है। जिस तरह से डायबिटीज एक बीमारी है, थायराइड एक बीमारी है, उसी तरह से इनफर्टिलिटी भी एक बीमारी है और इसका इलाज संभव है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि निसंतानता का कारण जो होता है उसमें अक्सर लोग महिला को दोष देते हैं।
1: लेकिन डॉक्टर एक सवाल और है कि जब ये बात है तो हमारे समाज में पहला सवाल अक्सर महिला से ही क्यों पूछा जाता है, क्या कमी है तुम में, ऐसा क्यों?
0: ये बहुत दुखद है और बहुत बड़ी गलत फहमी है समाज में कि अगर कोई दंपति निसंतानता से जूझ रहा है तो दोष हमेशा महिलाओं में दिया जाता है। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि 1/3 कॉज निसंतानता के लिए, सिर्फ 1/3
1: जी,
0: जो कारण होता है उसके लिए महिला जिम्मेदार होती है।
1: हाँ हाँ।
0: बाकी जो 1/3 कॉज है उसके लिए पुरुष जिम्मेदार होते हैं और रेस्ट 1/3 जो कॉज है वो अनएक्सप्लेन्ड है, यानी कि हो सकता है महिला हो सकता है पुरुष हो सकता है दोनों हो। अगर कुल मिला के बोले तो निसंतानता जो कारण है वो दंपति का कारण होता है, वो सिर्फ किसी महिला के कारण नहीं होता है। तो समाज का उंगली उठाना सिर्फ औरत के लिए गलत है और उंगली तो किसी पे नहीं उठाना चाहिए। आप अगर उनको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उंगली तो मत उठाइए।
1: एक बात यहाँ हमने कहा था लिसनर्स कि आज का एपिसोड थोड़ा अलग है, ध्यान से सुनने की जरूरत है, नई बातें, नई पहलू और सारी चीजों पर खुल के बात आज के एपिसोड में होगा। और हम सिर्फ यही कहेंगे कि अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप बात कर लें श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी डॉक्टर श्रद्धा के नंबर पर, नंबर है 9162562266, 9162562266। एक बात और कहना चाहेंगे, पैसा अर्थ हाँ बहुत बड़ी समस्या होती है हमारे जीवन में, हम समझ सकते हैं, मैं भी जूझता हूँ इससे, लेकिन निदान कहीं ना कहीं होता है। वैसे माता पिता के लिए श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी ने भी निदान निकाला है जिनके पास पैसे की समस्या है। अब आप इलाज कराएं आराम से, बेझिझक अपना समझकर और टुकड़ों में पैसा दें, यानी EMI पर पैसा देने की व्यवस्था श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी ने की है। 24 महीने में आप पेमेंट कर सकते हैं। बड़े बुजुर्गों आपसे भी हमारा सादर निवेदन है, आग्रह है कि अपने बच्चों का मार्गदर्शन करें और अगर जो बच्चा नहीं है, अगर शादी के 2-3-4 साल हो गए तो IVF पद्धति, या हम IVF भी नहीं कहें, आप सीधे सीधे ये नंबर है ना 9162562266 डॉक्टर श्रद्धा का नंबर है, इस पर बात कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं डॉक्टर श्रद्धा, कारण क्या है, शरीर, उम्र या जीवन शैली क्या है?
0: निसंतानता का कारण कुछ एक कहना मुश्किल है
1: जी।
0: हो सकता है पुरुष में दिक्कत हो सकता है महिला में दिक्कत हो सकता है जीवन शैली में दिक्कत हो।
1: जी, जी।
0: अगर हम महिला से ही पहले बात अगर शुरू करें
1: हाँ।
0: तो हो सकता है कि उसके अंडाशय में अंडा नहीं बन रहा हो।
1: हाँ।
0: एक बड़ा कारण जो बहुत कॉमन होता जा रहा है PCOS या PMOS।
1: हाँ।
0: ये वो कंडीशन है जिसमें शरीर, महिला के शरीर में हार्मोन यानी कि कुछ केमिकल का संतुलन बिगड़ जाता है।
1: हाँ।
0: उसके कारण उन्हें अंडा नहीं बन पाता है। और एक महिला में अंडा बनना बहुत जरूरी होता है अगर उसे बच्चा चाहिए तो।
1: जी जी।
0: तो हो सकता है अंडा बनने में दिक्कत हो।
1: हाँ।
0: हो सकता है महिला का जो नली ट्यूब जहाँ की अंडा और शुक्राणु आके मिलता है हो सकता है वहाँ ब्लॉकेज हो सकता है इंडोमेट्रियोसिस हो सकता है फाइब्रॉइड हो
1: जी।
0: ये सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण एक महिला

0: को बच्चा ठहरने में दिक्कत हो सकती है।
1: और पुरुषों की बात करें तो
0: हाँ, अगर पुरुष में बात करें तो हो सकता है कि पुरुष की शुक्राणु में कमी हो, शुक्राणु की संख्या ठीक हो लेकिन उसकी चाल गड़बड़ हो,
1: हाँ।
0: या फिर शुक्राणु की बनावट गड़बड़ हो
1: जी।
0: और भी दिक्कत हो सकते हैं, तो पुरुष भी कारण होते हैं निसंतानता के। बात करें जीवन शैली की, तो जीवन शैली आज के डेट में बहुत इम्पोर्टेंट है
1: जी।
0: क्योंकि लोग अब ज्यादा जंक फूड्स की तरफ मुड़ते जा रहे हैं, घर का खाना कम पसंद करते हैं, लोग मोबाइल ज्यादा स्क्रॉल करते हैं, उसके कारण जो कहा जाता है 7 से 8 घंटा सोना है वो लोग ठीक से नींद पूरा नहीं कर पा रहे।
1: जी, जी, जी।
0: नींद भी उतना ही जरूरी होता है निसंतानता के इलाज में। हो सकता है धूम्रपान, ये सब के कारण भी नींद कम आता है, ये सब भी हो सकता है। तो अगर आप जीवन शैली भी ठीक कर लेते हैं, और अगर यही कारण है निसंतानता का, तो सिर्फ जीवन शैली ठीक करने से भी बच्चे ठहर जाते हैं।
1: और उम्र की बात करें तो उसका क्या रोल है इसके अंदर में?
0: देखिए, उम्र तो सबसे जरूरी, अगर निसंतानता के इलाज में हम लोग एक चीज की, कोई मुझसे ये पूछे कि सबसे जरूरी बात क्या है, तो मैं बोलूंगी उम्र। हम बार बार रेडियो में आते हैं निसंतानता इनफर्टिलिटी के लिए अवेयरनेस इसलिए फैलाते हैं क्योंकि उम्र का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। वैसे दंपति जिनको बच्चा चाहिए वो ये जान लें कि जैसे जैसे उम्र निकलता है,
1: हाँ।
0: उस दंपति का प्रजनन शक्ति क्षमता जो होता है वो घटता जाता है
1: जी।
0: क्योंकि उम्र बढ़ने के बाद और अंडा के घटने के बाद
1: जी।
0: इलाज जटिल होता जाता है।
1: अच्छा, एक बात बताइए, अब सीधे सीधे चलते हैं, IVF की बात करते हैं। हम लोग IVF पद्धति से बच्चा प्राप्त करना बहुत ही आसान है और बहुत सक्सेस रेट भी अच्छा है, तो असल में IVF क्या है, पूरी प्रक्रिया, हाँ जरा आसानी से और सरल शब्दों में जल्दी जल्दी बता दीजिए।
0: बिल्कुल, निसंतान दंपति को ये भी जानना चाहिए, अगर आपको दवाई से बच्चा नहीं ठहरा,
1: हाँ,
0: शादी के बहुत सारे साल हो चुके हैं और बच्चा नहीं ठहरा, तो IVF आपके लिए एक बहुत ही सफल पद्धति है जिससे बच्चा ठहर सकता है
1: जी।
0: और इसका सक्सेस रेट डिपेंडिंग कि उस दंपति को क्या दिक्कत है, 50-60% भी हो सकता है।
1: हाँ।
0: तो IVF में हम करते क्या है, पहले मैं बता देती हूँ।
1: पहले मैं बता देता हूँ आपका नंबर, अगर कहीं कोई समस्या हो ये बातें सुनने के बाद या कुछ संशय हो तो 9162562266 9162562266 पर डॉक्टर श्रद्धा से बात कीजिएगा। हाँ, आगे
0: देखिए, IVF में सबसे पहले तो कुछ जांच करते हैं और ये जो प्रक्रिया है वो यूजुअली मासिक के दूसरे दिन से शुरू होता है
1: जी।
0: औरत को 10 से 12 दिन सुई पड़ता है और उसके बाद जब अंडे बन जाते हैं तो बेहोश करके उनसे अंडा निकाल लिया जाता है और इस प्रोसेस में कहीं भी किसी को दर्द नहीं होता
1: जी।
0: है और जब अंडे निकाल के उसको पुरुष के शुक्राणु से यानी कि उसके पति के शुक्राणु से मिला के भ्रूण बनाया जाता है। निसंतानता में सबसे ज्यादा दिक्कत ये होता है कि भ्रूण नहीं बनता है, तो IVF इस चीज को बाईपास करता है, यानी कि भ्रूण हम लोग अपने IVF लैब में बनाते हैं और वो उसी तरह से स्वच्छ होता है जिस तरह से माँ का गर्भ स्वच्छ होता
1: जी।
0: है। और उसके बाद जब भ्रूण बन जाता है,
1: हाँ।
0: तो माँ के गर्भ में जब लाइनिंग परत बन जाती, हाँ। है बच्चेदानी की, तो माँ के गर्भ में डाल दिया जाता है और यही बच्चा 5 दिन का बच्चा डाला जाता है और 9 महीने तक ये माँ के गर्भ में रहता है।
1: एक बात बताइए, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, भ्रांति भी है, क्या IVF से उत्पन्न बच्चा जो है ना, वो नॉर्मल बच्चे की तरह होता है?
0: बिल्कुल, IVF से जितने भी बच्चे है वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, इतिहास गवाह है इसके लिए। मैं बोलूं तो पिछला 50 साल से हम लोग देख रहे हैं
1: जी जी।
0: कि बहुत सारे बच्चे IVF से हुए हैं।
1: वो बात बताइए ना जो पहली हुई IVF।
0: हाँ, बिल्कुल,
1: हाँ।
0: और विश्व की पहली जो IVF लड़की जो लुईस ब्राउन आज करीब 50 साल की हो रही है
1: जी जी।
0: वो बिल्कुल सामान्य है बाकी महिलाओं की तरह और उनको अपना बच्चा खुद से हो चुका है,
1: नॉर्मल वे में
0: हुआ है, उनको कोई IVF की जरूरत नहीं पड़ी। इतना ही नहीं, मैं ये भी बताना चाहूंगी कि कितने सारे बिजनेसमैन बहुत सक्सेसफुल इंडिया के जो बिजनेसमैन हैं वो सारे IVF बच्चे हैं। बहुत सारे फिल्म स्टार्स उनके बच्चे IVF से हैं, लेकिन ये तो चकाचौंध वाली बात हुई, लेकिन सामान्य लोग के भी बच्चे आईवीएफ से ही हुए हैं और बिल्कुल वो सामान्य बच्चे की तरह हैं। इनफैक्ट वो लोग थोड़े ज्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं। आईवीएफ के बच्चे, ये भी देखा गया कि वो सामान्य बच्चे से थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं।
1: तो दो बच्चे भी एक साथ होने के

0: के चांसेज होते हैं।
1: बिल्कुल, IVF में करीब 25-50% चांस होता है कि जुड़वा भी हो सकता।
0: तो एक भ्रांति थी जिसका हमने आपसे समाधान ले लिया है। अच्छा, ये कहा जाता है डॉक्टर श्रद्धा कि ये सिर्फ बड़े शहरों के अमीर लोगों के लिए IVF है, क्या कहना चाहिएगा?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। IVF अब बिहार में आपके पटना शहर में और भी कई जगह अवेलेबल है, लेकिन आपको ये जानना होगा कि आप जहां भी इलाज करा रहे हैं क्या वो सरकारी ARTI नियम का पालन करता है।
0: जी,
1: यानी कि मान्यता प्राप्त केंद्र में आप अपना इलाज कराएं, और ये सबों के लिए अब अवेलेबल है।
0: तो डॉक्टर श्रद्धा, आज सचमुच आज का जो एपिसोड था वो बहुत ही अलग था, और आज जिन्होंने भी ये सुना होगा बहुत सारी भ्रांतियां आपकी दूर हुई होंगी। बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, बीमारी है ठीक हो जाएगा, और नहीं तो फिर IVF है ना, और डॉक्टर श्रद्धा तो है ही है। आप फोन कर सकते हैं जानकारियों के लिए, 9162562266 ये नंबर है, 9162562266। ये आराम से बोलते हैं बड़े बुजुर्गों के लिए कि आप नंबर को फॉलो कीजिए और फिर अपने नीचे अपने बच्चों तक उसको आगे बढ़ाइए। फिलहाल चलने का वक्त हो गया, लेकिन चलने से पहले एक बात और बता दें कि श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी में पैसा आ रहे नहीं आता है। EMI पर आप 24 महीने में इलाज करवा कर भी पैसा दे सकते हैं। फिलहाल ढेर सारी बातें होंगी, आप हमें फोन कीजिएगा, सवाल पूछिएगा, जिससे हमें आसानी होगी कि आपकी क्या समस्या है उसका समाधान हम डॉक्टर श्रद्धा से ममता का आंचल कार्यक्रम में निकलवा सकें। तो चलते हैं डॉक्टर श्रद्धा, निकलते हैं, कहते हैं नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्रद्धा IVF भिकना पहाड़ी पटना 4।
3: हाँ तो मिहिर भाई, एखन अपना सब सुनै छलहुँ हँ ई प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आँचल। आइसँ हमरा लोकनिके बहुत रास जानकारी भेटैए, आ जाहि दम्पतिके सन्तान नहि छनि हुनका कोनो एहि लेल तनाव नहि हेबाक चाहिन, आ एहिसँ ओ अपन लाभ उठा सकैत छथि आ हुनको घरमे खुशी आबि सकैत अछि। तऽ देखियौ, हमर सबके कार्यक्रम गुनगुनाइत मन समेटबाक बेर भऽ गेलै, तऽ एकबेर अपन श्रोता लोकनिके कहि दियनि जे ओसब अहिना चिट्ठी बहुत रास पठबैत रहथि, आ बहुत रास चिट्ठी तऽ हमरा सबके छुटि गेल किएक तऽ समय कम छल। फेर अगिला रवि दिन हमसब ओ चिट्ठीके फेर अपन कार्यक्रममे शामिल करब। आब हमसब एहिठाम अपन कार्यक्रम खेती गृहस्थी पसारी सबसँ पहिने अपन किसान भाइ लोकनिके स्वागत करै छियनि आ नमस्कार।
4: देखियौ लाल बहिन, खेती गृहस्थी कार्यक्रममे किसान भाई सबके नमस्कार संग। देखियौ, अपन सबके किसान भाई जे छै से खूब मेहनत कऽ कऽ
3: निश्चित रूप
4: अन्न फल फूल संग तीमन तरकारी सब उपजबैत रहै छै,
3: कहियो हाथ पर हाथ धऽ कऽ नहि बैसल रहै छै, किछु ने किछु काज करते रहै छै। आ जब मिहिर भाई, आइ हम बुझै छियै आइ अहाँ टमाटर के गप करब, तऽ टमाटर देखियौ कतेक महत्वपूर्ण अछि जे कोनो तरकारी बनाउ तऽ ओहिमे टमाटर के आवश्यकता पड़ैए, चटनी बनाउ तऽ ओहिमे अहाँके पड़ैए, सलाद खाउ तऽ तरकारी के रंग रूप सेहो टमाटर बदलि दैए, स्वादो बदलि दैए। तऽ एहन जे टमाटर अइ तऽ एकरा जे मेहनतसँ आ नीकसँ जे किसान भाइ लोकनि खेती करता तऽ आ कतेक बाजारमे एकर महग रहैए से तऽ देखबे करै छियै।
4: देखियौ लाल बहिन, टमाटर जे अहाँके लिए तरकारीमे खूब स्वाद दैए, टमाटर जे छै से तरकारी के रंग तऽ खूब आनि
3: दैए,
4: बेजोड़ स्वादो बना दैए, एतबे नहि टमाटर स्वास्थ्य के लेल सेहो बड़ फायदेमंद छै। देखियौ, टमाटर में विटामिन सी, पोटेशियम, ई सब जे छै शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट, लाइकोपीन, ई सब जे छै प्रचुर मात्रा में,
3: तैं अपना सलाद के रूप में उपयोग करै छी, कच्चो खाइ छी,
4: कच्चो खाइ छी, आ ई हृदय रोग के लेल सबसे बेसी स्वास्थ्य
3: रामबाण के काज करै छै,
4: जे हृदय रोग छै जिनका हार्ट के बीमारी छै से ई टमाटर जे खाइ छथि हुनका ई सब खुशी होइ छै, एहिसँ अति बढ़िआँ स्वास्थ्य लाभ भेटै।
3: एकर व्यावसायिक रूपसँ जे किसान भाइ लोकनि खेती करता तऽ बहुत रास लाभ
4: हेतै। देखियौ, टमाटर स्वास्थ्यके लेल कतेक फायदाकारक छै जे टमाटर कोलेस्ट्रॉलके सेहो नियन्त्रित करैत अछि आ वजनके सेहो घटबै छै, एहन फायदामंद टमाटर जे अपना सब आसानीसँ बाड़ियो झाड़ीमे रोपै छथि आ
3: उन्नत प्रभेद लगेबाक चाही, किया तऽ उन्नत प्रभेद जहन मेहनत करब तऽ उन्नत प्रभेद लगायब तहने अहाँके बढ़िआँसँ ओकर उपज हैत। तऽ ताहि दुआरे पहिने एकर उन्नत प्रभेद की अइ, कोन माटिमे लगेबाक चाही से अपन किसान भाइ लोकनिके कहि दियौ।
4: देखियौ लाल बहिन, टमाटर खेतीके लेल उचरस या जल निकासी वला हल्लुक दोमट माटि नीक मानल गेल, किया तऽ टमाटरक गाछ जे छै से हलगर जमीनमे खोदै छै आ गाछमे जे पानि लागि जाइ छै तऽ ओ गाछ जे छै
3: बेसी पानिके मने आवश्यकता ओकरा नहि होइ छै।

0: पानि निकासी के व्यवस्था रहबाक चाही।
1: टमाटर गाछक पानि लागल
0: नहि रहबाक चाही।
1: देखियो गाछ पियर भऽ जाइ छै आ सुखा जाइ छै पानि लागल। देखियो लाल बहिन, माटिक जे छै पीएच मान 6.0 से 7.0 आ ओकर जे तापमान छै 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान नीक मानल गेलै टमाटर खेती के लेल। देखियो टमाटर खेत के लेल नीक उन्नत किस्म के जे अहाँ गप करै छलहुँ ओहिमे संकर किस्म जे छै सीए जेटा साहो अभिलाष अनुपम संग पूसा हाइब्रिड नीक मानल गेलै अपना सब।
0: तऽ वएह लगाबी।
1: हाँ देखियो लाल बहिन, ओतय स्थानीय व सामान्य किस्मक बिया टमाटर के गप करब तो पूसा रूबी अर्का रक्षक आ काशी ई सब प्रभेद जे छै टमाटर के सेहो बढ़िया मानल गेल।
0: अखन बेरो उचित है आ देखियो कोनो टमाटर खेती अपना सब करै छै तऽ प्रभेद कहे देल हन जे ई लगेबाक चाही उन्नत प्रभेद। आ दोसर गप जे पटौनी आ कमौनी निकौनी आ खाद उर्वरक ई सब ओहिमे आवश्यक अछि। तऽ खाद उर्वरकमे तऽ इएह कहबनि जे बर्मी कम्पोस्ट जैविक खादके उपयोग हमर किसान भाइ लोकनि के बेसी से बेसी करबाक चाही। रासायनिक खादके एकदम नहि उपयोग करबाक चाही की।
1: देखियो लाल बहिन, टमाटर जे छै से अपना सब बरखमे 3 बेर लगा
0: करै छी।
1: जेना वर्षा काल जाड़कमे आ गर्मीमे। अखन वर्षाक समय चलि रहल छै जे देखियो जे टमाटरके जे बरखा ऋतुके समय जे होइ छै से जुलाई से लए कऽ अगस्त मास तक टमाटरके रोपाई
0: उचित बेर
1: उचित बेर। आ जँ जाड़मे टमाटर लगाबी तऽ ओकर समय होइ छै अक्टूबर से
0: नवम्बर
1: आ दिसम्बरो मासमे होइ छै। आ गर्मीमे जे लगायब गर्मी टमाटर ऋतुमे जे लगायब तऽ जनवरी आ फरवरी मासमे टमाटरके उचित मानल जाइ छै। देखियौ लाल बहन, टमाटरक खेतक लेल सबसँ पहिने हल्लुक दोमट माटिके गप केने छलहुँ आ माटिके खूब नीकसँ जोताइ कोराइकऽ ओकरा हल्लुक बनाकऽ ओकरा रोटावेटरसँ नीकसँ जे खेतके 2-3 बेर जोति दै छै तो खेत हल्लुक भऽ जाइ छै आ भुरभरा भऽ जाइ छै। तो ओकरा क्यारीमे टमाटरके गाछ
0: रोपबाक चाही।
1: आ क्यारी जे छै 3 से 4 फीट चौड़गर आ 1 फीट उजगर रहत तऽ बढ़िआँ मानल जाइ छै।
0: आ गाछ सँ गाछके दूरी सेहो पर ध्यान रखबाक चाही, नहि तऽ घनगर भऽ जायत तऽ गाछके विकास नहि होयत।
1: आ क्यारी जे बनाबै छै बेड ओकरो दूरी तकरीबन 2.5 फीट रहत, किया तऽ गाछ जे छै टमाटरके थोड़े लत्ती
0: जेना होइए
1: तऽ जखन गाछ बेसी
0: जगह रहतै तहन खोदत।
1: आ गाछके सीधा रखै लए ओकरा कोनो
0: सहाराके आवश्यकता होइ छै तऽ किछु ओहिपर गाड़ि दी कोनो, नहि तऽ कनि मचाने जेना बना दी जाहिपर लतर रहै
1: से।
0: आ पटौनी हल्लुक करबाक चाही, मने जहन बुझाय नमीके अभाव छै जमीनमे तऽ हल्लुक पटौनी कऽ देबाक चाही आवश्यकता अनुसार।
1: तऽ गप सब बेर रहतै तऽ आओर
0: हेतै। आब देखियौ किछु तऽ खाली छुच्छे गप्पे तऽ नहि अपन किसान भाइ लोकनि सँ करबनि, किछु गीतनाद होइ छै रमन चमन होइ छै तहन हुनको सबके मोन लगै छनि कार्यक्रममे। तऽ आब सुनबा दै छनि एकटा सुन्दर सन लोकगीत
1: सुनल जाए।

0: अम्बे आब उचित नहि देरी, एखन ई भगवती गीत ममता ठाकुरके स्वरमे सुनलहुँ आ आशा करै छी हमर किसान श्रोता लोकनिके सेहो खूब नीक लागल हेतनि। आ देरी तऽ किसानो भाइ लोकनिके कोनो काजमे नहि हेबाक चाही, किया कहै छी समयपर जे करता तऽ निश्चित रूपसँ उत्पादन बढ़िआँ हेतै, आ जब पछता करता तऽ पछते सनके खेतियो हेतनि
1: कि मेहनत लागि जाइत छै, खर्चा
0: मेहनत खर्चा लगै छै, लेकिन सामान तऽ वएह पछतेवला होइए। तऽ देखियौ सभसँ पहिने तऽ मौसमके जानकारी हमर किसान भाइ लोकनिके एकदम रहबाक चाही, किया तऽ ओ जानकारी जहन रहै छनि ने तऽ ओहि हिसाबसँ अपन काजके समेट लै छथि, आ जँ नहि बुझल रहै छनि तऽ अकबका जाइ छथि ने। तऽ मौसम की कहि रहल छै मिहिर भाइ, से पहिने अपन किसान लोकनिके कहि दियौ।
1: देखियौ अखन मौसम पूर्वानुमानमे जे यऽ ग्रामीण कृषि मौसम सेवा पूसा समस्तीपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभागके सहयोगसँ जारी कयल गेल अछि पूर्वानुमान अवधिके दौरान उत्तर बिहारके अधिकांश स्थानमे गरज चमक वज्रपात आ तेज हवा चलैके सम्भावना अछि। विशेष रूपसँ 1-3 जूनके दौरान अधिकांश क्षेत्रके मध्यम वर्षाक होइके सम्भावना छै, 1-2 स्थान पर भारी वर्षाक सेहो अनुमान छै। वर्षाक गतिविधि जे छै लाल बहिन तापमानके उल्लेखनीय गिरावट अबैके सेहो सम्भावना छै। अधिकांश जिलामे अधिकतम तापमान 31-33 डिग्री सेल्सियसके बीच रहैके सम्भावना अछि, जखन कि बेगूसराय जिलामे अधिकतम तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहैके जेनाकि 35-37 डिग्री तक रहैके सम्भावना छै, आ न्यूनतम तापमान 22-26 डिग्री बीचके रहैके सम्भावना छै। ई बेगूसराय जिलाके पूर्वानुमान यऽ। भोरके सापेक्ष आर्द्रता 80-85%, दुपहरियाके सापेक्ष आर्द्रता 35-40%।

0: रहैके सम्भावना छै। आ पूर्वमान अवधिमे हवा मुख्यतः पूर्वा दिशामे चलैके से सम्भावना छै। एकर जे अथी छै चालि से 12-18 किलोमीटर प्रति घण्टाके गतिसँ से एकर चलैके रफ्तार रहत। ई छल पूर्वानुमान। समसामयिक सुझाव किसान
1: अहाँ ठीके कहलहुँ, तऽ मौसमके ज्ञान अपनके किसान भाइ लोकनि गर्मी देखिए रहल छिए जे केहन प्रचण्ड गर्मी अइ, तऽ गर्मीके देखैत किसान भाइ लोकनि अपन काजके से करैत आ देखबै ठाम ठाम कतौ कतौ ठाम भेला बरखा आ कतौ लागल छलै मुदा नहि भेल। लेकिन जखन कखनो अगर बरखाके सम्भावना बुझबामे आबै तऽ किसान भाइ लोकनि खेतमे जे काज करैत रहै छथि ओतऽसँ हटि जेबाक चाही, जहन चमक गरज आ ठनकाके जहन सम्भावना रहैया
0: देखथिन
1: तऽ ओ अपन घर अपन नहि अपन घर दूर होइन तऽ कोनो आस पड़ोसमे जे घर होइ ताहिठाम शरण लऽ लेबाक चाही। ओहि मने समयमे से खेतमे नहि रहबाक चाही, से ध्यान राखथि। आ पशु जे किसान भाइ लोकनि अपन पशु पोसै छथि तऽ पशु पर सेहो ध्यान देबाक चाही। माल जाल पर जेना एखन देखै छी प्रचण्ड रौदमे जेना हम अहाँ छाहरि तकै छी,

0: कहि हम अपनेके किसान भाइ लोकनि गर्मी देखिए रहल छिए जे केहन प्रचण्ड गर्मी अइ, तऽ गर्मीके देखैत किसान भाइ लोकनि अपन काजके से करैत आ देखबै ठाम ठाम कतौ कतौ ठाम भेल बरखा आ कतौ लागल छल मुदा नहि भेल, लेकिन जखन कखनो अगर बरखाके संभावना बुझबामे आबै तऽ किसान भाइ लोकनि खेतमे जे काज करैत रहै छथि ओतऽसँ हटि जेबाक चाही, जहन चमक गरज आ ठनका ठनकाके जहन संभावना रहैया देखथिन तऽ ओ अपन घर अपन नहि अपन घर दूर होइन तऽ कोनो आस पड़ोसमे जे घर होइ ताहिठाम शरण लऽ लेबाक चाही, ओहि मने समयमे से खेतमे नहि रहबाक चाही से ध्यान राखथि। आ पशु जे किसान भाइ लोकनि अपन पशु पोसै छथि तऽ पशु पर सेहो ध्यान देबाक चाही, मालजाल पर जेना एखन देखै छी प्रचण्ड रौदमे जेना हम अहाँ छाहरि तकै छी तहिना जानवर तऽ नहि बुझैए, तऽ ओकरो छाहरिमे रखबाक चाही, ओकरा ई नहि जे बीच दुपहरियामे खोलि कऽ छोड़ि देबै तऽ ओ तऽ कतौसँ कतौ चलि जायत, तऽ से नहि रखबाक चाही, एकरा भिनसर आ साँझमे से चरेबाक चाही, ओना ओना खुट्टा पर बान्हि कऽ छाहरिमे से रखबाक चाही। आ दोसर गप मिहिर भाइ, जे जँ अपना सब पशुके जे किसान भाइ लोकनि पानि पिए लए दै छथिन ओ ठंडा कल चला कऽ पानि देबाक चाही, ई नहि जे नादिमे भोरे पानि दऽ देलियै आ जँ ओ नहि पिलकै तऽ वएह पानि ओ फेर पीतै तऽ ओ तऽ गरम भऽ जायत, तऽ मुँह लगा कऽ छोड़ि देत तऽ पानि तऽ नहि पीत तऽ फेर ओकरो मोन खराब भऽ जेतै, तऽ ई सब ध्यान जे पशु पोसै छथि ओ किसान भाइ लोकनिके एखन राखऽ पड़तनि, जेना हम अहाँ अपन स्वास्थ्य पर ध्यान राखै छी तहिना तऽ पशुओके स्वास्थ्य पर नहि रखबै, बरसात आबऽसँ पहिने टीकाकरण निश्चित कऽ पशुके करा देबाक चाही, तऽ ई छोट छोट गप पर जँ ध्यान रखता तऽ पशु स्वस्थ निरोग रहतन आ जे मने दूध दै वाली पशु छै ओ नीक दूध के उत्पादन देतन, आमदनी बढ़िया हेतै,
1: भोजन जे छै से साफ देबाक
0: निश्चित रूप सँ
1: गर्मी महिनामे से देखै छन किसान
0: सरल गलन नहि देबाक चाही,
1: सरल गलन देबाक रातिमे जे सानी लगेलथि आ जे खेलकै आ जे बचि जाइ छै भोरमे ओहिमे दऽ दै छथिन, लादि कम सँ कम दू बेर साफ
0: करबाक
1: चाही, साफ पानि सँ साफ कए देबाक, जे कोनो बचल अन्न जे देल जाइ छै या खल्ली देल जाइ छै ओ गर्मी महीनामे लादि कऽ नीक सँ साफ कए कऽ तकर बाद नया चुन्नी भूसा हरियर घास
0: एतबा दियौ जे मतलब ओ खा लै, अहाँ तऽ अन्दाज तऽ बुझाए जाइ छै जे खाइए, कने मनी बेचतै तऽ फेंक देबै, ई नहि जे फेर ओहिमे दऽ देबै, तऽ से सब गप राखब। तहन आब देखियौ मिहिर भाइ की विचार किछु चली ने
1: सुनबा
0: दै छै
1: राधा मोहन मिश्र सुनल जाय गीत।

0: हाँ, अखन राधा मोहन मिश्र से ई गीत सुनै छलहुँ, हे गौरा तोरो सजन मन। देखियौ महादेव जे छथिन ने हुनकर नामे छनि आशुतोष। कनिके एक लोटा जल आ कनि बेलपत्र दुई बेर चढ़ा दिनु, प्रसन्न भ
1: अघरदानी
0: अघरदानी।
1: आ देखियौ आन भगवान के अहाँ जते मर मधुर चढ़ाओ तऽ हुनका सब कोनो काज नहि, ओ तऽ एक लोटा जले में एहन प्रसन्न भ जाइ छथि जे ओ मान वांछित फल दऽ दै छथि। तै ने हुनका कहलनि देवाधिदेव महादेव। तऽ ओ इएह आशा करै छी जे सब गोटे पर से हुनक आशीर्वाद बनल रहे, हमसब जे काज करी ओहिमे सफलता भेटै सब गोटा के की। आ देखियो आप चर्चा करै छलहुँ हैं अपन किसान भाई लोकन अन्नदाता, ओ सब जहन अन्न के उत्पादन करै छथि, उपजबै छथि अन्न फूल तरकारी फल, तखने ने हमसब ओकर स्वाद लै छी। आँ तऽ देखियौ एखन बेरक मने जे एखन कथी के बेर अइ ओहिपर किसान भाई लोकन के बेसी से ध्यान, ओना तऽ ओ लोकन अपने बहुत साकांक्ष रहै छथि मुदा हमसब बेर बेर मोन पारि दै छियनि। जेना एखन देखियौ एखन धान के रोपबाक बेर अइ ने, जतऽ जाहि ठाम कतौ ठाम ठाम कतौ बरखा भेल आ कतौ सीधे आबाद भेल आ नहि भेल, तऽ ओहिठाम जे किसान भाई लोकन के बिचड़ा तैयार भऽ गेल छनि ओ धान के रोपनी कऽ सकै छथि, जिनका नहि छनि ओ बिचड़ा खसा सकै छथि की। जेना लत्ती फत्ती वाला तरकारी भेल ओकरा अहाँ लगा सकै छी, प्याज के नर्सरी में खसा सकै छी की मीर भाई।
0: देखियो तिलक जे छै खरीफ तिल के सेहो बुआई के समय
1: अखन ओकरा अखन उचित बेर छै।
0: देखियो खरीफ तिल के बुआई जून से जुलाई में कह सकै छथि, अखन जुलाई शुरुए भेल यऽ अखन किसान भाई कह सकै छथि। बुआई के लेल तिलक बुआई के लेल से जल निकासी वाला उचरस जमीन के चयन करथि आ बुआई से पूर्व बिया के थीरम 2 ग्राम किलोग्राम बीज से उपचारित कऽ लेथि। बिया के उपचारित कला के बाद 30 से 15 सेंटीमीटर के दूरी पर ओकरा बुआई करथि। खेत के तैयारी के समय 60 क्विंटल कम्पोस्ट प्रत्येक हेक्टेयर के दर से ओहिमे दऽ देबाक चाही। आ जँ नेत्रजन सब नेत्रजन फास्फोरस पोटास एकरो प्रयोग करैत आओर उत्तम। आ देखियौ उत्तर बिहार मे अनुशंसित किस्म जे अछि तिल के ओ कृष्णा कालिका काके सफेद आ प्रगति MT 15 ई सब प्रमुख अछि।
1: तऽ उहे तऽ अनुशंसित जे

0: आ उन्नत जे प्रभेद वह किसान भाई लोकन के लगेबाक चाही आ अइमे त पानी के अहाँ कहबे के लिए कम काज होय तो ओ तार बढ़िया भेल तहिना एखन जे मतलब मोट अन्न के अपना सबके श्री अन्न के से उपयोग करे ला कहै छथि आ दोसर गप किसान भाई लोकन के अइमे खर्चा कम होय छन मेहनत कम होय छन आ पानी के आवश्यकता कम पड़े छै तो ओकरो एखन उचित भेल है
1: खरीफ मकई में जे कहल गेल छै से किसान भाई लोकन के वर्तमान वर्षा के लाभ उठबे किसान भाई खरीफ मकया के बुआई शीघ्र संपन्न क ले अंतिम जुलाई तक संपन्न क ले आ देखियो एकर बुआई के लेल 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से सरल गोबर जे कंपोस्ट ओकर उपयोग करत आ नेत्रजन सबके प्रयोग सेहो करत आ एकर जे मकई के जो निक प्रभेद है शक्तिमान 2 शक्तिमान 5 शक्तिमान 6 राजेंद्र शंकर मक्का 3 ई सब जे छे निक प्रभेद मानल
0: ठीक है करो तो आप देखियो हमर सके कार्यक्रम जे आ खेती गृहस्थी आप समेटबाक बेर भ गेले तो एकरा आप हमरा सब सब समेटी आ किसान भाई लोकन सब चलबाक आज्ञा ली
1: गोर लगे छी लाल भाई
0: खूब दन दनाइत रहू मिहिर भाई।

अभी आप खेती गृहस्थी और गांव घर कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण पटना केंद्र से कुछ एक पल में।

0: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुन

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रशांत किशोर होंगे जनसुराज के उम्मीदवार। उपचुनाव के लिए कल जारी होगी अधिसूचना। मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हत्या के मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई। और प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से आज पटना, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल और भोजपुर समेत कई जिलों में हुई बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण वीवीजी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपये की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीवीजी रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: श्री चौहान ने कहा कि वीवीजी रामजी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए अधिसूचना कल जारी होगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रत्याशी 13 जुलाई तक नामांकन कर सकेंगे। 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 16 जुलाई है। मतदान 30 जुलाई को होगा। वहीं मतों की गिनती 3 अगस्त को होगी। गौरतलब है कि भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। जन सुराज पार्टी ने प्रशांत किशोर को बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया है। पार्टी की कोर कमेटी की बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने श्री किशोर

0: के नाम का ऐलान किया है। पार्टी उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद प्रशांत किशोर ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेवारी तय की है उसका सम्मान करते हैं।
1: बांकीपुर में चुनाव लड़ने की जो जिम्मेवारी हमको दी गई है, मैं उसी परिणाम उसी प्रयास के दिशा में इसको एक कदम मानता हूं जो नवंबर 2025 में हजारों लाखों लोग धन स्वराज के विचार से इस प्रयास से जुड़े थे। तो मैं इस जिम्मेवारी को अपनी ह्यूमिलिटी के साथ एक्सेप्ट करता हूं, अपने साथ सभी साथी कार्यकर्ताओं का नेताओं का धन्यवाद करता हूं।
0: इधर भाजपा ने भी बांकीपुर उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के चयन को लेकर कोर कमेटी की बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत पार्टी के प्रमुख नेता मौजूद थे। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। सत्र 24 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। मानसून सत्र के पहले दिन सदन में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट पेश किए जाएंगे। अगले कार्य दिवस में इस पर सामान्य वाद विवाद होगा और मतदान के बाद मंजूरी दी जाएगी। इधर संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की आज 80वीं जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रामविलास पासवान ने समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लोजपा आर प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लखनऊ में आयोजित जयंती समारोह में कहा कि रामविलास पासवान समाज के वंचित और दलित वर्गों के हिमायती थे और सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय पासवान की भावनाओं के अनुरूप पार्टी का विस्तार किया जा रहा है।
3: लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ये फैसला लिया कि हमारी पार्टी के संस्थापक मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जयंती दिवस समारोह को इस साल उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसको मनाने का फैसला पार्टी के द्वारा लिया गया। आने वाले दिनों में पार्टी विस्तार की सोच से आगे बढ़ने का कार्य कर रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की सोच रखती है। गठबंधन क्या होगा, गठबंधन का स्वरूप कैसा होगा, कितनी सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, ये तमाम फैसले राज्य इकाई को लेने हैं।
0: इधर पटना समेत प्रदेश भर में रामविलास पासवान की जयंती के मौके पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। पटना स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय पासवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाए।

0: का डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR न्यूज अंडर स्कोर पटना को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई है। दिल्ली की एक अदालत ने सुनवाई करते हुए विधायक को इस मामले में दोषी करार देते हुए पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। गौरतलब है कि दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित राजू कुमार सिंह के भाई के फार्म हाउस में पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग में एक महिला की मौत हो गई थी। राष्ट्रीय जनता दल का 30वां स्थापना दिवस आज प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। पटना स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस मौके पर राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने अपने संदेश में कहा है कि पार्टी की स्थापना गरीबों, शोषितों और अकलियतों के अधिकारों की लड़ाई के उद्देश्य से की गई थी। उन्होंने पार्टी की एकजुटता पर बल देते हुए कार्यकर्ताओं से जनहित के मुद्दों पर संघर्ष करने की अपील की है। श्री यादव ने इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं के संघर्ष और समर्पण की सराहना की। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा जिले के दोइया में शांतिमणि पेपर मिल के विस्तारीकरण परियोजना का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने पेपर मिल परिसर का भ्रमण कर उत्पादन प्रक्रिया और अत्याधुनिक मशीनों का निरीक्षण भी किया। बिहार राजपथ परिवहन निगम द्वारा पटना, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, गया जी और जमुई समेत प्रदेश के 30 से अधिक प्रमुख शहरों में आधुनिक बस डिपो का निर्माण किया जाएगा। परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने बताया कि सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिपो में वातानुकूलित प्रतीक्षालय, कैफेटेरिया, शॉपिंग क्षेत्र, होटल और अन्य यात्री सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। प्रदेश में मॉनसून के सक्रिय होने से आज पटना, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, किशनगंज, सहरसा, सुपौल और भोजपुर समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण के बगहा में सबसे अधिक 20 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार कल औरंगाबाद, भभुआ और रोहतास जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
4: दिनांक 6 जुलाई राज्य के औरंगाबाद, भभुआ एवं रोहतास जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के अरवल, औरंगाबाद, बांका, भभुआ, गया, जहानाबाद, जमुई, लखीसराय, नालंदा, नवादा, रोहतास एवं शेखपुरा जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्व भाग के जिलों भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, मुंगेर एवं पटना जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
2: इधर बारिश होने से अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 39.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का आज निधन हो गया। उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि कला और संस्कृति के क्षेत्र में तीजन बाई के योगदान को देश श्रद्धा

0: पूर्वक याद रखेगा। इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में श्री चौधरी ने कहा कि उनके निधन से भारतीय लोक कला और संस्कृति को अपूर्णीय क्षति हुई है। पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया मंझोलिया रेलखंड के दोहरीकरण कार्य का कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी CRS गुरुप्रकाश ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ट्रैक सिग्नल प्रणाली, इंटरलॉकिंग व्यवस्था और रेलवे क्रॉसिंग समेत अन्य कार्यों का जायजा लिया। इस क्रम में CRS ने 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पीड ट्रायल भी किया। भोजपुर जिले के बिहिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत राही लाइन होटल के पास चार पहिया वाहन ने एक खरे कंटेनर में टक्कर मार दी, जिससे वाहन सवार तीन लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। मधुबनी के जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने बलिराजगढ़ में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा संचालित खनन कार्य की प्रगति की समीक्षा की। जहानाबाद जिले में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन अभियान के तहत टीबी मरीजों के बीच पोषण किट का वितरण किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी छीरिंग वाई भूटिया ने कहा कि सरकार जिले को क्षय रोग मुक्त बनाने के लिए प्रयासरत है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रशांत किशोर होंगे जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार। उपचुनाव के लिए कल जारी होगी अधिसूचना। मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हत्या के मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई। और प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से आज पटना, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल और भोजपुर समेत कई जिलों में हुई बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब प्रस्तुत है शिवहर जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता हरिकांत सिंह।
1: शिवहर जिले के किसान खरीफ फसलों की तैयारी में जुट गए हैं। कृषि विभाग ने इस मौसम में 26,000 हेक्टेयर में विभिन्न खरीफ फसलों के आच्छादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं जिले में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। युवा रोजगार और कौशल विभाग के तत्वावधान में जिला नियोजनालय की ओर से समाहरणालय में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में युवाओं को रोजगार और कौशल विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई, साथ ही स्वरोजगार तथा रोजगार के अवसरों से जोड़ने वाली योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति तथा मानव व्यापार विरोधी समिति की बैठक जिलाधिकारी प्रतिभा रानी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण, मानव तस्करी की रोकथाम और अनाथ तथा बेसहारा बच्चों के पुनर्वास की समीक्षा की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से मंडल कारा में स्प्रिया योजना 2025 के तहत विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बंदियों को उनके अधिकारों तथा सुरक्षात्मक योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान जेल अधीक्षक ने कहा कि जेल केवल सजा काटने का स्थान नहीं बल्कि सुधार गृह है और बंदियों को पुनर्वास की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। कृषि विभाग के तत्वावधान में खरीफ महाअभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें किसानों को खरीफ फसलों के आधुनिक ढंग से खेती, उन्नत बीजों, वैज्ञानिक तकनीकों तथा कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। इधर बारिश और संभावित बाढ़ को लेकर जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान राहत एवं बचाव कार्यों की सभी तैयारियां समय से पूरा करने, आपदा संपूर्ति पोर्टल पर लाभार्थियों का विवरण अपडेट करने और नए पंजीकरण जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। जिला स्तरीय बैंककार सलाहकार सह समीक्षा समिति की बैठक में विभिन्न बैंकों एवं ऋण योजनाओं की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के लंबित मामलों पर नाराजगी जताते हुए संबंधित बैंक प्रबंधकों को शीघ्र ऋण वितरण सुनिश्चित करने

0: तथा पात्र उद्यमियों को रियायत दरों पर ऋण उपलब्ध कराने का निर्देश दिए। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने विधिक जागरूकता एवं सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों तथा माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 साल पूरा होने पर भाजपा की ओर से जिला इकाई ने विकसित भारत संकल्प सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद राधा मोहन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, किसान हित, डिजिटल परिवर्तन और सुशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। विकसित भारत समृद्ध बिहार अभियान के तहत जिले के विभिन्न प्रखंडों के पंचायतों में सहयोग शिविर लगाए गए। शिविर में बड़ी संख्या में प्राप्त आवेदनों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस दौरान लाभार्थियों के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना की सांकेतिक चाबियां, जॉब कार्ड, राशन कार्ड तथा अन्य सरकारी योजनाओं से संबंधित दस्तावेज भी वितरित किए गए। जिले के विभिन्न पंचायतों में पंचायत विकास दिवस मनाया गया। ग्राम विकास सभाओं में पंचायत विकास योजनाओं पर चर्चा की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी प्रतिभा रानी ने कहा कि जन भागीदारी के बिना समग्र विकास की कल्पना संभव नहीं है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के मन की बात का सामूहिक प्रसारण भी किया गया, जिसे ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने सुना। ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू की गई जी राम जी योजना के शुभारंभ के अवसर पर जिला मुख्यालय में जन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों को योजनाओं के उद्देश्यों और कार्यान्वयन की जानकारी दी गई। जिले में मुहर्रम शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुआ। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में तजिया जुलूस निकाले गए। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और कामगारों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अंतर्गत विधिक सहायता प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इसके संचालन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति बनाई गई है, जो कामगारों को आवश्यक विधिक सहायता उपलब्ध कराएगी।
1: अभी आप सुन रहे थे शिवहर जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता हरिकांत सिंह।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। श्रोता, आपको लिए चलते दिल्ली केंद्र, जहां से सुनेंगे ICC वुमेन्स टीम।

हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। मीडियम वेव है 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। आप हमारा प्रसारण न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। डीजे पेशे फिल्म संगीत। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में इंदिवर का लिखा गीत। संगीत दिया है बप्पी लहरी ने और फिल्म का नाम है दो गुलाब।

अभी आप सुन रही थी खुदगर्ज फिल्म का गीत मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाजों में। अगला गाना फिल्म जुनून से, गायक कलाकार हैं अनुराधा पौडवाल और विपिन ससदेवा, शब्दकार समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।

श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, अब से थोड़ी देर बाद यानी रात 8:15 पर आप सुनेंगे क्रीड़ा जगत कार्यक्रम। 8:45 पर समाचार संध्या, न्यूज एट 9 रात 9 बजे, रात 9:15 पर उर्दू खबरें, रात 9:30 पर रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम, रात 10 बजे रविवासरीय

क्रीड़ा जगत कार्यक्रम 8:45 पर समाचार संध्या, न्यूज एट 9 रात 9 बजे, रात 9:15 पर उर्दू खबरें, रात 9:30 पर रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम, रात 10 बजे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम, रात 11 बजे हिंदी समाचार और रात 11:05 पर अंग्रेजी समाचार।

हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है खेल गतिविधि पर आधारित कार्यक्रम क्रीड़ा जगत का पुनर्प्रसारण।

0: कार्यक्रम क्रीड़ा जगत में आप सभी खेल प्रेमियों का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं दीपक कुमार झा। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमने बहुत कुछ लाया है। हम सुनेंगे चहल पहल, सुनेंगे ज्ञान की बातें खेल जगत से, और इसके अलावे आज हम एक भेंट वार्ता सुनेंगे जिसमें विशेषज्ञ होंगे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के खेल विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अमृत कुमार झा, और इसके अलावे सुनेंगे खेलों की साप्ताहिक गतिविधियों को। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं ये भेंट वार्ता जिसमें हमने बातचीत की है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के खेल विशेषज्ञ प्रोफेसर अमृत कुमार झा से। श्रोताओं नमस्कार। दरभंगा जिले के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो खेल विभाग हैं उसमें कई तरह के खेलों को यहाँ के विद्यार्थियों ने उस मुकाम तक पहुँचाया है जहाँ वो अपने समाज, वो अपने परिवार और अपने देश का नाम उन्होंने रोशन किया है। और उस खेल विभाग के जो खेल पदाधिकारी हैं प्रोफेसर अमृत कुमार झा जी आज हमारे बीच आए हैं, और जो राष्ट्रीय खेल नीति 2025 इसके संदर्भ में भी हम इनसे बातचीत करेंगे, और इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो खेल की जो गतिविधियां हैं इनसे संदर्भित बातचीत भी और जानकारी भी हम इनसे लेंगे। तो हम सबसे पहले आपको अपने आकाशवाणी के इस स्टूडियो में स्वागत करते हैं। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये जो राष्ट्रीय खेल नीति 2025 जो बनाई गई है इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी है?
1: बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, खासकर हमारे युवाओं के लिए। मैं शुरुआत में ही कह दूं कि ये सभी को अमूमन पता ही है कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व पटल पे सबसे युवा देश जो है वो हमारा भारत है, और उस युवा देश का सबसे युवा जो प्रदेश है, जो राज्य है, वो हमारा बिहार है। खेल ऐसा माना जाता है कि वो किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, धर्म को नहीं देखता है, और क्योंकि मैं मनोविज्ञान का भी छात्र हूँ, खेल सभी के लिए है। वो आपके नॉट जस्ट फिजिकल हेल्थ, आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए, आपके फिटनेस के लिए, आपके मोटिवेशन के लिए, आपके इंथुजियाज़म के लिए, जीवन में एक पर्पस के लिए, जीवन जीने का एक माध्यम, आप जिस तरीके से इसको लें, जैसे हम संगीत सुनना पसंद करते हैं, लोग का अमूमन एक हॉबी होता है, उसी तरह की खेल हमेशा एक आउटसाइड एक्टिविटी के तौर पर लिया गया हमेशा से, चाहे वो बात 1984 की खेल नीति की हो, फिर 2001 की हो, फिर 2011 की हो, जहाँ पे पहली बार ऐसा लगा कि नहीं, खेल को अब स्ट्रीमलाइन किया जाए, जो कि मुख्य धाराएं हैं युवाओं की उसमें लाया जाए। उसमें और आज के परिवेश में आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में हमारे प्लेयर्स दिन पे दिन, खासकर इधर अगर कोरोना के बाद देखें, अगर आप अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि दिव्या देशमुख जी जो वर्ल्ड चैंपियन हुई हैं चेस में, उसके पहले प्रसिद्धा कृष्णा हैं, और जो भी हैं गुकेश दी हैं, और बहुत सारी, क्योंकि पहले का जमाना रहा, खासकर मिथिलांचल की बात करें तो क्रिकेट एक प्रमुख खेल के तौर पे उभरा, अभी भी है, हम हर जगह देख सकते हैं कि बच्चे वो खेल, एक ही गेम ऐसा माना जाता है, क्रिकेट ही गेम है अब पहले। हाँ,
0: और मिथिला के भी जो कुछ खिलाड़ी है

0: उन्होंने इस बार आईपीएल में खेला है उनकी
1: वैभव सूर्यवंशी जी, जो उन्होंने धूम मचाया और धमाल हमने देखा। ऐसा नहीं है, प्रतिभाएं तो हमारे हर कहा भी जाता है कि यहाँ गली गली मैच थी ने मिथिला में, तो ऐसा देखा भी गया है। और जो एक एक माइंडसेट बन गया था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब,
0: वो मानसिकता अभी टूटी
1: टूटी है। और मैं ऐसा देखा, अब मैं तो उसको मैं खुद देख रहा हूँ कि खेलोगे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, ठीक है, लेकिन खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। ये अब नया एक नया इंडिया, एक न्यू इंडिया साफ दिख रहा है। युवाएं आप देख रहे होंगे बहुत सारे प्राइवेट कंपटीशन भी कंपटीटर्स भी आ गए हैं। इस परिवेश में नई राष्ट्रीय खेल नीति आने का कारण सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभी भी आपने देखा होगा कि ओलंपिक में हम बहुत पीछे हैं। तो सरकार ने यह चाहा है कि जो प्रतिभा हमारे गांवों में, उन्होंने गांव को फोकस किया है, उन्होंने यूनिवर्सिटी को फोकस किया, ये बहुत ज़रूरी है कि जो ग्रासरूट लेवल के जो हमारे प्रतिभावान प्लेयर्स हैं हर एक विभिन्न विधाओं में विभिन्न खेलों में, वो इस चीज़ को समझें। और यूनिवर्सिटी को उन्होंने रीजनल स्पोर्ट्स क्लब को एक उपाधि के तौर पर रखा है, जहाँ के बच्चे जो रूरल एरिया के बच्चे हैं वो आएँ, खासकर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में और मिथिला यूनिवर्सिटी क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी है और हम लोग ये हमेशा से इसको टॉप प्रायोरिटी पर रखे हैं। हमारे बच्चे, और मैं बता दूं जब इसकी बात होगी तो हम लोग ने नित नए परचम लड़ाया है खेलों में।
0: ये जो खेलो इंडिया और राष्ट्रीय खेल नीति 2025, ये दोनों में क्या अंतर है?
1: अंतर यही आप समझिए कि खेलो इंडिया का शुभारंभ होता है, वो एक कंसेप्ट आता है जो हमारे युवाएं हैं, खासकर जो मैंने शुरू में कहा कि युवा देश है और खेल में फिटनेस और युवा शक्ति की बहुत ज़रूरत है, उन्होंने इस चीज़ को उभारा और ओलंपिक उनका नाम ही दिया गया फ्रॉम स्कूल टू पोडियम, और इस चीज़ को लाया। इसके तहत आपने देखा होगा कि बहुत सारे विभिन्न स्टेडियम बने और इस नई राष्ट्रीय खेल नीति में उन्होंने इस बात का, पूरे सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है कि सभी को इंक्लूसिविटी हो। इंक्लूसिविटी का मतलब ऐसा ना हो कि सभी की बस एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो पहले से रहा कि जो बहुत धनवान है या जो जिनको जिनके पास खेल के रिसोर्सेज हैं उन्हीं को वो प्लेटफॉर्म मिले, उन्हीं को रिसोर्सेज मिले, ऐसा ना हो। सभी के लिए एक अधिकार समान हो, सभी खेलें, सभी फिट रहें। और एक इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है जो पहले से उन्होंने चेंज किया, जिसको हम लोग कहते हैं भी है पैराडाइम शिफ्ट, कि टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है इसमें नई राष्ट्रीय खेल नीति में। टैलेंट आइडेंटिफाई का मतलब है प्रतिभा का पहचान करना, चिन्हित करना और उसको वो सम्मान दिलाना जिसका वो हकदार।
0: तो ये प्रतिभा पहचान कौन करेंगे?
1: प्रतिभा पहचान यही करेंगे, जैसा आपने हमारे बिहार प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे मेजर लाओ नौकरी पाओ, हर आपने देखा होगा कि हर प्रखंड में या मैदान का एक उन्होंने शुरुआत हुआ है। ये जरूर है कि मसाल जली है, पहचान करेंगे हमारे आपके जो लोग हैं जो एक्सपर्ट हैं। आपने कहा कि मिथिला के बहुत सारे ऐसे कीर्तिमान रहे हैं जो लोकल हैं यहाँ कोचेज हैं, वो करेंगे, यूनिवर्सिटीज करेगी, स्कूल करेगी और एक हायरार्की बनेगा, एक सिस्टम बनेगा कि जो स्कूल में अच्छे कर रहे हैं वो फिर फॉलोअप करेंगे, यूनिवर्सिटीज उसको फॉलोअप करेंगी।
0: देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे टैलेंट्स हैं जो स्कूल की शिक्षा जब तक उन्होंने ली स्कूल की ओर से उन्होंने नहीं खेला और उसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और खेल में आगे बढ़ गए, तो ऐसे लोगों के लिए क्या होगा, उनकी प्रतिभा कैसे किस तरह से पहचानी जाएगी?
1: ये इस बात का भी ध्यान रखा गया है नई खेल नीति में कि ऐसे जो प्रतिभावान प्लेयर्स हैं जो खेल जो पढ़ाई छोड़ दिए और खेल को अपना कैरियर बना लिए हैं उनके लिए, जैसे मैं जस्ट कहा भी जैसे बिहार प्रदेश में ही हमारे राज्य में ही है मेडल लाओ नौकरी पाओ, ऐसे जो मेरिटोरियस प्लेयर्स हैं उनके लिए रिजर्वेशन ऑफ सीट रहेगा जॉब्स में, ये प्रावधान है इसमें। और ऐसा हो सकता है कि उनको पेंशन का भी मिलेगा आगे जाके, ये अभी मैं जस्ट एक विजनरी आइडिया बता रहा हूँ जो उसमें मैं देखा है, मैंने पढ़ा है उसके मसौदे को। और ऐसे प्लेयर्स को टॉप प्रायोरिटी मिलेगी हर एक सेक्टर्स में ताकि एक मोटिवेशन हो, जो आपने कहा शुरू से मैंने बात भी की कि कभी भी खेल को प्राथमिकता नहीं दे गई, हमेशा उसको एक रखा गया आउटसाइड एक्टिविटी में, मतलब फ्री हो। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ाते थे, हमारे जो सहभागी होंगे वो जानते होंगे श्रोतागण कि एक कंसेप्ट होता है ईसी है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जो करिकुलम के अलावा हो, नाम ही है एक्स्ट्रा, वो आ जाता था स्पोर्ट्स में, म्यूजिक आता था। अब एक नया जो एक माइंडसेट फिर, क्योंकि माइंडसेट बहुत ज़्यादा था, बहुत इंपॉर्टेंट है इस सब में प्राथमिक, आप जो सोचते हैं वही करते हैं, अब वो कम्प्लीटली हटा दिया गया है शब्द को। नई शिक्षा नीति में शब्द आया है को करिकुलर एक्टिविटी, मतलब जो शिक्षा के साथ चले। तो क्योंकि सही शिक्षा नीति होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करती है, होलिस्टिक डेवलपमेंट माने सभी को पता है, ऐसा नहीं कि बच्चा बस पढ़ रहा है, उसको जीवन की कौशल भी पता हो, तो जीवन में खेलों के बारे में पता हो, संगीत के बारे में पता हो। हमारे नाथ शास्त्र में, हमारे पुराने शास्त्रों में करीब 64 कलाओं की बात की गई है। और इधर क्योंकि हम लोग एक कॉरपोरेट स्लेव्स की ओर

0: बढ़ते जाते हैं। इस सब को देखते हुए नई शिक्षा नीति और नई खेल नीति, एक नया भारत एक जन्माएगा। और जो युवाएं हैं, जो खासकर आपने कहा भी वैभव सूर्यवंशी जी हैं, और भी जो नई नई जो प्रतिभा आप देख रहे हैं, जो उम्मीद भी नहीं कर सकते थे हम लोग जमाने में, याद है चेस में बस विश्वनाथन आनंद जी का नाम आता था
1: जी, जी।
0: अभी आप देखें तो ये आप हर गेम में देखेंगे, चाहे नीरज चोपड़ा जी हों, हर एक गेमों में ऐसे ऐसे नाम उभर के आ रहे हैं। और ये सभी माने या ना माने, 10 साल बाद या 15 साल बाद इसका जो टेंजिबल इफेक्ट है वो पूरे जनमानस सोसाइटी पे समाज में दिखेगा, जहाँ खेलों को प्राथमिकता दी जा रही है। हर एक नए विभाग भी खुलेंगे हर डिपार्टमेंट में, हो सकता है स्कूल में भी, हो सकता है स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी डिपार्टमेंट खुलो, स्पोर्ट्स साइंस डिपार्टमेंट खुलो।
1: जी जी जी। अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार की बात करें तो यहाँ जो खेल की जो गतिविधियाँ हैं उनकी अपेक्षा बिहार की स्थिति के बारे में क्या कहिएगा?
0: पहले सभी को पता है, पहले हम लोग बहुत पीछे रहे, क्रिकेट ही हम लोग का एक रहा जहाँ पे कुछ नाम आते थे, चाहे वो सबा करीम जी हों। इधर आपने देखा होगा खासकर विगत 2-3 सालों में आफ्टर कोरोना, जिसे हम कह सकते हैं सबसे पहला जो मेजर डेवलपमेंट हुआ, जो बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उदय होता है, हमारे ऑनरेबल CM उसके चांसलर होते हैं। राजगीर में आपने देखा होगा अभी
1: खेल विश्वविद्यालय
0: बना है, वहाँ गेम शुरू हुए, अभी विगत गेम हुआ, अभी एक एशिया कप का हॉकी होने वाला है। तो धीरे धीरे हम लोग जो एक मैंने कहा आपको कि 0.1 अगर चेंज होता है तो वो बड़ा चेंज हुआ, 0.1 0.2, ये सब चेंजेस क्या हो रहे हैं, ये 0 से 1 पे ले जाएगा, जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज कहते हैं। और ये सब चीज़ें होना, हमारे प्रतिभागियों को जॉब सिक्योर होना, हमारे प्रतिभागियों को ये होना कि अगर हम मेडल लाते हैं नौकरी पाएंगे, जीवन हमारा सेट होगा, ये सिक्योरिटी बहुत बड़ा कारण होता है किसी भी जब हम देखते हैं। तो ये सब चीज़ें अभी क्योंकि धरातल पे हैं, धीरे धीरे उभर के आ रही हैं। जो पहले का बिहार था और नया बिहार था वो 5-10 साल बाद आपको नया देखा।
1: अच्छा, एक जिज्ञासा है कि जो खेल विश्वविद्यालय है उसमें क्या क्रिटेरिया है, छात्र उसमें कैसे नामांकन ले सकते हैं, यहाँ के या अन्य जिलों के जो बच्चे हैं जो खिलाड़ी हैं?
0: जैसे आप देखेंगे कि शुरुआत में ही बेसिक जब 2 कोर्सेज हर पूरे ऑल इंडिया में चलता है, BPED और BPMPED, उसी को अब नई शिक्षा नीति में जो ज़्यादा फोकस किया गया है कि नहीं अब फिजिकल एजुकेशन ठीक है, आप इसको स्पोर्ट्स को भी एक्टिविटी नहीं एक करिकुलम के तौर पे लाइए। अब वो कोर्स हो गया BPES और MPES, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। आप देखिए सॉरी, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत दूर तक जाती हैं। आपने स्पोर्ट्स को जोड़ा, उससे क्या, वो सिंपल कोर्स की बात कर रहे, ट्रेडिशनल कोर्स है जो हम लोग BA MA करते हैं, ये आ गया स्पोर्ट्स में, आइए तो BPES MPES। अब इधर नई शिक्षा नीति में भी आया है जिसमें क्रेडिट सिस्टम की बात होती है, मल्टीपल इंट्री की एग्जिट की भी बात होती है। अब नया आ रहा है राष्ट्रीय खेल नीति, इसके तहत आप देखेंगे बहुत सारे कोर्सेज जो आपने अभी नाम लिया, मैं नाम लेने वाला हूँ, वो नई इसके तहत आपको हो सकता है कि आपके आजू बाजू जो यूनिवर्सिटी है उसमें दिखा देगा। जैसे एक है खेल मनोविज्ञान, मैं खुद मनोविज्ञान का छात्र हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ, हमने उसे इस कॉन्सेप्ट ये हर बच्चों के लिए मैंडेटरी किया है बेसिक स्कूल में, बेसिक यूनिवर्सिटीज़ में, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में। इसके अलावा अब इसमें भी बात हो गई कि स्पोर्ट्स को स्ट्रीमलाइन मतलब स्टैंडर्ड किया जाए, तो स्पोर्ट्स फिटनेस का भी कोर्स चलेगा, कोचेज का भी, ऐसा नहीं कि कोई भी कोच बन सकता है, अब उनके लिए स्पेशलाइज कोचेज होंगे हर सब्जेक्ट के लिए। PG डिप्लोमा कोर्स चलता है, फिर सर्टिफिकेट कोर्स चलता है स्पोर्ट्स टेस्टिंग पे, स्पोर्ट्स मेडिसिन पे, स्पोर्ट रिहेबिलेशन पे, 6-7 कोर्सेज हैं जो कि बिहार खेल विश्वविद्यालय में ये अभी शुरुआत हुई है, जो बच्चे इच्छुक होंगे, जो वो अप्लाई कर भी चुके होंगे, ये UGC से इसका मान्यता प्राप्त है।
1: अपने भी विश्वविद्यालय से कुछ लोग
0: अभी जाने वाले जो मुझे नॉलेज में है, और हम लोग भी चाहेंगे कि जितना हम लोग कर सकें इसके प्रति हम लोग इसको आगे करेंगे।
1: बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी यहाँ आपने दी है। यदि हम ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की बात करें तो इस विश्वविद्यालय के आप खेल पदाधिकारी भी हैं, इस नाते हम ये पूछना चाहेंगे कि अभी तक जो विगत वर्षों में जो इस विश्वविद्यालय के जो खेल के प्रति जो इनका एक समर्पण रहा, तो क्या इसका अचीवमेंट रहा है?
0: ऐसे तो कोई फैक्चुअल कोई आंकड़ा नहीं, मतलब कोई स्केल नहीं है, मतलब कोई ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है पूरे बिहार पे, लेकिन अगर हम लोग का हम लोग खुद मानते हैं, मैं क्या मतलब विभाग है खेल नामी है खेल, मतलब एक टीम स्पिरिट सब लोग काम करते हैं, तो हम लोग संभवतः हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग बिहार में सबसे अभी अव्वल पे चल रहे हैं। कारण क्यों बता रहा हूँ मैं ऐसा, क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि अभी 3-4 खासकर 5-3-4 वर्षों में हम लोगों ने नए अचीवमेंट हर साल किए हैं। फॉर एग्जांपल मैं बस आपको कुछ एग्जांपल दे दूँ, जैसे पिछले ही साल चांसलर कप कबड्डी हुआ था पटना में, पाटलिपुत्रा इंदौर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहाँ हमारे जो प्रतिभावान बच्चे हैं उन्होंने

0: खेल उन्होंने, क्योंकि दो प्रतिस्पर्धा था, एक मेल का था एक फीमेल का था, तो मेल में हम लोगों ने सेकंड पूरे बिहार में किया और महिलाओं में हम लोगों ने फर्स्ट किया। ये तो हुआ बिहार की बात। अभी जर्मनी रायन लू, वहाँ पे एक सिटी है, वहाँ पे फीसू बोलते हैं, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स, वहाँ पे पूरे यूनिवर्सिटी के जो टॉप प्लेयर्स होते हैं हर विधाओं में उनको बुलाया जाता है। तो आपको जान के खुशी होगी, पूरी मिथिलावासी को जान खुशी होना चाहिए कि हमारे यहाँ से त्रिलोक कुमार चयनित होते हैं और वो भारतीय एथलेटिक टीम को रिप्रेजेंट करते हैं और वो अभी जर्मनी में ही हैं। ये रिसेंट आपका डेवलपमेंट मैं कह रहा हूँ। इसके अलावा हमारे बच्चे यहाँ के जोनल कम्पीट करते हैं, नेशनल तक जाते हैं, करीब 5-6 विधाओं में, ये एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे वो हैंडबॉल हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो, हमारे बच्चे इस सभी विधाओं में हमेशा से ही एक मुकाम हासिल किया है। और इसका प्रारूप आप देख सकते हैं कि कबड्डी का भी कोचिंग होता है, क्रिकेट का भी कोचिंग होता है। प्रॉब्लम एक ये है जो कि अपनी, अब आपने देखा कि बच्चे जो ग्रामीण परिवेश में हैं उनको हम लोग चाह रहे हैं, जो राष्ट्रीय खेल पॉलिसी में भी है कि उनको टैलेंट को आइडेंटिफाई करें, हम लोग उस ओर भी कदम बढ़ा रहे हैं कि जो जब हम लोग इंटर कॉलेज करवाते हैं, करीब 43 कॉलेज हैं प्लस जो हमारे एफिलिएटेड कॉलेज हैं, इंटर कॉलेज गेम्स में जो चुन के आते हैं बच्चे, वो फिर उनको हम ट्रेनिंग दे के जोनल और नेशनल के लिए कम्पीट करवाते हैं।
1: ये आपने उपलब्धि जो इस विश्वविद्यालय की रही है इसके बारे में आपने कहा, आगामी कुछ ऐसी खेल के जो कुछ गेम्स और होने वाले हों या कुछ इस तरह की बातें, वो हमारे श्रोताओं को आप
0: देखिए। एक तो सौभाग्य है कि अभी जो हमारे वर्तमान माननीय कुलपति हैं वो खुद स्पोर्ट्स पर्सन रह चुके हैं और खेल में बहुत रुचि रखते हैं, तो हमेशा अपडेट लेते रहते हैं कि कहाँ बच्चा कैसा है, जो भी इनको दिक्कत ना होना चाहिए। अभी क्योंकि नया फिर अब एक स्पोर्ट्स आएगा, ये स्पोर्ट्स कैलेंडर शुरू होने वाला है जिसमें फिर करीब 20 गेम हम लोग करवाते हैं, 20 से 22 गेम जिसमें योगा भी शामिल है। और मैं चाहूँगा आपके माध्यम से मैं हर बच्चे जो अगर सुन जो सुन रहे होंगे कि वो योगा में भी, क्योंकि लास्ट टाइम थोड़ा बच्चे कम कम्पीट किए थे, तो देख के थोड़ा लगता है कि योगा पूरे देश को हम लोग, पूरे विश्व को हम लोग सिखाए हैं, तो युवाओं से अपील रहेगा कि वो योगा भी करें और योगा कॉम्पिटिशन में भी आएँ, जिससे वो आगे भी अपना जीवन सिक्योर कर सकते हैं। विभिन्न विधाओं में गेम होता है और दोनों प्रतिस्पर्धाओं में होता है, कैटेगरी में, मेल में भी फीमेल में भी, करीब हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेज में आपको ये गेम मैक्सिमम, हम लोग का ये ऑनरेबल वीसी साहब का भी सपना है कि हर एक कॉलेज को मैक्सिमम, ऐसा ना हो कि कोई छूट जाए, जो काबिल है वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज करे और तुम्हारे बच्चे यहां से निकल सके।
1: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना के जो राष्ट्रीय खेल नीति है वो किस तरह से हमारे लिए लाभदायी है, किस तरह से हम इसका लाभ ले सकते हैं, और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत यहाँ की जो खेल की गतिविधियाँ हैं, जो उपलब्धियाँ हैं और जो आगामी कुछ जो खेल से संदर्भित कुछ गेम्स होने वाले हैं, इन सभी बातों को लेकर के हमने अभी बातचीत की। हमारे साथ थे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के खेल पदाधिकारी प्रोफेसर अमृत कुमार झा जी। झा जी, आपका हमारे आकाशवाणी स्टूडियो आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर अमृत कुमार झा से ये भेंट वार्ता, विषय था राष्ट्रीय खेल नीति 2025। और अब चलते हैं चहल पहल की ओर। श्रोताओं, चहल पहल में आज हम बात करते हैं एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी और शुभमन गिल के बारे में। भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का पांचवां और आखिरी टेस्ट लंदन के द ओवल स्टेडियम में खेला गया। पिछले गुरुवार को मुकाबले के पहले दिन शुभमन 21 रन बनाकर रनआउट हुए। छोटी पारी के बावजूद उन्होंने सुनील गावस्कर और गैरी सोबर्स के दो रिकॉर्ड तोड़ दिए। राहुल ने सीरीज में 1000 गेंदें भी खेल ली। श्रोताओं, आइए इस ट्रॉफी के रिकॉर्ड्स और मोमेंट्स की बात करते हैं। सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय कप्तान शुभमन गिल 21 रन बनाकर आउट हुए। इस पारी के साथ उनके मौजूदा सीरीज में 743 रन हो गए। इसी के साथ शुभमन एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय कप्तान भी बन गए। उन्होंने सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने 1978 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 6 टेस्ट की सीरीज में 732 रन बनाए थे। एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय कप्तान की बात करें तो तीसरे स्थान पर विराट कोहली आते हैं। गिल ने वेस्टइंडीज के दिग्गज सर गारफील्ड सोबर्स का भी रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 1966 में 722 रन बनाए थे। टीम इंडिया के ओपनर केएल राहुल 40 गेंद पर 14 रन बनाकर आउट हुए। इसी के साथ

वे एक टेस्ट सीरीज में 1000 से ज्यादा गेंदे खेलने वाले तीसरे भारतीय ओपनर बन गए। किसी भारतीय ओपनर ने 11 साल बाद यह कारनामा किया है। 2014 में मुरली विजय ने इंग्लैंड में ही 1054 गेंदे खेली थी। इन दो के अलावे सुनील गावस्कर ओपनिंग करते हुए 5 बार एक टेस्ट सीरीज में 1000 से ज्यादा गेंदे खेल चुके हैं। गुरुवार को द ओवल स्टेडियम में इंग्लैंड के कप्तान ओली पॉप ने टॉस जीता और बॉलिंग चुनी। टीम इंडिया ने इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 15वीं बार टॉस गंवा दिया। भारत सीरीज में एक भी टॉस नहीं जीत सका। टीम ने इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में भी सभी टॉस गंवाए थे। भारत ने इसी साल फरवरी में इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट में T20 मैच के दौरान आखिरी टॉस जीता था। 28वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल रन आउट हो गए। ओवर की दूसरी बॉल गस एटिंगसन ने गुड लेंथ पर फेंकी। शुभमन ने डिफेंस किया और रन लेने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पर साई सुदर्शन ने उन्हें मना कर दिया। शुभमन वापस लौटने लगे, इतने में एटकिंसन ने गेंद उठाई और स्टंप्स को मार दी। गिल 21 रन बनाकर आउट हो गए। 50वें ओवर में धुल जुड़ेल DRS के कारण LBW होने से बच गए। हालांकि वे इसका फायदा नहीं उठा सके और अगली ही गेंद पर कैच हो गए। ओवर की दूसरी बॉल गस एटिंगसन ने गुड लेंथ पर इन स्विंगर फेंकी। गेंद जुरेल के पैड्स पर लगी। इंग्लैंड ने LBW की अपील की और अंपायर ने आउट का फैसला दे दिया। जुरेल ने रिव्यू लिया। रिप्ले में नजर आया कि गेंद स्टंप्स को मिस कर रही है। अंपायर ने अपना फैसला बदला और जुरेल बच गए। अगली गेंद एटकिंसन ने ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट पिच फेंकी। जुरेल कट शॉट खेलने गए, लेकिन सेकेंड स्लिप में हैरी ब्रूक के हाथों कैच हो गए। उन्होंने 19 रन बनाए। श्रीलंकाई अंपायर कुमार धर्मसेना, जिन्होंने एक गलती की जिसके कारण इंग्लैंड की टीम ने रिव्यू लेने से बच गई। यह घटना 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर हुई, जब इंग्लैंड के गेंदबाज जोश टंग ने भारतीय बल्लेबाज साई सुदर्शन को एक इन स्विंग यॉर्कर फेंकी। सुदर्शन ने गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे संतुलन खोकर गिर पड़े और गेंद उनके पैड पर लगी। इंग्लैंड ने जोरदार अपील की, लेकिन धर्मसेना ने उसे नॉट आउट करार दिया और इशारा किया कि गेंद बल्ले से टकराई थी। इस इशारे के कारण इंग्लैंड ने रिव्यू नहीं लिया। रिप्ले में दिखा कि गेंद सुदर्शन के बल्ले से टकराई थी, जिसके बाद वे गिरे। श्रोताओं, अब चलते हैं ज्ञान की बातें खेल जगत से करने की। आज हम इसके अंतर्गत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में जानेंगे। भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इस पुरस्कार का नाम पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था। इस पुरस्कार को भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है, जो यानी मेजर ध्यानचंद 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे। यह प्रतिवर्ष खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। प्राप्तकर्ताओं को मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति द्वारा चुना जाता है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 साल की अवधि में खेल क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है। इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और नकद राशि पुरस्कृत व्यक्ति को दिए जाते हैं। अभी राशि के रूप में 25 लाख दी जाती है। 1991-92 में स्थापित यह पुरस्कार पहले किसी खिलाड़ी को 1 वर्ष में शानदार प्रदर्शन के लिए दिया जाता था। 2014 की पुरस्कार चयन समिति द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर मंत्रालय ने 4 वर्षों की अवधि में प्रदर्शन पर विचार करने के लिए फरवरी 2015 में मानदंडों को संशोधित किया। किसी दिए गए वर्ष के लिए नामांकन 30 अप्रैल तक या अप्रैल के अंतिम कार्य दिवस तक स्वीकार किए जाते हैं, जिसमें एक खेल प्रकार के 2 खिलाड़ियों से अधिक नामांकन नहीं कर सकते हैं। इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे, जिन्हें वर्ष 1991-92 में अपने प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया था। 2001 में निशानेबाज अभिनव बिंद्रा, जो 18 वर्ष की आयु के थे, पुरस्कार के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता बने। आमतौर पर यह पुरस्कार 1 वर्ष में केवल 1 खिलाड़ी को सम्मानित किया जाता है, जिसमें कुछ अपवाद बने हैं। इसमें 1993-94, 2002, 2009, 2012, 2016, 2017, 2018 और 2019, जब 1 वर्ष में कई प्राप्तकर्ता सम्मानित किए गए थे। 2019 के अनुसार 38 प्राप्तकर्ता हुए। और अब चलते हैं खेलों की साप्ताहिक गतिविधियों की ओर। बात करते हैं एशिया कप की। भारत

भारत और पाकिस्तान 14 सितंबर को दुबई में खेलेंगे एशिया कप। फाइनल समेत सुपर चार के एक मैच को छोड़कर सभी मैच यही होंगे। टूर्नामेंट 9 सितंबर से शुरू हो रहा है। बता दें कि एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने शनिवार को मेंस एशिया कप के मुकाबलों के लिए वेन्यू का ऐलान कर दिया है। हालांकि शेड्यूल का ऐलान पहले ही किया जा चुका था। एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात यूएई में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप मुकाबला रविवार को यानी 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान की टीमें एक ही ग्रुप में हैं। ऐसे में रविवार को सुपर चार मैच में फिर से उनके आमने सामने होने की उम्मीद है। भारत, पाकिस्तान, ओमान और यूएई को एक ही ग्रुप में रखा गया है। वहीं श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग ग्रुप बी में हैं। ग्रुप में सभी टीमें एक दूसरे के खिलाफ एक एक मैच खेलेंगी। भारत 10 सितंबर को यूएई, 14 को पाकिस्तान और 19 को ओमान से भिड़ेगा। भारत और पाकिस्तान ने अगर सुपर चार स्टेज में जगह बनाई तो दोनों टीमें एक बार फिर 21 सितंबर को आमने सामने होंगी। टूर्नामेंट का फाइनल 28 सितंबर को खेला जाना है। भारत और पाकिस्तान ने सुपर चार स्टेज में टॉप किया तो दोनों के बीच टूर्नामेंट में तीसरा मुकाबला भी हो सकता है। बता दें कि एशिया कप 2023 की मेजबानी पाकिस्तान ने की थी। हालांकि भारत ने सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान का दौरा करने से मना कर दिया था, तब यह हाइब्रिड मॉडल में खेला गया था। भारत के सभी मैच श्रीलंका में हुए थे। भारत ने श्रीलंका को हराकर एशिया कप 2023 का खिताब जीता था। भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का पांचवां टेस्ट लंदन के द ओवल स्टेडियम में खेला जा रहा है। इंग्लैंड को 374 रन का टारगेट मिला है। मुकाबले के तीसरे दिन की बात करें तो भारत अपनी दूसरी पारी में 396 रन पर आउट हुए। यशस्वी जायसवाल ने शतक लगाया। नाइट वॉचमैन आकाशदीप, रविंद्र जाडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने 50 लगाई। इंग्लैंड ने एक विकेट के नुकसान पर 50 रन बना लिए। आगे बढ़ते हुए बता दें कि द लीप ट्रॉफी 2025 के लिए ईस्ट जोन की 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी गई है। इस टीम की कमान भारतीय टीम से बाहर चल रहे विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को सौंपी गई है, जबकि अनुभवी बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन को उपकप्तान बनाया गया है। टीम में कई उल्लेखनीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिनमें भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, हाल ही में इंग्लैंड के दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किए गए आकाशदीप और युवा प्रतिभाशाली रियान पराग शामिल हैं। इसके अलावा बिहार के 14 वर्षीय अंडर 19 खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को 6 स्टैंडबाय खिलाड़ियों में जगह दी गई है। एशिया रग्बी चैंपियनशिप के शुभंकर और लोगों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले शुक्रवार को अणे मार्ग स्थित संकल्प में लोकार्पण किया। राजगीर में 9 और 10 अगस्त को एशिया रग्बी चैंपियनशिप होगी। ये अंडर 20 की बात हम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिहार पहली बार एशिया रग्बी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। बिहार के खिलाड़ी रग्बी में निरंतर बेहतर प्रदर्शन करते हुए बहुत तेजी से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। इस खेल के आयोजन से युवाओं में अच्छा संदेश जाएगा। कार्यक्रम के दौरान रग्बी इंडिया के अध्यक्ष राहुल बोस ने पुस्तक व प्रतीक चिन्ह और रग्बी की इंटरनेशनल एथलीट आरती सिन्हा एवं गौरव कुमार ने भी मुख्यमंत्री को प्रतीक चिन्ह भेंट किया। एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप का लोगो बिहार राज्य की ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक विविधता और खेल संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। इस लोगो में प्रयुक्त रंग नीला, हरा और मिट्टी का रंग बिहार की प्रकृति, संस्कृति और जीवन ऊर्जा को व्यक्त करता है। इस चैंपियनशिप में 8 पुरुष और 8 महिला टीमें हिस्सा लेंगी। इसमें भारत, हांगकांग, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया से केवल पुरुष और नेपाल, जहां से केवल महिला जैसे शीर्ष एशियाई देश शामिल हैं। 7 अगस्त से सभी टीमें राजगीर पहुंचेंगी। सभी टीमें राजगीर में ही ठहरेंगी। शुभंकर अशोक का नाम सम्राट अशोक से प्रेरित है, जो नेतृत्व, दूरदृष्टि और परिवर्तन का प्रतीक है। अशोक को एक खरगोश के रूप में तेज, सतर्क और फुर्तीला रूपांकित किया गया है। अशोक का कवच, शिरस्त्राण और ढाल उसकी तैयारी, आत्मबल और मानसिक दृढ़ता का प्रतीक है। इसी के साथ क्रीड़ा जगत का ये अंक बस यही तक। अब प्रस्तुतकर्ता मितेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार झा को आज्ञा दें। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर, दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से, और टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी BMC के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। शहर में पेड़ गिरने की 2 अलग-अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति और 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और गढ़चिरी, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित आदोशी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जलस्तर बढ़ जाने से 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड़, दमण और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2,500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।

0: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ. जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन की साझा करने की सराहना की। डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 13 तारीख को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे, जहां वे 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: With Prime Minister's arrival in Indonesia,
3: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
1: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। भाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए आज तेहरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने बताया कि यह हमला होदे ईदा के पास हुआ, जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। ये समाचार

0: हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलुओं का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली विश्व विख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों सहित हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति तीजन बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं की कालजयी कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थ यात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह तीर्थयात्रा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर मांडविया ने मीडिया से बातचीत में प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
2: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पोल्यूशन का सोल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मेक्सिको से होगा। उधर महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट।

जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। T20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Dr. Mohan Yadav lay a foundation stone of 2,500 crore rupee defence manufacturing plant in Shivpuri. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar begins his six-day visit to West Asia, meets Qatari Prime Minister Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani in Doha. OPEC Plus agrees to increase oil production by 188,000 barrels per day from next month to support market stability. In T20 Cricket World Cup Summit clash underway between hosts England and Australia at the Lords. And in FIFA World Cup, Brazil to take on Norway in the round of 16 at New Jersey tonight. And that is all in the news at 9. Good night.
1: Adab, ye Aakashvani hai. खबरों के साथ मैं असलम बेग। पूरे भारत में जुनूब मगरबी मानसून में तेजी आ गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और बहुत सी रियासतों में मूसलाधार बारिश से खबरदार किया गया है। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने शिवपुरी में दिफाई साजो सामान की तैयारी करने वाले प्लांट का संग बुनियाद रखा है, जिसकी लागत 2500 करोड़ रुपए है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मगरबी एशिया का अपना 6 रोज़ा दौरा शुरू कर दिया है। उन्होंने दोहा में कतर के वजीर अजम मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने मार्केट इस्तेहकाम में मदद देने के लिए अगले महीने से तेल की पैदावार में यौमिया 188,000 बैरल्स इजाफे से इत्तेफाक किया है। फीफा आलमी कप में आज रात न्यू जर्सी में क्वार्टर फाइनल में ब्राज़ील का मुकाबला नॉर्वे से होगा और T20 क्रिकेट आलमी कप में लॉर्ड्स में मेज़बान इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। अब खबरें तफसील से। मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में जनूब मगरबी मानसून में तेज़ी आ गई है, जिसके तहत बड़े पैमाने पर बारिश, गरज चमक के साथ छींटे, बिजली चमकने और तेज़ हवाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। भारत के महकमे मौसमियात ने कहा है कि अगले 4 दिन में मानसून के गुजरात के कुछ मजीद इलाकों, हरियाणा, पंजाब के बकिया इलाकों और राजस्थान के कुछ मजीद इलाकों में आगे बढ़ने के इम्कान हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड में दिन के दौरान शदीद से ज़्यादा शदीद बारिश की पेशगोई है, जबकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में अगले 2 से 3 दिन के दौरान अलग अलग जगहों पर बारिश का इम्कान है। महाराष्ट्र में आज मानसून की शदीद बारिश से बहुत से इलाके मुतासिर हुए हैं। बारिश की वजह से कुछ हादसात पेश आए, जहाँ बचाव कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रायगढ़ ज़िले में पुलिस ने 10 से 12 सयाहों को खपोली के नज़दीक अदूषी आबशार से बचाया, क्योंकि यहां पानी की सतह में अचानक इजाफा हो गया था। हुक्काम ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो मानसून के दौरान दरियाओं, आबशारों और पानी के दीगर ज़खायर से दूर रहें। मुंबई में आज दोपहर मूसलाधार बारिश के दौरान कुरला में एक दुकान पर एक दरख्त गिर जाने से एक 63 साल शख्स हलाक हो गया। BMC ने बताया कि शहर में दरख्त गिरने के 64 और दीवार और जुज़वी तौर पर मकान गिरने के 8 हादसात की खबर मिली है। मूसलाधार बारिश और तेज़ हवाओं की वजह से परवाज़ों के आने जाने में भी काफ़ी रुकावट आई है। भारत के महकमे मौसमियात ने मुंबई, थाने, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी समेत कोंकण ज़िलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में दांग, नवसारी, वलसाड़, भावनगर, अमरेली, गीर सोमनाथ और दमन व दीव और दादर व नगर हवेली में कल इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई है। IMD अहमदाबाद में साइंसदान प्रदीप शर्मा ने हमारे नामानिगार को बताया कि इन ज़िलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और माही गीरों को मशवरा दिया गया है कि वो अगले 5 दिन समंदर में न जाएं। इसी दौरान दिल्ली NCR के बहुत से इलाकों में आज दोपहर औसत दर्जे की बारिश हुई, जिसकी वजह से मौसम में यकसर तब्दीली आई और लोगों को नमी वाले मौसम से कुछ राहत मिली। पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस माह की 20 तारीख से शुरू होगा, जो 13 अगस्त तक जारी रहेगा। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने बताया कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास को 20 जुलाई से शुरू करने के लिए हुकूमत की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने आज शिवपुरी में दिफाई साजो सामान की मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट का संग बुनियाद रखा। इस प्लांट की तामीर तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के साथ अडानी ग्रुप करेगा। इस मौके पर खिताब करते हुए मरकजी वजीर सिंधिया ने कहा कि शिवपुरी की तारीख में आज एक नया बाब रकम किया जा रहा है। उन्होंने इसे एक तारीखी कदम करार

0: या उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से ये जिला सनअती तरक्की, दिफाई साजो सामान की तैयारी और एक खुद कफील भारत के तसव्वुर से वाबस्ता हो जाएगा। जनाब सिंधिया ने यह भी कहा कि शिवपुरी के मेहनती नौजवानों के जरिए बनाए गए हथियार और मिजाइल भारतीय फौज को मुस्तहकम करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मगरबी एशिया का अपना दौरा शुरू कर दिया है। वो इस दौरे में कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान जाएंगे। अपने दौरे के पहले मरहले में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के वजीर आजम और वजीर खारजा मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जस्सीम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया, जिसमें बिलखसूस तवानाई, तिजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी और आवाम का आवाम से राबता शामिल है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में वजीर खारजा ने बताया कि दोनों रहनुमाओं ने कलीदी शराकत दारी को मजीद बढ़ाने की गरज से नए मौकों की जस्तजू की। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय बिरादरी के तहफ़ और खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया और मगरबी एशिया तनाज़े और उसके असरात के ताल्लुक से अपने जायजों से वाकिफ कराने के लिए उनकी तारीफ की। डॉक्टर जयशंकर इस माह की 13 तारीख को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क का दौरा करेंगे, जहां वो अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की 2028-29 की मुद्दत के लिए भारत की सरकारी मुहिम का आगाज़ करेंगे। डॉक्टर जयशंकर इसके बाद तीसरी भारत यूरोपीय यूनियन तिजारत और टेक्नोलॉजी काउंसिल की मीटिंग में हिस्सा लेंगे और इस माह की 14 और 15 तारीख को ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन और बेल्जियम के अपने हमसबों से बातचीत करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही है। पेट्रोलियम बरामद करने वाले मुल्कों की तंजीम ओपेक प्लस ने तेल की पैदावार में इस साल अगस्त से 188,000 बैरल रोजाना का इजाफा करने से इत्तेफाक किया है। ये फैसला तेल मार्केट की आलमी सूरतहाल का जायजा लेने के लिए वर्चुअल वसीले से मुनक़दा एक मीटिंग के बाद किया गया। आज इस मीटिंग के बाद जारी किए गए बयान में 7 ओपेक प्लस रुकन मुल्कों ने, जिसमें सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान शामिल हैं, कहा है कि इस फैसले का मकसद मार्केट के इस्तेहकाम में मदद करना है। उन्होंने एक मोहतात और लचकदार तरीक़ेकार के तहत अपने अज़्म को दोहराया, जिसमें मार्केट के हालात पर इनहिसार करते हुए तेल की पैदावार में इजाफे, इसे रोक देने या इसे कम कर देने के मुतबादिल भी शामिल हैं। तेल की पैदावार वाले इस ग्रुप ने कहा कि वो आलमी तेल मार्केट पर करीबी नज़र रखता रहेगा। ग्रुप ने पैदावार के उन निशानों को भी पूरा करने की यकीन दहानी कराई जिन पर रजामंदी की गई है। ज़िराअत और देही तरक्यात के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी ग्रामीण के तहत रियासतों को 25,000 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की। जनाब चौहान ने तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ इस स्कीम पर अमलावरी का जायजा भी लिया। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि रियासतों के पास खातिरखाह फंड्स मौजूद हों, ताकि उजरतें 15 दिन के अंदर अंदर अदा की जा सके। जनाब चौहान ने यह भी कहा कि इस एक्ट के तहत 2,86,000 पंचायतों में 7.5 लाख करोड़ रुपए के अगले 5 बरस में सरमायाकारी की जाएगी, ताकि विकसित भारत के तसव्वुर को तेजी के साथ बढ़ाया जा सके। वजीर मौसूफ ने कहा कि VBG रामजी एक्ट ने कामयाबी के साथ महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी स्कीम की कायापलट कर दी है।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: हुकूमत ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर अदायगी के बाद पेश किए जाने वाले इश्तहारों में बच्चों के जिंसी एतबार से इस्तेहसाल और नाजेबा सलूक से मुतालिक मटीरियल CSEAM पेश किए जाने के मामले में मेटा को सख्त नोटिस जारी किया है। हुकूमत ने इंस्टाग्राम को हुक्म दिया है कि वो इस तरह के मटीरियल तक रसाई की सहूलत बहम पहुँचाने वाले और इस मवाद को फ़रोग देने वाले तमाम इश्तहारात को रोक दे। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाआती टेक्नोलॉजी की वजारत ने इस सिलसिले में मेटा से 7 दिन के अंदर तफसीली वजाहत तलब की है। हुकूमत इस बात का जायजा ले रही है कि प्लेटफॉर्म ने भारत की सालिसी के तहफुजाती रहनुमा खतूत पर अमल किया है या नहीं। उरिया फिल्में और बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल से मुतालिक वीडियोज की तशहीर डिजिटल कवानीन के तहत भारत में एक मुजरमाना खिलाफ वर्जी है। इससे पहले

वजारत ने इन रिपोर्टों की बिना पर कि इंस्टाग्राम कुछ ऐसे काबिल एतराज वीडियो दिखाता है जिससे बच्चों के साथ जिंसी इस्तेसाल की तशहीर होती है, अपने तौर पर कार्रवाई करते हुए अफसरान को हिदायत जारी की थी कि वो इस सिलसिले में मेटा से जवाब तलब करें। हुकूमत ने आबनाए हुरमुस के रास्ते LNG लाने ले जाने के अमल की बहाली के बाद कुदरती गैस सप्लाई पर आयद हंगामी बंदिशें ख़त्म कर दी हैं। ये बहाली मगरबी एशिया तनाज़े में जंगबंदी के बाद हुई है। इस सिलसिले में हंगामी अहकामात लाजमी अशिया के कानून के तहत इस साल मार्च में जारी किए गए थे, जब आबनाए हुरमुस के रास्ते LNG लाने ले जाने वाले जहाज़ों की आमदोरफ्त में रुकावट आ गई थी। भारतीय बहरिया का तरबियती जहाज़ INS सुदर्शनी न्यूयॉर्क की बंदरगाह पर लंगरअंदाज हो गया। वो अमेरिका के बैनुल अक्वामी नेवल रिव्यू 2250 और सेल 14th 250 तकरीबात में भारत की नुमाइंदगी करेगा। हटसन दरिया में कल कश्तियों की परेड के दौरान मशहूर ज़माना 3 मस्तूल वाली कश्ती ने बड़े फ़खरी अंदाज में भारतीय तिरंगा लहराया, जो भारत की फरामा समंदरी सरहद की सकाफत और सदियों पुराने समंदरों के सफ़र की रिवायत का जश्न था। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने आज 2026 की कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जत्था यात्रा के अगले मरहले के लिए चंपावत ज़िले के टनकपुर इलाके से रवाना होगा। पहला जत्था 49 यात्रियों पर मुश्तमिल है, जिनमें 1 डॉक्टर, 34 मर्द और 15 खवातीन शामिल हैं। दुनिया भर में मारूफ पांडों की दास्तान बयान करने वाली पद्म विभूषण एजाज याफ्ता डॉक्टर तीजन बाई की आज शाम दुर्ग जिले के उनके आबाई गांव गनियारी में सरकारी तौर पर आखिरी रसूम अदा कर दी गई। उन्होंने छत्तीसगढ़ की लोक सकाफत को आलमगीर मकबूलियत अदा की। इस मौके पर अवामी नुमाइंदों, इंतजामिया के अहलकारों, फनकारों, अदीबों और हजारों सोगवारों ने आर्ट की इस शोरे आफाक शख्सियत को नम आंखों से खिराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में कशीदगी के उस वक्त बढ़ गई जब पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से मुबैना तौर पर मुजाहिरीन पर गोली चलाए जाने के वाक़े में एक शख्स हलाक और दीगर मुतअद्दिद जख्मी हो गए। ये वाक़या बुनियादी हुकूक, माशी राहत और सियासी आज़ादी पर जारी एहतजाज मुजाहरों के दौरान पेश आया। मीडिया की खबरों के मुताबिक इस्लामाबाद के खिलाफ मुजाहरों के बाद खत्ते में 600 से ज़्यादा सिविल हुकूक के कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान इंग्लैंड में मुकीम कश्मीरी बाशिंदों ने मुजाहरीन के साथ यकजहती का इजहार करते हुए एहतजाज किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के कराची शहर में अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टरों के एहतजाज ने भी शिद्दत इख्तियार कर ली है, जिसमें जूनियर डॉक्टर्स बकाया वजीफों की अदायगी, बेहतर सिक्योरिटी और अस्पताल में अच्छी सहूलतों का मुतालबा कर रहे हैं। डॉक्टरों ने मुतनब्बे किया है कि अगर उनके मुतालबात न माने गए तो वो खिदमात मुअत्तल कर देंगे। ईरान के सियासी, मिलिट्री और मजहबी कायदीन ने आज तेहरान में साबिक अजीम रहनुमा मरहूम आयतुल्लाह खामिना ई के की नमाज जनाजा में शिरकत की। सरकारी टेलीविज़न की खबरों के मुताबिक अजीम रहनुमा के तीनों बेटों मसूद, मेसम और मुस्तफ़ा ने तेहरान के मुसल्ले आज़म में जनाजे की क़यादत की। इस मौके पर सदर मसूद पेजिशकियाँ, पार्लियामानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ और आला कमांडर भी मौजूद थे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के उनके मुल्क के तारीखी दौरे के 100 साल पूरे होने के मौके पर 2026 और 27 के दौरान 15 महीने तक जारी रहने वाले प्रोग्राम के जरिए इसकी याद मनाएगा। आकाशवाणी के खबरों के शोबे में खसूसी बातचीत करते हुए इंडोनेशिया के लिए भारत के सफ़ीर संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि यादगारी तकरीबात का इफ्तिताह कल से शुरू होने वाले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया के दौरे में होगा। फीफा आलमी कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज रात न्यू जर्सी में ब्राज़ील का मुकाबला नॉर्वे से होगा, जो भारतीय वक्त के मुताबिक 1:30 पर खेला जाएगा। दूसरे प्री क्वार्टर फाइनल में मेक्सिको सिटी में कल सुबह 5:30 पर इंग्लैंड का मुकाबला मेक्सिको से होगा। आज सुबह फिलाडेल्फिया में खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल के एक मुकाबले में फ्रांस ने पैराग्वे पर 0-1 से जीत हासिल करके क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। फ्रांस के कप्तान ने वार की तरफ से मिलने वाली स्पॉट किक पेनल्टी पर मैच के 70वें मिनट में वाहिद गोल किया। ICC खवातीन के T20 आलमी कप फाइनल में अब से कुछ देर पहले तक इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 17 ओवर्स में 4 विकेट पर 122 रन बना लिए थे। ये मैच लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। पूरे भारत में जुनूब मगरबी मानसून में तेज़ी आ गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और बहुत सी

0: हफ्तों में मूसलाधार बारिश से खबरदार किया गया है। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने शिवपुरी में दिफाई साजो सामान की तैयारी करने वाले प्लांट का संग बुनियाद रखा है, जिसकी लागत 2500 करोड़ रुपए है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मगरबी एशिया का अपना 6 रोज़ा दौरा शुरू कर दिया है। उन्होंने दोहा में कतर के वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने मार्केट इस्तेकाम में मदद देने के लिए अगले महीने से तेल की पैदावार में यौमिया 188,000 बैरल इजाफे से इत्तेफाक किया है। खबरें ख़त्म हुई।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। इस माह के रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक ऐसे शहर की कहानी जो न केवल लोहे को पिघलाकर राष्ट्र की रीढ़ बनाता है, बल्कि अपने आसपास के पर्यावरण और लोकगीतों की धुन पर मुस्कुराता है। इस बात संस्कृति और सपनों का शहर जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान, आलेख है शाहिद अनवर का और इसे प्रस्तुत किया है राजीव रंजन तिवारी ने।

0: जोहार हिंदुस्तान, आज आकाशवाणी के इस राष्ट्रीय क्षितिज पर हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे अनूठे सफर पर जहां पिघलते फौलाद की धमनियों में धड़कता है मिनी इंडिया। एक ऐसा शहर जिसका इतिहास राष्ट्र के स्वाभिमान का पहला तकनीकी और औद्योगिक घोषणा पत्र है। हर शहर की अपनी एक कहानी होती है। कुछ शहर इतिहास में दर्ज होते हैं, कुछ भूगोल में और कुछ लोगों के दिलों में। ये कहानी है एक ऐसे शहर की जो कभी जंगल था, जो कभी काली माटी नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां स्वर्ण रेखा और खरकई नदियां मिलकर धरती को हरियाली का आशीर्वाद देती थी। फिर एक सपना आया, एक दूरदर्शी आंखों में पलता हुआ सपना, और उस सपने ने जंगलों के बीच बसाया एक ऐसा नगर जो आज उद्योग का प्रतीक है, खेलों की राजधानी है, संस्कृतियों का संगम है और आधुनिक भारत के आत्मविश्वास की पहचान है। ये है जमशेदपुर टाटा नगर, इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर। वर्ष 1907, भारत अभी स्वतंत्र नहीं हुआ था, लेकिन एक भारतीय उद्योगपति ने स्वतंत्र भारत का सपना देख लिया था। वो सपना था भारत को आत्मनिर्भर बनाने का। उस सपने का नाम था जमशेद जी नसरवान जी टाटा। उन्होंने कहा था, यदि भारत को मजबूत बनाना है तो उद्योग, शिक्षा और विज्ञान को साथ लेकर चलना होगा। और फिर काली माटी की धरती पर जन्म हुआ एक ऐसे नगर का जो केवल कारखानों का समूह नहीं था, बल्कि एक विचार था, एक दृष्टि थी, एक भविष्य था। आज वही नगर विश्व में जमशेदपुर और टाटा नगर दोनों नामों से जाना जाता है। ये शहर केवल बसा नहीं है, इसे सपनों ने गढ़ा है, दूर दृष्टि ने सवारा है और लाखों हाथों ने अपनी श्रम की ऊष्मा से जीवन दिया है। किसी शहर की पहचान सिर्फ उसकी ऊंचे इमारतें नहीं बनाती, बल्कि वो रिश्ता बनाता है जो शहर और उसके लोगों के बीच होता है। यही रिश्ता जमशेदपुर को दुनिया के दूसरे औद्योगिक नगरों से अलग बनाता है। टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज डीबी सुंदर रामम बताते हैं कि जमशेदपुर केवल कंपनी टाउन नहीं है, ये सामाजिक उत्तरदायित्व, सुनियोजित नगरीय विकास और नागरिक साझेदारी का एक वैश्विक मॉडल है।
1: फाउंडर का जो सपना है उसको साकार करने में जितने भी जनरेशन है, जितने भी चेयरमैन आए, जितने भी MDs आए हैं और जितने भी लोग हैं साथ में, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज, यूनियंस, एवरीवन, सबका अलाइनमेंट एक ही है कि जमशेदपुर का नाम रोशन होना चाहिए। रिसेंटली वी वर डिक्लेयर्ड थर्ड बेस्ट क्लीनेस्ट सिटी, तो कुछ लोग खुश है, कुछ लोग पूछते हैं कि एक नंबर में क्यों नहीं आ सकते। वो दैट कॉम्पिटेटिव स्पिरिट भी है, यही हम लोगों को आगे लेके चलता है एंड टू ब्रिंग इन मोर एंड मोर फैसिलिटीज टू द सिटी।
0: अमूमन बड़े औद्योगिक शहरों को प्रदूषण और कंक्रीट के जंगलों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन जमशेदपुर में स्टील प्लांट के ठीक बगल में जुबली पार्क और सघन ग्रीन कवर यानी हरियाली है। उद्योग और पर्यावरण के इस बेहतरीन संतुलन और सस्टेनेबिलिटी को लेकर टाटा स्टील का विजन साफ है, विशेषकर जब हम नेट जीरो कार्बन के राष्ट्रीय

0: लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं। डीपी सुंदर रामम रेखांकित करते हैं।
1: आज के दिन जमशेदपुर डेफिनेटली वन ऑफ द बेंचमार्क प्लांट्स विद 2.2 टन ऑफ कार्बन इमिशन पर टन ऑफ क्रूड स्टील, बट इसको और हम कम कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है सिटीजन्स, किसी का भी घर में, जिसका बंगलो है, घर है, कुछ भी है, अब देखेगा पेड़ पौधा जरूर रहता है। एवरी ईयर गार्डन कॉम्पिटिशन होता है एंड ऑल्सो लोगों में हम लोग लाते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन को यू हैव टू लव नेचर। आज के दिन आप हमसे पूछेगा तो अराउंड 28% जो है ग्रीन कवर किए हैं। हमारा टारगेट है कि कैसे हम 33-35% करें। लास्ट 3-4 साल में बहुत सारा ओपन जिम आए हैं, पार्क्स आए हैं, जहां ये सबको हम लोग बढ़ावा देते हैं तो टीएमएच में लोड कम होता है। बाकी जितना हमारा एनवायरमेंट पैरामीटर्स है उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। वी आर स्पेंडिंग 1,000-1,200 crores एवरी ईयर टू ब्रिंग इट टू लेवल वेयर पीपल इवन एट 500 meters। अपना भी ख्याल रखना है और शहर का भी ख्याल रखना है, तो इसलिए हम लोग हर कदम उठाएंगे जिससे लोगों को ये नहीं असुविधा हो कि प्रदूषण यहाँ बढ़ा।
0: जमशेदपुर के बारे में एक बेहद मशहूर पंक्ति कही जाती है, यहाँ टाटा स्टील शहर की देखभाल नहीं करती बल्कि शहर टाटा स्टील की देखभाल करता है। कंपनी और यहाँ के आम नागरिकों के बीच इस बेहद भावुक, आत्मीय और 100 साल से भी ज्यादा पुराने अनूठे रिश्ते की जादुई बुनियाद क्या है, सुंदर रामम कहते हैं।
1: आज के जनरेशन के एम्प्लॉयज से पूछेगा वो जरूर बोलेंगे हम 3rd generation है, 4th generation है। कुछ एम्प्लॉयज मिलेंगे जो बोलेगा 5th generation है। नॉट ओनली एम्प्लॉयज, जितना शॉप है यहाँ पे, जितना एस्टेब्लिशमेंट है, सिंगभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जितना भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है, तो वो उनके अंदर में भी लॉयल्टी है और हमारे अंदर में भी लॉयल्टी है कि जब हमको जरूरत है उस समय लोग बाहर से आए हैं यहाँ पे। उस समय उनको भी जैसे कंपनी को तकलीफ हुआ उनको भी तकलीफ हुआ, बट फिर भी वो साथ दिए कंपनी का, इसलिए अभी ये पूरा टाटा फैमिली है। और ये भी बात हो रहा है कि हम लोग कूड़ा से कैसे बिजली को उत्पन्न कर सकेंगे या चारकोल का कैसे उत्पन्न कर सकेंगे। बहुत अच्छा अच्छा आइडिया सर है, जितना भी आइडिया है वो शहर को और कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं उसके लिए।
0: ईंट, पत्थर और लोहे से केवल इमारतें बनती हैं, लेकिन विश्वास, संवेदना और साझेदारी से एक शहर जन्म लेता है। सड़कों के किनारे फैले वृक्ष, साफ सुथरे उद्यान, झीलें, खुले मैदान और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर बढ़ता विकास। यहाँ उद्योग और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि सहभागी हैं। जैसे इस्पात और हरियाली ने यहाँ एक दूसरे का हाथ थाम लिया हो। यहाँ हर सड़क एक मंजिल की ओर जाती है और हर मंजिल किसी नए सपने का आरंभ बन जाती है। अगर उद्योग किसी राष्ट्र की शक्ति है तो विज्ञान उसकी बुद्धि है। जमशेदपुर की धरती पर विज्ञान ने भी अनेक स्वर्णिम अध्याय लिखे हैं। यहाँ सन 1950 में स्थापित राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला यानी CSIR NML ने देश के धातु कर्म में आत्मनिर्भरता को नई दिशा दी। आज जब दुनिया सतत विकास और ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, तब यहाँ के वैज्ञानिक भविष्य के भारत का निर्माण कर रहे हैं। विज्ञान में युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला NML के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन क्रिटिकल मिनरल्स एंड मेटल्स के प्रमुख सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अभिलाष उजागर करते हैं।
2: काफी सारे इंडस्ट्रीज ने फायदा उठाया, अभी भी उठा रही इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल में काम करती है, अपने फेरोलॉयज लेके जाती है, स्पेशलिटी फेरोलॉयज जो यूज होता है डिफेंस में, न्यूक्लियर सेक्टर में, ऑल दैट। ऑब्जेक्टिव ये रहा कि जो कंपनी कोल की माइनिंग, आयरन ओर की माइनिंग या डिफरेंट ओर्स की माइनिंग करती है, उनका ग्रेड अगर लो रहता है तो उसको एक ऐसे इंडस्ट्रियल ग्रेड पे लेकर किया जाए जहां से लेकर एक कंपनी अपना मेटल एक्सट्रैक्शन खुद से कर लेती है। कोई भी रेल एक्सीडेंट हुआ है, अगले ही महीने वहां का वो रेल पटरी चक्का सब कुछ NML आ जाता है, उस पर इन्वेस्टिगेशन होता है कि वो स्टील क्रैक क्यों हुआ, टूट क्यों गया। ऐसे ही थर्मल पावर प्लांट है या ऑयल रिफाइनरी है, इनमें जो क्रैक्स आती है कभी कुछ, उनका इन्वेस्टिगेशन यहां से होता है ताकि आगे जाकर की जो समस्याएं होने वाली है इनको रोका जा सके।
0: भारतीय रेलवे ट्रैकों की मजबूती से लेकर डिफेंस और एरोस्पेस के क्षेत्र के लिए विशेष अलॉय विकसित करने तक देश के औद्योगिक विज्ञान को आत्मनिर्भर बनाने में जमशेदपुर की इस प्रयोगशाला ने महत्वपूर्ण तकनीकी क्रांतियां की हैं।
2: जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी बन के आए हैं फॉर स्टार्टअप्स, फॉर यंग पीपल हु आर वांट टू एंटर इनटू केमिस्ट्री फील्ड, मैकेनिकल मेटलर्जी, ऑल दिस काइंड ऑफ फील्ड्स।
0: एक भटनागर पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक के रूप में डॉक्टर अभिलाष का दृष्टिकोण हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड रहा है। आज के दौर में NML इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और औद्योगिक कचरे से लिथियम, कोबाल्ट और सोने जैसे कीमती धातुओं को निकालने की स्वदेशी तकनीक पर बहुत बड़ा काम कर रहा है। पर्यावरण संरक्षण यानी सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलर इकोनॉमी वैश्विक परिदृश्य में इस शोध का काफी महत्व है। डॉक्टर अभिलाष प्रकाश डालते हैं।
2: हमारा उद्देश्य ये है कचरे में जो बैटरी है उससे लेके जो मेटल आप हाई प्योर बनाते हैं उससे नई बैटरी अगर बन जाएगी, बैटरी की कॉस्ट 1/8 कम हो जाएगी। कल आपको जो ईवी का कॉस्ट 15 लाख 16 लाख की कार है शायद कुछ पैसे कम हो जाए उसमें।

0: India becomes self-dependent. So that is what we feel, that the green chemistry, what works in metallurgy, is very well suiting for e-waste recycling.
1: Viksit Bharat 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ग्रीन स्टील और नैनो मटेरियल्स जैसे भविष्य की तकनीक में जमशेदपुर की ये प्रयोगशाला भारत को वैश्विक स्तर पर एक लीडर के रूप में स्थापित कर रही है। विज्ञान की प्रयोगशालाओं में जन्म लेने वाले विचार जब उद्योगों में उतरते हैं तो राष्ट्र की प्रगति का नया अध्याय लिखते हैं, और यही अध्याय जमशेदपुर दशकों से लिख रहा है। लेकिन विकास केवल कारखानों और प्रयोगशालाओं से नहीं होता, विकास के लिए चाहिए शिक्षित मस्तिष्क, जिज्ञासु युवा और नवाचार का साहस। जमशेदपुर का शैक्षणिक इतिहास भी उतना ही गौरवशाली है। कभी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आज राष्ट्रीय महत्व का संस्थान NIT जमशेदपुर। इसके निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधर बताते हैं, RIT से NIT तक का ये सफर केवल नाम परिवर्तन नहीं है, बल्कि शोध, नवाचार और राष्ट्र निर्माण की सतत यात्रा है।
2: NIT जमशेदपुर 31 NIT से देश का एक NIT है। क्रिटिकल मिनरल्स में बहुत ही उपयोगिता है सोलर सेल में, तो अभी ये सोलर सेल रिसाइकलिंग इज ए प्रोजेक्ट। रिसेंटली वी गॉट ए वेरी बिग प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 1.5 करोड़। जो हम लोग का उधर में सिल्वर रहता है, सिलिकॉन रहता है, कॉपर रहता है, उसको कैसे मैं डिसइंटीग्रेट करना चाहता है और फिर हम लोग को नया में फोटोवोल्टिक सेल में हम लोग फीड उपलब्ध कर सकता है, यूटिलाइज कर सकते हैं।
1: 1960 में RIT के रूप में शुरू हुई इस संस्था का इतिहास जमशेदपुर के औद्योगिक विकास के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया जैसी देश के सबसे बड़ी औद्योगिक इकाइयों के ठीक बीच में स्थित होना यहाँ के छात्रों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और देश के औद्योगिक विज्ञान को मजबूती देने में वरदान साबित हुआ है, प्रोफेसर सूत्रधर कहते हैं।
2: इवन लास्ट ईयर में मैं 4 बंदा को अमेरिका भेजे थे फॉर कॉम्पिटिशन में, गया इधर से, एक लड़की था, 3 लड़का था, वो लोग को हम लोग भेजे थे। तो इधर में देश में बहुत जगह में ये लोग EV, रोबोटिक्स, अभी AI का जो आ गया, IIoT, इसमें बहुत काम चल रहा है और आगे बढ़ रहा है। हम लोग इसमें इनोवेशन के रूप में हम लोग इसको सपोर्ट भी करता है।
1: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए NIT जमशेदपुर भविष्य के उन तकनीकी लीडर्स को तैयार कर रहा है जो न केवल वैश्विक स्तर पर भारत का परचम लहराएंगे बल्कि देश की जमीनी समस्याओं का भी तकनीकी समाधान निकालेंगे। प्रोफेसर सूत्रधर रूबरू कराते हैं।
2: प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है, सपना है, इस टाइप ऑफ स्टूडेंट को पहले से ही करना बहुत जरूरी है। वो लोग को बोलना है भाई ये इट्स नॉट ए वन डे कंपटीशन, यू हैव टू टेक इट्स ए लॉन्ग टर्म, डोंट रन बिहाइंड द पैकेज। आप ज्ञान अर्जन करो और होलिस्टिक पर्सन बनने के लिए कोशिश करो, वही हम लोग का सबसे महत्व उद्देश्य है।
1: विज्ञान के इस तकनीकी विकास को जब तक मानवीय संवेदना और सामाजिक जिम्मेदारी का साथ न मिले वो अधूरा है। जमशेदपुर का प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान XLRI दशकों से देश को ह्यूमन फेस वाला नेतृत्व दे रहा है। इसके निदेशक फादर सेबेस्टियन जॉर्ज SJ कहते हैं, भविष्य उन्हीं का होगा जो ज्ञान के साथ संवेदना भी रखते हों।
3: मैनेजमेंट विद ह्यूमन फेस केवल एक विचार या नारा नहीं है, बल्कि XLRI की एजुकेशन फिलॉसफी का मूल आधार है। हमारा मानना है कि मैनेजमेंट एजुकेशन का उद्देश्य केवल कुशल मैनेजर तैयार करना नहीं, बल्कि ऐसा उत्तरदायी और वैल्यू बेस्ड लीडर्स विकसित करना है सो समाज के लिए प्रति रिस्पॉन्सिबल हो। हमारे करिकुलम में एथिक्स, सस्टेनेबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक पॉलिसी और इंक्लूसिव डेवलपमेंट जैसे विषयों को विशेष महत्व दिया जाता है। क्लासरूम के बाहर भी स्टूडेंट्स को रूरल कम्युनिटीज, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और डेवलपमेंट ओरिएंटेड इनिशिएटिव से जुड़ने का अवसर मिलते हैं। ये अनुभव उनमें एम्पैथी, सोशल अवेयरनेस को समझने की क्षमता विकसित करती है।
1: विकसित भारत 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए XLRI भविष्य के कॉर्पोरेट लीडर्स को तैयार कर रहा है जो न केवल आर्थिक प्रगति के संवाहक बने बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास के प्रति भी जवाबदेह हों। कुछ शहर वर्तमान में जीते हैं, कुछ अतीत में, लेकिन जमशेदपुर उन विरले नगरों में है जो इतिहास को साथ लेकर भविष्य की ओर चलता है। आदिवासी लोग

0: उत्पादनों से लेकर वैश्विक उद्योगों तक यहाँ विविधता किसी उत्सव की तरह प्रतिदिन सांस लेती है। जमशेदपुर की आत्मा केवल उद्योग नहीं, यहाँ की मिट्टी में बसती है आदिवासी संस्कृति। यहाँ के पर्व, यहाँ के गीत, यहाँ की लोक कलाएं और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान इस भूमि की पहचान है। पद्मश्री चामी मुर्मू ने हजारों महिलाओं को जोड़कर पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण की ऐसी मिसाल प्रस्तुत की है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। झारखंड की धरती को हरा भरा बनाने वाली लेडी टार्जन के रूप में मशहूर पद्मश्री चामी मुर्मू ने लाखों पेड़ लगाकर बंजर धरती को हरी भरी चादर ओढ़ा दी है। आदिवासी समाज में तो जल, जंगल और जमीन को भगवान की तरह पूजा जाता है। आज के इस आधुनिक दौर में जब जंगल सिमट रहे हैं, हमारी आदिवासी विरासत और पर्यावरण के इस गहरे रिश्ते को चामी मुर्मू इस तरह देखती हैं।
1: किसान भी समझने लगा कि हाँ, हम अगर पौधा लगाएंगे तो मेरा भी फायदा होगा। उसके बाद यहाँ जितना भी बंजर भूमि था सब ये में लगाए, हम लोग 17 लाख तक पौधा लगाए। हम लोग काम लिए और अपना क्षेत्र में काम किया, उस मित्र पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो उसमें और जिम्मेवारी लगा और जोश लगा तो और लगाने का मन किया। और उसके बाद हम लोग महिला लोग भी जागरूक हो गए, तो उसके बाद हम लोग एसएचजी ग्रुप का काम किया।
0: चामी मुर्मू ने हजारों महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर न केवल उन्हें आत्मनिर्भर बनाया बल्कि लकड़ी माफियाओं और अवैध शिकार के खिलाफ खड़े होने का हौसला भी दिया। इस जमीनी बदलाव और महिलाओं के इस संघर्ष की यात्रा को वो बयां करती हैं।
1: बहुत कोशिश किए, बहुत संघर्ष किए, ये करके बाद में हम लोग बंजर भूमि में लगाना शुरू किए। फल दे नहीं दे, लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अपना परिवार जैसे ही मानते हैं और उसी को ये करके हम अभी तक जिए हैं पौधा के साथ, और आगे भी करते रहेंगे, लगाते रहेंगे और समाज में सेवा करते रहेंगे।
0: एक सुदूर गाँव से राष्ट्रपति भवन तक पद्मश्री सम्मान पाने का चामी मुर्मू का ये सफर देश की करोड़ों ग्रामीण और आदिवासी महिला के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। अपनी आत्मीय आवाज में वो कहती हैं,
1: आज पद्मश्री में पहुंच गए हैं, इसके लिए बहुत बहुत सबको धन्यवाद दूंगी और आगे जो है वो तो हम पहले से भी बोल रहे करते ही रहूंगी।
0: प्रकृति के इसी जुड़ाव से जब दीवारों पर रंग बोलते हैं तो वहाँ जन्म लेती है सोहराय कला। सोहराय के रंगों में धरती की मुस्कान है और उन रंगों में छिपी है पीढ़ियों की स्मृति। इस कला को विश्व पटल तक पहुँचाने का प्रयास कर रही है स्थानीय जनजातीय कलाकार हीरा मांझी। वो कहती हैं, संस्कृति को बचाना केवल अतीत को बचाना नहीं बल्कि भविष्य को पहचान देना है।
2: सोहराय पेंटिंग प्रकृति से लिया जाता है, उसमें हम लोग जुड़े हुए हैं। हम इंसानों का अस्तित्व पशु पक्षी प्रकृति के बिना अधूरे हैं। आज के जो पीढ़ी है कंप्यूटर मोबाइल की दुनिया में खोए हुए हैं, उनको हम बता रहे हैं जो असली दौलत जल, जंगल और जमीन है। युवाओं को यही सिखाते हैं, कैनवस और दीवार में बना के समझाते हैं। अपनी भाषा को बचाए रखना है, उनको कहानी लिखना, नाटक लिखना सिखा रहे हैं संथाली में, और युवाओं को समर्थन मिल रहा है। ये जो लड़ाई है बहुत कठिन है, लेकिन समाज का अगर साथ मिलता है तो आसान हो जाता है।
0: हीरा मांझी की बातें हमारे सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाती हैं। उनकी आंखों में सपना है। वो कहती हैं, सोहराय पेंटिंग हमारी परंपरा है, प्रकृति के प्रति हमारा धन्यवाद है।
2: एक और दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, दूसरी तरफ शाम को नगाड़ो मादर की थाप घुसती है। यही सही मानव में मिनी इंडिया है, जहां हर राज्य के लोग रहते हैं। बहुरंगी पहचान को जिंदा रखने में हमारे जनजातियां कलाकारों, विचारकों और साहित्यकारों बहुत बड़ी भूमिका है। हम अपनी कला साहित्य के जरिए इस आधुनिक शहर को उसकी आत्मा से जुड़े रखते हैं। हम याद दिलाते हैं तरक्की की ऊंचाई को छूते हुए जमीन को नहीं भूलना।
0: पर्वतों की चोटियां हो या जीवन की चुनौतियां, विजय उन्हीं को मिलती है जो कदम बढ़ाने का साहस रखते हैं। अगर जमशेदपुर उद्योग का शहर है तो ये खेलों का तीर्थ है। तरक्की और संस्कृति के साथ साथ जमशेदपुर देश की खेल राजधानी भी है। ये वो भूमि है जो युवाओं में साहस का संचार करती है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट पर विजय पताका फहराने वाली और टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के माध्यम से देश को साहसी बनाने वाली पद्म भूषण बचेंद्री पाल की बातें रोमांच से भर देती हैं।
3: आज कोई मुझे पूछे कि पहाड़ क्यों चढ़ना चाहिए, जो मुझे लगातार पूछते रहते थे गांव में हर जगह, पढ़े लिखे लोग भी।

0: लेकिन आज हमारे पास जवाब है कि पहाड़ क्यों चढ़ना चाहिए। पहाड़ कौन चढ़ते हैं? जो बहुत साहसिक होते हैं, जो बहुत ब्रेव होते हैं, जिनका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है, जो अपने लिए बहुत बड़े जोखिम भरा लक्ष्य निर्धारित करते हैं, क्योंकि जिंदगी में हर जगह ही चुनौती है।
1: रोमांच और खेल इंसान को मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं, जिससे वे जीवन के हर ऊंचे शिखर को फतह कर सकें।
0: मुझे बहुत खुशी होता जब हमारे प्रोग्राम में लड़के लोग आते हैं, यूथ लोग आते हैं, जीटी लोग आते हैं, एमटी जाते हैं, रूरल यूथ आते हैं और डरे हुए रहते हैं। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है, उनमें ब्रेवरी नहीं होता है, लेकिन जब वापस जाते हैं पूरा बदल के जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ लाइफ जिंदगी सार्थक है, और बार बार यही सोचती हूँ कि एक लाइफ एक जिंदगी बहुत छोटा है, बहुत कुछ और भी करने के लिए।
1: साहस की इसी धरती ने विश्व विजेता धनुर्धर पैदा किए हैं, जिन्होंने ओलंपिक तक का सफर तय किया। इस यात्रा में टाटा आर्चरी अकादमी का योगदान अविस्मरणीय है। इसके मुख्य कोच और मेंटर के रूप में अपने अनुभव साझा करते हुए पद्मश्री और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित पूर्णिमा महतो कहती हैं कि सफल खिलाड़ी केवल प्रतिभा से नहीं, अनुशासन और निरंतर अभ्यास से बनता है।
2: दीपिका जैसे कैडेट एंड जूनियर वर्ल्ड चैंपियन है, उसके बाद हमारी एकेडमी से कोमलिका बनी, हमारी एकेडमी से कैडेट वर्ल्ड चैंपियन भी बनी और जूनियर भी बनी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर निकले हैं। दीपिका एक बहुत बड़ा नाम है हमारे एकेडमी का। दीपिका जब कैडेट वर्ल्ड चैंपियन बनी और पीछे खड़े थे, बहुत अपने आप को प्राउड फील हुआ। मतलब हम तो एक ये मानते हैं कि अब इंडियन आर्चरी को एक जगह लेके गया है टाटा आर्चरी एकेडमी।
1: धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ा एक तीर केवल लक्ष्य नहीं भेदता, वो सपनों को भी नई उड़ान देता है। फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, पर्वतारोहण, हर खेल में जमशेदपुर ने अपनी पहचान बनाई है। तीरंदाजी के साथ साथ फुटबॉल के क्षेत्र में भी जमशेदपुर को भारतीय फुटबॉल की नर्सरी कहा जाता है। टाटा स्टील के खेल प्रमुख और जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के CEO मुकुल चौधरी कहते हैं,
3: इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन शायद ही किसी अकेडमी या किसी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन ने किया होगा। करीब करीब 300 बच्चे TFA से ग्रेजुएट हुए, उससे 150 बच्चे नेशनल खेल चुके हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट किया, उसमें से कुछ 19 अलग अलग एज ग्रुप में कैप्टन हो चुके हैं। बट ये एक एकेडमी करती थी और इनका बेसिकली अगर देखा जाए तो 20 बच्चों को हमेशा लेते थे और क्वालिटी पे हमेशा ध्यान दिया जाता, क्वांटिटी पे नहीं था। कल्याण चौबे है, रेनिडी सिंह है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर है आज की तारीख में भी जो हर टीम में तीन चार कहीं कहीं मिल जाते हैं। आई थिंक इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन शायद ही किसी इंस्टीट्यूशन का होगा। एंड इंडियन फुटबॉल में इसको काफी अच्छी तरह सम्मानित भी किया गया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने एक स्पेशल रिकॉग्निशन दिया हमको, टाटा फुटबॉल एकेडमी को, फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन। और ये सब कब हुआ? 1987 में, जब 83 में क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला था। तो हम इसका बड़ा सा श्रेय हमारे लीडरशिप को देते हैं, जिन्होंने इसका बारे में तब सोचा जब क्रिकेट अपने पीक पे था, वर्ल्ड कप जीत चुकी थी और सारा कॉन्सेंट्रेशन क्रिकेट की तरफ था। तभी एक रेसिडेंशियल स्कूल पहली बार, और वो भी जमशेदपुर में, शुरू की गई और पूरे हिंदुस्तान से सबसे बेहतरीन फुटबॉलर्स को यहाँ लाके उनको ट्रेन किया गया। तो आई थिंक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है TFA का।
1: आज वैश्विक स्तर पर फुटबॉल की तकनीक और गति बहुत बदल चुकी है। 2026 के इस आधुनिक दौर में TFA अपने युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए किस तरह आधुनिक तकनीकों, विदेशी एक्सपोजर और वैज्ञानिक ट्रेनिंग से लैस कर रहा है, मुकुल चौधरी बताते हैं।
3: शुरुआत से ही सबसे बेस्ट ट्रेनिंग देने के लिए जाना जाता है। काफी साल पहले TFA शायद पहला इंस्टीट्यूशन जहां वीडियो एनालिसिस शुरू हो गया एकेडमी लेवल पे। उसके बाद हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर है, ये सारी चीजें नई हैं जो हम कोशिश कर रहे हैं जिससे बेसिकली बच्चों को इंजरी ना हो। नॉर्मल बच्चों से ज्यादा अपने आप को स्ट्रेच करके मेहनत करनी पड़ती है ग्राउंड पे, और ये फिजिकली डिमांडिंग स्पोर्ट है तो इंजरी काफी कॉमन है। हमारी कोशिश यही रहती है कि इंजरी ना हो, और अगर हो तो उनको जल्दी से जल्दी फिट करके ग्राउंड पे कैसे लेके आए। तो ये इसके लिए हमारा एक स्पोर्ट्स साइंस टीम है जो कि खासकर जमशेदपुर में, काफी कम है हिंदुस्तान में, उसमें से एक जमशेदपुर में सेंटर है। उसके अलावा फॉरेन एक्सपोजर, हर बैच जो हमारे आता है 4 साल के लिए हमारे साथ रहता है, तो एक साल उनको बेसिकली एक महीने के लिए हम यूजुअली फॉरेन एक्सपोजर देते हैं, ताकि उनको बाहर किस लेवल का फुटबॉलर, ज्यादातर ये यूरोप में होता है क्योंकि यूरोपियन फुटबॉल अपने आप में बहुत ही इवॉल्व्ड है, और हम चाहते हैं कि उसी को देखे और वो अपने एक सेल्फ बिलीफ भी बनाए कि आपको भी इस स्तर पे जाके खेलना है। ISL में भी काफी प्लेयर है, इनफैक्ट टीम में ओवरऑल 8 प्लेयर है जो हमारे यूथ सिस्टम से निकले हैं। तो कोशिश यही है कि हम यूथ को प्रमोट करें, यूथ को एनकरेज करें और उनको बेहतरीन से बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट दें।
1: हॉकी भारत के दिल में बस्ती है और जमशेदपुर में नवल टाटा हॉकी अकादमी ने जमीनी स्तर पर काम करके इस खेल को नई ऊर्जा दी है। विशेषकर झारखंड के सुदूर और ग्रामीण इलाकों से आदिवासी प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर चमकाने में अकादमी की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी के बारे में बता रहे हैं नवल टाटा हॉकी अकादमी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर गुरमीत

0: सिंह राव।
1: हमारे दो बच्चे एट प्रेजेंट नेशनल इंटरनेशनल लेवल पोडियम फिनिश कर चुके हैं, वो भी गोल्ड एशिया कप, और उसी के साथ में एक बच्चा हमारा हाईएस्ट स्कोरर का परफॉर्मेंस उठाता है, तो ये एक हमारा एक एग्जांपल सेट होता है। आशीष तानीपुरति जिसने हैट्रिक भी मारी है सेमीफाइनल्स और फाइनल्स दोनों मैचेस में, और उसी के साथ में उसने हाईएस्ट स्कोरर का भी खिताब उठाया है, तो ये एक एग्जांपल सेट करता है हमारी एकेडमी किस लेवल पे काम कर रही है।
0: योजनाएं भारतीय हॉकी के सुनहरे दौर को वापस लाने की है।
1: हमारे पास एट प्रेजेंट कुछ 54 ग्रासरूट सेंटर्स हैं टोटल सीनी और टाटा स्टील फाउंडेशन के मिला के, जिसमें अराउंड 4000 बच्चे ट्रेन होते हैं। ये एज ग्रुप है 8 साल से 12 साल के बीच में। इसी से बच्चे कुछ सिलेक्ट होके आते हैं रीजनल डेवलपमेंट सेंटर्स, जहां पे उनको थोड़ा अच्छा ट्रेनिंग मिलता है, अच्छी किट मिलती है, अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है और टर्फ का एक्सपीरियंस मिलता है। इस आरडीसी लेवल से हम शॉर्टलिस्ट करके नवल टाटा हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे लेकर आते हैं। ये एक्चुअली पूरा रोड मैप है हमारा।
0: मैदान में दौड़ते खिलाड़ी सिर्फ पदक नहीं जीतते, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के दीप जलाते हैं। एक शहर को समझने के लिए उसके लोगों की स्मृतियों में उतरना पड़ता है। प्रगति, विज्ञान, खेल, संस्कृति और कला के इन तमाम रंगों को अपने भीतर समेटे ये शहर पिछले 40-50 वर्षों में कैसे बदला, इसकी सबसे खूबसूरत और प्रामाणिक झलक हमें मिलती है टाटा मोटर्स से सेवानिवृत्त और विश्व के 40 देशों में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके वयोवृद्ध प्रबुद्ध नागरिक प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रेश्वर खां की बातों से, जो इस शहर को मिनी भारत का सबसे सुंदर विजन मानते हैं।
2: जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो आँखों के सामने एक बिल्कुल अलग जमशेदपुर तैर जाता है। वह सादगी का दौर था, जब सायरन से पूरा शहर अपनी घड़ियां मिलाता था, सड़कों पर साइकिलों का तांता होता था, शाम को साक्षी या विष्णुपुर के बाजारों में थके हारे कर्मचारी एक कप चाय पर दुनिया जहान की बातें करते थे। जीवन की रफ्तार थोड़ी धीमी थी, लेकिन दिलों में आत्मीयता बहुत गहरी थी। शहर का रूप रंग बदला है, लेकिन इसकी आत्मीयता का जो कोर है, जो अंतःस्थल है, वो आज भी वैसा ही महक रहा है, चमक रहा है और आगे बढ़ रहा है। जमशेदपुर में सुबह टाई लगाकर दफ्तर जाने वाला एक एग्जीक्यूटिव शाम को सरहुल या टूसू के अखाड़े में मानदर की थाप पर थिरकता हुआ मिल जाएगा। यहाँ का कॉरपोरेट कल्चर लोक संस्कृति को दबाता नहीं, बल्कि उसे स्पॉन्सर करता है, उसे आगे बढ़ाता है। अब टाटा मोटर या टाटा स्टील अपने परिसरों में जनजातीय कला भाषाओं के लिए बड़े बड़े उत्सव करते हैं, जो एक आम नागरिक को लगता है कि उसकी पहचान सुरक्षित है। दुर्गा पूजा के पंडालों की भव्यता और सोहराय की पेंटिंग का सौंदर्य यहाँ एक ही कैनवास पर बिना किसी टकराव के सह अस्तित्व में रहते हैं। हमारी जड़ें मजबूत है, इसलिए चकाचौंध की इस दुनिया में इस आंधी ने कभी भी हमें हिलाया नहीं। जमशेदपुर कारीगरी का, दिमागी काम का और हृदय के आंतरिक भावनाओं का अनोखा त्रिवेणी और संगम है।
0: काली माटी से जमशेदपुर और टाटा नगर तक, जंगलों से विज्ञान तक, इस्पात से इंसानियत तक, ये केवल एक शहर की कहानी नहीं, ये आधुनिक भारत की कहानी है। पिघलते लोहे से लिखी जिसने आत्मनिर्भरता की नई इबारत, जहाँ की माटी में बसता है एक मुस्कुराता हुआ लघु भारत। प्रगति की रफ्तार में भी जिसने अपनी जड़ों को संभाला है, वो जमशेदपुर आज पूरे राष्ट्र की आंखों का उजाला है। जमशेदपुर जहां कारखानों की चिमनियों के साथ सपने भी उड़ते हैं, जहां प्रयोगशालाओं में भविष्य आकार लेता है, जहां खेल मैदान में आत्मविश्वास जन्म लेता है, जहां संस्कृति अपने जड़ों से जुड़ी रहती है और जहां विकास का अर्थ केवल प्रगति नहीं बल्कि मानवता भी है। जमशेदपुर एक शहर नहीं, एक विचार है, एक सपना है और उस सपने का नाम है मिनी भारत। उद्योग, विज्ञान, खेल, संस्कृति, शिक्षा और पर्यावरण का ये अनूठा सह अस्तित्व पूरे देश के लिए एक महान प्रेरणा है। तरक्की की ऊंचाइयों को छूते हुए भी अपनी माटी को चूमे रखना ही जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान है। इसी जोहार और शुभकामना के साथ कि इस शहर की ऊर्जा पूरे हिंदुस्तान को यूं ही रोशन करती रहे, जोहार जमशेदपुर, जोहार हिंदुस्तान।
3: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रूपक, इस्पात, संस्कृति और

और सपनों का शहर जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। आलेख शाहिद अनवर, वाचन स्वर तासीर शाहिद, प्रस्तुतकर्ता राजीव रंजन तिवारी और संयोजन था राजेश कुमार राय का। जमशेदपुर केंद्र के द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: ये आकाशवाणी है। आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में प्रस्तुत है पंडित कैलाश चंद शर्मा का बांसुरी वादन। कैलाश शर्मा का संगीत जगत से परिचय बचपन में ही हो गया था। बांस से बने इस वाद्य यंत्र से निकलने वाली मधुर ध्वनियों से प्रेरित होकर उन्होंने नई दिल्ली स्थित गंधर्व महाविद्यालय में श्री प्रकाश एन सक्सेना से बांसुरी सीखना प्रारंभ किया। बाद में उन्होंने पंडित विनय चंद्र मौदगल्य से भारतीय शास्त्रीय संगीत की बारीकियों का भी अध्ययन किया। बांसुरी कैलाश शर्मा के जीवन का अभिन्न अंग बन गई और उन्होंने निरंतर अभ्यास जारी रखा। उन्होंने अंतर महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर की संगीत प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अनेक पुरस्कार प्राप्त किए। तब से लेकर आज तक कैलाश शर्मा ने अपने व्यावसायिक जीवन में एक लंबा सफर तय किया है। उन्होंने भारत तथा विदेशों के अनेक देशों में व्यापक रूप से प्रस्तुतियां दी हैं और उनके संगीत को अत्यधिक सराहना प्राप्त हुई है। उन्होंने महान संगीत सम्राट पंडित रविशंकर के साथ अनेक अवसरों पर कार्य किया तथा विश्वविख्यात रंगकर्मी श्री पीटर ब्रुक द्वारा पेरिस में आयोजित एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए उनका चयन किया गया। उन्हें भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR द्वारा मध्य पूर्व के 10 देशों की यात्रा पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एकल वादक के रूप में प्रस्तुति देने के लिए भेजा गया। कैलाश शर्मा ने राजधानी में आयोजित अनेक प्रमुख संगीत समारोहों में एकल वादक के रूप में प्रस्तुति दी है, जिनमें विष्णु दिगंबर जयंती, शंकरलाल संगीत समारोह, सेहर तथा नैना देवी स्मृति समारोह प्रमुख हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ फ्लूट रिसाइटल बाय पंडित कैलाश चंद शर्मा। पंडित कैलाश चंद शर्मा वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक while he was still a child. Inspired by the sounds that emanated from this instrument made of bamboo, he started learning the flute from Shri Prakash N. Saxena at Gandharva Mahavidyalaya, New Delhi. Later, he also learnt the nuances of the Indian classical music from Pandit Vinay Chandra Modgalya. The flute became an integral part of Kailash Chandra Sharma's life and he played on, participating in and winning prizes at inter-college university level music competitions. Since then, Pandit Kailash Chand Sharma has come a long way professionally, having performed a great deal in India and many countries abroad. He has worked with the great maestro Pandit Ravi Shankar on many occasions and was selected to participate in a workshop organized in Paris by the renowned theatre personality Mr. Peter Brook. He was sent on a tour for 10 countries in the Middle East by the ICCR to perform as a soloist. Pandit Kailash Chand Sharma has performed as a soloist in some of the major music festivals that are held in the capital, such as Vishnu Digambar Jayanti, Shankarlal Music Festival, Seher, the Naina Devi Memorial Festival, to name a few.
0: आपके साथ आज इस कार्यक्रम में तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित विनोद लेले। पंडित कैलाश चंद शर्मा अपने कार्यक्रम का आरंभ राग मालगुंजी से कर रहे हैं। विलंबित रचना एक ताल व द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: टुडे ही इज अकॉम्पनीड ऑन तबला बाय पंडित विनोद लेले। कैलाश चंद शर्मा बिगिंस हिज फ्लूट रिसाइटल विद राग मालगुंजी। विलंबित कॉम्पोजिशन इज सेट टू एक ताल एंड द्रुत कॉम्पोजिशन इज सेट टू तीन ताल।

0: ये था पंडित कैलाश चंद्र शर्मा द्वारा बजाया गया राग मालगुंजी। पंडित कैलाश चंद्र शर्मा अपने कार्यक्रम का समापन राग मिश्र खमाज से कर रहे हैं। मध्य लय रचना दादरा ताल में निबद्ध है।
1: यू जस्ट हर्ड राग मालगुंजी। पंडित कैलाश चंद्र शर्मा कंक्लूड्स हिज फ्लूट रिसाइटल विद राग मिश्र खमाज। मध्य लय कॉम्पोजिशन इज सेट टू दादरा ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे पंडित कैलाश चंद शर्मा का बांसुरी पर बजाया राग मिश्र खमाज। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित विनोद लेले। इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा अब यहीं संपन्न होती है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: पंडित कैलाश चंद शर्मा वॉज अकम्पनीड ऑन तबला बाय पंडित विनोद लेले। विद दैट वी कंक्लूड टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। दिस प्रोग्राम वॉज अर्लियर रिकॉर्डेड in the studios of Akashvani Delhi. This program came to you from Delhi station of Akashvani.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं, आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र।

0: देश में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग में कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली और गीर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई नगर महानगर पालिका के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2,500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा में भारी जन भागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किया। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यूजर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 151 रन का लक्ष्य दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने ताजा समाचार मिलने तक 15वें ओवर में 2 विकेट पर 138 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla.

बजकर 10 मिनट हुए हैं, समाप्त होती है हमारी आज की दूसरी सभा। इसी मीटर पर कल प्रातः 5:45 पर पहली सभा आरंभ होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।